ओम शांति। हम सभी देवी देवता कुल की महान आत्माएं हैं। याद करें हम अपने उन महान संस्कारों को जो जन्म जन्म हमारे साथ रहे हैं, चाहे वो पवित्रता के संस्कार थे, चाहे सुखदायी संस्कार थे, चाहे परोपकारी संस्कार थे, कल्याणकारी संस्कार थे। हम महान रहे हैं, हमारे संस्कार भी बड़े रॉयल रहे हैं। अब पुनः हम उन्हीं संस्कारों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। हम सभी को चेक कर लेना है, हमारे संस्कार हमारी महानताओं के अनुरूप हैं या नहीं हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम देवकुल की महान आत्माएं हैं, हम पूर्वज हैं। हमें बाबा ने विश्व कल्याण का महान कार्य भी सौंपा है। हम जन जन को प्रभु से मिलाने का काम करते हैं। हमें इस सब को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान भी दिलाना है। तो क्या हमारे संस्कार ऐसे रॉयल हैं जो महान हैं? क्या वो फीलिंग में आना, रूसना रूठना, परेशान रहना, दुख देना और लेना, क्या इन संस्कारों के वशीभूत हो सकते हैं? जिन्हें विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करना है, क्या वे क्रोध के, तेरे मेरे के, टकराव के, लड़ाई झगड़े के संस्कारों में लिप्त रह सकते हैं? देख लें, जिन्हें प्रकृति को भी पावन करना है, क्या उनमें अपवित्रता के संस्कार, लस्ट के संस्कार, देह की ओर आकर्षित होने के संस्कार बार बार आकर्षित कर सकते हैं? हम इन संस्कारों से ऊपर उठ जाएं और अपने संस्कारों को बहुत डिवाइन और बहुत रॉयल बनाएं। हमारे संस्कार तो सुख देने के हैं, हमारे संस्कार तो सबकी पीड़ा हरने के हैं, हमारे संस्कार तो बिगड़ी को बनाने के हैं। संस्कारों को सिंपल भाषा में आदत कह लें। हमारी आदतें तो वरदानी बोल बोलने की है, हमारे संस्कार कटु वचन उच्चारण करने के हैं ही नहीं। हम तो शंकर महादेव की तरह दूसरों का विष पीने वाले हैं, उन्हें अमृत देने वाले हैं। हमें कभी भी विष उगलना नहीं है। तो अपने संस्कारों को आज विशेष रूप से चेक करेंगे। मेरे पास कोई गलत संस्कार तो नहीं है जो मुझे संपूर्णता की राह पर चलने से रोकता है, जो महान लक्ष्य को पाने में बाधा उत्पन्न करता है, जो संगठन में रहने में मुझे कठिनाई पैदा करता है, दूसरों को कठिनाई पैदा करता है, या कोई ऐसा छोटा मोटा संस्कार जो हमें निगेटिविटी की ओर ले चलता है, जो हमारी महानताओं को विलीन कर देता है। जब दूसरे देखते हैं कि इनमें तो ये संस्कार है।

है, ये तो फट से रूस जाते हैं, ये तो असंतुष्ट हो जाते हैं, इन्हें सम्मान न दिया गया तो ये बिल्कुल विचलित परेशान हो जाएंगे, तूफान मचाने लगेंगे। तो ये संस्कार देख लें क्या महान आत्माओं के, भगवान के बच्चों के हो सकते हैं। अपनी महानताओं को पहचाने, कितने महान हैं हम, किसके हैं हम, जैसे हमारे बाप के संस्कार, ब्रह्मा बाबा के संस्कार, वैसे ही हमारे संस्कार भी होंगे ही, वो सब हमारे अंदर समाये हुए हैं। जैसे बाबा उदार चित, सबको सुख देने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबको उमंग उत्साह दिलाने वाले, सबको प्रेरित करने वाले थे, वैसे ही हम भी बन जाएं। तो आज सारा दिन अपने देव स्वरूप को याद करेंगे, इस नशे में रहेंगे, बाबा मुझे क्या देने आया है, एक विजन बनाएंगे जैसे बाबा बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं और एक स्वर्ग का मॉडल हाथ पर रखा हुआ है, ताज और तिलक लिए हुए हैं और मुझे प्रदान कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे यही सब तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने देव स्वरूप के नशे में रहेंगे, अपनी भविष्य प्राप्तियों के नशे में सारा दिन रहेंगे और अपने देव संस्कारों से वर्तमान संस्कारों की तुलना करते हुए अपने संस्कारों को बहुत दिव्य, बहुत रॉयल बनाएंगे, ताकि हमें देखकर सभी को बाप दादा का साक्षात्कार हो। ओम शांति।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जब आपका कोई रोग ठीक होने लगता है तो डॉक्टर कहता है दवा आप पर सही रिस्पॉन्ड यानी कि अनुक्रिया कर रही है, लेकिन यदि आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो डॉक्टर कहता है आपके ऊपर दवा का रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया हो रही है। सही अनुक्रिया सकारात्मक होती है, प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है। हम यह ध्यान रखें कि जीवन में कभी भी और किसी भी स्थिति में हम प्रतिक्रिया न करें, बल्कि अपने लिए एक सही व सटीक अनुक्रिया का चयन करें। हमारा व्यवहार किसी बाहरी प्रभाव के भड़कावे में आया हुआ न हो, बल्कि एक गहरे मूल्य आधारित चयन से उत्पन्न हुआ हो, और संसार का कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे भीतर के भलेपन को अपने पैरों तले रौंदता न चला जाए। संसार कैसा व्यवहार करता है यह देखना हमारा काम नहीं है। सबसे गर्व की बात होती है खुद अपनी नजर में ऊंचा उठना। आप सदैव अपने चरित्र को जिए, चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी कसौटी पर हों और कुछ भी कर रहे हों। दूसरों की सीमा के कारण हम खुद को सीमित न होने दें, वह गलत है। इस बात की आड़ लेकर की गई आपकी गलती क्षमा योग्य नहीं हो जाती। गलती के बदले गलती करना कोई सही तरीका नहीं है। हम अपना भलापन दांव पर न लगाएं। जीवन के हर मौके पर हम लोगों जैसे न बने, उनसे आगे निकलें।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: युगोस्लाविया की एग्नेस गोंजा बोयाजू तो कलकत्ता के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए भारत आई थी और अनचाहे ही संसार के सामने मदर टेरेसा का करुणा उतार अवतरित हो गया। द नेशनल हेराल्ड के एक संपादकीय सदस्य बालकृष्ण मेनन, जिनका हमेशा से यह विश्वास था कि हर साधु एक बड़ा फरेबी होता है, स्वामी शिवानंद के पास एक आर्टिकल लिखने के संबंध में पहुंचे और वे अनचाहे ही संसार को स्वामी चिन्मयानंद के रूप में प्राप्त हुए। आप कुछ भी कहें, क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए अमेरिका था तो एक अनचाहा परिणाम ही। जो लोग अनचाहे परिणामों के कारण ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उन्होंने संसार पर उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव डाला है जिन्होंने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित किया और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त किया। इसलिए यदि अपने जीवन में आपको वह नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं, यदि आपके पूरे प्रयासों के बावजूद आपको वह परिणाम नहीं मिल रहा है जो आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा करता, जो रास्ता आपने चुना है यदि वह आपको वहां नहीं ले जा रहा है जहां आप जाना चाहते हैं, तो निराश ना हो। अनचाहे परिणाम जीवन द्वारा आपको उन संभावनाओं को दिखाने का एक तरीका है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनचाहे परिणाम ईश्वर द्वारा आपको यह बताने का एक तरीका है कि उसके पास आपके लिए कुछ और ही योजना है, एक ऐसी योजना जो आपके द्वारा चाही गई योजना से बड़ी है। कभी कभी आपके लिए निर्धारित की हुई अपनी उस योजना को पूरा करने के लिए ईश्वर आपकी योजनाएं बिगाड़ देता है। संसार जिसे असफलता कहता है, वास्तव में वह एक नया मोड़।
1: जय शंकर संतोष भाई।
2: महादेव महादेव आशुतोष जी।
1: अरे बाबा के लिए कुछ लिखिए गुरु।
2: क्यों नहीं, लो लिख दिया। हर हर शंभो।
1: हर हर

vă moc ce doare și vii. Ihe soiem vă.

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? गॉड्स ब्यूटीफुल आंसर वॉज, द थिंग दैट सरप्राइजेस मी द मोस्ट अबाउट दीज ह्यूमन बींग्स इज दीज ह्यूमन बींग्स दे इन्वेस्ट देयर कंप्लीट हेल्थ टू गेन वेल्थ एंड आफ्टर मेनी मेनी इयर्स दे हैव टू री इन्वेस्ट देयर कंप्लीट वेल्थ टू रीगेन हेल्थ। कहा जाता है जान है तो जहान है, और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें टू डू सम एक्सरसाइज। अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मींस माइंड और फिजिकल मींस शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बीन डिवाइस बाई डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो। और जब मैं कहूंगा टू तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ चलिए, ओके हियर वी गो। वन टू, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके एक और बार करेंगे, वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वे बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है और वो है, जब मैं कहूंगा वन तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो जब मैं कहूंगा वन तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो, वेरी गुड वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो, या या या। फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, यस द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए? प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाद को लीजिए, ओके? ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ। कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहे? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे, राइट? भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना? जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, ओके? यू नीड टू हेल्प एवरीवन। जैसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं। एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी। जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। ऐसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बनता है।

हमारी चेतना भावनाओं की गहराई की तलाश में रहती है। उसका चयन सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं के बीच कभी नहीं होता, बल्कि गहरी भावनाओं और उथली भावनाओं के बीच होता है। नकारात्मक भावनाएं चूंकि हमेशा ही सकारात्मक भावनाओं की अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं, इसलिए अधिकांश लोग नकारात्मक भावनाओं की गहराई तक बिना किसी कोशिश के ही पहुंच जाते हैं, जबकि अपनी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करने की गहराई तक वे कभी नहीं जाते, वे उनकी सतह पर ही रहते हैं। आप खुद को देखें और इस पर विचार करें। बच्चा घर में अपने खेल में मगन है, बाकी हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। बच्चे का यूं मगन होकर प्रसन्नतापूर्वक खेलते रहना किसी का कोई विशेष ध्यान अपनी ओर नहीं खींचता, लेकिन जब बच्चा चोट खा जाता है तो सारा घर यह कहता हुआ बच्चे की ओर दौड़ पड़ता है, क्या हुआ? और इस तरह हम अनजाने ही बच्चे में इस विश्वास की प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि खुशी खुशी रहने की तुलना में रोना अधिक ध्यान खींच सकता है। भविष्य में और वयस्क होने पर भी वह जब जब ध्यान आकर्षित करना चाहेगा तब तब वह किसी न किसी प्रकार का रोना चीखना लेकर बैठ जाएगा। आंसुओं के अवसाद तक, वह चिड़चिड़ेपन के दौरे तक, कभी कम और कभी अधिक। अपनी भावनाएं उसे बिल्कुल सही और तर्कसंगत लगती रहेंगी, जबकि दूसरों को वे बेतुकी और विसंगत ही नजर आएंगी। ऐसा व्यवहार अवचेतन रूप से कर लिया गया एक चयन होता है, चेतन रूप से नहीं। उसे तो यह भी पता नहीं होता कि उसके भीतर कोई चीज यानी कि उसका अवचेतन न केवल उसकी भावनाओं का चयन कर रही है, बल्कि जीवन की उन स्थितियों का चयन भी कर रही है जो उन भावनाओं के अनुकूल बैठ रही हों। एक अवचेतन ललक उसे गहरी भावनाओं की ओर बहा ले जाता।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गहरी घृणा और उथले प्रेम के बीच आपका अवचेतन हमेशा घृणा को ही चुनेगा। यही कारण है कि ठेस, आघात व घृणा तो वर्षों तक ताजे बने रहते हैं, लेकिन प्रेम को हर रोज किसी नए ढंग से अभिव्यक्त करना पड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे को यही बात अखर जाती है। विडंबना देखिए, अपनी घृणा को जीवित रखने में तो आप समर्थ हैं, लेकिन अपने प्रेम को संभाल कर रखने के लिए आपको बाहरी संबल की जरूरत पड़ती है। इसका निदान है गहरा प्रेम अनुभव करना सीख लेना। प्रेम की अपनी अभिव्यक्ति और प्रदर्शन को प्रबल करें, प्रेम में डूब जाएं, प्रेम में मगन हो जाएं, प्रेम का प्रतीक बन जाएं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अपनी ठेस, अपने आघात, अपनी घृणा को क्षमा द्वारा शांत व खत्म करना सीखें, उन्हें गहराई न दें। तभी यह संभव होगा कि आपका अवचेतन अपने सहज स्वभाव से घृणा के बजाय प्रेम का चयन करने लगेगा, केवल इसकी गहनता के कारण ही। साथ ही यह जीवन की उन स्थितियों का भी चयन करना शुरू कर देगा जो प्रेम के लिए अनुकूल बैठेंगी। अपनी विफलता से सीख तो लें, लेकिन विफलता को उसी के हाल पर छोड़ दें, उसे लेकर कुछ अधिक भावुक न हो जाएं। अपने अवचेतन को गुमराह न करें, अपनी सफलता का जश्न मनाएं, अपने रोम रोम से पुलकित रहें, अपने अवचेतन को अच्छा अच्छा भेंट करें। अस्वस्थता एक चलती फिरती टिप्पणी से ज्यादा महत्व के योग्य नहीं होती। अपने स्वास्थ्य की प्रशंसा करें, बढ़ाई करें, अपने अवचेतन को अवगत होने दें कि आप किसे श्रेयस्कर समझते हैं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। समाधान सरल है, नकारात्मक बात को दो वाक्यों में बोलें और सकारात्मक को कम से कम पांच में। नकारात्मकता की ओर जाने वाली अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाएं, लेकिन सकारात्मकता की ओर जाने वाली अपनी भावनाओं को प्रवाह से वहां जाने दें। यही है रूपांतरण, अवचेतन के पुराने रूप का नए रूप में अंतरण कर देना। किसी ने कहा है कि दुखी हृदय से सुंदरतम कविता फूटती है। फिर तो यह सुंदर संसार बनाकर ईश्वर बड़ा दुखी हुआ होगा। अरे, उसने मेरे ईश्वर को ना तो देखा है और न ही जाना है। परमानंद की गहनता

को अनुभव करना सीखें, फिर आपको कोई कविता लिखने की जरूरत नहीं रह जाएगी, वह तो आपके माध्यम से बस हो जाएगी। आपका जीवन ही तब कविता बन जाएगा। हम झूठ क्यों बोलते हैं? हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एक अप्रिय स्थिति में पहुंचने से पलायन कर जाने में सहायक होता है। झूठ बोलने का अभिशाप यह है कि यह हम में पलायन करने की प्रवृत्ति पैदा कर देता है। सत्य निष्ठा का वरदान यह है कि यह हमारे भीतर स्थिति का सामना करने की प्रवृत्ति पैदा कर देता है। आप यदि शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको जीवन में हर चीज का सामना करने की प्रवृत्ति की जरूरत होगी। लेकिन यह प्रवृत्ति विकसित कैसे होगी? सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मधुबन के आंगन में बच्चों का आना, उन्हें खुशियों से भरपूर करना दादियों की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात भी यहां की बगिया की खुशबू अगर बनी हुई है तो उसमें यज्ञ रत्न दादियों का बड़ा योगदान रहा है। उनसे मनुष्य आत्माओं को आज भी प्यार की वैसी ही भासना मिलती है जैसे कभी बाबा मम्मा से मिला करती थी। दादी रत्न मोहनी जी खुद आगे बढ़ते हुए सभी को बाबा की सेवाओं में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रही हैं। व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने पर हर किसी को ये भासना मिलती है कि जैसे कि वो दादी से पहले भी मिले हों। मैंने मधुबन ने यहां तक देखा है कि हर एक बच्चा जो मधुबन आता है उनसे मिलना, उनके हर व्यवस्था का ध्यान रखना और आत्मा के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ वरदान देना दादी जी की मुख्य विशेषता रही है। रमणीकता के साथ ज्ञान योग में कैसे आगे बढ़ें, दादी जी हमेशा से ही इसका ध्यान रखती रही है। किसी आत्मा के अवगुणों को ना देखना और गुणग्राहक आत्मा बनकर रहने की शिक्षा वे देती रही हैं। छोटों को सम्मान देना दादी जी की मुख्य विशेषता रही है। शक्ति वंदन की आज की श्रृंखला में हम आदरणीय दादी रत्न मोहनी जी के जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण अनुभवों को दीदी सुप्रभा से सुनेंगे।
1: शक्ति वंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी सुप्रभा बेन। मेरा लौकिक जन्म सन 1972 में उड़ीसा में एक धार्मिक परिवार में हुआ और सन 1996 में मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आई जब मैं एमए की पढ़ाई पढ़ रही थी। और उसके पश्चात ये जो आध्यात्मिक ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उसके बाद में हमारे सभी जो भी केंद्र है उन केंद्र के तरफ से हम कन्याओं का एक ट्रेनिंग कार्यक्रम था माउंट आबू में। और उस ट्रेनिंग में हमें एक ऐसे आध्यात्मिक लीडर मिली, उनसे परिचय हुआ और मेरे इस समर्पित जीवन का मुख्य प्रेरणा स्रोत रही आदरणीय डॉक्टर दादी रतन मोहिनी जी। किस प्रकार कदम कदम पर उन्होंने हमें साथ दिया, हमारे उमंग उत्साह बढ़ाया, एक दोस्त के रूप में हमारे हर समस्याओं का समाधान हमारे सामने सहज रूप में रखा, हर समस्या को सहज रूप में कैसे पार कर सकते हैं एक सच्चे दोस्त बन करके हमें साथ देती रही। जब हम ट्रेनिंग में आए थे हमें इतना अच्छा यहाँ के भाषा भी नहीं आती थी, परंतु हमारी आदरणीय दादी जी हमें हमेशा प्रोत्साहित करती थी कि हाँ ये बहुत अच्छा हिंदी बोलती है। हमारे उस समय के दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका थे, उनके सामने ले जाती थी और यही बताती थी कि ये बहुत अच्छा भाषण करती है और बहुत अच्छा इस जीवन में आगे बढ़ सकती है। उनके जो बोल थी वो बोल ही हमें आगे बढ़ाता गया और हमारा हिम्मत बढ़ाता गया, देता रहा और उमंग उत्साह बढ़ता गया। और बार बार हम उनके संग में आने के अंदर से उत्साहित होते थे, अपने आप मोटिवेट हो जाते थे उनके हर बोल के प्रति। उनके जीवन को देखकर इतना एक्टिव हमारे दादी जी थे। दादी जी बड़े उमंग उत्साह वाले थे, सिर्फ वो खुद नहीं थे लेकिन हमारे जीवन में भी वो उमंग उत्साह भर देते थे। इतनी बड़ी आयु होने के बावजूद भी हम सभी उस समय यूथ थे, लेकिन हमें भी वो पीछे रख देते थे। एक बार की बात है, झूले से मुझे बहुत डर लगता था। मैं कभी झूले में बैठती नहीं थी, लेकिन दादी जी ने झूले में बैठ करके हमें अपने बाहों में लिया और झूले में जबरदस्त बिठाया। बोले, तुम डरती क्यों हो, हम है ना साथ में। जब दादी जी के मुख से मैंने ये शब्द सुना, मुझे ऐसा लगा स्वयं भगवान दादी जी को निमित्त बनाकर हमें अपने बाहों में लेकर झूला रहे हैं और हमें वो जो डर अंदर में था वो डर निकाल रहे हैं। सचमुच ऐसा ही हुआ। उसके बाद में झूला में बैठना शुरू किया। दादी जी के साथ में रह करके हमें उनका संग का रंग बहुत गहरा पड़ा। साथ साथ में जब हम समर्पित जीवन शुरू किए, केंद्र पे गए, तो केंद्र पे भी दादी जी के सामने तो बहुत सारे बहने होती है, दीदियां होते हैं, दादियां होते हैं, परंतु दादी जी का एक स्पेशल अलग सा अट्रैक्शन हमारे प्रति होता था और हमारा भी अंदर से होता था। स्पेशल केयर हमने प्राप्त किया। सेंटर में रह करके हम दादी जी का पत्र जब मिलता था, पढ़ते थे, उसको ऐसे लगता था जैसे हम माउंट आबू में ही दादी जी के करीब है। दादी जी का स्पेशल फोन भी जाता था त्योहारों में। अभी तक भी, पिछले 5 साल के पहले तक भी, हमारे पास में दीपावली जैसे त्योहार में फोन करते थे कि सुप्रभा कैसी हो, ठीक होना, आप पत्र नहीं लिखते हो, आप फोन नहीं करते हो। तो इस सभी से इतना सिद्ध होता है कि देखो, इतने सारे हमारे बहने हैं, इतने सारे दीदियां हैं, लेकिन हर एक के प्रति उनका एक स्पेशल अनकंडीशनल लव जो है, एक केयरिंग नेचर जो है, वो बहुत ही प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि हर एक कोई से अनकंडीशनल लव दे और सभी की बहुत अच्छा केयरिंग करे, और हमारे केयरिंग वास्तव में परमात्मा की केयरिंग सामने वालों को अनुभव हो। इस प्रकार जब हम पढ़ाई, जब हमारे पीजी डिप्लोमा का कोर्स शुरू हुआ हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में, तो दादी जी के पास हम गए थे। दादी जी कभी भी इस प्रकार पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं करते थे। वे ही चाहते हैं कि सभी बहनें हमारे एजुकेटेड बने और आगे बढ़े। दुनिया के हर जो भी शिक्षाएं हैं, वो सारी शिक्षाओं को प्राप्त करे, कहीं किसी भी दृष्टि से वो पीछे ना रह जाए, खुद भी आगे बढ़ते हुए साथ में हम सभी बहनों को भी आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है हमें दादी जी से। दादी जी की तो महिमा हम कितना भी कहे कम ही होगा। हमने तो बहुत ही ऐसे नजदीक से पालना ली। कई बार हम रात्रि को गुड नाइट करने जाते थे दादी जी के पास में पांडव भवन में, तो दादी जी भोजन करते हुए मिलती थी, और जब दरवाजे के पास देख करके हम संकोचवश पीछे हट जाते थे, तो दादी जी आवाज देके बुलाती थी, आओ सुप्रभा, आओ हमारे साथ में, आओ बैठो। तो साथ में बिठाते थे, कभी तो हम आइसक्रीम खाते थे दादी जी के साथ बैठकर, कभी आमरस खाते थे। तो ये सभी जो पालना है, ये जैसे परिवार के एक बुजुर्ग होते हैं और बच्चों को अपनापन का एहसास दिलाते हैं, तो दादी जी से ऐसे पालना हमें मिली। तो ये सभी जब हम याद करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ही हम खुशनसीब है जो ऐसे महान विभूति के अंग संग पालना लेना, तो ये भगवान ने शायद बड़ी फुर्सत से हमारी किस्मत की पन्नों में ये सारे लाइन लिखी हैं। तो बहुत बहुत आभारी है हम दादी जी के।

0: से ही हमारे जो भाग्य मिला है, हम चाहते हैं इसे भाग्य हमें हर कल्प में मिलते रहे, हर पल हम ये महसूस करते रहे और इस आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते रहे। जब मैं पहले बार 1997 में पर्सनल दादी जी से मिली, तो दादी जी हमें ऐसे देखते थे जैसे कि बहुत समय से परिचित है, जबकि मैं पहली बार पर्सनल मिली थी। ऐसे तो संगठन में हम मिलते ही रहते थे दादी जी के साथ में, और बहुत करीब मिल करके जब दादी जी के साथ में हम आपस में जो भी अपने जीवन का जो अनुभव है लेन देन किए, तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि जैसे मैं कहीं दूर से नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं उड़ीसा की हूँ और माउंट आबू आई, और इतना करीब लगता था जैसे कि मैं घर में बैठी हूँ। और दादी जी ने पहले पहले मुझे इतने विश्वास के साथ में मुझे गुजरात भेजा, क्योंकि उड़ीसा और गुजरात भारत के दो कोने में आता है, पूर्व और पश्चिम में आता है, और उतना दूर सेवा में जो भेजा, फिर भी मुझे दादी जी के संग का अनुभव होता था। और दादी जी के संग का अनुभव अर्थात हमें परमात्मा के संग का अनुभव होता था, क्योंकि साकार में कोई तो चाहिए होता है जिनके पास हम हर समस्या को बता सके, जीवन के हर बातों को हम शेयर कर सके। तो दादी जी के साथ में मुझे बहुत ही अच्छा ये मौका मिला, और हर पल जब भी हम माउंट आबू आते थे उस समय, तो दादी जी पर्सनल जब तक हम दिन में दो बार नहीं मिले, दादी जी का यही कहना था कि सवेरे गुड मॉर्निंग भी करो और रात को गुड नाइट भी करो। तो इससे क्या होता है, दादी जी उसके बेनिफिट बताते हैं कि सवेरे जब ऐसे संतों से हमारे मुलाकात होती है, दिन की शुरुआत होती है, एक तो ईश्वर के साथ में हम दिन की शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, साथ में फिर हम ऐसे महान विभूतियों के साथ में जब दिन की शुरुआत करते हैं तो उनसे हमें कुछ ब्लेसिंग मिलती है और वो सारे दिन हमारे साथ रहता है। तो मैं दादी जी के पास में सवेरे गुड मॉर्निंग करने आती थी 4:45 बजे, जब पूरा हो जाता था हमारे मेडिटेशन सेशन, और उसके बाद दिन में भी जो भी मौका मिलता था हम दादी जी से मिलते थे, और रात्रि को भी गुड नाइट करना कभी नहीं भूलते थे। बाय द वे, कभी हमें लेट हो भी जाता था, दादी जी हमारे इंतजार करते थे कि सुप्रभा आई है मधुबन में, जरूर वो गुड नाइट करने आएगी। और जब भी आते ही हम केंद्रों पे सेवा पे रहते हैं, जब भी हम यहां आते थे दादी जी का यही कहना था कि सबसे पहले हाजिरी लगाओ हमारे पास में। तो इसे इन्हीं बातों से ये सिद्ध होता है कि कितना अपना हमें मानते हैं वो, कितना उनका अधिकार हमारे पे होता है, और अधिकार होना माना सोचो कि बहुत ही अपना मानना। तो जब जाते थे यहाँ से माउंट आबू से हम अपने सेवा स्थान पर, तो जाते समय भी दादी जी का यही कहना था छुट्टी लेकर जाओ, तो ये छुट्टी लेकर जाना माना ब्लेसिंग लेकर जाना। तो कदम कदम पर दादी जी का ऐसा साथ, ऐसा हाथ हमें बहुत ही हिम्मत देता है, हमें बहुत ही शक्ति देती है, हमारे उम्र उत्साह बढ़ता जाता है। कई बार हम ऐसे व्यस्तता के बीच में दादी जी को देखते हैं, परंतु हम जैसे आते हैं उन्हें व्यस्तता के बीच में कभी दादी जी को ये कहते हुए नहीं सुना अभी हम बिजी है, आप उन्हें मना कर दो हम नहीं मिल सकते, नहीं, यही कहते थे आओ थोड़े समय, आओ थोड़े समय आओ। तो पास में बिठा कर हाथ मिलाते थे, ये हाथ मिलाना सोचो कि कितना हमें अपना वो समझते होंगे जिसके कारण से हाथ मिलाना, और साथ में हमें कुछ ना कुछ अवश्य देना ब्लेसिंग। दादी जी के अंदर में कूट कूट कर ये संस्कार भरी हुई है कि हरेक को हर पल कुछ ना कुछ देते रहना, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। कई बार दादी जी के पास हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ लिटरेचर भी पास में रखे होते हैं, ब्लेसिंग कार्ड प्रसाद ये तो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट भी स्थूल रूप में होता है। तो ये देते हुए दादी जी यही कहते हैं कि ये अपना घर है और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से लेते जाओ, तो लेते जाओगे तो तुम अनेक आत्माओं को इन सारे ब्लेसिंग से भरपूर कर सकोगे। दादी जी को आगे बढ़ाने की औरों को इतने अच्छे संस्कार थे, तो उन्हीं के ये संस्कार, उनके ये पालना जो है, आज हम छोटे से कन्या से लेकर के आज ये लंबे सफर पूरा कर रहे हैं, करीब 27 साल हो रहे हैं इस अलौकिक जीवन में। तो हमें बहुत ही हिम्मत देती है, प्रेरणाएं मिलती है दादी जी से। दादी जी हमेशा एवर यूथ के रूप में हमें दिखाई दिए, कभी भी अभी भी हम देखते हैं उनके चेहरे पे हमेशा हर्षित मुखता का चेहरा, खुशी का चेहरा। दादी जी जिसको भी देखते थे यही कहते थे कि चेहरा खुशनुमा बनाओ, जब भी हम दादी जी से एक संगठित रूप में मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले दादी जी हमें एक पाठ जरूर पढ़ाते थे कि कोई भी कार्य शुरू करने के पहले परमात्मा स्मृति जरूरी है। चाहे बहुत बिजी होंगे तो भी कहेंगे एक मिनट तो कम से कम परमात्मा स्मृति जरूरी है, और उस मीटिंग के बाद भी एक मिनट वो हमें परमात्मा स्मृति में बिठाते थे। और साथ में ये जो परमात्मा स्मृति हमें ये बताते थे कि एक मिनट को एक मिनट नहीं समझो, एक मिनट अगर फुल अटेंशन के साथ ईश्वर की याद करोगे तो देखो ये एक मिनट भी बहुत लंबा हो जाता है। प्रैक्टिकली कि जब हम एक मिनट ईश्वर की याद में बैठते हैं, एक एक सेकंड को चेक करते हैं, विथ अटेंशन बैठते हैं, तो वो एक मिनट भी काफी लंबा महसूस होता है। तो दादी जी कर्मों से दूसरों को सिखाते थे, कभी भी सिर्फ सुनाते नहीं थे। तो जब भी हम उनके सामने जाते थे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते हुए आते थे। तो ये है हमारे आदरणीय दादी जी का हम सभी के साथ का ये अलौकिक जीवन।
1: दादी के अंदर कौन सी ऐसी विशेषता आपको बहुत प्रेरणा देती है या बहुत अट्रैक्ट करती है, आपको लगता है कि ये चीज मुझे जरूर धारण करनी है और आपने उसको अपने अंदर लेके भी आया है?
0: दादी जी कभी भी किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसको फोकस नहीं करते थे। दादी जी यही कहते थे कि उसको भूल जाओ, उसको क्षमा कर दो, और उसकी जो विशेषताएं उसके सामने बार बार रखते थे कि तुम फलाने हो, तुम्हारे अंदर में ये विशेषताएं हैं, और अगर कोई गलती हो जाती थी तो उसको माफी ले ले, और किसी से अगर गलती हो जाती है उसको माफ कर दो। क्योंकि जब हम बिंदु लगाते हैं, कोई भी बात को बिंदु लगाते हैं तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो मुझे भी यही होता था, क्योंकि हमारे पास भी छोटे रहते हैं तो हमारे से भी कुछ गलती होती है तो हम दादी जी को पत्र लिख कर देते थे। दादी जी यही कहते थे कि बाबा को पत्र लिखो, बाबा के साथ में सच्चाई सफाई रहो, जितना सच्चाई सफाई ईश्वर के साथ में रहोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। और हमें ये सारे बातों को सुन करके हिम्मत बढ़ जाता है कि ऐसे नहीं कि हमारे से कुछ गलती हो गई शायद हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे, तो ये हमें हिम्मत देती है कि जो भी कुछ गलती हो बता दो सच्चे दिल से, और जीवन में सच्चाई सफाई धारण करो, और हमेशा खुश रहना है। क्योंकि दादी जी को हमें हमेशा खुश रहते हुए देखा है, किसी के अवगुण को हमें नहीं देखना है, क्योंकि अवगुण तो हरेक के अंदर में कुछ ना कुछ रहती है और हरेक छोड़ना भी चाहता है। अगर हम हरेक के अवगुण को देखेंगे तो हमारे जीवन तो डस्टबिन बन जाएगा। और जो छिपी हुई विशेषताएं हैं, क्योंकि ईश्वर की संतान होने के कारण हरेक के अंदर में वो विशेषताएं जो छिपी हुई उसके ऊपर जो फोकस करेंगे तो हमारे जीवन गुलदस्तों जैसा हो जाएगा। तो दादी जी यही कहती थी, किसी को भी देखना है, अगर देखने की संस्कार है तो गुण को देखना है, अवगुण को नहीं। तो जब गुण देखेंगे तो खुद हम गुणवान बन जाएंगे। तो ऐसे थी हमारे दादी जी की विशेषताएं जो हमें बहुत प्रेरणा देती है। हम भी यही कोशिश करते हैं कि हरेक की छिपी हुई जो गुण है विशेषताएं है तो उनको फोकस करके हम उनकी विशेषताओं को और आगे बल दे करके आगे बढ़ाए उनको, और उन विशेषताओं को भी हम अपने जीवन में धारण करें।
2: दादियों की पालना किसी माँ से कम नहीं रही है। बच्चों को प्यार की पालना देना और यज्ञ में उनके त्याग तपस्या को सफल करने के लिए दादी जी प्रयासरत रहती हैं। मधुबन ने देखा है कि वे किस तरह आत्माओं को बाबा से जोड़ने और उनके उत्थान का ध्यान रखती हैं। बाबा ने मुरली में जो भी श्रीमत दी है उस श्रीमत को सिर आंखों पर कैसे रखना है, मुरली को प्राणों से भी ज्यादा कैसे प्यार करना है, ये रत्न मोहिनी दादी जी ने बखूबी समझाया एवं सिखाया है। उनके खुद के जीवन का अभिन्न अंग है मुरली। दादी जी के हर कार्य में एक चुंबकीय आकर्षण रहा है। उन्होंने सेवाओं को सर्वोपरि रख व्यक्तिगत आराम को भी नहीं देखा। किसी भी आत्मा से किसी भी प्राप्ति की इच्छा नहीं रखी है। योग की अवस्था में मग्न रहते हुए हर आत्मा को भरपूर कर भेजना दादी जी का वास्तविक स्वभाव रहा है। आज मेरा हृदय इस बात पर गर्व करता है कि मैं भी महान आत्माओं के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बना, जहां हर आत्मा आकर आज तक यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा के होने की भासना ले सकती है।

0: खटखट।
1: नमस्कार, मैं हूँ माया कालसी और आप सुन रही है रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार और स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। कहते हैं कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत शय वो होती है जब प्यार हो जाता है। ढाई आखर प्रेम के, ये भी कहा गया है। लेकिन प्यार में अगर कभी आपको वो नहीं मिल पाता जिसे आप प्यार करते हैं, या लगता है कि धोखा हुआ, ऐसे में जो डिप्रेशन होता है वो काफ़ी सीवियर होता है। कभी आपके किसी अपने को ये डिप्रेशन हो या फिर आप भी इससे गुजर रहे हों, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। डिप्रेशन की जो हम पूरी बातचीत कर रहे हैं, उसमें आज हमने आपसे वादा किया था बात करेंगे कि अगर प्यार में आपको धोखा मिले या प्यार में लगे कि आप डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो फिर कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, फिर से ज़िंदगी जीने का एक नया अंदाज सीखना है और प्यार के जो सही मायने हैं उसको तलाशना है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका हार्दिक स्वागत।
3: नमस्कार।
2: और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
4: ओम शांति।
2: ओम शांति। आज सबसे पहले डॉक्टर गिरीश, प्यार के सही मायने की बात करते हैं। सही मायने में अगर हम प्यार को जाने, खासकर यूथ के लिए, युवा जब होता है 17-18 साल में प्यार अमूमन हो जाता है, और वो प्यार ही हम कई बार देखते हैं कि वो लंबा चलता है, कई बार बीच में ही रुक जाता है क्योंकि प्यार के नए रूप दिखने लगते हैं। क्या है ये ढाई आखर प्रेम का?
3: तो जैसे आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि भी सही मायने क्या है, अगर सही मायने को समझना है तो गलत मायने की चर्चा करनी।
2: बिल्कुल।
3: यानी गलत क्या है वो समझ में आ जाएगा तो सही ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होगा। तो आज वर्तमान स्थिति क्या है कि जो वास्तव में गलत है? सबसे पहले तो आज जो प्यार है ना, वो डोमिनेटिंग प्यार है। ये चाहते भी जिससे प्यार हो गया वो मेरा ही होना चाहिए,
2: प्रोसेस कर लूंगा।
3: हाँ, वो किसी से बात भी नहीं करे। अगर वो किसी से बात भी कर रहा है तो कहते हैं कि भी कुछ गड़बड़ है इसमें। तो एक डोमिनेटिंग स्टेज है कि विच इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। व्यक्ति किसी से बात तो करेगा ही, शेयर भी करेगा अपने व्यूज। जो दूसरी स्टेज है कि जिसके अंदर शर्त का प्यार है,
2: कंडीशनल।
3: हाँ, कि भाई तुम्हारी अच्छे रैंक आएगी तो हम आपको प्यार करेंगे ना, तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो हम आपसे प्यार करेंगे। तो जो भी शर्त है वो शर्त वाला प्यार है कि जो भी गलत है वास्तव में। तीसरा है कि हमने स्वार्थ से प्यार किया है, नहीं कि भाई बहुत पैसे वाला लड़का है तो चलो उससे फ्रेंडशिप करो, तो वह शर्त है। जब भी शर्त वाला प्यार है तो भी यह सदा के लिए नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से यह सब गलत चीजें। शिवानी बेन भी शायद कुछ ऐड कर सकते हैं, गलत प्यार क्या है।
2: बिल्कुल नहीं, ये गलत प्यार के तीन आस्पेक्ट तो हमें समझ में आए कि भाई शर्त के साथ अगर आप प्यार करते हैं, कंडीशंस हैं कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे आप तो मैं आपसे प्यार करती हूँ। दूसरा आपने कहा कि लोभ के साथ, कि अगर वो इतना स्वार्थी, स्वार्थ के साथ जुटे। और तीसरा जो है
3: डोमिनेटिंग,
2: कि हाँ मैं, आप मेरे हैं तो आप किसी और के नहीं हो सकते। ये जो तीन आस्पेक्ट है ये तो नेगेटिव है। आपसे सवाल ये है कि हर बार हम आपसे इनर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, प्यार के सही मायने आज हम तलाश रहे हैं। प्यार अगर हम देखें, हमारी कविताओं में भी देखते हैं, पुराना देखते हैं, तो ये है कि प्यार मतलब आप समर्पण है। तो क्या मैं किसी व्यक्ति को इतना समर्पित हो सकती हूँ कि अपना सब कुछ खो दूंगी, अपना खो दूंगा या खो दूंगी? क्या मैं अपनी इतना अधिकार दे दूंगी? क्या हम ये बात करते जो आ रहे हैं पूरी एक इंटरनल जर्नी की, एक पूरे उसको खुद को पहचानने की, कि मैंने अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं खोऊंगा मैं या खोऊंगी किसी भी सिचुएशन में? प्यार एक ऐसा मोड़ है जिंदगी का जिसमें कुछ नहीं नजर आ रहा होता।
4: प्यार हम किसी और से कर नहीं सकते हैं जब तक हम पहले अपने आप से प्यार नहीं करते। प्यार मतलब क्या? एक्सेप्टेंस, यू नो, इट्स एनर्जी। प्यार इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी विच कैन बी देयर इन एनी रिलेशनशिप। लेकिन सबसे पहले अपने साथ, क्या हम अपने आप को प्यार करते हैं? इतना दर्द अपने आप को देते हैं हर रोज, इतने टॉर्चर अपने आप को करते हैं, सबसे ज़्यादा धोखा अपने आप को देते हैं, सबसे ज़्यादा चीटिंग अपने आप से करते हैं। तो जो हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, अपने अंदर इंटेग्रिटी नहीं ला सकते, तो और किसी से प्यार करना ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तो चाहते हैं दूसरे से वो चीज़ हमें मिल जाए, यू नो। और फिर उसके लिए हमें दूसरे से वांटिंग है हर टाइम। हम प्यार दे नहीं रहे हैं, हम प्यार मांग रहे हैं। अब दूसरे की मनोस्थिति क्या है?
2: वो भी उसी सिचुएशन में.
4: हाँ, तो दो लोग एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज जो उनके पास नहीं है. सो हाउ विल इट बी सक्सेसफुल, यू नो. सो वी हैव टू फर्स्ट लव आवरसेल्व्स. अपने आप को जानते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम वो एनर्जी दूसरों को देना शुरू करते हैं, दूसरों से मांगना शुरू नहीं करते हैं. आई कैन नॉट गेट इट फ्रॉम एनीबडी. द ओनली सोर्स इज माय इनर सेल्फ एंड गॉड.
2: शुड आई चेंज माय सेल्फ? दिस इज अ मेजर क्वेश्चन, यू नो, लाइक खासकर आज युवा पीढ़ी के सामने ये सवाल है बहुत, जो आपने भी बात की कि पोजेस करना चाहते हैं हम, डोमिनेट करना चाहते हैं. लेकिन बात ये आती है कि हम जिसे प्यार करते हैं, हम एक वन उसको चेंज करना चाहते हैं, दो हम चेंज हो जाना चाहते हैं, हम उसकी तरह बन जाना चाहते हैं जो वो हमसे चाहता है उतनी देर में, जितनी देर हम उसके साथ हैं या जितनी देर वो हमारे पूरे दिमाग पर हावी है, हम अपना सब कुछ बदल देना चाहते हैं. शुड वी डू दैट और नॉट?
4: That's because again in both the cases, या तो वो जैसा मैं चाहूँ दूसरा व्यक्ति वैसा बन जाए, या दूसरा जैसा चाहता है मैं वैसा बन जाऊँ, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं किया है. यू सी, तो या तो आई एम फाइंडिंग द नीड कि दूसरे को चेंज कर दूँ या दूसरे को इन्फ्लुएंस करूँ. तो वेयर इज द लव? लव मीन्स के एक्सेप्टेंस. आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर. इफ आई से आई लाइक यू बट यू डू दिस, it's over.
2: That's what he said. That's not what love is.
4: That's
2: so kya hai pyar?
3: वास्तव में देखे तो प्यार unconditional होना चाहिए. प्यार में कोई भी स्वार्थ ना हो, प्यार में expectation भी ना हो. अगर ये स्टेज बन जाए तो सदा के लिए टिक सकता है. और दूसरी एक बात, जो प्यार हो वह व्यक्ति की जो इनर क्वालिटीज है, वैल्यूज है, वैल्यूज के साथ. आज व्यक्ति ना शरीर के साथ अटैच होता है, शारीरिक आकर्षण से प्यार होता है, वो वैल्यूज के साथ अटैच नहीं होता है. अगर वो वैल्यूज के साथ अटैच हो तो सदा काल के लिए टिक.
2: लेकिन अगर हम वो वैल्यूज के साथ अटैच हो जाते हैं, बहुत से हमारे यंगस्टर्स के सामने ये सवाल, जब 18-19 साल में हम होते हैं तो हम बड़े फुल ऑफ आदर, हमारे पास बहुत सारे आदर्श होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज की हम बात कर रहे होते हैं, हम दुनिया बदल रहे, शरीर के भी परे जाके वो वैल्यूज और वो सारी बातें जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एंड वी जस्ट यू नो लाइक कि हाँ बहुत मोहब्बत है, प्यार है. आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट, समाज के साथ इंटरेक्शन और जिंदगी की जब मुश्किलें सामने आती हैं उसमें वो वैल्यूज टूटती हैं, तब क्या मेरा प्यार खो जाना चाहिए? क्या मेरा प्यार भी बदल जाना चाहिए? अगर मेरा पार्टनर बदल गया है तो क्या मुझे बदल जाना चाहिए?
3: नहीं, वो खोना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज एडजस्टमेंट. शुरू में अगर वैल्यूज से आप अटैच हुए हैं ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी.
2: लेकिन अगर उनकी वो वही वैल्यूज गिर गई,
3: हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जैसे शरीर से अटैच हुए ना तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी डिस्टर्ब, क्योंकि वो आकर्षण थोड़े ही समय रहेगा, वैल्यूज वाला लंबा, फिर भी उसमें ऊपर नीचे हो सकता है. तब अगर आप वैल्यूज से अटैच हुए तो यू हैव अ पावर टू एडजस्ट एज वेल. और अल्टीमेटली लाइफ इज फुल ऑफ एडजस्टमेंट.
2: सिस्टर शिवानी, इस सफर में चलते हुए वैल्यूज से अगर हम अटैच हुए थे और अगेन एक्सेप्टेंस के साथ, दोनों के एक्सेप्टेंस है, आगे चल के वो वैल्यूज गिरी आपके पार्टनर की या जिससे आप प्यार कर रहे हैं, हाउ डू आई रिएक्ट? अगेन आई गो इनटू अ डिप्रेशन?
4: नो, आई डोंट. आई हेल्प द पर्सन टू एम्पावर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. यू नो, इट्स लाइक वो, ये तो फिर कंडीशनल हो गया ना कि आई लाइक यू, अ पेरेंट, अ टीचर, अ फ्रेंड, एनीबडी, इट कैन बी इन एनी रिलेशनशिप, कि आई लाइक यू टिल यू आर लाइक दिस. यू नो, द डे यू चेंज टू समथिंग एल्स, नाउ आई डोंट लाइक यू. तो इसका मतलब हमने उस व्यक्ति से नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर इमेज जो हमने उस व्यक्ति की बनाई हुई थी उससे प्यार किया. तो वो इमेज तो बदलती जाएगी. Everybody is going through a change. तो फिर acceptance नहीं है. हमने उनके बारे में अपने liking के अनुसार कोई image बनाई है और उस image से attached हो गए हैं. तो जैसे ही वो image change होने लगती है, you know, नहीं, जैसे ही वो व्यक्ति change होने लगता है and it clashes with the image that I have, then there is a disturbance of energy.
2: तो that image has to be constantly changed.
4: There is no image. I first of all understand what the person is and I accept the person. वो जो है जैसा है. परमात्मा का प्यार इसीलिए अनकंडीशनल होता है. परमात्मा कहता है तुम जो हो जैसे हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे बहुत मेरे बहुत प्यारे हो, और फिर वही प्यार हमें वैसे भी एम्पावर कर देता है, वही प्यार हमें परिवर्तन कर देता है उसकी तरह बनने की कोशिश करने का, क्योंकि उसने पहले हमें एक्सेप्ट किया। अगर वो हमें डांट दे और कहे नहीं अभी अच्छे नहीं हो, ऐसे बन जाओगे तो अच्छे मुझे लगोगे, वी विल

0: not get attracted towards God's love. It's that acceptance which motivates to change also. So that acceptance is very important.
1: Beautiful. डॉक्टर पटेल, इस पड़ाव पर एक मेल मैं लेना चाहूँगी, और ये मेल हमें लिखा है विकास ने, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं ये, और ये लिख रहे हैं कि मैं एक लड़की से फर्स्ट ईयर से ही प्यार करता था और मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं कि अब मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ क्योंकि मैंने उसे कहा कि मुझे लगता था कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी उन उसके आसपास अपनी बुन ली थी एक, और मुझे लगता था कि वो मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने पूरी तरह से मुझे रिजेक्ट कर दिया है। मुझसे ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी का कोई एम नज़र नहीं आता है। अब ये क्या है सर, ये डॉक्टर पटेल टेम्परेरी फेज है या इट कैन लीड टू अ मेजर डिप्रेशन का जो रूट कॉज हो सकता है?
2: इट कैन, इट इज मोस्टली अ टेम्परेरी फेज, बट इट कैन लीड टू मेजर डिप्रेशन एज वेल। अब इसमें करना क्या चाहिए? वास्तव में सारी बुद्धि की बात है। आजकल का जो यूथ है दे आर ओवर इमोशनल, इनफैक्ट और वो हेड को यूज नहीं करते, हार्ट को यूज करते।
1: एक्चुअली कहीं ना कहीं क्योंकि हम पूरी बात ये करते आ रहे हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता, वक्त नहीं मिल रहा होता, अकेलापन इतना ज्यादा है, तो शायद जहां उन्होंने सपना देखा वहीं मान लिया। तो क्या करें विकास?
2: अब यहाँ पर उन्हें बुद्धि का उपयोग करना है। अगर बुद्धि का सही उपयोग करे कि भी फर्स्ट टाइम ही वो इट वॉज वन साइडेड थिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और फिर जैसे उन्होंने वो बात कही और सामने से रिजेक्शन आया, उसका अर्थ यह है कि भी सामने वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी 5% भी वो इमोशंस नहीं है। और ये तो अच्छा हुआ, अगर ये बात और आगे बढ़ती तो फिर तो नेचुरली वो मिसमैच होना था।
1: एक इनका आगे ये भी कहना चाह रहे हैं कि क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कभी वो मुझसे प्यार करेगी?
2: नहीं, नहीं करो।
1: हाँ, ये जो उम्मीद एक छोटी सी लगाए रखते है ना। हाँ।
2: नहीं, जब फर्स्ट सेट ये हुआ, रिजेक्शन हुआ है, तो फिर एफर्ट नहीं करनी चाहिए। उल्टा यू ट्राई टू यूज योर टैलेंट्स, है ना, और कोई क्षेत्र में, जैसे बीटेक कर रहे हैं तो पढ़ाई में कंसंट्रेट करें, अच्छे से करें, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाए, ही कैन गेट बेटर पर्सन आल्सो इन हिज लाइफ। तो इसलिए जब भी ऐसी वन साइडेड बात है तो वहां एफर्ट करने से फायदा नहीं, उल्टा ही विल लूज हिज एनर्जी।
1: लेकिन खुद को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब इनकी सिचुएशन जिसमें है, जिस तरह के हालात में होंगे, क्या पता आप हॉस्टल में रह रहे हों, जैसे अभी ये नहीं बताया इन्होंने, तो ऐसे में अकेलापन, और जब डिप्रेशन की बात आ गई, पीयर प्रेशर भी होता है कई बार। सो व्हाट इज इट यू वुड लाइक टू टेल हिम दैट हाउ टू टॉक टू, सेल्फ काउंसलिंग की हम हर बार बात करते आ रहे हैं।
0: यहाँ जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो रिजेक्शन की हुई है, तो वो उससे हमारी अपनी सेल्फ वर्थ कम होने लगती है, हम अपने अंदर कमियाँ ढूंढने लगते हैं कि ऐसा क्या मेरे अंदर इनको नहीं, मतलब क्या है मेरे अंदर प्रॉब्लम जो द अदर पर्सन डिड नॉट एक्सेप्ट मी। यू नो, इवन दिस इज टू बी कंसिडर्ड कि आपने बिना जाने, बिना पहचाने, बिना कुछ भी पता हुए आपने डिसाइड कर लिया कि सामने वाले व्यक्ति के साथ आप अपनी पूरी जीवन बिताना चाहते हैं। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं दूसरे व्यक्ति को, तो आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया? यू नो, सो द वर्ड लव आई डू नॉट थिंक वुड बी द राइट वर्ड टू फिट इन हियर। तो आपने डिसाइड कर लिया, अब आपके डिसीशन से तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी सेम चीज को एक्सेप्ट करेगा। टू पीपल टूगेदर शुड वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ टूगेदर, यू नो, देन द जर्नी इज मीनिंगफुल, अदरवाइज इफ इट कैन नॉट बी वन पर्सन। तो हमने किसी से जाके ऑफर किया, लेट्स से कि हम किसी से जाकर कहते हैं हम यहाँ से शिमला जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलेंगे? इफ द पर्सन इंजॉयज माई कंपनी, सेज चलो हम आपके साथ चलेंगे, बट इफ आई डोंट इंजॉय समबडीज कंपनी, आई से नो, यू नो, एंड थैंक यू बट आई डोंट वॉन्ट टू गो। अब उसमें रिजेक्शन की कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट टू पीपल don't really enjoy together.
1: No, that's perfectly fine actually.
0: That's fine, it's just natural. So if the other person has, you know, it's not a rejection, it's just that the other person is not comfortable. Lekin iska matlab ye nahi ki aapke andar koi kami hai ya kuch, ho sakta hai, it's just that aap उस व्यक्ति के साथ एक राइट कंपनी नहीं शेयर करते।
1: और अभी तो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, 18 इयर्स, अभी तो अच्छा है कि अभी नहीं मिला, हो सकता है 25 साल में कोई और मिलता तब प्रॉब्लम ज्यादा आती है, या 30 साल में कोई और मिल जाता जो ज्यादा कंपैटिबल होता,
2: और डेफिनेटली हो सकता है।
1: हाँ, तो इतनी जल्दी
2: तर्क से भी समझाना चाहिए। वास्तविक चीज तीन है शक्तियां, ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छी बात बताते जो मुझे भी टच कर, जब मैंने पहली बार 18 साल का था और ब्रह्मा कुमारी की बातें सुनी तो सबसे अच्छा यही लगा कि भी अपने आप को मैनेज करने के लिए हमें तीन सूक्ष्म शक्तियों को मैनेज करना है, जो एक है मन, दूसरी है बुद्धि और तीसरे है हमारे संस्कार। और तीनों का मैनेजमेंट डिफरेंट है। जबकि मन को प्यार से समझाना, कहा कि भी मन वह जंगली घोड़े जैसा है,
1: डांटना नहीं है।
2: हाँ, जंगली घोड़े को आप फोर्स से कंट्रोल नहीं कर सकते, प्यार से करना पड़ेगा। हाँ, उसको बहुत पानी पिलाओ, बहुत घास खिलाओ, हाथ फेरो, तो एकदम आप जैसे कहेंगे वैसे जंगली घोड़ा करने लगेगा। मन का भी ऐसा ही है ना। मन को अभी इस केस में भी प्यार से समझाए कि देख शांत हो जा, अभी पढ़ाई में ध्यान दे, जितना तू पढ़ाई में आगे बढ़ेगा और अच्छा पार्टनर तुझे मिल सकता है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ऐसे बहुत सारी बातें मन को प्यार से समझाए। बुद्धि व तर्क की भाषा समझती है, बुद्धि जज जैसी है, आपने खून भी किया, अच्छा एडवोकेट मिल जाए, जज को कन्विंस कर दे कि निर्दोष है तो आप छूट जाए।
1: बहुत सुंदर बात जी।
2: तो ऐसे बुद्धि भी तर्क से समझती है, जज जैसी है। तो यहाँ भी अगर तर्क से अच्छी तरह से बुद्धि को समझा दे तो ये बात खत्म हो जाएगी। और संस्कार न तो प्यार से समझते न तर्क से समझते, संस्कार वो फोर्स की भाषा समझते। ना, संस्कार के ऊपर फोर्स करना पड़ता है कोई भी बात का, यहाँ पर भी फोर्स करे। और उदाहरण, सवेरे जल्दी उठना है, आप नहीं उठ पाते तो फोर्स करो कि भी 5 बज गए उठना ही है, कुछ
1: फोर्सफुली काटना पड़ेगा,
2: एक बार काटना। तीनों चीजें करनी पड़ेगी, प्यार से भी समझाओ, तर्क से समझाओ और अल्टीमेटली फोर्स से भी अपने आप को उससे जुदा कर दो। थोड़े समय में बिल्कुल भूल जाएंगे इस बात को,
1: क्योंकि भूलना बहुत जरूरी
2: है
1: आगे, क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इतना लंबा इतनी लंबी जर्नी है। बहुत उम्मीद करते हैं कि विकास अगर आप सुन रहे हो तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, लेकिन बाकी और जो दर्शक जो इससे गुजरते होंगे इस उम्र में उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। अब बात हम करते हैं, क्योंकि हमने रिश्तों की बात करनी थी इस बार आज कड़ी इस कड़ी में, और प्यार की बात करनी थी, पेरेंट्स और जो बच्चों का प्यार है वहां जब रिजेक्शन होती है, क्योंकि प्यार वहां पे भी कंडीशनल हो जाता है, अगर तुम इतना परसेंट लेके आओगे तो मैं तुम मुझसे प्यार करते हो या मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम फर्स्ट आओगे क्लास में तो तुम मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो, मेरे राजा बेटा हो, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं और उस उम्मीद पर नहीं खरे उतर पाते बच्चे, तो वो जो रिजेक्शन है वो एक डिप्रेशन में लेके जाती है। हाउ टू हैंडल दैट रिजेक्शन?
2: सबसे पहले तो पेरेंट्स की गलती है,
1: वो तो है,
2: अगर वो कंडीशन डाल रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव तो बच्चों पर पड़ेगा ही। हो सकता है कि भी कुछ बच्चे उससे बाहर भी आ जाए और कुछ डिप्रेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले तो हर माता पिता को यह जरूर ध्यान देना है कि उनके अगर 2 बच्चे हैं तो उसमें भेदभाव नहीं करो, दोनों को इक्वल प्यार दो। माइकल जैक्सन ने बहुत अच्छी बात कही है, उसने कहा कि मेरी माँ तो बहुत गरीब थी, नहीं हम गरीबी में ही बड़े हुए, कि उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने सबको स्पेशल रखा, हम सभी जो भाई बहन थे सभी को ये लगा कि मैं स्पेशल हूँ, किसी को भी उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया, इसलिए हम सभी भाई बहन जीवन में आगे बढ़ पाए। तो यह सचमुच करना चाहिए, भले आप पैसे नहीं दे सको कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को इक्वल प्यार जरूर दो। कई बार हो सकता है भेदभाव भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तब व्यक्तिगत बात करके उनको समझाया जाए कि देख किसी को हमने थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, कोई बच्चे को तुम्हें कहीं कम दिया, बट यू आर ऑल्सो स्पेशल। ये बताना चाहता था मैं कि भी उस बच्चे को भी ये समझाए कि भी समझो एजुकेशन में भले आप थोड़े कमजोर हो, तुम्हारा बड़ा भाई तेज है, हमने कहीं उसकी प्रशंसा की, बट यू आर स्पेशल इन सर्टन अदर एरियाज, और उस एरियाज में आप आगे बढ़ो, हम आने उसके लिए आपका हमारा पूरा सपोर्ट है।
1: लेकिन कई बार शिवानी बहन अनजाने ही हो जाता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो कंपेयर कर रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं, या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो तो अगर उनसे बात करेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि हम तो कभी उम्मीद नहीं करते, हम तो कभी बच्चे पे प्रेशर नहीं डालते। आप किसी पेरेंट से बात करके देख लीजिए, वो हर पेरेंट यही सोचता भी है, कहता ही नहीं, सोचता भी है कि हमने तो अपने बच्चे पे कुछ कोई उम्मीद नहीं लगाई, हमने कभी कोई प्रेशर नहीं दिया, उसे पूरी आज़ादी है और वो जो करना चाहता है। अनजाने में ही जब ये हो जाए, बच्चा कैसे हैंडल करे इस रिजेक्शन को या इस एक्सपेक्टेशन को?
0: एक्चुअली आई फील के पेरेंट्स लव चिल्ड्रन अनकंडीशनली, दिस इज़ व्हाट आई फील, कि मात पिता ही एक संबंध है जो बच्चों को

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए, बातें हो रही थी डेंगू के बारे में। आज विशेष डेंगू निरोधक दिवस है, जिसमें हम लोग डेंगू बुखार के बारे में बातें कर रहे थे। और एक व्यक्ति को अगर जीवन काल में सिर्फ एक बार ही अगर किसी खास प्रकार का बुखार होता है या डेंगू से व्यक्ति संक्रमक होता है, तो तीन प्रकार के डेंगू बुखार जो है बताया गया है। एक है क्लासिकल, जो साधारण डेंगू बुखार होता है। दूसरा डेंगू हेमरेजिक बुखार होता है, जिसको DHF कहते हैं। दूसरा DSS होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इस तरह के तीन प्रकार के वो बुखार क्लासिफाइड किया है। जो इसके बारे में अगर जानकारी मिल जाती है तो फिर हम उसके पर अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। तो एक जो क्लासिक कल डेंगू साधारण प्रकार का डेंगू बुखार है, ये एक स्वयं ठीक होने वाली बीमारी होती है तथा इससे मृत्यु नहीं होती है। कई बार हम डेंगू सोच के सोचते हैं कि अब गया काम से, लेकिन अब इसका इलाज संभव हो गया है। इसी प्रकार अगर आपको डेंगू का बुखार होता है तो इसको अपने लोकल भाषा में कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, है ना। तो इस तरह की कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसको समझने से आप जो है अत्यंत आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए ये पहचानना ज़रूरी है कि किस प्रकार का डेंगू है, तो उसके बाद इलाज शुरू हो जाता है। कई बार हमारे पास कोई बुखार का व्यक्ति जाता है तो बहुत बार बुखार उतरता नहीं या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन अगर डेंगू का हो तो उसके तीन प्रकार के होते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझ लेते हो तो इलाज संभव होता है और मरीज में विभिन्न जगह से खून बहने की भी लक्षण कुछ बीमारी इस तरह के डेंगू के लक्षण में होते हैं। तो इसका इलाज हॉस्पिटल में तुरंत होना चाहिए, हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है, घर पे इसका इलाज नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। डेंगू बुखार के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि बुखार किस प्रकार का है। डेंगू का एक से अधिक लक्षण होता है। अगर आपको नीचे जो चीज़ें हैं, जैसे कि साधारण दवा से ठीक नहीं हो रहा है कभी कभी, तो डॉक्टर से दिखाना बहुत ज़रूरी है। और दिखाने के बाद कुछ इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देंगे, जैसे कि सर दर्द है या फिर आँखों में दर्द है या फिर लाल लाल दाने आते हैं, तो या फिर आपके मसल्स में या ये जो हमारे नसों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं। तो इस तरह के अगर बुखार के साथ लक्षण होते हैं तो निश्चित तौर पे आपको डेंगू बुखार का रोगी है ये समझ के उसे हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई लक्षण नहीं है तो नेचुरली आपको जो है डेंगू बुखार नहीं है, जनरल बुखार है, उसका आप इलाज कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको देंगे कुछ ही पल में, लेकिन अभी लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आज सोमवार है तो शिवजी का एक और गीत आपके लिए खास। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और बड़ा ही प्यारा सा सावन का गीत रघुवंशी जी का कंपोजिशन आप सुन रहे थे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, अब सीधे दिल्ली ले चलूंगा जहां से आप समाचार सुनेंगे आज का। तो देखते हैं क्या दुनिया की बातें चल रही हैं, इसके बाद फिर आपसे जुड़ूंगा। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
3: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
1: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
4: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
7: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
8: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
9: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, JPSC के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी CBI जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नव भारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक DGCA ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पर है, बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। समाचारों के बाद 9:17 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। और कल का जो मैराथन हुआ था उसमें कुछ हमारे मित्र हैं जो पार्टिसिपेट किए थे, उन्होंने अपना बहुत ही सुंदर जो है मैराथन पूरा किया है, तो उसकी खुशी है, मेडल पाने की खुशी रहती है। तो ऐसे ही हमारे साथ जो है मैराथन विनर्स हमारे बीच हैं, उनसे बातें करते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: ओम शांति। क्या नाम है आपका?
1: ओम शांति वर्षा बहन, मैं मुंबई से एरोली शहर से हूँ।
0: जी जी जी जी, क्या करते हैं वैसे आप?
1: मैं योगा टीचर हूँ।
0: जी जी जी, तो क्या कैसे सिखाते बच्चों को, स्कूल में या फिर आप पर्सनल क्लासेस लेते हैं कैसे?
1: स्कूल में भी सिखाती हूँ, बच्चों को भी सिखाती हूँ, यूथ को भी सिखाती हूँ, जिम में भी सिखाती हूँ। मेरे एरिया में 30 योगा क्लासेस चलते हैं।
0: अरे,
1: हर जगह अलग अलग नई नई चीजें सिखाते हैं, बच्चों में खास अवेयरनेस दिलाते कि एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंस है और उसके साथ राजयोग का जीवन में क्या महत्व है। तो दोनों का कंबाइन करके हम बच्चों के लिए, यूथ के लिए ये सारी चीजें सिखाते हैं।
0: अरे वाह, चलिए वर्षा जी, मैं चाहूँगा कि कल आपने मैराथन जो विन किया है, मेडल प्राप्त किया, कैसे लगा उसका अनुभव सुनाइए और आपने क्या तैयारी की थी।
1: बहुत सुंदर, कल का मेरा पहला इवेंट था जो 21 किलोमीटर यात्रा दौड़ी। बस लक्ष्य रखा था कुछ भी हो जाए कि मुझे लास्ट तक मंजिल तय करनी है, हौसला बनाए रखना है।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: बहुत उम्मीद थी और पिछले 3-4 महीनों से मैं वहां पर मुंबई में 1 घंटा वॉकिंग रनिंग करती थी, पर यहाँ टारगेट था 4 घंटे का। पर वो इतना एक्साइटमेंट था कि बात मत पूछो, बहुत खुशी थी। और एक ही मन में दौड़ रखी थी कि नहीं, चलना है, रुकना नहीं है। 1 घंटे के बाद हमने थोड़ा देर रुक के पानी पिया और फिर लगातार जो चलते रहे, 16 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप चलते रहे।
0: अरे वाह।
1: और फिर थोड़ा मन में लगा बैठ जाए, पर नहीं, चलना ही है, 21 किलोमीटर यात्रा रन करनी है। और लास्ट 3.5 घंटे में हमने पूरी यात्रा तय की। और बहुत पूरा जाते वहाँ बैंड बाजे रखे थे, जाते ही नाचने का मन किया, इतना नाचे, बहुत खुशी हो गई। तो हमने तय किया कि अगले साल 10 विनर को लेके आने का टारगेट वही रख दिया, ताकि अगले साल और लोगों को लेके आए, यूथ को मोटिवेट करेंगे कि ऐसे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इतना अच्छा मैराथन का

0: कार्यक्रम रखा जाता है और
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: सुंदर होता है। उसमें आप आइए, राजयोग और एक्सरसाइज, ये रनिंग के द्वारा कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते, ये बहुत ही सुनहरा मौका है ब्रह्मा कुमारी संस्था में।
1: चलिए वर्षा जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया एक्साइटमेंट का, और मुझे लगता है कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हर साल अगस्त महीने में ये मैराथन रनिंग करते हैं, मैराथन को ऑर्गेनाइज करते हैं ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से। तो आप भी अगली बार अगर सोच रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर आप भी अपना पार्टिसिपेशन के लिए अभी से संकल्प करें और फिर अगले अगस्त महीने में ज़रूर आइएगा, है ना।
0: जरूर जरूर जरूर।
1: तो चलिए, जाते जाते वर्षा जी एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए?
0: सभी के लिए यही मैसेज देना चाहिए कि अपने जीवन में एक्सरसाइज का महत्व और राजयोग का महत्व, इन दोनों का बैलेंस अगर जीवन में होगा तो निश्चित ही हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। और आज की युवा पीढ़ी को तो ये योग की, मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। तो आपका इन एडवांस हार्दिक स्वागत है सभी युवाओं का कि आइए ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़िए और अपने जीवन को इस दिव्य राजयोग की तरह, अपने जीवन को बहुत ही खुशनुमा और सुंदर बनाइए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रह्मा कुमारी संस्था को धन्यवाद, सारे ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद जिन्होंने इतनी सुचारू रूप से यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो इन एडवांस सभी को बहुत मुबारक, सभी को बहुत बहुत वेलकम और शुभकामनाएं।
1: चलिए वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने जैसे संकल्प किया है वैसे आपका भी संकल्प पूरा हो, ऐसी शुभ आशा के साथ। आप सुनाए हैं रेडियो 1107.8 FM। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलते हैं एक और खूबसूरत भोलेनाथ का भजन, आपके नाम। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष एपिसोड में। नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है 107.8 एफएम रेडियो मधुबन को। और चलिए बात करते हैं, सुबह सुबह आप शिव के खूबसूरत भजन भी सुन रहे हैं, हमारे साथ भोलेनाथ। तो ये शब्द अपने आप में एक मोटिवेशन देता है, हमें जीने की प्रेरणा देता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ पूना से पराग जी जुड़ गए हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। आप भी मैराथन विनर हैं, तो कल आपने भी मेडल हासिल किया है, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पराग जी, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: बढ़िया बढ़िया। और बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: मैं पुणे में रहता हूँ
0: जी।
1: मेरा परिवार है, मम्मी है, पिताजी है, दोनों बच्चे और बीबी। मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। आईटी कंपनी में जॉब करने के अलावा मैं न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, एंजल थेरेपी, ये कंसल्टेंसी चलाता हूँ, कोचिंग चलाता हूँ।
0: जी जी जी। तो कितने समय से कर रहे हैं ये आप पराग जी?
1: मैं गए पाँच साल से ये सब कंसल्टेंसी कोचिंग चला रहा हूँ।
0: जी जी। हेलो जी, नमस्कार। हेलो,
2: शांति। गुड मॉर्निंग रमेश जी।
0: गुड मॉर्निंग सुभाष जी, बोलिए।
2: हाँ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, सुबह से सुन रहा हूँ। और डेंगू के बारे में और कावड़िया के गीत सब कुछ बहुत, और श्रोता भाई बहनों, सूरज भाई, बुरे राजी, उनके बातचीत। और अभी मैं बोलने वाला था मैराथन के बारे में, जो एक सुंदर, बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कल हुआ पूरे विश्व में एक, और बहुत ही सुखदायी, शांतिदायी प्रोग्राम, और जिसके बारे में पार्टिसिपेट हमारे भाई बहने, जो अभी उनकी मुलाकात हो रही है, तो सभी पार्टिसिपेट भाई बहनों को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप भी रमेश जी खुद दौड़ रहे थे, हमने सुना आपकी कमेंट्री, सात घूम से कमेंट्री, और सभी भाई बहनों की रेडियो मधुबन परिवार कमेंट्री, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमने देखा भी और सुना भी, और सभी का धन्यवाद। ओम शांति भाई, ओम शांति,
0: ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आइए पराग जी, मैं चाहूँगा कि आप जैसे पिछले पाँच सालों से टैरो, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में जानकारी लोगों को देते हैं, आपका कंसल्टेंसी है ये। अच्छा, यहाँ ब्रह्मा कुमारी का जो मैराथन पार्टिसिपेट किया आपने इसमें, तो इसकी तैयारी कैसे की और कैसा लगा कल, वो अनुभव भी सुनाइए।
1: अच्छा, उसके तैयारी के लिए विशेष रूप से समय देना पॉसिबल नहीं हुआ था, पर सैटरडे संडे और छुट्टियों के दिन थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा, तीन तीन चार चार किलोमीटर वॉकिंग करना, जैसे समय मिलेगा थोड़ा थोड़ा भागना, छोटे छोटे एक्सरसाइज करना, ऐसे चीज़ें कर रहा था। और वो करते करते ही थोड़ा सा मन में ये तय कर लिया था कि गए साल थोड़ा एक 15-20-25 मिनट के समय से मेडल खो गया, तो ये टाइम मैंने मन में टाइम तय कर लिया था कि ये टाइम कुछ भी हो के सेंटर में जाएंगे तो मेडल लेके जाएंगे, तो मेडल मिला और कल, और इतनी खुशी हो गई कि बस
0: बात मत पूछो
1: बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो गई।
0: चलिए, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए?
1: मैं सबके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हम लोग कोई चीजें तय कर लेते हैं तो उस हिसाब से गोल की तरफ पहुँचने के लिए वैसे समय भी देना पड़ेगा, और वैसे एक्सरसाइज हो या जो भी चीज़ें करना चाहिए वो करना चाहिए। और एक अच्छा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि डोंट मेक अ कंप्लेंट, गिव अ कॉम्प्लीमेंट। आप जब कंप्लेंट करते हो तो आपको वो चीज़ें मिलने में या वो हासिल करने में समय लगता है या कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आ जाते है। अब जब आप कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करोगे तो वो जो समय लग रहा है या सामने वाला जो भी अपने को कुछ देना चाहता है तो वो इजीली आपको भी मिल जाए और आपका जो लक्ष्य है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। इसलिए फिर से बताना चाहता हूँ कि डोंट मेक अ कंप्लेंट, गिव अ कॉम्प्लीमेंट, यू विल गेट डेफिनेट सक्सेस।
0: पराग जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और मेडल प्राप्त करने के बाद आपको असीम खुशी हुई और इस मेडल को लेके जाकर आप सेंटर पे भी अपना अनुभव साझा करेंगे, तो बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: जी मित्रों आगे बढ़ते हैं और हम लोग मैराथन रनर्स के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिन्होंने कल मेडल प्राप्त किया, जिन्होंने मैराथन को कंप्लीट किया, यानी 4 घंटे का प्रोसेस था, 4 घंटे के पहले इन्होंने कंप्लीट किया है 3.5 घंटे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आज सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है और भोले बाबा के खूबसूरत गाने मैं आपको सुना रहा हूँ। एक और गीत आपको सुनाता हूँ, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। जी हाँ, ये शुभ जैन और साथियों का गाया हुआ शुभ भजन आपके नाम, अभी सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। शुभ जैन इन साथियों का ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैराथन रनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी सोनल जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातें करते हैं। सोनल जी नमस्कार, ओम शांति, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: ओम शांति
0: जी,
1: बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: बढ़िया बढ़िया। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: मैं सोनल घुलप पुणे सेंटर से हूँ, और पिछले 3 साल से मैं मैराथन मधुबन में जो मैराथन होता है
0: जी,
1: उसमें दौड़ रही हूँ। तो बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। पिछले 2 साल से मैं पहले भी दो साल दौड़ी, पर मेडल नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि 4 घंटा लगा दौड़ने के लिए
0: जी, जी,
1: पर
0: जी।
1: इस साल मैंने मना तय किया ही था कि कुछ भी हो जाए
0: मेडल लेना है,
1: मेडल लेना ही है। और मैं दौड़ना शुरू किया, और प्रैक्टिस तो मैं रोज करती थी, मना दौड़ने की नहीं, पर घर में मैं एक्सरसाइज करती थी अच्छे से, और वीक में सैटरडे संडे थोड़ा चलती थी, बस इतना ही किया। पर इस साल तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेडल मिला।
0: तो कितने टाइम में पूरा किया आपने?
1: हाँ, पूरा 21 घंटा, मतलब पूरा 21 किलोमीटर जो है दौड़ लगाना था।
0: तो मैंने कब पहुँचे आप, 3.5 घंटे पे? या
1: 3.5 घंटा लगा
0: जी जी,
1: 4 घंटा था इस साल।
0: हाँ
1: तो 3.5 घंटे।
0: हेलो नमस्कार, हेलो, ओम शांति जी, ओम शांति।
2: ज्ञानेन्द्र यादव बोल रहा हूँ अलीगढ़
0: से। जी ज्ञानेन्द्र जी बोलिए, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हैं सर, आप तो बढ़िया हैं?
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं आप? हैं
2: हम एकदम मस्त हैं सर। कल सर कमेंट्री सुनी, सुबह 5 बजे से कनेक्ट हो गई थी हम।
0: बात है, क्या बात है,
2: पूरा नहीं लग रहा था हम भी वहीं पर ही हैं।
0: बहुत बढ़िया,
2: इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि अगर हम अगर पास में होता तो पहुंच ही रहते, मगर अब ये संकल्प किया है कि अगली बार पार्टिसिपेट करना है।
0: ये तो बढ़िया काम हो गया आपका,
2: मतलब अपने साथ और 2-4 को और लेके आना, उनको तैयार करना है अभी से, क्योंकि मैं 15 किलोमीटर के लगभग की दौड़ लगा चुका हूँ, 7 किलोमीटर लगभग और बढ़ा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कमेंट्री, ये लग रहा था कि हम वहीं कहीं सब कुछ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ज्ञानेन्द्र जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है जी जी जी। तो अगली बार के लिए आप प्लान कीजिए, और पूरे परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ आइए, मैराथन दौड़ लगाइए आप, है ना?
2: बिल्कुल, अपने मित्रों को साथ मिलेंगे जरूर, पहुँचना।
0: ठीक ठीक ठीक,
2: बोले ठीक है, अगली बार हम चलेंगे।
0: ठीक ठीक ठीक, ओके।
2: क्या करना पड़ता है, कब से शुरू होता है, उसका कुछ प्रोसीजर बता देना।
0: ठीक है, बता देते हैं, आप कॉल करिएगा बाद में, ठीक है? ओके जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ओम शांति, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। ये थे यूपी बिहार से ज्ञानेन्द्र जी, जो बात कर रहे थे, और कल इन्होंने शायद लाइव प्रोग्राम सुना था, उससे इनको मोटिवेशन मिला है, तो अभी शायद दौड़ी लगा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सोनल जी और बताइए, कल आपने पूरा किया तो कैसा महसूस किया आपने?
1: जब मैंने पूरा किया तो मुझे बहुत आनंद, मना जो ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पिछले 2 साल से मैं दौड़ रही हूँ, तो मुझे
0: तीसरे साल में आपने सफलता प्राप्त की
1: जी,
0: तीसरे साल में सफलता प्राप्त हो गई।
1: जब पहली बार मैं दौड़ी, मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं पहली बार दौड़ी 2 साल पहले
0: जी,
1: तो मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया था, मना दौड़ मुझे पता ही नहीं था। तो हमारे एक भाई थे, उन्होंने मुझे किया कि नहीं हमें दौड़ना है, दौड़ना है। फिर मैंने सोचा कि दौड़ना है दादी के निमित्त, मना ब्रह्म कुमारी में मैं जुड़ी हूँ, तो मैंने सोचा दादी के निमित्त हमें दौड़ना है। तो मैंने सोचा कि कैसे दौड़ सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, बाहर वाले लोग जो वारी करते हैं, मराठी लोग जो वारी में जाते हैं, वहाँ पे तो बहुत एजेड लोग रहते हैं, मना सब लोग वारी में जाते हैं, इतना दिन दौड़ते हैं महीना महीना, तो वो लोग चल सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने लगा मैं तो यूथ हूँ, मैं ना एक में तो मैं दौड़ सकती हूँ, तो मैंने सोचा नहीं मुझे करना है। तो चलते समय पहले मैं बहुत चली, मना उसके बाद तो मेरे इतने पैर दुख रहे थे सर, बस अभी बैठ जाओ, मुझे नहीं करना है। फिर बाद में नहीं, वो लोग चल सकते हैं तो मैं भी चल सकती हूँ। और मेरे साथ एक वो हुआ कि एक एज मना 75 एज के वो एक है थे,
0: हाँ,
1: बुजुर्ग थे
0: वो भी
1: वो चल रहे थे, तो
0: उसको देख के और भी मजा
1: मोटिवेट हुआ कि नहीं वो कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ और मुझे दौड़ना है बस। तो इस साल तो मुझे मेडल मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी जी जी,
1: और आगे भी मैं करते रहूंगी।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको। हेलो जी नमस्कार।
3: हेलो नमस्कार रमेश जी, गुड मॉर्निंग। भूपत सिंह जी,
0: गुड मॉर्निंग, बोलिए भूपत सिंह जी।
3: सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार, दीदी को भी प्यार भरा नमस्कार। मधुबन रेडियो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
0: अब बात है, बहुत दिनों के बाद याद किया आपने।
3: नहीं प्रोग्राम तो सुनता रहता हूँ, कभी दोस्तों का भी कॉल सुनता रहता हूँ। बस सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप तो गीत चलाइए, बारिश की जरूर है, बरखा रानी जरा जमके बरसो। जितनी बार वो गीत मधुबन रेडियो पे बजाया तो शायद बारिश तो आई ही आई। आज चला दीजिए तो शाम तक शायद आ जाए। अभी यहाँ तो बारिश आई ही नहीं ज्यादा, जरूरत है बहुत।
0: जी जी जी जी जी,
3: सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।
0: चलिए भूपत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा आपने जो है भाव व्यक्त किया। अपने दोस्तों को याद करते रहते हैं, रेडियो मधुबन सुनते रहते हैं, फ़ोन कभी कभी आप करते हैं, तो बारिश को याद कर रहे हैं आप। बरखा रानी जरा झूम के बरसों, ये गीत आप सुनना चाहते हैं, मैं सुनाऊँगा। और सोनल जी, मैं चाहूँगा जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप?
1: मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी लक्ष्य है हमारा, मैराथन का हो, कुछ भी लक्ष्य हो,
0: जी, जी,
1: वो लक्ष्य पूर्ण करने से पहले उसको अनुभव करिए। मुझे मेडल चाहिए, तो ये मैंने 2-3 महीना पहले ही मैंने अनुभव किया था कि मुझे मेडल मिल गया है, मेरे गले में मेडल है, मैंने फोटो निकाले हैं, और रोज मैं वो फील करती थी, मना जो ग्रेटिट्यूड जो फील होता है, मैं ग्रेटिट्यूड करती थी कि मुझे मिल गया है, थैंक यू। मैं मैराथन को पहले से ही थैंक यू बोलती थी कि मधुबन में आई हूँ, मुझे मैराथन मिल गया है। मैं पैर को थैंक यू बोलती थी कि मैं मुझे पैर मुझे मदद करेंगे दौड़ने के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे शरीर को और मेरे मन को भी मैं वही बोलती थी कि मुझे मिलना है, मुझे मिला हुआ है मेडल। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि जो भी हमें लक्ष्य प्राप्त करना है उसको पहले से ही हम अनुभव करें, क्योंकि हमारी पावर अच्छे से बन जाती है, पॉजिटिविटी बन जाती है, और हमारे में जो मिलना है वो मिलता ही है। मिलने के लिए हमें क्या बोलते हैं उसे,
0: अपने सोच को तैयार करना,
1: हाँ, सोच को तैयार करना होता है। यही मैं सबको संदेश देती
0: जी। सोनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया, और मैराथन विन करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं, और भूपत सिंह जी जिस तरह से भरखा रानी को याद कर रहे थे, तो उनके लिए ये खूबसूरत सा गीत सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: जी मदन भाई, स्वागत है आपका।
1: जी जी जी, नमस्कार रेडियो मधुबन को, नवे किरण को और रमेश जी को और हमारे सभी को सुबह से सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। और दादी माँ का भी सुनाया और हमारे ओम शांति का भी सुनाया है और बहुत अच्छा लगा। और दादी माँ की जो विशेषता हमने सुनी बहुत अच्छा लगा और हमेशा अच्छी लगती है। अरे जितना इतने टाइम से सुन रहे बहुत अच्छा लगता है कि एक मिनट की भी याद है या योग तुम्हें बहुत समय का अभ्यास याद दिला देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको नमस्कार करते हैं। और दूरियां नजदीक क्या होगी यादों से, एकदम याद करने से दूरियां भी नजदीक क्या हो जाती है। तो याद सबसे बड़ी मुश्किल कला है, जो टिकट भी नहीं लगती है, भाड़ा भी नहीं लगता है, फटाफट पहुंच जाते हैं। तो आपको नमस्कार है और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार और जिनका भी जन्मदिन है सभी को नमस्कार। और कल भी हमने प्रोग्राम सुना था रविवार को, शनिवार को, वो बहुत अच्छा लगा हमको। और बहुत कहने जाएगा टाइम भी कम पड़ जाएगा, इसलिए एक गाना गाते हैं बाबे का,

0: तो नमस्कार ये गाना हम सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ओम शांति, नमस्कार,
1: ओम शांति, ओम शांति जी। चलिए मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई आपने। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, 9:45 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ, और बातें चल रही थी खास मैराथन विनर्स की, बातें आपने सुनी। और आइए आज जिस विशेष, सौरभ घोषाल का जन्मदिन है, जो 10 अगस्त को इनका जन्मदिन आता है, और भारत के ये पहले ऐसे स्काश खिलाड़ी है जो विशेष इंग्लैंड में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की एकल स्काश स्पर्धा में इतिहास रच दिया था। और वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्काश में एकल पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो आइए इनके बारे में और कुछ

नमस्कार, आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 FM दो पंची दो तिनके, है ना। बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन वाला गीत आप सुन रहे थे और सौरव घोषाल के बारे में हमने बातें की और इनका कद 5 फीट 6 इंच है और ये विशेष 2013 में विश्व चैंपियन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो वैसे इनको काफ़ी पदक मिले हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में इन्होंने विशेष भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत को रिप्रेजेंट किया। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग अब आगे बढ़ते हुए 10 अगस्त को जन्मे उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो आज जिनका जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन जो है रोज जिनका भी जन्मदिन रहता है उन सभी के लिए शुभकामनाएं करता है। तो आज भी हम करेंगे और अगस्त 10 को जन्मे उन लोगों में से कुछ खास नाम है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान विष्णु नारायण बातखंडे, 1860 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और वीवी गिरी, भारत के चौथे राष्ट्रपति, 1894 में इनका जन्म हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रसिद्ध राजनीतिक है। हेमंत सोरेन, 1975 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय डाकू फुलन देवी का जन्म आज ही के दिन 1963 को हुआ। और भारतीय सिनेमा के अभिनेता थे प्रेम आदीप, 1916 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और भारत के पहले स्काश खिलाड़ी जो सौरव घोषाल है, 1986 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। तो जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप सभी से शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम।

समय बनता है सुबह का जब खास, उषा आती है अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे, जरा सोचिए। और जी हाँ, तुलसी स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदा करती है, आप भी सोचिए। उपाय तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा आप भी सोचिए। अगर आपको भी आंसर मिलता है तो आप भी उपाय बता सकते हो। और आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ आइसक्रीम। कल आपने खाई कुल्फी, आज बनाएंगे आइसक्रीम, परंतु कौन सी वाली, वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, बहुत ही सरल और सुंदर। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

बहुत ही सुंदर गीत सुना आप सभी ने, उसके बाद पुनः आप सभी का आशियाना में स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करे। लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूंगी कि एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और भी अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, उनके अच्छी सेवा की, आदर सत्कार किया। सेवा से प्रसन्न होकर के नगर से प्रस्थान करने के पहले संत ने उस लोभी व्यक्ति को चार दीपक दिए। चारों दीपक दे करके संत ने उसे बताया, पुत्र जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर के पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वहां दिया बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में घड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी नहीं हो सकती है तो तीसरा दीपक भी जला करके दक्षिण दिशा में चले जाना। वहां पर दिया बुझेगा तो वहां पर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और है, एक दीपक है किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कह करके संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ और वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लूं, फिर यहाँ का धन भी ले जाऊंगा। वह कलश वही झाड़ियों में छिपा करके दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर दूसरा दीपक भी बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में रख दिया और सोचा कि बाद में ले जाऊंगा, इसलिए वही छोड़ करके तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जला करके उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने सख्त मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी ज्यादा धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता हो। मुझे तत्काल वहां जाकर उसे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, उसके बाद सारा जीवन में ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक भी जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वे एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला जिन्हें देख करके उसकी आंखें चौंधिया गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख करके उसका लालच और भी बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई दी, वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहां कैसे पहुंचे बाबा? क्या थोड़ी देर में तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मैं यहां कैसे पहुंचा और मुझे यहां क्या मिला। वृद्ध व्यक्ति बोला,
लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो भाई? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दब करके मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यही चक्की चला रहा हूं, मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कह करके वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा, लोभी व्यक्ति जोर से चिल्लाया पीछे से। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर के यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। देखा ना आपने लालची व्यक्ति के क्या हानि हुई, क्या इसके साथ घटित हुआ। इसलिए लोभ लालच बिल्कुल नहीं करना है। यही आज का सुंदर सा विचार है, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

छा ओ झुक जा सांवरिया लूले जाए तुल छा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में जैसे कि ये गीत की चंद पंक्तियां मैंने गुनगुनाई है इससे आप समझ गए होंगे कि आज मैं नुस्खे कौन से देने वाली हूँ। वैसे तो परिचय में आप सभी सुन चुके हो फिर भी आइए आज आपको नुस्खे देते तुलसी के ऊपर कि तुलसी के गीत तो बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं, भजन बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में जैसा नाम है वैसा तुलसी का काम भी है। बहुत ही फायदा करती है तुलसी, और तुलसी का पौधा तो लगभग हम अपने घरों में लगाते ही हैं, है ना, कोई घर में रखते कोई घर के बाहर रखते, लेकिन हर एक के घर में लगभग तुलसी का पौधा तो होता ही है। तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है तुलसी। तुलसी देखिए इसको एक दिव्य पौधा माना जाता है क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को भी प्यारी है, तो बहुत सारे भजन बन गए हैं, है ना, और बीमारियों को भी ठीक करती है, इसलिए इसको दिव्य पौधा के रूप में माना जाता है। इसकी पूजा भी होती है और बहुत सारी बीमारियों को ये नाश करती है। तो जैसे कि कैंसर वाले लोगों के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि कैंसर में कैसे फ़ायदा करती है तुलसी। कैंसर जैसे गंभीर रोगों में 25 से 100 पत्तियाँ बड़ों के लिए, ठीक है ना, तुलसी के पत्ते कितने लेने हैं, 25 से 100 पत्तियाँ और 5 से 25 पत्तियाँ बच्चों के लिए ले सकते हैं आप। फिर भी शुरुआत में आप 21 से 35 पत्तियों से शुरू करिएगा, ठीक है, ये पर्याप्त है, फिर आपको संख्या बढ़ानी है। तो अधिकतर रोगों में सामान्यतः 7 से लेकर 11 पत्तियां लेनी है। कैंसर की बीमारी में मैंने आपको बताया है कि शुरुआत में 21 से 35 तक शुरुआत करनी है और बाकी 25 से 100 तक पत्तियां लेनी है, धीरे धीरे संख्या बढ़ानी है, लेकिन ज़्यादा ही तकलीफ है तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरी अन्य कोई बीमारी हो तो आप 7 से लेकर के 11 पत्तियां, ठीक है, और बच्चों के लिए 6 से लेकर के 5 पत्तियां जरूर इनको खिलाइएगा, ठीक है। जैसे कोड जैसे 7 साल पुराना चर्म रोग केवल 3 पत्तियां बारीक घोट करके आप दीजिएगा, तो कोड जैसी बीमारियों में भी फायदा पहुंचा सकते हैं तुलसी के पत्तियां। बस आपको जरूरी है थोड़ा सा लगातार इसका सेवन करना, ठीक है, और जलन या फिर कोई और छोटी मोटी तकलीफ है तो आप खाली पत्तियां भी दे सकते हैं, सुबह खाली पेट देना है, ठीक है। तुलसी की पत्ती खा करके आप सामान्य जो जल है उसको पी लीजिएगा, ठीक है, नहीं चबाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे उतार करके पानी पी लीजिए, चबा करके भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि 7 से 21 ताजे हरी तुलसी की पत्तियां लेकर के आप स्वच्छ खरल या सिल बट्टे पर जिस पर मसाला नहीं पीसा जाता है, ठीक है, और मसाला पीस रहे हो तो उसको अच्छी तरह धुलाई करो, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछो, उसके बाद ही आपको तुलसी की पत्तियां घोटनी है, नहीं तो फिर आप लोगे तो छाती में जलन करेंगे, फिर कहेंगे कि अरे ये तुलसी जल रही है, लेकिन तुलसी की जलन नहीं है, आपके मसाले की जलन है। इसलिए अगर सिलबट्टे पर पीस रहे हैं आप और मसाले वाला है तो उसका अच्छी तरह धुलाई करिए, बाकी जिसमें आप मसाला नहीं पीसते हो वो सिलबट्टा भी आप ले सकते हो और चटनी की तरह इसको, मतलब चटनी बना देनी है इसकी 7 से 21 ताज़ा हरी पत्तियां लेकर के, फिर इसको 50 या फिर 125 ग्राम दही में मिला करके रोज खाली पेट 2-3 महीना तक लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, यदि दही खट्टा है माफिक नहीं आ रहा है तो आप 1-2 चम्मच शहद मिला सकते हैं इस चटनी में, ठीक है, तुलसी की चटनी में, और इसको लीजिए, तो इससे कफ और श्वसन संस्थान के रोगों तथा छोटे बच्चों को बारीक पीसी हुई तुलसी की पत्तियां शहद में मिलाकर दीजिए तो ये श्वसन और कफ में काफ़ी फायदा करेगा। बच्चों के आप खुराक की मात्रा घटा दीजिए, बड़ों के लिए मात्रा जो मैंने आपको बताया है वो लीजिएगा, इससे कफ है, श्वास की समस्या है, इन सब में राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 महीने तक लगातार लेना है, सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तियों के पेस्ट करके इसको या तो दही में घोलिए, दही अगर खट्टा है तो शहद में भी आप मिला सकते हैं और इसको चाटिए, ठीक है, तो श्वास की समस्या ठीक होगी, कफ की समस्या ठीक होगी। और आप दूध में तुलसी को मत डालिएगा, चाय में डालिएगा,
चाय में जो जैसे आप अदरक डाल रहे हो, अन्य मसाला डाल रहे हो, उसके साथ आप तुलसी की पत्तियां डाल करके भी चाय बना सकते हो और इसको पीने से भी कफ में, सर्दी में, सब में राहत मिलेगी और बहुत सारे दर्द जो शरीर में होते होंगे ना उससे भी छुटकारा मिलेगा। अंदरूनी दर्द थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, तो इस तरह अगर आप तुलसी लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये दर्द आपका छोटा मोटा ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहो तो आजमा सकते हो। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है। प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए। प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आइए सुनेंगे बहुत ही सुंदर एक गीत और उसके बाद हम पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहे।
1: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: आज बहन जी प्रश्न कौन सा है, मेरे पास रेडियो है नहीं अभी।
1: हाँ जी, आज का प्रश्न है प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए।
2: अच्छा, तो ये पृथ्वी
1: जी,
2: जी और जल, अग्नि और ये हवा वायु।
1: अच्छा ठीक है, तो आभार आपका फिरोज भाई।
2: आप अभी सभी रेडियो मधुबन परिवार को सलाम।
1: जी आपको भी। चलिए आप सुनते रहिए आशियाना, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है
2: जी जी जी।
1: तो आप सभी आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज जैसा कि मैंने आपको परिचय में कहा था कि आइसक्रीम सिखाएंगे, परंतु कौन सी वाली? जी हाँ, ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम। ठीक है, सादी सिंपल आइसक्रीम बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी पसंद करते हैं। तो ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम के लिए आप पेन और डायरी जरूर ले लीजिएगा, और सामग्री में लिखवा रही हूँ वो लिखिएगा। आप लीजिएगा 1 लीटर दूध, ठीक है, फिर आपको लेना है 2 ब्रेड की स्लाइस, फिर आप लीजिए 250 ग्राम चीनी, छोटी इलायची ले लीजिएगा 4, 10 ग्राम आप खरबूजे के बीज लीजिएगा, 10 ग्राम ही आपको चिरौंजी लेनी है, और थोड़े काजू, बादाम, पिस्ता आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, थोड़े कटे हुए। ठीक है, तो फिर से मैं दोहरा रही हूँ सामग्री, आप एक नज़र डालिएगा अपनी डायरी में, कहीं छूट गया हो तो लिख लीजिएगा। 1 लीटर दूध, फिर आप लीजिएगा ब्रेड की स्लाइस 2, 250 ग्राम आपको लेनी है चीनी, और 4 ले लीजिएगा छोटी इलायची, खरबूजे के बीज ले सकते हैं आप 10 ग्राम और चिरौंजी भी 10 ग्राम, और काजू, बादाम और पिस्ता ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा। ठीक है, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि दूध को आप गर्म करिए, गर्म करके आप उसको तो गर्म करते रहिए, बीच बीच में हिलाते रहिए, चिपके नहीं, नीचे चिपकेगा लगेगा तो आप समझ सकते हो कि उससे स्मेल आएगी, इसलिए आप हिलाते रहिए और दूध गर्म करिए। फिर जो ब्रेड की स्लाइस ली है इसका आप चूरा कर दीजिए, और लगातार हिलाते हुए दूध को आप थोड़ा गाढ़ा होने दीजिए। ठीक है, और पकाते रहिए, और इसमें ही ये जो चूरा है ये भी डाल दीजिए दूध में। ठीक है, और हिलाते रहिए, दूध गाढ़ा हो जाए तो फिर आप चीनी मिलाइए, फिर 5-10 मिनट और इसको पकाना है, फिर आप गैस बंद कर दीजिए या फिर गैस से नीचे उतार दीजिए, फिर पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा और कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स करके आप किसी भी बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, और जब ये जम जाए कम से कम 8-10 घंटे लगेंगे, 8-10 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हो कि आइसक्रीम आपकी जम चुकी है, फिर जब चाहे आप खा सकते हो। तो इस तरह ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम बनाई जाती है। फिर से विधि दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह सुनकर के बनाइएगा कि दूध को आप गर्म करिए, हिलाते रहिए और गर्म करते रहिए, फिर जो हमने ब्रेड की स्लाइस ली है उसका चूरा कर दीजिए, और इस चूरे को भी आप दूध में डालिए और अच्छी तरह हिलाइए, दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो शक्कर डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर से हिलाइए, उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए, और गैस बंद करने के बाद आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाल दीजिएगा, और अच्छी तरह हिलाकर जब यह ठंडा हो जाए तो आप आइसक्रीम के बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, 8-10 घंटे आपको फ्रीजर में रखना है। उसके बाद आप देखिएगा आपकी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम तैयार है। तो बस आइसक्रीम आपने सीखी है, और भी मैं आपको अन्य प्रकार के आइसक्रीम सिखाने वाली हूँ, लेकिन कौन सी वो आपकी सुनने के बाद ही जान पाएंगे। तो आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब सुनेंगे गीत, उसके बाद हम पुनः आपसे मिलेंगे, आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम। आइए अब आपको कोकोनट वाली आइसक्रीम सिखा देते हैं। ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जब भी चाहो बना सकते हो आइसक्रीम, कुल्फी, और घर पर ही बना करके इसका आनंद ले सकते हो। तो पेन और डायरी तो तैयार है ना, तो लिखिएगा कोकोनट आइसक्रीम के लिए आप लीजिएगा वनीला आइसक्रीम 4 कप, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कप, सादी क्रीम लेनी है 1/2 कप, और कैस्टर शुगर लेना है 1/2 कप। बस इसमें सामग्री ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, 4 कप ले लीजिएगा वनीला आइसक्रीम, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 4 कप लेना है वनीला आइसक्रीम, 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लेना है, सादी क्रीम भी आप 1 कप ले लीजिएगा, या फिर थोड़ी कम होगी तो भी चलेगा, और कैस्टर शुगर लेना है आपको 1/2 कप। अब देखिए इसमें आपको मैं वनीला आइसक्रीम रेडी मतलब दिलवा रही हूँ आपको, लेकिन आप चाहो तो जैसे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम आपको सिखाई है ना, तो बस आप उसमें ड्राई फ्रूट्स मत डालिएगा तो सादी आइसक्रीम हो जाएगी। तो इस तरह अगर आप पूरी ही तरह से बनाना चाहते हैं आइसक्रीम, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कोकोनट आइसक्रीम के लिए फिर इसमें आपको खाली नारियल ऐड करना है, और वो वाली आइसक्रीम जिसमें ड्राई फ्रूट लिया है, वैसे ड्राई फ्रूट हर एक में आप डाल सकते हो, मात्रा को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, और नहीं भी डालोगे तो चलेगा, इस आइसक्रीम में लिया नहीं है वैसे ड्राई फ्रूट। तो आप अब क्या करेंगे, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, फिर क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके आप फेंट लीजिए। ठीक है, और नारियल के पेस्ट को इसमें मिला दीजिए। वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिला देना है, फिर इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकाल करके कांटे की मदद से फेंटिए, फिर से फेंटना है, और वापस कंटेनर में भर करके ढक्कन लगा करके फ्रीजर में जमने के लिए रख दीजिए। तो बस 8-10 घंटे आपको फिर से रखना है फ्रीजर में, और उसके बाद आप निकालिए, जब चाहो तब आप खा सकते हो। ये बन गई हमारे नारियल वाली आइसक्रीम। थोड़ा सा स्वाद में चेंज आ गया है, लेकिन बहुत सारे फ्लेवर की बनती है आइसक्रीम, जिसमें थोड़े थोड़े से चीज़ें हम अलग तरीके से ऐड करते जाते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा चेंज होता जाता है, और हर कोई चाहता है कि टेस्ट चेंज होता रहे, चाहे कुल्फी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे भोजन हो, टेस्ट सभी चाहते हैं कि हमेशा थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का मिलता रहे, है ना। तो बहुत ही सरल तरीका है इस आइसक्रीम का भी, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को, कि आप नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके अच्छी तरह फेंटिएगा, और इसमें फिर फेंटने के बाद नारियल की पेस्ट को भी मिला दीजिएगा। अब आप वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिक्स करिए, और इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में आप भर के रख दीजिए, किसी भी आप बर्तन में जो आइसक्रीम जमाने का है उसमें भर के रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकालिए, और निकाल करके इसको फिर से फेंटिए, फेंट करके फिर से इस कंटेनर में, इस पात्र में भरना है, और ढक्कन लगा करके अच्छी तरह आप फ्रीजर में रख दीजिए। 8-10 घंटा इसको जमने दीजिए, उसके बाद बस आप जब चाहे आइसक्रीम का आनंद ले सकते हो। तो चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी उषा बहन जी।
1: हाँ जी, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, और सभी मित्रों की कृपा है, बाबा की कृपा है, और आपकी दुआ है, और कार्यक्रम भी बहुत सुंदर चल रहा है, और अभी अभी जो ऑन किया तो कार्यक्रम चल रहा
1: जी,
2: तो सोचा फोन कर लूं और बात कर लूं, और जवाब क्या है वो प्रश्न भी।
1: अच्छा, प्रश्न नहीं सुना आपने?
2: जी, मैं तो अभी ऑन किया था।
1: जी जी, तो आज का प्रश्न है, प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइएगा।
2: जी जी जी बहन, प्रकृति अपने

0: और है चाहे हम आइसक्रीम बनाएं, कुल्फी बनाएं, चिवड़ा बनाएं या भोजन बनाएं, भोग तो लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप भोग लगाइएगा, परमात्मा की याद में भोग लगाइएगा, और कभी कभी क्या है प्रकृति को भी धन्यवाद दे दीजिएगा, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है और प्रकृति के द्वारा ही हम वस्तुओं को चीज़ों को बनाते हैं। तो कभी क्या है, जो भी बना रहे हैं हम, चाहे भोजन हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कुल्फी हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, साथ ही साथ आप प्रकृति को धन्यवाद भी देते जाइएगा कि प्रकृति हमारा कितना साथ निभाती है। ये प्रकृति नहीं होती तो हमारा क्या होता। इसलिए है प्रकृति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा साथ हमारा निभाती हो। तो इस तरह कभी प्रकृति के पांच तत्व में से एक तत्व को भी आप धन्यवाद दे सकते हो, कभी पांचों को ही धन्यवाद दीजिए, और प्रभु की याद में आप भोग लगा करके आइसक्रीम को स्वीकार कीजिए। ठीक है, आइए फिर से आज का प्रश्न दोहरा रही हूँ कि प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15, और अब एक गीत सुनने के बाद पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। आग लगती है तो ये नहीं पूछते कैसे लगी, सिर्फ आग बुझाने में लग जाते हैं, बात छोटी हो या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ। प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कारण नहीं ढूंढना, निवारण ढूंढना है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, अब आप इसको स्पष्ट करने में मदद करेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है कि प्रकृति के पांच तत्वों का नाम क्या है। तो दोनों में ही प्रश्न का भी आप जवाब दे सकते हो और खुशनुमा जीवन में भी आप जुड़ सकते हो। नंबर है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आप खुशनुमा जीवन की बातें भी कर सकते हो कि कैसे आग लगती है तो पूछना नहीं है कैसे लगी, उस समय पूछते कैसे लगी, कैसे लगी, कैसे हम फटफट उसको पानी ला करके बुझाने की कोशिश करते हैं। तो बस ठीक इसी तरह बातें छोटी हो या बड़ी हो, समस्या छोटी हो या बड़ी हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं करना है, समस्या का समाधान करना है। क्या कहेंगे आप, हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा रेडियो मधुबन से और अपने विचार को जरूर रखिएगा। तो बहुत ही सुंदर विषय है खुशनुमा जीवन का कि जैसे आग लगती है, ये आपको बता चुकी हूँ कि मैं, आग लगती है तो हम इंतजार नहीं करते, ठीक इसी तरह किसी के भी जीवन में समस्या आती है तो उसका क्या क्यों मैं मत घेरी है। हेलो,
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग सुरेश भाई।
0: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
1: बस बिल्कुल अच्छे हैं, और बहुत अच्छा विषय भी दिया है दीदी। आजकल जो आपने बात बताई ऐसा ही हो रहा है
0: जी।
1: आज कोई भी बात है तो बात का बदंतर कर देते हैं और बात को छोटी करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज देखो कोई भी बात हो तो जैसे आपने बताया कि आग लगती है तो कहीं ना कहीं कितने ही बातें हो सकती है, ऐसे करो बोले करता नहीं, करता नहीं, बात ही करता है
0: बिल्कुल।
1: और सब सुचन देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन खुद इसको खुद अच्छी करने की कोशिश नहीं करते
0: जी।
1: तो आज कई सारी बिजली बातें ऐसी है कि हमारे भी जो देखो आज परिवार में कोई बात हो जाती है तो बहुत बात बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है
0: जी,
1: लेकिन शॉर्टकट में बात पूरी नहीं होती है
0: जी।
1: कितने ही सवाल उठते हैं, शायद देखो आज मैं बताऊं तो एक सैंपल बताऊं तो ठीक है, हमारे घर में कोई भी झगड़ा हो गया शायद, ऐसा एक नमूना मैं देता हूँ
0: जी।
1: और झगड़े में बात झगड़े की और होती है और बात कहाँ से चली जाती है,
0: पाया ही चेंज हो जाता है
1: शायद, अच्छा विषय चेंज हो जाता है
0: जी।
1: तो आज ऐसा है तो इसलिए आज ये बात बहुत बड़ी हो जाती है, शायद पहले कुछ साल भर में कोई आदि कुछ हुआ तो ये बात भी आ जाती है
0: जी।
1: तो बात का वतन कर करते हैं लेकिन बात छोटी करने की कोशिश नहीं करते कि चलो ये बात भी तो ये बात बस ये कर दो पूरा हो जाए, ऐसी बात नहीं आती
0: जी।
1: इसलिए तो आज देखो कई सारे झगड़े हो रहे हैं, कई सारे रिश्ते में दरार हो रही है
0: जी।
1: आज शादियाँ होती है किसी की तो देखो कई परिवार ऐसे है कि आगे की बात लेके बैठ जाता है और हमको ऐसा हुआ था, आपने ऐसा किया था। इसलिए आज रिश्ते टूट रहे हैं, इसका कारण ये है कि बात छोटी हो तो छोटी ही रहने, तो बड़ी नहीं करना, बस बड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं सब

0: जी टूट जाएगा।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर।
0: तो यही कहूंगा आपके दीदी से, बस कोई भी बात हो तो शॉर्ट में इसको पूरी कर दो तो सही है।
1: जी जी जी,
0: वरना परिणाम तो अच्छा नहीं आता है।
1: जी जी, आभार आपका, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, बहुत ही अच्छी बात बताई है सुरेश भाई ने, कि देखिए सभी फैलाने की कोशिश करते लेकिन समेटते कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? हमारे और भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
0: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज।
1: हाँ जी नमस्कार, नमस्कार फिरोज भाई।
0: आज का विषय बहुत बढ़िया है
1: जी, थैंक यू।
0: के पहले तो एक शेर बोल देता हूँ कि दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, और जरा सा मील का झोंका आया तो कयामत तक सुला दूंगी।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक में, और हमारे जैसे ड्राइवरों की जिंदगी स्टेयरिंग और ब्रेक में।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: दूसरा क्या है, समझो कि दो गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ
1: जी,
0: तो सबसे पहले एक्सीडेंट के अंदर कितने अंदर बैठे हैं, किसको क्या इजा हुई है, क्या हुआ है, उससे सबसे पहले तो इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है
1: जी।
0: और फिर बाद में ये जो गाड़ी बीच में रोड के बीच में है तो उसको साइड में करवाना है
1: जी।
0: और
1: बिल्कुल,
0: इसके और ये कई लोग तो क्या वो देखेंगे, वो भले मरता तो मरने दो या तो कुछ भी होने दो
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: पहले
1: जी।
0: तो सेल्फी लेंगे और टेलीफोन लगाएंगे और फिर इसका वो पूरी जगह पे उसको अनाउंस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: हाँ ये बात है
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई फिरोज भाई, बहुत बहुत आभार आपका। स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में काफी कुछ आपने समझा दिया कि कैसे लोग जब एक्सीडेंट होते तो सेल्फी लेना शुरू कर देते, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो पेशेंट पड़ा हुआ है उसकी मदद नहीं करते। और भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से। हेलो,
2: हेलो नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से बोल रहा हूँ दीदी।
1: हाँ जी सुरेश भाई नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
2: बस अच्छे है, काम कर रहे तो अभी भी 58 पर मैंने रेडियो शुरू किया तो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, चलो मैं भी कॉल करके बात करता हूँ।
1: जी जी स्वागत आपका। तो आज के प्रश्न भी मैं दोहरा रही हूँ, कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइएगा।
2: हाँ वो तो जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी।
1: अच्छा ठीक है
2: जी। और दीदी हमारे मित्र भी जैसा उनका चरित्र है वैसी बात कर रहे हैं, तो हम भी बस ऐसे ही बात करेंगे, कहीं भी कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है ना तो हमें बुलाते हैं और हम समाधान करते हैं। तो जैसे जो आपने बात की ना, इस पर ही मैं बात कर रहा हूँ। तो घर में दो पति पत्नी को झगड़ा हुआ, और पत्नी किस तरह वजह से झगड़ा कर रही थी कि पति का जो किसी गैर औरत के साथ ये ऐसा चरित्र खराब है, तो ऐसा करके झगड़ा कर रहे थे। और लोग जो कुछ अच्छे लोग वो समझाते कि चलो भाई ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा आदमी है, और ऐसे भी लोग है जो चढ़ावा देते है, हमारे गुजराती में बोलते है तो कह के अरे तुम तो ये है। फिर आदमी को, उस इंसान को भी पत्नी के बारे में तुम्हारी वाइफ इतनी ये है खराब है
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: आग फैलाते हैं मतलब, और कुछ ऐसे भी है तो आग बुझाते हैं
1: जी।
2: तो
1: जी,
2: फिर
1: जी।
2: जैसे भी जैसे ही हम लोगों को बुलाया तो पहले तो दोनों की बात सुनी, चलो के पति तो निर्दोष साबित होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और पत्नी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी
1: जी।
2: तो अब करे क्या, तो बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ रहे। तो फिर आखिर में एक बात कही कि चलो अब जो भी हुआ, चलो तुम्हारे पति ने ये किया, चलो कर दिया, हम भी मानते हैं और आप सही है, लेकिन अब से नहीं करेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और आप भी अगर पति का चरित्र जो भी खराब हो ना तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे, ये वादा करो, कसम खाओ, मतलब ऐसा कुछ समझाया। अब तक लगभग 3 साल हुए हैं, ना उनके घर में झगड़ा है या ना कोई ऐसी बात हो रही है, तो ये बात है तो आग बुझाने की।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ऐसे सॉल्यूशन मिले तो ही सही मायने में कुछ लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है और किसी के जीवन में खुशियां आई है।
2: जी जी सही बात है दीदी
1: जी, बहुत सुंदर आपने बातें बताई है सुरेश भाई, और बहुत अच्छी आपने मदद की है, बहुत बहुत आभार आपका।
2: थैंक यू
1: जी। तो ये थे सुरेश भाई धाने राव से, और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह पड़ोसी में झगड़ा हुआ और इन्होंने जा करके झगड़े को सुलझाया, और आज 3 साल होने को आए लेकिन उनके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कारण सारा आपने बताया है। तो इस तरह मदद करना अच्छी बात है, लेकिन वो कहते ना आग में घी का काम करना बहुत बुरा है, इसलिए आग को फैलाना नहीं है, आग को बुझाना है। ऐसे ही समस्याओं को भी बढ़ाना नहीं है, समस्या आ गई है तो उसको सुलझाना है। ठीक है, और भी आपसे बातचीत करेंगे, आप तैयार रहिएगा। एक गीत सुनने के बाद पुनः इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, तो आइए गीत सुन लेते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है, और कारण नहीं ढूंढना, निवारण को ढूंढना है. क्या, क्यों, कैसे, इन सभी में जाएंगे तो परिस्थितियां बढ़ेगी और बड़ी होगी, घटेगी नहीं. ठीक है ना, जैसे आग लगती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम उसका निवारण ढूंढते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, पानी वाले को बुलाते हैं और पानी डलवाते हैं. हम स्वयं भी कोशिश करते हैं कि मिट्टी डाले, पानी डाले, कैसी भी करके आग को बुझाने की कोशिश करते हैं. ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें आती है. एक बात आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे सुरेश भाई ने भी बताया था कि छोटी छोटी बातों से भी कभी कभी इतनी बड़ी बातें फैल जाती है कि जो मेन बात होती है वो तो कहीं की कहीं रह जाती है और पूरा ही विषय चेंज हो जाता है. ऐसा ही होता है घर परिवार में आजकल, ऐसा ही हो रहा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और घर टूटते जा रहे हैं. जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, एक परिवार में बहुत दूध गर्म कर रही थी, दूध उबल गया, आधा दूध बाहर निकल गया. उसको पता चला, अरे ये दूध उबल रहा है, तो तुरंत ही उसने गैस बंद किया, लेकिन तब तक आधा दूध बाहर बह चुका था. इधर सास बोली कि इसका वैसे काम में ध्यान कहाँ है, ये कहाँ सही काम करती है, जब भी करती है ऐसा ही करती है, घर में नुकसान ही करती है. फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे जरूर ये टीवी देख रही होगी, टीवी में इसका ध्यान होगा इसलिए दूध उबल गया. तीसरे व्यक्ति बोला कि अरे ये तो वैसे ही विचारों में खोई रहती है, कहाँ ये घर में रहती है, रहती यहाँ पर है हमारे सामने, लेकिन विचार कहीं के कहीं चले जाते, इसके विचारों में खोई हुई होगी ना, इसलिए दूध उबल गया. और किसी ने कहा कि वैसे ही ये मन से काम कहाँ करती है, ये तो ऊपरी मन से करती. मतलब कितनी सारी बातें सुनने को मिली, जबकि कारण कुछ था ही नहीं. एक ही कारण था कि भाई दूध उबल गया. अब उबल गया सो उबल गया ना, समेटने वाला होता तो कह सकता था कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, हो जाता है, तो वो जरूर ध्यान रखती. लेकिन जब इतनी सारी बातें सुना दी, तो आप ही सोचिएगा कि कौन सुनेगा इतनी सारी बातें. वो भी तो शुरू हो गई, फिर तूतू मैं शुरू हो गई. अब बात जो थी दूध उबलने की, वो तो रह गई एक तरफ, और दूसरी बातें, अरे इसने पहले ऐसा किया था, अरे वो 4 दिन पहले इसने मेरे को ऐसा सुनाया था, अरे 8 दिन पहले तो इसने ऐसा ही किया. अब आप सोचिए बात कितनी सी थी, दूध उबल गया. लेकिन इतनी तूतू मैं हुई, इतनी तूतू मैं हुई कि लोग इकट्ठे हो गए मोहल्ले में, और मेन बात तो दब गई और दूसरी बातें सामने आई. वो उनकी उछाले, क्या फायदा मिला. घर परिवार ऐसे नहीं चलता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं. बहुत सारी बातों को समानी होती है, बहुत सारी बातों को सहन करना होता है, बहुत सारी बातों को लेट गो करना पड़ता है, तभी घर परिवार टिकता है. अगर हम फट फट कुछ भी बोल लेते हैं तो वो घर नहीं टिकेगा, क्योंकि सहन शक्ति सभी में खत्म होती जा रही है. अब बहू को आप 4 सुनाओगे तो एक तो वो जरूर सुनाएगी, 4 सुनाया उसका हमें दुख नहीं, लेकिन एक उसने जवाब दे दिया, वो हमें दुख बैठ गया. फिर हमने 4 सुनाई, 8 सुनाई, फिर इधर उधर बात की, फिर उसने भी हमारी जो रही सही इज्जत थी वो भी उतार दी. फलाने दिन ऐसे किया, ढिकड़े दिन ऐसे किया. अब क्या फायदा मिला, भाई दूध उबल गया कोई बात नहीं, दूसरी बार ध्यान रखना, हो जाता है, हमसे भी कभी उबला है, तुमसे भी गलती हो गई. अगर ये कह करके हम उस बात को शांत कर दें तो वो बात बढ़ेगी नहीं और खत्म हो जाएगी. अब एक तो दूध उबला उसका नुकसान हुआ, ऊपर से झगड़ा हुआ तो सभी का खून जला, क्या फायदा हुआ, और लोगों के सामने तमाशा हुआ, लोग इकट्ठे हुए और हंस हंस के गए, अरे देखो छोटी छोटी बातों में इनके झगड़ा होता है. फिर कभी बड़ी बात पर भी झगड़ा होता है ना, तो लोग हंसेंगे कि अरे इनके घर में चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं ये लोग, तो हमारी इमेज तो वहीं पर खत्म हो गई. वो कहते ना प्यारे श्रोता बंधु, कि इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन इज्जत का कचरा होने में 1 सेकंड लगता है. इसलिए घर परिवार में बहुत ही सोच समझ करके रहिए. बहुत ही आप अगर दूसरों को कुछ सुना रहे हो तो बहुत ही सोच समझ करके बोलिएगा कि मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी है कि उसका पलट कर मुझे जवाब मिले. कुछ हमारे सामने हो रही होती है बातें, उनको समाना सीखिए. परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है, लेकिन परिस्थितियों को समेटने की ताकत हमारे में होनी चाहिए, तभी वो परिस्थितियां बड़ी नहीं वो छोटी दिखाई देगी और धीरे धीरे उस परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए विस्तार में नहीं जाना है, सार में रहना है, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: ना। अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम आपने सुना है, बहुत ही सुंदर विचार आपके समक्ष रखा है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे थे, तो रेसिपी भी आपको आइसक्रीम बनाना सिखाई है, दोनों ही प्रकार की, ड्राई फ्रूट्स वाली और नारियल वाली, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। प्रकृति के पांच तत्व, उनके नाम बताना है और आप सभी ने सही जवाब दिया है। पहले तो मैं आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां बजवाना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी का पहली बार ऐसा हुआ है कि सही जवाब मिला है। तो अब मैं आपको नाम सुना रही हूँ, प्रकृति के पांच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल सही है, आप सभी ने सही जवाब दिया है। आज का मीठा मोती आपको सुनाना चाहूँगी, जो बहुत ही सुंदर है, कि जैसे हमारी रचना अगरबत्ती, जैसे हमारी रचना अगरबत्ती इतना सुगंध फैलाती है, तो हम रचिता जहाँ हो वहाँ का वातावरण कितना सुगंधित कर सकते हैं। अब मैं आपको हनुमान जी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रोम रोम में हनुमत के बसे हुए श्री राम, लांग गए सागर को पल में लेके राम का नाम। झूठा बंधन, झूठी माया, झूठा ये संसार है, सच्चा है एक राम नाम का

भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

मेरे सतगुरु प्यारे दाउपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दीदार बड़ा सोना है। एक

मन बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दा, दरबार बड़ा सोना है एक दर

एक रोज दिवाली है मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा।

0: नमस्कार सभी को, आपके अपने सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 एफएम कार्यक्रम हिंसा को नो में खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले समय से हिंसा के नो कार्यक्रम के एपिसोड्स में हमने आपको अलग अलग विषयों पर महिलाओं के साथ किस प्रकार से हिंसा होती है ड्रामा के द्वारा बताने और समझाने की कोशिश की है, जिसमें हमने 10 विषयों पर प्रकाश डाला है। आज के इस एपिसोड्स में हम उन्हीं 10 ही विषयों को लेकर ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं।
1: आज आपको ले चलते हैं आबू के आंचल में, एक ऐसा परिवार जहां माता पिता, दो बच्चे और उनके दादाजी रहते हैं। पितृसत्ता के चलते परिवार में दादाजी का रुतबा है। यहाँ परिवार की बेटी कोमल को पढ़ने में बहुत रुचि है, फिर भी उसका कोई दोष नहीं होने के बावजूद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। आइए जानते हैं आखिर क्यों।
2: भाई चल खेलते हैं।
3: क्या खेलें?
2: क्रिकेट खेले।
4: कोमल ये तो क्या बोल रही है, ये लड़कों का खेल है, तू लड़की है।
2: तो क्या हुआ पिताजी, खेल तो सभी खेल सकते हैं, लड़का हो या लड़की।
4: तुम चुप रहो, लड़का और लड़की का जीवन अलग अलग होता है।
5: क्या हुआ, क्यों बहस कर रहे हो सुबह सुबह बच्चों से? वैसे भी इनके स्कूल जाने का समय हो रहा है, ससुर जी सो रहे हैं, उठ गए तो गुस्सा करेंगे।
6: कुछ समय बाद ससुर जी उठ जाते हैं।
7: कोमल पानी लाओ।
3: ये लो दादाजी।
7: तुम ये काम करोगे? ये काम महिलाओं का है। कोमल कहाँ गई?
3: इसमें क्या हुआ दादाजी, पानी मैं ले आया तो।
7: ये काम तेरा नहीं है, हमने भी घर के कामकाज नहीं किए, ये काम महिलाओं के है और ये परंपरा से महिलाएं ही करती आ रही हैं। और तुम अभी स्कूल भी नहीं गए, कोमल कहाँ है?
3: कोमल तो स्कूल गई है।
7: स्कूल तो तुम्हें जाना चाहिए था, वो स्कूल नहीं जाती तो भी चलता।
6: कुछ ही देर बाद कोमल घर आती है।
7: क्या हुआ कोमल, तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई?
2: दादाजी वो दादाजी वो।
7: साफ साफ बोल क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों है? बहू जरा इधर आओ, कोमल को क्या हुआ है जरा इससे पूछो तो।
5: कोमल इधर आओ, क्या हुआ है? दादाजी कब से पूछ रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही?
2: माँ माँ माँ वो मैं स्कूल जा रही थी जब कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ा और बहुत कुछ बोल रहे थे।
7: मैंने तो पहले ही मना किया था, लड़कियों को बाहर मत भेजो, और वैसे भी लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अपने भाई को साथ लेकर नहीं जा सकती थी तू? अकेले जाने को किसने बोला था? जरूर तूने ही पहले कुछ बोला होगा, सीधे सीधे स्कूल नहीं जा सकती थी तू?
2: नहीं नहीं दादाजी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो सीधी जा रही थी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें।
7: चुप कर, जबान लड़ाती है, आने दे तेरे पिताजी को, आज ही तेरा स्कूल जाना बंद करवाता हूँ।
6: कोमल रोते हुए अंदर जाती है। शाम को पिताजी घर आते हैं।
7: बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है।
8: क्या हुआ पिताजी?
9: कोमल कोमल तुम खुद ही पूछ लो कोमल से।
8: क्या हुआ कोमल, दादाजी क्या बोल रहे हैं?
2: पिताजी वो आज स्कूल जाते समय कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ा, इसलिए दादाजी मेरा स्कूल बंद करवा रहे हैं।
8: हाँ तो ठीक ही तो बोल रहे हैं दादाजी, क्या गलत कहा उन्होंने? और तुम वैसे भी स्कूल जाके क्या करेगी, शादी के बाद तुम्हें भी घर संभालना है हमारी माँ की तरह, अब से तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है।
2: पर पापा मुझे आगे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई मत छुड़वाओ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है इसमें।
7: सुन लिया कोमल तुमने, अब से तुम अपनी माँ के साथ घर का काम संभालेगी।
6: कोमल चुपचाप अंदर चली जाती है।
1: तो देखा दोस्तों, बिना किसी गलती के कोमल की पढ़ाई छुड़वा दी गई और 18 साल होते ही उसकी शादी भी करवा दी जाती है। ससुराल में भी कोमल को आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है और बात बात पर ताने सुनने पड़ते हैं। लिंग आधारित हिंसा का सामना करना पड़ता है, कैसे आइए सुनते हैं।
2: राहुल मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे आगे पढ़ाएंगे?
10: घर का काम करो, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम है कमाने वाले।
11: कोमल मैं आज अपनी बेटी निशा को गोद भराई करवा कर ला रही हूँ, तो शाम को अच्छा खाना बना देना।
2: ठीक है माँ जी।
6: शाम का समय।
11: अब बता बेटा निशा तू कैसी है? वहाँ लोगों के बीच तुझसे बात ही नहीं कर पाई। ससुराल में तुझे सांस परेशान तो नहीं करती? कितनी थक गई है, तुझे कुछ खिलाते नहीं क्या?
12: नहीं माँ, मैं तो अपने सास की सुनती भी नहीं हूँ और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। और आपके दामाद भी इस समय में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस एक ही बात की टेंशन है कि घर में सबको लड़का चाहिए, और अगर लड़की हो गई तो क्या होगा माँ?
11: हाँ हाँ बेटा निशा, तुझे लड़का ही होगा, बस तू टेंशन मत ले, बस तेरी डिलीवरी आराम से हो जाए। तू आराम कर, कोई काम नहीं करना तुझे, तेरा मन पसंद खाना बना है, चल खा ले।
12: माँ कैसा खाना बनाया भाभी ने, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है।
11: कोमल, घर से कुछ सीख कर नहीं आई क्या, इतना गंदा खाना।
6: कोमल रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद पति राहुल घर आता है।
10: क्या हुआ कोमल, रो क्यों रही हो?
2: माँ और निशा दीदी ने आज खाना अच्छा नहीं बनने के बहाने मुझे खूब डांटा। मैंने तो निशा दीदी के पसंद का खाना बनाया था, इसमें मेरी क्या गलती थी, फिर भी मुझे डांटा।
10: तू मेरी माँ और बहन के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? खबरदार, तूने मेरे परिवार के बारे में और कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
6: ऐसा कहकर राहुल कोमल पर बहुत चिल्लाता है। कोमल रोते हुए अपने घर पर फोन लगाती है।
1: यहाँ पर गलती के बिना ससुराल वाले और पति ने भी डांट दिया। जिसके साथ शादी हुई वह भी नहीं सुनेगा तो एक नारी किसे अपनी बात सुनाएगी। फिर भी चलिए यह सब तो ठीक है, पर जन्म देने वाली माँ बेटी को इग्नोर कर देती है तो वह बेटी फिर क्या कर सकती है। आइए सुनते हैं।
13: हेलो कोमल बेटा, बोल कैसी है तू?
2: यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा माँ, आज मुझे सासू माँ ने खूब डांटा और राहुल तो घर आते ही मुझ पर चिल्लाने लग गए, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता माँ।
13: पागल हो गई है क्या तू? वो तेरा पति और परिवार है, घर में तो ये सब कुछ होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा।
6: इतना कहकर कोमल की माँ फोन रख देती है। अगले दिन कुछ महिलाएं कोमल के घर जाती हैं।
14: अरे ओ रमा, कहाँ गई, बाहर तो आ।
11: हाँ हाँ हाँ आती हूँ।
14: रमा आज हम सब मिलकर मंदिर जा रही हैं, तुम भी बहू कोमल को हमारे साथ पूजा करने भेजो ना।
11: अरे नहीं नहीं, मैं कोमल को नहीं भेजूंगी, और राहुल आया तो वो भी गुस्सा करेगा, कोमल कहीं नहीं जाएगी, वैसे भी घर में बहुत काम है।
6: कोमल निराश होकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है।
15: देखो तो जरा, ससुराल वालों ने अपनी बहू पर कितना नियंत्रण रखा है,
14: कोमल की तो आवाज ही नहीं निकलती इन सब के सामने। इतनी अच्छी बहू होने के बावजूद भी ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो अपनी बहू के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। कल को हमारी भी बेटी किसी की बहू बनेगी, अगर अपनी बेटी के साथ ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा?
15: हाँ तुम सही कह रही हो, हम अपनी बहू के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे।
6: इतना कहकर वह सब अपने घरों में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह है।
11: कोमल जरा देखो तो, काम वाली आई या नहीं, घर में पूजा रखवाई है, इतना काम पड़ा है और ये काम वाली है कि कभी समय पर नहीं आती।
2: हाँ माँ जी जाती हूँ। क्या हुआ बहन, तुझे पता है ना माँ जी ने आज निशा दीदी के लिए घर में पूजा रखवाई है, तुम समय पर क्यों नहीं आती?
6: कोमल काम वाली से बात करने लग जाती है।
10: कोमल ये तू क्या कर रही है, इस काम वाली से बातें कर रही है, तुझे पता भी है घर में कितना काम पड़ा है? ज्यादा मुंह मत लगाया करो इन काम वालियों को, इतनी हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी?
2: इसमें क्या हो गया, मैं तो बस इससे समय पर ना आने का कारण पूछ रही थी।
10: चुप कर, बड़ी आई लोगों की परेशानी सुनने वाली, पहले खुद को तो सुधार फिर सुनना दूसरों की परेशानी। और इस काम वाली को भेज यहाँ से अपना काम करने के लिए, पियर में दो चार क्लास पढ़ाई क्या कर ली, खुद को महारानी समझने लग गई।
1: कोमल के ऊपर इतना नियंत्रण देखकर पड़ोस की महिलाओं को भी आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ काम वाली बाई निमन तबके की होने की वजह से उससे ज्यादा बात करने के लिए भी टोका गया। और तो और पूजा भी पुरुषों के बिना नहीं हो सकती, क्यों आइए सुनेंगे।
6: शाम को पूजा का समय।
11: कोमल अपनी ननद निशा को नीचे ले आओ, पूजा का समय हो गया है।
2: हाँ हाँ माँ जी, अभी जाती हूँ। निशा दीदी, अरे ओ निशा दीदी, चलो पूजा का समय हो गया है, माँ जी आपको नीचे बुला रही है।
11: दामाद जी कहाँ रह गए बेटा, पूजा शुरू करनी है।
12: हाँ हाँ माँ, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे।
2: जीजा जी आते हैं, तब तक आप ही पूजा शुरू कर दीजिए ना दीदी, जीजा जी आते ही बैठ जाएंगे पूजा में।
11: चुप कर कोमल, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई हो तुम। पुरुषों के बिना कोई काम शुरू किया जाता है क्या? अपने ये बुरे संस्कार मेरी बेटी को मत सिखाना। पूजा तो दामाद जी के आने के बाद ही शुरू होगी, बैठ जा अपनी जगह पर।
9: जजमान आप सही कह रहे हो, शुरू से हमारे समाज की परंपरा यही रही कि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत पुरुषों के द्वारा ही होती है।
11: लीजिए दामाद जी भी आ गए, आप पूजा शुरू कीजिए।
6: अगली सुबह।
12: माँ माँ, अरे जल्दी आओ माँ, भाभी जल्दी आओ, जल्दी आओ।
11: क्या हुआ बेटा निशा? कोमल जल्दी आओ, निशा को क्या हो गया?
2: माँ जी, निशा दीदी को जल्द ही अस्पताल ले जाना होगा, वरना डिलीवरी घर पर ही हो जाएगी।
11: ए भगवान, अब मैं क्या करूँ, घर में कोई पुरुष भी नहीं है, कैसे ले जाऊँ इसे अस्पताल?
2: चिंता मत करो माँ जी, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ।
6: कोमल कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाती है और निशा को सही समय पर अस्पताल पहुंचा देती है।
11: अच्छा हुआ बेटा कोमल, तू इतनी पढ़ी लिखी थी, वरना पता नहीं आज तो क्या हो जाता। अगर निशा को कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती इसके ससुराल वालों को? आज से तेरी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी राहुल और मेरी रहेगी।
1: कहते हैं शिक्षा अच्छे अच्छे को झुका देती है, कोमल के साथ भी ऐसा ही होता है। आखिर ननंद के बेसमय डिलीवरी पर समय चलते एम्बुलेंस को फोन करके बुला दिया जाता है, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल जाता है और ननंद निशा को सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। तब सास का बहू के प्रति व्यवहार बदल जाता है और बहू को आगे पढ़ने की इजाजत दे दी जाती है।
0: तो देखा दोस्तों, कोमल ने अपनी समझदारी व पढ़ाई के द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों को पार करते हुए ये सिद्ध किया कि एक नारी किसी से कम नहीं होती है। अगर बेटे की तरह बेटियों को भी आगे बढ़ने दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं, हर घर में खुशियाँ रहेगी और कोई भी बेटी किसी प्रकार की हिंसा का शिकार नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम लेकर के आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तो सुनो समझो चुप भी तोड़ो और कहो हिंसा को नो, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। वैसे संगीत का सफर सच में इतना सुहाना होता है कि बाकी सब सफर उसके आगे फीके लगते हैं। एक्चुअली चाहे हम घूमने जाएं या परिवार के साथ समय बिताएं या कहीं अकेले किनारे बैठे हो किसी सोच में डूबे हो, संगीत हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, इसलिए हम भी उसका साथ नहीं छोड़ते और लेकर आते हैं आपके लिए ये कार्यक्रम जिसमें मिलवाते हैं आपको हर हफ्ते एक नए मेहमान से। लेकिन वो मेहमान होते हैं खास क्योंकि उन्हें होता है संगीत से प्यार। और आज भी हमारे समक्ष एक ऐसी ही आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है निधि अग्रवाल जी, जो कि कवयित्री भी हैं, वो ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट राइटर भी हैं, और साथ साथ उनकी कविताओं का बहुत सुंदर उन्होंने संग्रह भी तैयार किया है। तो आइए निधि जी का स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में आज। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं संगीत, जहाँ भी मौका मिले संगीत या गीत, कहीं पर भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो तो जो भी मैं कविताएं लिखती हूँ उनको ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि वो समाज से जुड़ी होती हैं और प्रकृति से भी संबंधित होती हैं, जिससे कि हम लोग अपने समाज में क्या चल रहा है, हमारी प्रकृति में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनसे हम लोग जुड़े रहें। मैं खुद जुड़े रहती हूँ और इन कविताओं के माध्यम से बस अपना संदेश सबको सुनाना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ, इसलिए। और मैं बेसिकली यूपी कानपुर की रहने वाली हूँ, और हमारे यहाँ जैसे गंगा नदी है तो वहाँ पे मतलब अभी तो काफ़ी प्रदूषण पे कंट्रोल है, लेकिन एक समय था जब हमारे यहाँ पे गंगा का बहुत ज़्यादा प्रदूषण था, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पानी हमें साफ नहीं मिल पाता था और हर जगह गंदगी, कचरा, कूड़ा ये सब रहता था। लेकिन अभी सरकार भी बहुत मतलब जागरूक हुई है सबको लेकर, तो अभी साफ़ सफाई गंगा की करना बहुत हो गया है, और शहर में भी अभी सुंदरीकरण हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा गंदगी और वो प्रदूषण और वो सब रहता था। तो मेरी कविताओं का मतलब, क्योंकि बचपन से ही मुझे संगीत, कविताओं से, गीत से बहुत एक स्पेशल अटैचमेंट रहा है, और बहुत मतलब एक अंदर से ही एक जैसे एक मुझे रहा है बचपन से कि मैं कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ें करने का मुझे शौक रहा है। तो उसमें कविताओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, जो भी मुझे लगता है समाज में चल रहा है और जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए और तब बच्चों के लिए, जो हम उनको कैसे एक अच्छी सोच दे सकते हैं, कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आज है हमारा और बच्चे हमारा कल है। तो जब हम अपनी युवा पीढ़ी को सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे बच्चों को, तो हमारा भविष्य और आज बहुत सुंदर हो सकता है।
0: इसलिए आप युवाओं के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी कविताएं लिखते
1: हैं। मैं उनके लिए भी लिखती हूँ, और हमारी जो महिलाएं हैं, जो शक्ति सेना है हमारे देश की, मतलब 50% जो जनसंख्या है हमारी महिलाओं की है, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो, वैसे तो आजकल हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत
0: कहां नहीं है महिलाएं, चाहे
1: हर जगह है महिलाएं,
0: चाहे क्रिएटिव फील्ड्स में हो,
1: हाँ हर फील्ड में आगे हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। तो उनसे भी संबंधित मैं कविताएं लिखती हूँ, बाकी समाज के लिए लिखती हूँ और प्रकृति से संबंधित। और एक चीज और मेरे विषय में शामिल है, जो है आध्यात्मिकता, जिसकी आज हम सबको बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल के जो हमारा माहौल है, जो हमारी जिंदगी है, उसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम मतलब कभी कभी लो फील करने लगते हैं, हम निराश, हताश होने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती,
0: बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि बहुत सारी परेशानियां भी हैं जीवन में। तो हमें लगता है कि हमें परमात्मा से जुड़ने की और उनकी, उनसे शक्ति लेने की जरूरत है। तो जब हम अध्यात्म को साथ लेके चलेंगे तो हमारा जो जीवन है वो बहुत बेहतर बनेगा, बहुत मतलब हम अच्छे से अपनी सारी समस्याओं का सामना कर पाएंगे और हम अपने हर मतलब हर जो भी हमारे जीवन में हम करना चाहते हैं उसमें हमेशा हमें सफलता मिलेगी।
0: तो बहुत सुंदर विषय है आपके, आपने बताए, और मुझे लगता है कि आपके पास शब्दों का बहुत बड़ा खजाना भी होगा, क्योंकि जब कोई लिखते हैं तो वो शब्दकोश भी बहुत बड़ा जरूर होता है उनके पास, क्योंकि हर चीज को व्यक्त कर पाना कई बार लोगों को मुश्किल भी लगता है कि हमने जो सोचा शायद वो वो कहा या नहीं, तो वो भी होता है। निधि जी, मैं आपसे थोड़ा सा और पहले ये जानना चाहूंगी कि कविता लिखना आपने कब शुरू किया, वो कैसा?
1: जी, मैं क्लास 5th या 6th में थी, तो तब से मतलब मैं प्रकृति के शुरू से बहुत करीब रही हूँ। हमारा जो घर भी रहा है वो बहुत मतलब ऐसे, हमने घर में मतलब मेरे माता पिता को भी हरियाली का बहुत शौक रहा, तो हमारे आसपास बहुत पेड़ पौधे रहे, पशु पंछी बहुत मतलब पहले हमारे घर के मतलब घर में भी उनकी बहुत हम आवाज़ सुनते रहे शुरू से ही, और गीत संगीत भी हमने बहुत मतलब करीब से मैंने बचपन से देखा। तो मेरा एक रुझान सा हो गया कि मतलब कि कुछ मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, जो प्रकृति है जो वातावरण है वो हमसे कुछ कहना चाहता है, तो हमें उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करना चाहिए, क्या वो हमको संदेश देना चाहते हैं, और वो संदेश अगर मैं समझ पाती हूँ तो वो मैं अगर कविता के माध्यम से दूसरों को भी बताऊं या सुनाऊं, तो मुझे एक बहुत मतलब लगता था कि मैं कुछ सेवा कर रही हूँ प्रकृति की और मतलब अपने समाज की भी। तो जब मैं 5th या 6th क्लास में थी तभी से ये सफर लिखने का शुरू हुआ। तो मैंने पहली बार जो कविता लिखी थी वो एक कुछ चिड़िया पर और प्रकृति पर लिखी थी, और वो हमारे यहाँ पे दैनिक एक वो पत्रिका छपती थी उस समय, अभी भी छप रही है, अमर उजाला, तो उसमें प्रकाशित भी हुई थी।
0: क्या बात है।
1: तब से मुझे लगा कि मैं ठीक ठीक लिख सकती हूँ, तो बस वहीं से मैंने शुरुआत की, और फिर जो वो वहां से शुरुआत हुई तो परमात्मा की, हाँ वो सफर आगे बढ़ता रहा, और मतलब अभी बहुत
0: तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी आपसे निधि जी कि जैसे आप कविताएं तो लिखते हैं, एक्चुअली मैं जानना तो आपके सफर के बारे में बहुत कुछ हम चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम संगीत का है, ये कार्यक्रम ऐसा है कि जहाँ पे हम जुड़ते हैं कविताओं से, गीतों से, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आपकी लिखी हुई कोई कविता आप हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाए।
1: जी जी जरूर। मेरी एक कविता है जो मैंने लिखी है कि कैसे मतलब अपने मन के जो भाव होते हैं उस पे आधारित है, कि हर इंसान के अंदर मन में कुछ ना कुछ भाव रहते हैं, और उनको मतलब हम कैसे मतलब कभी कभी बहुत गहराई से फील करते हैं, तो वो ही भाव के ऊपर ये कविता है कि मेनली जैसे शांत एक शांति का एक होती है भाव होता है या एक फीलिंग होती है, तो वो मुझे जब फील हुई होती है तो उसकी मतलब कितनी पावर होती है उसमें, उसी पर आधारित है। खामोशी की जुबान, खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, बिन बोले बहुत कुछ कहती है, मन के अनसुने राज खोलती है, दिल में बस उतर जाती है, बार बार विवश कर देती है इतना असर छोड़ती है, बार बार विवश कर देती है इतना असर छोड़ती है, जुबान कभी ना जो कर पाती, खामोशी की जुबान वो कर देती है जो सोचा नहीं, खामोशी की जुबान मन का आईना है, खामोशी की जुबान मन का आईना है, हमारे विचारों को देती है आकार, हमारे विचारों को देती है आकार, खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, खामोश रहकर भी अपनेपन का एहसास कराती है, अंदर तक दिल में उतर जाती है, अंदर तक दिल में उतर जाती है, बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह देती है, सुकून और आनंद से भरपूर जीवन को बनाती है, सुकून और आनंद से भरपूर जीवन को बनाती है, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ जाती है, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ जाती है, जीवन में नए रंग भरकर जीवन खूबसूरत बनाती है, जीवन खूबसूरत बनाती है, खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, गहरा असर करती है।
0: क्या बात है, खामोशी को जुबान दे दी आपने, और क्या महसूसता होती है जब कोई इंसान चुप भी होता है तो क्या कह रहा होता है या क्या महसूस कर रहा होता है। आपने एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ देती है खामोशी की जुबान। इसका क्या अभिप्राय था, मतलब ये क्या आपकी भावना थी इसके पीछे?
1: मेरे मन में इसके पीछे यही भावना थी कि जब हम खामोश होते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं हम उनको समझ पाते हैं, अपने मन को समझ पाते हैं, और परमात्मा से जुड़ने के लिए भी हम जितना खामोश रहते हैं उतना ही डीप कनेक्शन परमात्मा से हमारा बन पाता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क में रहते हैं तो हम खुद से नहीं जुड़ पाते हैं और परमात्मा से भी हम नहीं जुड़ पाते उतना अच्छे से। लेकिन जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, या हमें क्या करना चाहिए, और परमात्मा से हमारा जो संबंध है उसकी गहरी महसूसता जब हम खामोश होते हैं तभी होती है। और हमारी शक्तियाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब हम जब बोल रहे होते हैं तो हम अपनी शक्तियों को भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं।
0: okay.
1: लेकिन जब खामोश रहते हैं तो हमारी शक्तियाँ कंसंट्रेट हो जाती हैं और बेटर होती हैं। मेरा बस यही अभिप्राय था खामोशी की जुबान के पीछे।
0: बहुत सुंदर।
1: हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए, जो भी हमारा दिनचर्या है या जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है, तो अपने लिए समय निकालें और उस समय मतलब खामोशी में रह कर बैठें तो हमें बहुत सारा मतलब अपने बारे में जानने को मिलेगा और हमारे जीवन में हमें ज्यादा सफलता मिलेगी और परमात्मा का भी हमारा जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग
0: होता जाएगा। क्या बात है। और जैसा आपने कहा कि आपने फिफ्थ क्लास से आप लिखना शुरू कर दिया था, आप अपना अनुभव सुना रहे थे, तो आपने क्योंकि आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड में हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में हैं, तो क्या ये फील्ड आपकी लिखनी से ही शुरू हुई, इसीलिए आपका इंटरेस्ट आया, या कोई और रीज़न था इस करियर के पीछे?
1: एक्चुअली मेरी लेखनी से, वैसे तो मैंने आगे की जो पढ़ाई की वो मतलब अलग फील्ड में की थी, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हमेशा से, क्योंकि मुझे साइंस बहुत पसंद रहा क्योंकि इसमें लॉजिक होता है चीज़ों में, हम मतलब प्रूव कर सकते हैं हर चीज़ को, हमें ऐसे मतलब बिना देखे कोई चीज़ को मानने की, बिना समझ के मानने की ज़रूरत नहीं होती, साइंस हर चीज़ का प्रूफ देती है, लॉजिकल होती है, इसलिए मुझे साइंस फील्ड पसंद थी। तो मैंने साइंस में ही अपनी पढ़ाई आगे की और उसके बाद लाइक उस समय क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड वाली फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो मेरे घर वालों ने भी चाहा कि मैं उस फील्ड में कुछ करूँ, तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई उस फील्ड में की, एमबीए किया और एमबीए के बाद मैंने

0: कुछ कॉरपोरेट कंपनीज में, एमएनसीज में भी काम किया, लेकिन अंदर से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहा था.
1: ओके.
0: लेकिन जो मेरा राइटिंग वर्क था वो मेरा चल रहा था साइड बाय साइड. तो मुझे लगा कि जब मुझे ये प्लेटफॉर्म है जिसमें ज्यादा अच्छे से काम कर सकती हूँ और इससे मैं ज्यादा करीबी फील करती हूँ, क्रिएटिव राइटिंग है चाहे वो कविताओं के माध्यम से है, लेखों के माध्यम से है, ब्लॉग्स के माध्यम से है, और मैं गीत भी लिखती हूँ तो गीतों के माध्यम से है, तो फिर मुझे लगा कि मैं इसी को अपना फुल टाइम करियर बनाऊँ, क्योंकि मुझे और भी लोगों ने जो
1: कब लगा आपको मतलब
0: जब मैंने जैसे आपको शेयर किया कि जब मैं MBA करके और कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही थी उस समय 2-3 साल बीत चुके थे.
1: 3 साल बाद आपको ये लगने लगा?
0: मुझे ये लगने लगा कि मुझे अपना करियर थोड़ा सा मुझे वो करना
1: क्रिएटिव फील्ड तो,
0: हाँ मुझे कुछ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे उतना पैसा मैं कमा रही थी और जॉब भी चल रही थी, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना जो हम कर रहे होते हैं वो मुझे कहीं मिसिंग लग रहा था. बाहरी तौर पे तो मैं कर रही थी, ठीक था सब कुछ, लेकिन अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए बहुत कंटेंटमेंट की, सेटिस्फेक्शन की, वो नहीं आ रही थी. और बाकी जो मैं जैसे फ्रीलांस बेसिस पे काम करती थी तो जो फील्ड से जुड़े, लेखन की फील्ड से जुड़े लोग हैं उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप इस फील्ड में अगर करोगे तो ज्यादा शायद अच्छा रिजल्ट आप दे पाओगे और आप आगे ज्यादा सफल हो पाओगे, और मतलब आपका लगता है कि इसमें ज्यादा अच्छा एप्टीट्यूड है. तो फिर तभी से मतलब मैंने सोचा कि मैं फिर इसी फील्ड में अपने आप को वो करूं, परस्यू करूं इस फील्ड को और इसी में अपने सफर को आगे बढ़ाऊं.
1: तो बस
0: वहीं से मैंने सोच लिया और वहीं से फिर मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी कर लिया, इसलिए मुझे बोला गया तो BHU से 1 ईयर का, और उसके बाद से पूरी तरह इस फील्ड में
1: आप आ गए. क्या बात है. आपने कहा आप गीत भी लिखते हैं
0: जी.
1: तो क्या कोई गीत है आपका लिखा हुआ आपको याद, या कुछ आप अगर शेयर करें हमारे श्रोताओं के लिए?
0: एक गीत है तो उसकी कुछ लाइंस मैं गा देती हूँ, क्योंकि मैं कवित्री हूँ बट मैं लिखती हूँ गीत भी
1: जी.
0: इसका शीर्षक है तुम बिन कोई नहीं. ये परमात्मा को मैंने डेडिकेट या समर्पित किया हुआ है. तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे नाता,

बस तुम ही हो मेरे यहाँ, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम्हें पाकर जैसे आसमां पा लिया। तुमसे मिली है मुझको शफा, तुमसे ही है मेरी सारी वफा, तुमसे मिली है मुझको शफा, तुमसे ही है सारी वफा, तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे नाता मेरा, दिन रात तुमको ही चाहूँ मैं, तुम्हारी ही मत पे चलती जाऊँ मैं, तुम ही हो मेरे हमनवा, तुम ही हो मेरे हमनवा, साथ देते हो मेरा हर दफा, साथ देते हो मेरा हर दफा, मेरी दुनिया रोशन है तुम्ही से, मेरी खुशी जिंदा है तुम्ही से, तुम हो मेरे खुदा, तुम हो मेरे खुदा, रखते हो पलकों पे सदा, रखते हो पलकों पे सदा, कैसे करूं प्रभु तेरा शुक्रिया, कैसे करूं प्रभु तेरा शुक्रिया। जन्नत को जैसे जमी पे लाए हो, सुख अपार मुझ पर लुटाए हो, जन्नत को जैसे जमी पे लाए हो, सुख अपार मुझ पर लुटाए हो, तुमसे मिलकर कुछ ऐसा लगा, तुमसे मिलकर कुछ ऐसा लगा, तुम ही हो मेरे यहाँ, बस तुम ही हो, मैं हूँ जैसे कोई अफसरा, ऐसा मुझको लगने लगा, मैं हूँ जैसे कोई अफसरा, ऐसा मुझको लगने लगा, तुमने मुझ पर ऐसा करम किया, ऐसा करम किया, इतना ऊंचा मुझको बना दिया।

0: पैसों से भर दी झोली मेरी, हर कमी को मेरी पूरा किया, हर कमी को मेरी पूरा किया, खालीपन कुछ भी न रहने दिया, खालीपन कुछ भी न रहने दिया, भर भर के प्यार इतना दिया, नैनों को मेरे भिगा दिया, भर भर के प्यार इतना दिया, नैनों को मेरे भिगा दिया, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे नाता मेरा, सदियों से है तुमसे नाता मेरा।
1: ये गीत आपने पूरा परमात्मा को समर्पित किया
0: जी,
1: आपने ऐसा लिखा, वो जो आप फील करते हैं ईश्वर के लिए वो जैसे आपने शब्दों में लिखा। तो जब आप ये गीत लिख रहे थे तो क्या भावना थी, जैसा आपने कहा कि आप वैसे गाते तो नहीं हैं, आप लिखते हैं, तो आपको ये मन में भावना थी कि ये आप किसी को देंगे या गवाएंगे, या आपको लगता था कि ये मैंने अपने लिए लिखा है, क्या सोच के आपने लिखा या क्या महसूस था थी इस गीत के लिए?
0: मेरा मतलब मेन पर्पस था कि ये गीत तो मैं अपने लिए लिखना चाहती, जो मेरा परमात्मा के साथ संबंध जो मैं महसूस करती हूँ, लेकिन जैसे कि मैं चाहती थी कि कोई और की आवाज़ में ये गीत
1: गाया
0: मतलब
1: जाए।
0: हाँ गाया जाए और सुने सब लोग, ताकि मतलब जैसा मैं महसूस करती हूँ परमात्मा के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो भी ऐसा महसूस करते हैं परमात्मा के लिए, तो एक मतलब उनको भी ये गीत सुनने को मिले तो उनको भी वो खुशी हासिल हो जो मुझे खुशी हासिल हो रही है, तो यही सोच के साथ मैंने ये लिखा था।
1: वंडरफुल। तो डेफिनेटली जब हम कुछ लिखते हैं तो अगर महसूस नहीं करते तो वो लिख नहीं सकते, वो कागज और कलम पे नहीं आ सकता। तो यहाँ मैं आप
0: भावनाएं हमारे मन में नहीं होंगी उस विषय के प्रति या उस चीज के प्रति, तब तक वो शब्दों में उस तरह से ढल ही नहीं पाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सच। तो निधि जी, एक और बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, कविताएं लिखना और कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी लेखन के भी दो अलग अलग फील्ड्स हैं बहुत
0: जी।
1: तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं, क्या समानता लगती है, या कैसा महसूस करते हैं हम दोनों को ही लिखते वक्त?
0: देखिए, लेखन का है वो फील्ड एक अलग है, वहाँ पे हमें बहुत सारा प्रैक्टिकल होके भी सोचना पड़ता है, बहुत सारी मतलब भावनाओं के साथ ही हम नहीं हमेशा लेखन कर सकते, हमें जो सच्चाई है समाज की या जो हमारे विषय है उसके ऊपर हमें रिसर्च भी करना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों से बातचीत करके हम कोई लेख तैयार करते हैं और फिर वो लिखते हैं, और वो समाज से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे मतलब महिलाओं से रिलेटेड, कोई भी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है लेख हमारा, लेकिन उस पर हमें रिसर्च जरूर करना पड़ेगा, और वो इतना मतलब एक जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी कई बार उसमें शामिल किए जाते हैं, लेकिन जो कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, ये जो हैं ये सारे बहुत भावनात्मक पहलू से संबंधित होते हैं, जो हम समाज से भी हम चीज़ें देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, मतलब बहुत सारे विषय हैं जो जिन पे आधारित होते हैं, लेकिन मेनली इनमें भावनाएं मेन होती हैं और उन्हीं के आधार पे हम लिखते हैं, इसमें कोई रिसर्च वर्क या कुछ किसी से बातचीत के आधार पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट ये है कि दोनों में समानता अगर देखें तो यही होती है कि लेखक जो होता है वो उसके विचार दोनों में ही आ जाते हैं, चाहे वो गीत होंगे, कविताएं होंगी या लेखन होगा, तो हमारे विचार तो इनमें आते हैं, हम अपने मन की जो भावना है, लेकिन वो लिखने का जो पैटर्न होता है वो फॉर्मेट चेंज हो जाता है दोनों में, वो भावनात्मक विषय हमारी फीलिंग्स पे आधारित होते हैं जो गीत और कविताएं हैं, हालांकि वो विषय हम वहीं से उठाएंगे, अपने समाज से उठाएंगे, पर लेखन में होता है कि हमें खाली अपनी फीलिंग्स नहीं डाल देनी है, वो सच के करीब होने चाहिए, उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको शामिल करना पड़ेगा, लोगों के जो व्यूज हैं वो सारे शामिल करने पड़ेंगे, ये मेन डिफरेंस आ जाता है।
1: तो उसके लिए अगर मान लीजिए कोई कंटेंट राइटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो क्या स्किल्स होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
0: मेनली अगर कोई कंटेंट राइटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो उनको थोड़ा सा लिखने की मतलब उनकी एक शैली उनको डेवलप करनी पड़ेगी, अगर होती है कुछ लोगों में तो फिर वो लेखन के फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, शब्दकोश अपना अच्छा बनाना पड़ेगा, जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो उस लैंग्वेज में हमें थोड़ा कमांड होना चाहिए अच्छा, तो फिर इस फील्ड में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने कोई डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, हालांकि अगर आप प्रोफेशनल एक राइटर बनना चाहते हैं तो वो भी आजकल जरूरी हो गया है कि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो, लेकिन अगर आप ऐसे शौकिया तौर पे लेखन करना चाहते हैं तो इस फील्ड में आप आ सकते हैं। अगर आपका रुचि है, लेखन में रुचि है, आपका शब्दकोश आप अच्छा रख सकते हैं और आप भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अगर आपका मतलब एक आपके अंदर वो
1: है,
0: हाँ एप्टीट्यूड है, तो इस क्षेत्र में आप आके बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ये क्षेत्र आपको बहुत
1: बहुत कुछ देगा,
0: बहुत कुछ दे सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी पहचान आप बना सकते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि लेखन के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों के दिलों में आ जाते हैं, दिलों में लोग बिठाते हैं और बहुत सम्मान भी हमें मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, वो चीज नहीं है, खाली इस क्षेत्र में सम्मान और एक लोगों का प्यार बहुत
1: बहुत
0: है, ये मैंने देखा है।
1: क्या बात है, मस्त है। तो कोई और ऐसी कविता निधि जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो या आपको बहुत पसंद हो, या जैसा आपने कहा लोगों का प्यार मिलता हो, जिससे आपको लगा कि हाँ लोगों ने बहुत प्यार दिया इसे।
0: जी बिल्कुल, ये कविता है जो हमारे रिश्ते जो हैं उन पर आधारित है कि आजकल हमारे रिश्तों में मतलब वो जो अपनापन जो खींच है वो थोड़ा कम हो रही है, तो उसको कैसे हम बरकरार रखें, चाहे कोई भी रिश्ते हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्तों के साथ रिश्ता हो, या परमात्मा के साथ हमारे जो संबंध हैं, तो कैसे रिश्तों में एक ताजगी हम रखें, कैसे रिश्तों में प्यार स्नेह रखें, उस पर आधारित है मेरी ये कविता, आपके सामने रख रही हूँ। रिश्तों का सौंधापन, रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्ते तो हमें जोड़ते हैं, हम खुद ही उन्हें तोड़ते हैं। विकारों के वशीभूत होकर रिश्तों को छोड़ते हैं, झूठे अहम के चलते अपनों से भी मुंह मोड़ते हैं, झूठे अहम के चलते अपनों से भी मुंह मोड़ते हैं। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। प्रेम वात्सल्य की गुनगुनी धूप अपनेपन की खाद, प्रेम वात्सल्य की गुनगुनी धूप अपनेपन की खाद। मीठे बोल का शीतल जल रिश्तों में प्राण भर देता है, मीठे बोल का शीतल जल रिश्तों में प्राण भर देता है। रिश्ते सहज सरल समरस बन जाते हैं, रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्ते मुरझा ना पाएं ध्यान हमें रखना है, रिश्ते मुरझा ना पाएं ध्यान हमें रखना है। प्रेम का छिड़काव उन पर करते रहना है, प्रेम का छिड़काव उन पर करते रहना है। मधुरता और अपनत्व की धूप से उनको पोषित करना है, शीतलता की बारिश उन पर करते रहना है। रिश्ते सौंधे और सुंदर बने रहेंगे सदा और सर्वदा, रिश्ते सौंधे और सुंदर बने रहेंगे सदा और सर्वदा। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है, जी भर जीने का मन करता है।
1: बहुत सुंदर, रिश्तों का सौंधापन, मतलब ये कैसे रिलेट किया आपने? हम जानते हैं वो सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है वो तो बहुत आकर्षित करती है, पर रिश्तों का सौंधापन क्या है, थोड़ा अगर आप समझाएंगे मतलब किस चीज ने प्रेरित किया आपको ये लिखने के लिए, और रिश्ते आपके लिए क्या मायने रखते हैं वो भी अगर आप बताएं।
0: ये मतलब जैसे सौंधापन हम देखते हैं ना, बहुत मतलब खुशबू होती है एक बहुत प्यारी सी, तो वही हम खुशबू अपने रिश्तों में भरें तो फिर वो रिश्ते हमारे हमेशा सुंदर बने रहेंगे और हमारे रिश्तों में प्यार हमेशा बना रहेगा। तो वही मैंने कहा कि वो जैसे सौंधापन हमको, चाहे वो बारिश की बूंदें जब पड़ती है मिट्टी पे, तो मिट्टी से एक सौंधेपन की खुशबू आती है। पहले जमाने में वो जो दाल माताएं बनाती थी वो चूल्हे पे, उसमें एक सौंधापन आता था जो मिट्टी का बर्तन होता था। तो इस तरह हम वो सौंधापन अपने रिश्तों में भी अगर हम लाएं, वो मीठापन, तो हमारे रिश्ते बहुत सुंदर बने रहेंगे, बहुत रिश्तों में हमेशा एक ताजगी बनी रहेगी, एक अपनत्व बना रहेगा, स्नेह भावना बनी रहेगी. और मेरे लिए रिश्ते मेरे जीवन में बहुत बहुत मायने रखते हैं. तो बचपन से ही मैंने अपने रिश्तों को मतलब बहुत महत्व दिया है जीवन में, और चीज़ों से ज़्यादा हमेशा मैंने रिश्तों को महत्व दिया है. तो मैंने देखा है कि बाकी सब चीज़ें मेरे जीवन में हमेशा अच्छी हुई हैं क्योंकि लोग मेरे साथ हैं, रिश्ते मेरे मजबूत हैं, तो मेरे मन की स्थिति भी हमेशा अच्छी है. और लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं जब अपने रिश्तों से जुड़ी रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे मुझे सीखने को मिलता है, एक मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहा है, एक बुरे वक्त में साथ मिला है रिश्तों का, अच्छे बुरे वक्त में. तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते हमेशा अच्छे बना के रखने चाहिए, चाहे वो घर के लोगों से रिश्ते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पे हैं, क्योंकि इन सब की ब्लेसिंग्स और इन सब का साथ जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और परमात्मा से हमारा रिश्ता वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो उनसे अगर हम अपना रिश्ता अच्छा बनाए रहेंगे तो बाकी सारे रिश्ते भी कहीं ना कहीं हमारे अच्छे बने रहेंगे. और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में रिश्ते. मेरे हिसाब से तो मेरी लाइफ में एक मतलब जो बोलते हैं ना कि लाइफ लाइन है रिश्ते मेरी लाइफ के.
1: क्या बात नीति जी. लेकिन रिश्तों को बरकरार रखने के लिए जो आपने कहा ये सब पाने के लिए, आज की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो चुकी है. सब अपने अपनी तरह से जीवन जीना चाहते हैं, जो गलत भी नहीं है. और फिर भी और समय भी बहुत कम होता जा रहा है सभी के पास. तो कैसे, मतलब आपका क्या कोई फॉर्मूला है या कोई चीज़ है जिसने आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम किया, जो आपको लगता है कि दूसरों को भी मदद कर सकती है?
0: हाँ, मुझे लगता है कि आज की लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा, मैं भी मानती हूँ कि सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और एक दूसरे के लिए इतना टाइम भी नहीं दे पाते आजकल हम लोग. और मतलब दूरियां भी बढ़ गई हैं, मतलब फिजिकल डिस्टेंस भी हो रहे हैं आजकल, क्योंकि कोई किसी शहर में रह के काम कर रहा है, कोई यहाँ रह के. लेकिन हम मन से तो जुड़े रह सकते हैं ना. तो मन की भावना हम सभी जो हमारे अपने हैं या जो भी लोगों के हम संपर्क में हैं, संबंध में, उनके लिए मन की भावनाएं अच्छे रख सकते हैं. और साथ में हम बीच बीच में उनसे अगर पॉसिबल हो तो उनके साथ कुछ समय बिताएं, कोई ओकेशन है उस समय हम आपस में मिलें. या फिर कभी हम लोग फोन से भी बात कर सकते हैं जिन लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं है. और मान लीजिए कि हम किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो उस समय हम उस रिश्ते के साथ ज़रूर खड़े हों समय निकाल कर उनके सुख दुख में. तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे रोज़ ही मिलें, रोज़ ही बात करें, या उनको बहुत सारे अच्छे गिफ्ट दें, या फिर मतलब बाहरी जो दिखावे की चीज़ें वो करें, मगर हम उनका दिल से साथ दें रिश्तों का. और मतलब रिश्तों में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा सहनशील बने. और मतलब जो भी हमारे रिश्ते हैं उनको बरकरार रखने के लिए अगर हमें सैक्रिफाइसेस भी कुछ कुछ करने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत स्मूथ रहती है रिश्तों में. बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी आपस में मतभेद भी हो जाते हैं, पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग को भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू ख़त्म करें. रिश्तों में कभी भी मन मुटाव की भावना पैदा नहीं होने दें और अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने दें, तो हमारे रिश्ते अच्छे रह सकते हैं और हम लोगों से जुड़े रह सकते हैं जिन लोगों से हम जुड़े रहना चाहते हैं.
1: मतलब माफ कर दें अगर कुछ हो भी जाए तो.
0: जी जी बिल्कुल, माफ कर दें उसको, लेकर बैठे नहीं. और वो जो वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा कोशिश करके पॉजिटिव रखें दूसरों के प्रति भी, क्योंकि हो सकता है, देखिए हम सभी अलग अलग जगहों से आए हैं और हमारे संस्कार स्वभाव कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं. ये सोचें कि उनका स्वभाव हमसे थोड़ा अलग है, ये नहीं कि मैं ठीक हूँ और वो गलत है. वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही है, बस हमको तालमेल बिठाने की जरूरत है, एडजस्टमेंट की जरूरत. अगर ये सोच रखेंगे तो हमारे रिश्ते कभी किसी के साथ खराब नहीं हो सकते. और जहाँ अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम थोड़ा सा साइलेंट हो जाए उस समय, और बाद में जो भी बात है वो आपस में बातचीत करके खत्म कर लें. बस ये सब चीजें अगर हम अपनी लाइफ में सोच में रखेंगे तो हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे और हमेशा मतलब हमारे बीच जो है प्रेम और स्नेह बना रहेगा रिश्तों में. और मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं रिश्ते तभी खूबसूरत रह सकते हैं. हमारी सोच अच्छी रहेगी तो दूर रहकर भी हमारे रिश्ते आपस में बहुत अच्छे रह सकते हैं.
1: निधि जी, जैसे आपने रिश्तों के बारे में बात की और उससे पहले हमने परमात्मा के साथ जो संबंध की बात की, अब अगर थोड़ा सा प्रकृति पे आए, आपने क्योंकि लिखना जब शुरू किया था तो आपने कहा वो चिड़िया पे है ना, वो पेड़ों को देखा वो, हाँ आपने फिफ्थ क्लास में लिखना शुरू किया, तो प्रकृति के लिए भी अगर आपने कोई कविता लिखी हो तो वो हमें जरूर सुनाए हमारे श्रोताओं के लिए, कि हम आबू में रहते हैं और आबू सराबोर है प्रकृति के जैसे वरदानों से ना, बहुत सुंदर प्रकृति का स्थान है ये,
0: बहुत सुंदर ये जगह है। यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे भी बहुत प्रकृति के नजदीक फील होता है और लगता है प्रकृति जो कुछ कहना चाहती है उसे सुनना चाहिए और उसको महसूस करने का बहुत अच्छा एक जरिया है ये आबू। तो मैंने जो मतलब मैं भी प्रकृति के शुरू से बहुत नजदीक रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रकृति के साथ समय बिताना। तो मेरी ये कविता प्रकृति से संबंधित है और समर्पित है। जीवन और प्रकृति, जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, क्या आपने ये बदलाव महसूस किया? जीवन का ये नया अंदाज असाधारण सा, फिर से हम पुराने समय में पहुंच गए हैं, जड़ों से जैसे जुड़ने लगे हैं, प्रकृति के बेहद करीब हो रहे हैं, सब कुछ लग रहा है नया नया। शांति से बिताएं कुछ पल प्रकृति और अपने संग, शांति से बिताएं कुछ पल प्रकृति और अपने संग, दिल में भरें खुशी और मस्ती के रंग। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, कलयुगी समर के इस दौर में मुश्किलों के बीच भी कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। ताजी और ठंडी हवा आनंदित कर रही है, धूप गुनगुनी और प्यारी लग रही है, अपनों से समरसता बढ़ रही है, पर क्या अपने अंदर झांक कर देखा है? जरा खुद को टटोलो और पूछो, क्या मानव सृष्टि बदलने वाली है? क्या नई दुनिया आने वाली है? प्रकृति भी इशारा दे रही है, संभल जाओ मानव वरना देर हो जाएगी। पछतावे के अलावा हाथ में सिर्फ मिट्टी आएगी, पछतावे के अलावा हाथ में सिर्फ मिट्टी आएगी, प्रकृति भी फिर तांडव मचाएगी, प्रकृति भी फिर तांडव मचाएगी और जीवन रूपी गाड़ी थम जाएगी, और जीवन रूपी गाड़ी थम जाएगी, फिर से ये महफिल ना सच जाएगी, फिर से ये महफिल ना सच पाएगी। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, कलयुगी समर के इस दौर में मुश्किलों के बीच में कुछ तो अच्छा हो रहा है। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी,
1: जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी। और सच में हमने प्रकृति के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत गलत किया है, प्रकृति का विकराल रूप भी इंसान ने देखा है।
0: हाँ, लेकिन बहुत हमने देखा है, मतलब क्योंकि अब आजकल जो दौर चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि प्रकृति भी अपनी सीमाएं लांग रही है, बहुत जगह प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं क्योंकि हमने प्रकृति का बहुत ज्यादा शोषण किया है, प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है मानव दिन पर दिन। तो इसीलिए ये सारी हम देख रहे हैं, प्रकृति भी फिर वो रिएक्शन दे रही है ना हमको जब हम उसका इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी भी हमारे पास समय है कि हम संभल जाएं वरना फिर हो सकता है बहुत देर हो जाए और फिर विनाश की, मतलब एक प्रकृति भी ऐसे रूप में आ जाए,
1: प्रकृति भी अपना विकराल रूप और दिखाए,
0: और ज्यादा विकराल रूप सामने आएगा तो फिर मानव को बहुत ज्यादा उस समय मतलब पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
1: वो कहते हैं ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो अब हमें प्रकृति प्रेम को और बढ़ाना है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि हम प्रकृति की बात पे आई है, कैसे मतलब प्रकृति के साथ और करीब कैसे खुद को महसूस करें या कैसे वो उस नाते को और स्ट्रॉन्ग किया जाए?
0: हाँ, प्रकृति के साथ हम अपना नाता स्ट्रॉन्ग तभी कर सकते हैं जब हम प्रकृति का संरक्षण करने की दिशा में आगे बढ़े, मतलब पेड़ पौधे हरियाली है उसको मतलब और हरियाली अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाएं, और मतलब जो हमारे शहरों में जो जहाँ पे भी मतलब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ को भी देखें कि हम नष्ट नहीं करें पेड़ पौधों को, और जो हमारा जैसे पानी है वो भी एक हमारा प्राकृतिक एक स्रोत है, प्रकृति से जुड़ा हो, तो उसको भी हम मिसयूज नहीं करें, उसको बर्बाद नहीं करें, उसका भी हम संरक्षण करें, तो हम प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं. जितना हो सके हम मतलब पेड़ पौधों का, जल का.

0: सबका मतलब हम दुरुपयोग नहीं करें, इसका सदुपयोग जितना जितना हम करते जाएंगे तो हम प्रकृति के और नजदीक आते जाएंगे, और मतलब उनको अपना एक दोस्त समझें, ये नहीं सोचे कि ये तो मतलब पेड़ पौधे हैं, इनका क्या है, इनको कैसे भी इस्तेमाल करो, इनके अंदर तो कोई जान नहीं है, ये तो एक जगह खड़े रहते, निर्जीव नहीं माने, वो सजीव है हमारे जैसे ही। तो अगर हम उनको अपने जैसा ही समझेंगे तो हमारे उनके प्रति भी शुभ भावना रहेगी और हम उनको भी अपना एक सच्चा मित्र मान के चलेंगे, तो कभी हम उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे और हमारा उनसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कनेक्शन बनेगा और हम नज़दीक रहेंगे। और वो प्रकृति की भी एक भाषा होती है, जो अगर हम एक शांति में रहकर अगर उस भाषा को सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें वो भाषा समझ में आएगी कि प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है। तो वो हम सुनने की कोशिश करें कि हमारी प्रकृति हमसे क्या चाहती है, जैसे हम प्रकृति से बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत कुछ प्रकृति हमको दे भी रही है, देती रही है सदियों से, लेकिन उसको भी जो हमसे चाहिए वो हम कभी हमने उस चीज के बारे में नहीं सोचा, केवल हमको क्या चाहिए प्रकृति से उसी के बारे में हम सोचते आए सदियों से। तो अब हमें जरूरत है कि हम इसको अपने फोकस को चेंज करें और प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है उसके बारे में भी हम सोचें।
1: ये बात मुझे सच में बहुत अच्छी लगी निधि जी, कि हम देखते हैं हम जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, हम वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं,
0: अगर बहुत अच्छा लगता है। अगर पेड़ पौधे पहाड़ प्रकृति नहीं हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा,
1: बिल्कुल
0: बहुत नीरस हो जाएगा, प्रदूषण कितना हो जाएगा हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, हर जगह, और बारिश जो प्रकृति की देन है हमको वो नहीं हमें मिलेगी, तो सोच लीजिए कैसा जीवन होगा मानव जीवन।
1: सच में जब हम जाते हैं तो हम इतना इंजॉय करते हैं और हम रिलैक्स हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रकृति जो हमें हर टेंशन से फ्री करती है, जो हमें खाना देती है, पानी, सब कुछ मिलता है, तो हम क्यों ना उसकी आवाज सुने। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोस्तों जब आप भी जाते हैं किसी भी सफर पर या फिर ऐसे यूं ही कुछ वक्त अपने लिए जब आप निकालते हैं तो प्रकृति की आवाज सुने, सच में वो हमसे क्या कहना चाहती है, वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है। या बहुत सुंदर ये बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, करके देखिएगा जरूर, मैं अपने दोस्तों से कहूंगी यहाँ पे। और निधि जी, मैं आपसे जाते जाते एक और प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने महिलाओं की भी बात करी थी, है ना, जिन टॉपिक्स पे आप लिखते हैं उसमें आपने कहा था महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी आप लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ बताएं कि आपकी क्या विचार है उस बारे में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो अभी किस प्रकार के सशक्तिकरण की जरूरत है, क्या अभी वो तरीका, मतलब क्या अभी वो नीड बदल गई है या चेंज हो गई है, कौन सा सशक्तिकरण चाहिए। और फिर जाते जाते अगर आप हमें कोई कविता भी आपकी जरूर सुनाएं।
0: महिलाओं को तो देख रहे हैं हम कि आजकल महिलाओं समाज में आगे बढ़ रही हैं, उनको मतलब हर क्षेत्र में महिलाएं अच्छा कर रही हैं, क्योंकि जागरूकता हमारे समाज में बढ़ी है, तो इसी वजह से आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आर्थिक तौर पर इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होना सिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू भी है कि महिलाएं जहां एक और भारी तौर पे तो उनके अंदर सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल्य हैं और हमारे संस्कार हैं, वो भी बच्चियों में आजकल के पेरेंट्स को देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कहीं ना कहीं वो संस्कार और वैल्यूज़ की मिसिंग भी हो रही है हमारी जो नारी शक्ति है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे समाज में, हमारे परिवार में उसका बहुत गहरा प्रभाव हो रहा है कि महिलाएं जहाँ एक और वो आर्थिक तौर पे पावरफुल बन रही हैं, एम्पावर हो रही हैं, और वो इंडिपेंडेंट सोच वाली हो रही हैं, वो होशियार हैं, वो हर क्षेत्र में आगे प्रगति कर रही हैं, लेकिन जो अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहिए और मतलब सबकी आदर सम्मान जो महिलाओं को मतलब करती हैं महिलाएं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं उस चीज को नहीं समझती हैं, लेकिन एक समाज में कुछ मतलब बहुत सारी वो भी हो रही है महिलाओं के आर्थिक तौर पे सक्सेसफुल होने के साथ साथ जो वैल्यूज और जो संस्कार हैं उनकी महसूसता में वो शक्तियां कम कहीं ना कहीं हो रही है महिलाओं में, जिसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं कितने सारे तलाक हो रहे हैं हमारे समाज में, मतलब डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाएं सहन शक्ति जो है जो पहले की माताओं में हुआ करती थी, स्नेह की भावना, स्नेह की शक्ति, प्रेम की शक्ति, जिसके माध्यम से वो पूरे परिवार को बांधे रखती थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है आजकल। महिलाएं भी जैसे अपने ही बारे में ज्यादा सोचने लगी हैं आजकल, या अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी हैं बस, या मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम डेवलप होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहे हैं, मतलब पति के साथ या हस्बैंड के साथ में वो महिलाएं उस तरीके से तब अपने परिवार को नहीं साथ लेके चल पा रही हैं जैसे पहले महिलाओं के अंदर ये भी वैल्यूज और संस्कार रहते थे कि वो पूरे परिवार को बांध के चलती थी, परिवार की धुरी बन के चलती थी, भले ही वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, आर्थिक तौर पे वो इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, लेकिन अपने परिवार में वो बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी, वो रोल कहीं ना कहीं तो महिलाओं थोड़ा मिसिंग।
1: महिलाओं का मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि अब शायद हम जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो गई हैं, उनको ये भी समझ में आया है या ये भी लगता है कि परिवार को बांधने का कार्य सब मिलकर करें और उसमें पुरुष भी सम्मिलित हों, उसमें ये डिफरेंस ना हो कि ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है, सभी की वो जिम्मेदारी होनी चाहिए।
0: हाँ, होनी चाहिए सबकी, पुरुषों की भी होनी चाहिए महिलाओं के साथ साथ, पर कहीं ना कहीं जो है ना परमात्मा ने भी जो महिलाएं हैं उनको जो शक्तियां दी हुई हैं, जैसे स्नेह की, प्रेम की शक्ति, सहन शक्ति, वो पुरुषों से ज्यादा दी हुई है, तो अगर महिलाएं उस शक्ति को यूज करेंगी तो फिर वो ज्यादा मेजर रोल प्ले कर सकती हैं, जैसे पालना की शक्ति है ना, ये महिलाओं के पास है, पुरुषों के पास ये शक्तियां उतनी नहीं है, तो इसलिए महिलाएं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल परिवार को बांधने में कर सकती है। पुरुषों का भी रोल होता है और वो उनको निभाना भी चाहिए, पर अगर महिलाएं उनका साथ देंगी पूरी तरीके से, जैसे पुराने जमाने में हमारी माताएं बहनें दिया करती थी, तो परिवार कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से चलते थे और एक साथ रहते थे, कोई तलाक और डाइवोर्स पुराने जमाने में नहीं हुआ करते थे, जबकि पुराने जमाने में बहुत सारी
1: परेशानियां होती थी।
0: लेकिन तो आजकल समय होती है, जरूर हो रहा है कि और महिलाएं मतलब वो भी सहन शक्ति खो रही हैं कहीं ना कि आर्थिक तौर पे वो क्योंकि सशक्त हो रही हैं, तो उनको लगता है कि हमें इतना सहन नहीं करने की जरूरत है, हमें कोई बात किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ मतलब मेरे को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए परिवार में जितना मेरे पति को मिलता है, मैं क्यों झुकूं, मतलब ये सब
1: झुकना तो दोनों को चाहिए, जहां जहां
0: जरूरत है दोनों झुकें, और मतलब ये और दोनों मतलब एडजस्ट करके चलें
1: जैसा आपने पहले कहा था
0: जी,
1: क्योंकि परिवार की जहां बात होती है
0: मतलब
1: वहां एक दूसरे को माफ करना, सहन करना, हर चीज करनी।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो।

0: मैं शर्मा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: ब्रेक के बाद में अपना समाज कार्यक्रम रामायण रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोता और स्वागत है ना अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य है और भी स्वागत है।
2: तो हमें आपने पूछो कि वो तो आपने होली रो त्योहार आवे तो कोई ढूंढ करो बच्चा रे।
3: पहली होली आवेला बिन होली माते ढूंढ वेला न माने इन सिरोही धरती रे में विशेष करने अवरोध क्षेत्र में ढूंढ रो सिस्टम बहुत ही ज्यादा है और माने जोधपुर रा भी एरिया में ढूंढ आवे तो वे भी ढूंढ रो बटे नियम ज्यादा है। धाम धूम रहा था बकायदा लड़की वाला कपड़ा लावे हैंगारा और लड़का वाला भी हटे गेरिया ने बुलावे।
2: गेरिया आवे तो गेरिया कोई लिए
3: गाँव रा गेरिया आवेला ढोल बाजा रहा था चंग आवती। हमें आजकल चंग तो होगी साहब कम। होली रो पर्व हमें गंदी तरीके में लोग मनावा ढूंगा तो थोड़ो दिन में फर्क पड़ गयो काफी। और दूसरी चीज बिन दिन बकायदा एक एक माते गुलाल लगावा हाँ। बच्चा ने एक पार्ट माते बैठने एक लड़को वे तो लड़को लेन बैठी
2: पार्ट में कौन काको बैठे
3: काको बैठे है बड़ो भाई कोई दूजो बिना काका बाबा भाई है वो लेन बैठे बिना बात बजे गेरिया का ही करे एक लंबी लकड़ी गाड़ी राखे माते और छोटी लकड़िया लेने हैं एक जनो श्लोक बोलता जाए।
2: केरा श्लोक बोले थे बताओ।
3: एक श्लोक है जूजू की को मोटो वे जूजू की को मोटो वे इन घरे इतना घोड़ा ऊंट

0: इन घड़े इतनी पालकिया गैर यारी पूरे आस, यानी जो संपन्न घर वे वह बजे घरवाड़ा का घर है, कोई गैरिया ने लाडू है, कोई पतासा है, कोई नमकीन बिठान, आजकल प्रिंट ज्यादा हल्की है, पाश्चात सभ्यता ने हिसाब हूँ हमें विणान बिठान बकायदा नमकीन बिस्कुट दे दुआ और विणान ने गुलाल उलाल रहते विदा करे। कुछ गैरिया माना आजकल रंगीन हो गया है जो कि नहीं साहब हमको तो सामरा कलयुग रो गंगा जल देना पड़ेगा तो विणान ने बोतल वोतल देनी पड़े, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर मानो आचार्य समाज माँ चावा तो देवा, नहीं चावा तो नहीं था, तो मारा हटे ज्यादातर मारा राजपूत वर्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप पात्र है कि हमारा हाथ कोई प्रकार की शक्ति नहीं होती, आप सो इच्छा जो भी दोगे मैं जो भी वही वो मां ले लेवा। मारा गेरिया ले है सामरा चौथरा माते भेड़ा वहाँ अच्छा। वोट बकायदा कितनी गैर भी कितनी ढूंढ भी विनी गाँव री लिस्ट बने है। इन्हें अलावा सप्तमी रे दिन ठंडाई घुटी जाए और बच्चा ने पाचो होली रे दिन,
1: होली दिन मतलब ढूंढियो गेरिया आवे तो पासो पगल लगाओ जाओ।
0: मारा हटे नियम हो ऐसा सुबह तो गेरिया आपरे ढूंढने जाय पर सामरा 5 बजे गांव रो ढोले हैं जिनमें घर में ढूंढ वे घड़ी रा नुक्कड़ माता हैंगा लान भेड़ो कर और एक हाथे को घोड़ी रे सन माते विन में एक वे के इन वर्ष जो विंद पर नीजियो वे वो आगे आगे हालेला और लारे लारे वे इन वर्ष रे वीड़ा टबर
1: अच्छा
0: वे ले और वीड़ा ने लेन ओड़ी माता रे परिक्रमा करी ओड़ी रे विने भभूति लगवाई कुछ आपरी भभूति घरे लेन आई और होली रे आन पाचा वो पूजा पाठ जो वेती हुए वो करी इन टंगो मारो ढूंढ संपन्न हुआ करे।
1: बहुत अच्छा रिवाज है आपरा, आप कहो कि भाई के पगे लगावा जाओ जरे जो अन साल पनियोड़ो बींद वेला वो धके धके आलेला और पुटे पुटे सब बच्चों ने लेन जाइला तो उन्होंने ढूंढावेला तो वो जो नव नव पन्नी हुए तो वे पूरा जोड़ाती पगे लगवा जाए
0: बींद वनियोड़ो वेला सापो बांध कर और आगे आगे आले लारे आप अपना बच्चा लेन आप अपना घर में परिवार पर सदस्य आलेला।
1: अच्छी बात है। चलो हम आपने पूछो कि आपरे ढूंढ हुई हमें कोई बच्ची रो रिश्तो करो या शादी करो तो क्या रिवाज है?
0: मानो बच्चा रो रिश्तो या शादी
1: संस्कार वेणो जरूरी है।
0: अब जनोई संस्कार में खर्चो इतो ही जाता तो ये तो एक व्याह में वे
1: शादी जितो खर्चो वे
0: तो बहन बेटियां आती महंगा ने बुलाना पड़ता समाज रो खानो वे तो और ढोल डासा रहते बिन बच्चा ने जो संस्कार दियो जातो जो आज ब्राह्मणा दूजा ब्राह्मणा में बेरियो है। अब मैं माने अटे लोग धीरे धीरे काई करियो के भाई पहला कोई जनोई नहीं देवे तो जब बच्चों हगाई भेजा वेला हगाई हकपन में अपनी रीति रिवाज सब काम वे और बच्चों जब पन्नीजवा जाई के तो पहला विने जनोई दी जाई
1: पन्नीजवा तो वो तो वन टाइम तो शादी टाइम तो एक खर्चा में काढ़ियो कम
0: वो वे है के बिन लड़की वाला रे माते जो खर्चो लागे वो लड़की वालों का ही करे के स्वागत करे पहले तो व्यय मिलने वे बींद रे पाग बांधी जाए पाग रे माते बींद ने जो आप कई जगह तो आज भी नियम है कोई चैन पहरावे कोई खाली करे लेकिन पछे 5 जना वे और विने पहले तेल उतार लियो जाए बींदरो तेल उतारिया रे बाद पछे काई वे के 5 जना भेड़ा वे है एक ब्राह्मण दो मांडे पर तो दो जानिया तरफो 5 जना भेड़ा वे और गायत्री मंत्र रहते और जनोई मंत्र रहते विने जनोई पहराई जाए ताकि आज वो जनोई धारी होगी वो जनोई पहरा
1: जी
0: वो खर्चो सब लड़की वाला उठाया करे
1: तो अगर शादी थी पहला करो तो वरना माँ बाप उठावे और शादी टाइम करो वो संस्कार तो वरना बच्ची वाला उठावेला तो मतलब संस्कार एरो क्यों वो तो मेन तो आप रो खुद रोसवे माता पिता रा घर रहती स्वे
0: वे विनो मैं आपने अर्ज करूं कि मानो समाज बट गयो जो जो कटे 5 घर है कटे 2 घर है कटे 1 घर है कटे 500 घर है कटे जोधपुर जैसा 1500 घर है बाड़मेर हिरका माड़ी 300-400 घर है तो जटे जत्ता है संस्कार वे है तो समाज में जे अब 1-2 घर वालों अगर जनोई संस्कार करे तो विने व्यवस्था व्याव तो मैं नाकर मुंडे करनो पड़े लेकिन जनोई संस्कार एडी चीज है कि विने आजकल लोग व्यर्थ खर्च मान में डूब गया
1: व्यर्थ खर्चो
0: क्यों विनो एक कारण मैं आपने अर्ज करूं कि जनोई लिया रे बाद धारण करिया रे बाद विनो बकायदा पालन करनो पड़े।
1: सही बात है मतलब पूरा पालन करे मैं देखूं कि कोई मतलब लघु शंका भी जाए तो कौन में एक बार पेरे अन्य बात मुख्य कारण कार्य मतलब जो कौन में पेरे मतलब
0: मेन चीज वो है कि आपने जनोई तो धारण कर दी
1: जी।
0: एक शास्त्र रहे साहब आ जनोई हाँ। बहुत पवित्र मानी जाए है, युगोपति ने किया करे युगो पवित्र तो महान पवित्र आत्मा है। आप जिन टाइम कान में जाओ तो पुरखा लोग बताया करे कि कान में लपेटवारो कारण काई, लोग कहता गला में लपेटे माथा लपेटे हाँ। कान में क्यों लपेटे
1: हाँ।
0: माना जो वैज्ञानिक लोग है
1: जी।
0: और वैदिक शास्त्र नाड़ी जानवा वाला है
1: जी।
0: वे लोग कहे कि आपने कान री एक नस जो अट नीचे विया करे है, अगर विने बल दे
1: हाँ।
0: दौड़ बल दिया करे
1: हाँ।
0: और जनोई ने ले
1: हाँ।
0: और पाछे आप निवृत्त पर जाए
1: हाँ।
0: पाछा हाथ वाथ धो ना ने विने पाछो खोल
1: हाँ।
0: ने पवित्र करिया करे, उससे अपने कान री जो नस है
1: हाँ।
0: वह अपने इन प्रकारों काम करे ताकि अपना शरीर ने फायदो पहुंचे।
1: अच्छा, मतलब कोई लाभ मिले थी
0: ऐसी आयुर्वेदिक में या अपने इन आयुर्वेदिक में चीज बताइए कि इनमें जनोई इन प्रकारों काम करिया करे।
1: ठीक है, मतलब आप कहना कि आयुर्वेद शास्त्र में एरो के बतायोड़ा है कि जनोई अगर कौन में लपेटो एन राखो तो अन में अपन कुछ लागे
0: लाभ
1: बदलो कि भाई के लाभ मिले
0: है लाभ मिले
1: कौन में रखे है एन
0: तो
1: अब आ
0: तो
1: ठीक है चलो
0: पुरानी परिपाटी बन गई।
1: ठीक है,
0: अब अगर वो परिपाटी नहीं जाने है कोई वो भी कान में लपेटे
1: वो तो लपेटे।
0: अभी ने पूछा भाई क्यों लपेटे का, हमारा पुरखा लपेटता आया मैं भी लपेटा, जो गाँव करियो जो गंवार करी रही है आ कथा में प्रचलित।
1: चलो ठीक है, चलो हूँ आपने पूछू। चलो कि आप बतायो कि जनऊ संस्कार वे शादी थी पहला, ठीक है तो हमें शादी करवा जाए तो आपने कोई दहेज वेज भी पता है?
0: देखो साहब कि जट संख्या ज्यादा है
1: जी।
0: और संपन्न लोग है वे कहे तो कि अगर जमी हो या बापरी मिलके तो बंटवारो वे
1: जी।
0: तो भाई तो सभी बांटन ले लेला
1: जी।
0: बेटी रो व्याह कर दियो, बेटी पराए घर जा रही है तो इच्छा सकते अपने घर में बेटी ने कुछ दिन विदा करनी सही जा
1: जी।
0: तो अमुक जेवर बनवावे कुछ बर्तन वे कुछ समाज में लोग खुश वे ना आवे वे भी बर्तन देवे। एक प्रताप पुरानी एड़ी है कि थोड़ो थोड़ो कहीं भी दे तो भी विनी काफी मदद वे जावे।
1: आपरो क्या रहा मतलब दहेज देवारा मतलब है घर बकरी रो हार्मोन देवनो घर में बच्ची ने देनो मतलब वरना घर मोड़े के वा
0: आपरो जा।
1: ठीक है,
0: आपरे घर
1: पर मु आपने मैं पूछू कि चलो दहेज जो है आपरे समाज में वे छोटो मोटो दिए पर आदमी तो आज री दौड़ में तो मतलब फैशन में आले रियो होड़ा होड़ी माले रियो है। ठीक है, अन्य अलावा चलो आपरे दहेज रो है मतलब ज्यादा नहीं है थोड़ो बहुत है आपके और आओ घर बकरी होमन दिए है खुशी थी। ठीक है, बात सही है तो हमें आपरे जो शादी करो तो पाठ वाट करो तो कतरा दिन रा करो?
0: हमें यूँ ऐसा कि पहला तो 9 दिन रो पाठ भी तो
1: जी।
0: मोटो परिवार भी तो 11 दिन ही पाठ हालतो तो इन्हें बाद पाठ रे बैठा बाद बांधोड़ा चालू हो जावे
1: जी, जी।
0: तो कुटुंब वाड़ा एक टाइम खानो दे ढोल नगाड़ा हाथे भी ने करे नाच गाना वे और डोली ने या नाई ने आपरो व्यवहार देवान चंद पैसा उवारिया जाए जो विने भी विनी जीविका हाले वो एक प्रकार रो एड़ो नियम सत बनायोड़ो तो पुरखा रे टाइम ताकि हैंगरो पालन पोषण हालतो रहे एक ब्याह में। लेकिन आजकल प्रथा बिल्कुल नवीनतम बीती जा रही है
1: जी।
0: फिल्मी धुना माते बैंड बुलाना
1: जी।
0: एक दिन बैंड वाड़ा आए खाना 10,000, 15,000, 20,000 ले जाई और आओ करके एक खोटी फैशन है। जितो सुंदर ढोलू ब्याह वे है और जितो नाच गाना ढोल माते मारे देसी वेसी लुगाया उठावे वो बैंड वाड़ा नहीं हुए। बैंड में तो एक ही चीज है साहब कि इन सुरारो करे साहब ज्यादातर लोग पान और बेतुका ढंगो नाचनो बेतुका ढंगो उछलनो इनो नाम है आजकल लो डिस्को और मॉडर्न फैशन।
1: ठीक है, चलो तो आप रखो भाई के पार्ट तो आप रहे पर थोड़ा पहला 9 दिन रह गया 5 दिन रह गया और कम रह गया। ठीक है, तो ठीक है चलो शादी हुई आप रहे तो समाज में देखो घोड़ा माते बहन जैन कोई समाज में घोड़ी माते नहीं बैठता आपरे समाज रे माई घोड़ा ऊपर बहन शादी करवा जाए
0: माना समाज में घोड़ी माते बैठने जानो एक श्रेष्ठ मानियो जाए।
1: अच्छा,
0: क्यों कि युद्ध और व्याह
1: हाँ।
0: एक समान विया करतो तो पहला बराती जाता न
1: हाँ।
0: तो पैदल जाती बराता
1: हाँ।
0: जरा मारा पुरखा बता रिया है मानो इतिहास बता रियो है अगली पार्टी में कोई ऐसी बात हो जाती
1: हाँ।
0: मन मुटाव हो जाता तो कई कत्ल हो जाता था। तो लारे लुगाया जब विदा करे तो गीत गाते बरातिया ने कह हेटा रीजो और राजू को सिर्फ पन्ना लेने आईजो एड़ा ने के बिंदड़ी गमान आवो के मारो बिंदी गमान आ जाओ एड़ा ने के खावा पीवा में पड़िया मत रीजो
2: जी जी।
0: वो एक प्रकार रो आज भी पड़ता है जबकि कोई कटे पड़िया नहीं रहता कोई करम ठोक आपरी आदत लाचार है दूल्हा जो दारूडा पिए कोई घोड़ाओं पड़े न चाहे वटे जा नाच वाट कूदवा जाए तो बिना ने आपरी करना सजा तो यू नहीं मिल जाए
1: तो आप कहना हो घोड़ी ऊपर बैठने जानो एक शान केवी थी भाई एक युद्ध में जानो या शादी करवा जानो एक ही बात है। पुराने टाइम में मतलब बारातों हमेशा पैदल जाती ठीक है अच्छा रिवाज है आपरा।
3: हाँ तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान किशोरीलाल जी आचार्य है अपने समाज रीति रिवाज बता रहा है पर हमें आपको एक छोटो सो ब्रेक लेना चाहूँ अवंती पहला मैं आपने बताना चाहूँ कि उन्होंने समाज में रिवाज बिल्कुल अच्छा है साफ सुथरा है और एक बात बताइए कि पहला ब्याह करवा जाता जो घोड़ा माता बहन जाता उन्होंने भी एक अलग महत्व तो घोड़ा ऊपर बैठने शादी करवा जावनो मतलब एक शान कहवाती और वन शान ने बरकरार रखने वास्ते मने घोड़ा ऊपर बहन शादी करवा जाता। कई समाज में ऐसा रिवाज भी है आज भी वे घोड़ा ऊपर बैठने तोरण नहीं मारे कई समाज ऐसा है मने देखवाने मलिया है पर अनोर कहना है कि घोड़ा ऊपर बैठने जानो एक शान कहवी जे और कई समाज में आज भी घोड़ा ऊपर बैठन तोरण मारे है। तो श्रोता बंधुओं हमें मु एक छोटो सो ब्रेक लेना चाहूँ पर ब्रेक थी पहला एक आपती अपील है कि आपरे माती भी कोई अपने समाज रीति रिवाज अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो रेडियो मधुबन रे मार्फत जरूर शेयर करो। रेडियो रे नंबर है 94 14 15 14 15। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कराता रहो।

0: अगर आप आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: ब्रेक के बाद में अपना समाज कार्यक्रम रेमायने रेडियो मधुबन ने सुनावला सगला श्रोताओं का स्वागत है। ना अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य है जो नया खेड़ा सांतपुर में रह रहा है और अपना अपना समाज रा रीति रिवाज बता रहा है, तो अनोर भी स्वागत है। तो हमें आपने पूछूं, चलो के शादी हुई ठीक है, तो हमें आपने समाज रे मुँह देखो कि बालिका शिक्षा ने कतरो महत्व है।
2: पहले जो मानो समाज दर्द दो जटे जटे है
1: जी,
2: जो नागौर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बिलाड़ा है, पिपाड़ है, इन क्षेत्र बच्चों ने ठेठ पढ़वारो बराबर अधिकार। लेकिन 8वीं 10वीं तक लान बच्चों ने, क्योंकि भारत सरकार ने भी अड़ी नीति थी कि विद्यालय कम था
1: जी।
2: अमुक अमुक जो कई राजा महाराजा विद्यालय लड़कियां वास्ते खोलिया या कोई साधन अड़ा हुआ तो बच्चिया पड़ी। और मैं कहूँ कि वे बहुत बड़ा धन्यवाद रा पात्र है जिन्होंने शिक्षा दान देवा वास्ते जिन्होंने स्कूल बनाई और हैंग प्रकार सहायता दी और बच्चियों ने आगे बढ़ाई। जिन घर में नारी पढ़ी लिखे वेला, जिन घर में नारी लक्ष्मी रा अवतार वेला
1: जी,
2: वो घर हमेशा उन्नति करेला। जिन घर में नारी पढ़ी उड़ी नहीं वेला, बच्ची पढ़ी उड़ी नहीं वेला, तो आज रा इन संघर्ष में जीवन में वह जीव नहीं सकेला। क्योंकि हर आदमी देखे कि मारे पढ़ी लिखी आवे, इन हिसाब में पढ़वारो मतलब खाली किताबी ज्ञान ही नहीं, तो संस्कारी ज्ञान और अपना परायरी समझ जिनमें आवे है वही पढ़ियो रखे भी जे, वरना तो जीवन पावा वास्ते PhD ले लो और कोई जमाना में हायर सेकेंडरी सेकेंडरी पास करने में पसीनो आतो तो
1: जी।
2: मने मारा जीवन याद है कि मैं सांतपुर स्कूल 8वीं पास कर ली, लेकिन दरबार स्कूल और रेलवे स्कूल में मने एडमिशन नहीं मिली हो। तो मैं मारा बड़ा बाप अजमेर में सर्विस करता बिना ने एक पत्र लिखी हो तो पोस्ट कार्ड जो इन में लिखी हो कि अगर भाई तो मर गयो बाहरी संतान ने पढ़ानो चाहे तो मने अजमेर बुला ले
1: जी।
2: तो मैं कहता हूँ भाग्य तो और मारा बड़ा बाप रे आशीष माने कि मैंने अजमेर पढ़ायो और मैं हायर सेकेंडरी अजमेर करी और हायर सेकेंडरी करने आने भी माने जैक नहीं वे कोई माने ला रहे छोकी नौकरियां माने नहीं मिली। मैं व्यवस्थापक की नौकरी करी सिरोही सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा मैं लगवाया गया। इन्हें बाद 1971 में रेलवे में गयो और 2007 में मैं रिटायर्ड हो गयो। आज वो पढ़वा ही वजह हूँ और वो पढ़ाई नहीं हुई थी तो मैं आगे किकन बढ़ता।
1: तो बच्चियों ने बढ़ावनी जरूरी आप समाज में आबरोड में बच्चियों ने बढ़ावे हमें।
2: हाँ सब माँ उस करने बच्ची ने पहले पढ़ावा, अगर बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे तो आज अपना घर तो पढ़ लिया लेकिन काले उठने था जिन घर में बच्ची ने भेजे रही हो इनमें इन बच्ची रहा तो कुछ भी बेहक है
1: जी।
2: यानी बच्ची पढ़ी लिखी तो वेणी बहुत ही जरूरी है और बच्ची ने पढ़ावा। हाँ
1: चलो तो आप कहना कि बच्चियों ने आप मतलब कोशिश करो कि पूरी बच्चियों ने शिक्षा दो और शिक्षा देवार कारण हो जाएगा वह अपना भावी जीवन ने सुधारे के और शिक्षा रो महत्व आप समाज में है बच्चियों ने शिक्षा देवार। श्रोता बंधुओं हमें अपने आचार्य समाज रा बंधु है किशोरी लाल जी जो आज अपने अनोर समाज रा रीति रिवाज बता रहा है, पर हमें समय दिखता खातर आपो अगला हफ्ते फिर अनोर समाज रा कुछ रीति रिवाज बचिया है और वन्ने बारे में बात कर रही हूँ। तो हमें अपने मेहमान ने आपो विदाई दो हूँ और मुख्य सी जिनकर अपनी वाणी ने विराम दे हूँ। आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन, उन तारो मुस्कुराता रहो।

0: जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: नमस्कार, मधुमन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में व राजस्थान में विवाह जन्मदिन लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमा कर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो मारे देश। राग मांड साजन आहे हे सखी मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं। साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें केसरिया बालम पधारो मारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो मारे देश।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते दोस्तों। भाई कुछ भी कहो, स्कूल जाने का अपना ही एक मजा होता है। दोस्तों से मिलना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, कभी कभी शरारत करना। सही कहा ना मैंने? तो चलो हम भी चलते हैं मीना के स्कूल, जहां उसके स्पोर्ट्स के टीचर क्लास से कुछ कह रहे हैं।
1: बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो, 2 हफ्ते बाद हमारे स्कूल में खेल कूद की प्रतियोगिता होने वाली है, जानते हो ना?
2: जी मास्टर जी।
1: तो अब सरपंच जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं ये फैसला करूं कि तुम में से कौन कौन बच्चा उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। इसलिए अगले हफ्ते मैं तुम्हारा एक इम्तिहान लूंगा।
3: कैसा इम्तिहान मास्टर जी?
1: मीना, उस इम्तिहान के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है खेल से जुड़े सवाल जवाब का मुकाबला, और दूसरा हिस्सा है अपनी पसंद का खेल खेल के दिखाना। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों को कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं। मीना, सबसे पहले तुम बताओ।
3: मास्टर जी, मुझे खो खो खेलना बहुत अच्छा लगता है।
1: और तुम्हें दीपू?
4: मुझे साइकिल रेस बहुत अच्छी लगती है।
1: और सुमित, तुम्हें?
5: मास्टर जी, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है।
1: क्रिकेट? क्रिकेट तो लड़के खेलते हैं। तुम एक काम करो सुमी, तुम मीना की तरह खो खो खेलना।
5: मास्टर जी, आजकल तो लड़कियां सभी खेल खेलती हैं, और हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम तो वर्ल्ड कप में भी भाग लेती है।
1: ये वर्ल्ड कप नहीं, स्कूल है। कृष्णा, तुम बताओ कि तुम्हें माफ करना कृष्णा, तुम्हारे लिए खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना मुश्किल होगा।
6: लेकिन मास्टर जी, मैं...
1: बच्चों, बाकी की बातें आधी छुट्टी के बाद।
0: छोटी उम्र में पोलियो होने के कारण कृष्णा हमेशा बैसाखियों के सहारे चलता है। शायद इसी वजह से मास्टर जी ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। कृष्णा उदास हो गया था, और वो आधी छुट्टी के समय भी क्लास में अकेला बैठा हुआ था।
3: क्या बात है कृष्णा, तुम कुछ परेशान से लग?
6: मीना, मैं भी खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ, लेकिन मास्टर जी ने तो साफ मना कर दिया कि मैं...
3: कृष्णा, तुम ऐसे उदास मत हो। क्या पता मास्टर जी जल्दी में हो और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा हो। मुझे लगता है तुम्हें उनसे एक बार फिर से बात करनी चाहिए।
7: बात करनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए।
0: मीना की बात मान के कृष्णा मास्टर जी के पास पहुँचा।
6: मास्टर जी, मैं भी खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ।
1: देखो कृष्णा, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए।
6: लेकिन मास्टर जी, मैं...
1: लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम खुद ही बताओ, तुम खेल पाओगे क्या, बोलो।
0: कृष्णा उदास होके वापस लौट गया, और फिर रात को जब मीना ने अपने माँ बाबा को ये बात बताई तो...
8: मास्टर जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
9: तुम ठीक कह रही हो मीना की माँ, हर टीचर का यही फर्ज है कि वो अपने सभी विद्यार्थियों को एक नजर से देखे, किसी में कोई भेदभाव ना करे।
0: और अगली सुबह जब मीना कृष्णा के घर पहुंची,
3: कृष्णा, कृष्णा, जल्दी आओ, स्कूल को देर हो रही है, कृष्णा। ये क्या कृष्णा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए?
6: मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मीना।
3: क्या?
6: हाँ मीना, शायद वहाँ मेरे लिए कोई जगह है ही नहीं। मैं आज ही अपने माता पिता से कहूंगा कि वो मेरा दाखिला किसी ऐसे स्कूल में करा दें जहाँ सब मेरी तरह ही हो, विकलांग।
3: ऐसा मत कहो कृष्णा, तुम जानते हो कि स्कूल में सब तुम्हें पसंद करते हैं।
6: पसंद करते तो मास्टर जी मुझसे इस तरह बात क्यों करते?
3: कृष्णा, भूल गए बहन जी क्या कहती है? बहन जी कहती है कि स्कूल में हर बच्चे के समान अधिकार होते हैं।
6: मुझे याद है मीना, लेकिन...
3: तुम उदास मत हो कृष्णा, मुझे लगता है तुम्हें बहन जी से इस बारे में बात करनी चाहिए।
0: मीना के समझाने पे कृष्णा स्कूल जाने को तैयार हो गया। स्कूल जाके मीना और कृष्णा ने बहन जी को सारी बात बताई। बहन जी मीना और कृष्णा की बात सुन के तुरंत मास्टर जी के पास गईं।
1: अरे बहन जी, आइए आइए।
10: मास्टर जी, आपको मालूम ही होगा कि स्कूल में हर बच्चे के अधिकार समान होते हैं।
1: हाँ, पर आप कहना क्या चाहती हैं?
10: मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी टीचर को ये हक नहीं कि वो अपने विद्यार्थियों में किसी भी तरह का भेदभाव करे, चाहे वो जाति या धर्म के आधार पे हो या फिर शारीरिक क्षमता के आधार पे।
1: क्या आप कृष्णा की बात कर रही हैं?
10: जी, मैं कृष्णा की ही बात कर रही हूँ। आपको इसे इस तरह।
1: लेकिन बहन जी वो तो
10: कृष्णा हमारे स्कूल का विद्यार्थी है मास्टर जी, उसके भी वही अधिकार हैं जो बाकी बच्चों के हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कृष्णा को भी बराबरी का मौका दें और अगले हफ्ते होने वाले सवाल जवाब के मुकाबले में भाग लेने दें।
1: ठीक है।
0: और अगले हफ्ते स्कूल में सवाल जवाब का मुकाबला हुआ और वो मुकाबला जीता कृष्णा ने। सरपंच जी उस मुकाबले के मुख्य अतिथि थे। वो कृष्णा की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और बोले,
2: कृष्णा तुम तो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान हो बेटे।
6: धन्यवाद सरपंच जी।
2: लेकिन एक बात बताओ, मास्टर जी ने पिछले हफ्ते मुझे एक लिस्ट दी थी जिसमें उन बच्चों के नाम थे जिन्होंने इस सवाल जवाब के मुकाबले में हिस्सा लिया, लेकिन उस लिस्ट में तुम्हारा नाम तो था ही नहीं। क्या मास्टर जी ने तुम्हारा चयन बाद में किया था?
6: वो
2: बोलो बेटा।
3: मैं बताती हूँ सरपंच जी, कृष्णा तो पहले दिन से इस मुकाबले में भाग लेना चाहता था, लेकिन
2: लेकिन क्या मीना बेटी?
3: मास्टर जी ने कृष्णा को मना कर दिया था।
2: मना कर दिया था, लेकिन क्यों?
3: मास्टर जी को लगा कि कृष्णा ठीक से चल नहीं पाता, इसलिए इसे खेलकूद की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।
2: मास्टर जी।
1: जी सरपंच जी।
2: जरा यहाँ आइए तो।
1: जी कहिए सरपंच जी।
2: मास्टर जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने कृष्णा को आज के मुकाबले में भाग लेने से रोका था?
7: रोका था, सबके सामने टोका था।
3: मिट्टू चुप।
2: जवाब दीजिए मास्टर जी।
1: जी सरपंच जी।
2: ये तो सही नहीं है मास्टर जी। अरे आप एक टीचर हैं और अच्छा टीचर वो होता है जो अपने सभी विद्यार्थियों से एक समान व्यवहार करे, उनमें जात पात धर्म बिरादरी या ऊंच नीच के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, उन सबको आगे बढ़ने का एक बराबर मौका दे। कृष्णा तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सा खेल पसंद है?
6: जी क्रिकेट। सरपंच जी मैं मास्टर जी को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि भले मैं ठीक से चल नहीं सकता, लेकिन ऐसे कई खेल हैं जिन्हें मैं खेल सकता हूँ, जैसे कि कैरम और शतरंज। मास्टर जी माना मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन क्रिकेट की कमेंट्री तो कर ही सकता हूँ।
1: अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे माफ कर दो कृष्णा।
6: ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी?
1: मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं हमेशा सोचता था कि शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे खेल कूद की गतिविधियों में भाग ले ही नहीं सकते, आज समझ आया कि ऐसा नहीं है। हर बच्चे में कोई न कोई हुनर होता है, जरूरत सिर्फ मौका और प्रोत्साहन देने की है। मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अब कभी भी अपने किसी विद्यार्थी में कोई भेदभाव नहीं करूँगा।
2: ये हुई ना बात।
7: ये हुई ना बात। चलो मिलाओ हाथ।
0: भाई वाह, वैसे तो टीचर विद्यार्थियों को सिखा देते हैं, लेकिन आज मीना और कृष्णा से मास्टर जी को सीख मिली कि स्कूल में आने वाले हर बच्चे के होते हैं समान अधिकार। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता।
3: जात पात का ऊंच नीच का यहाँ न कोई स्थान,
7: स्कूल में हर बच्चा टीचर के लिए है एक समान।
0: भाई वाह, दो पंक्तियों में कितनी गहरी बात बता दी मीना और मिट्ठू ने। दोस्तों पता है ना अब क्या सुनना है? हाँ, अब सुनना है एक गुदगुदाता मुस्कुराता हुआ गाना।

0: शिक्षा मेरा अधिकार है।
1: गाना सुन के तो सचमुच मजा आ गया। और अब क्या कहा, अब खेलना है? ठीक है, तो फिर चलो खेलने मीना की क्लास में।
2: बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है?
3: जी बहन जी।
2: तो आज का शब्द है कमल। चलो बच्चों, अब कमल के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
4: बहन जी, कमल का पहला अक्षर है क और क से होता है काठ।
2: शाबाश दीपू, अब काठ से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
5: काठ का उल्लू।
2: हाँ कृष्णा, और इस मुहावरे का मतलब?
5: बहन जी, इस मुहावरे का मतलब होता है एकदम मूर्ख।
2: बिल्कुल ठीक कृष्णा। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
6: क के बाद कमल में आता है म और म से होता है मुंह।
2: शाबाश रानो, और मुंह से जुड़ा मुहावरा?
6: मुंह की खाना, मतलब करारी हार होना।
2: बिल्कुल सही। अब अगला शब्द कौन बताएगा?
7: मैं।
2: हाँ रीता बताओ।
7: क और म के बाद कमल में आता है ल और ल से होता है लोहा।
2: शाबाश रीता, और लोहे से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
8: मैं बताऊंगी बहन जी।
2: हाँ हाँ मीना बताओ।
8: लोहे के चने चबाना, और इसका मतलब होता है बहुत कठिन काम करना।
2: शाबाश मीना। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना?
3: बहुत मजा आया बहन जी।
1: मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
8: दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

गायक कलाकार हाकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान खरताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये खरताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने खरताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है, हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान के शिमला के अंदर ये बच्चों को संगीत की खरताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों खरताल ढोलक कमायचा सारंगी मोरचंग मुरली अलगोजा सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफ़ी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निमूड़ा। ये निमूड़ा हमारे मांगनिया लोगों का गाया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है हाकम खान।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: डिटेक्टिव गोपीचंद, पात्र परिचय, दृष्टि यश, आदित्य और आकाश। रीटा के पास इंस्पेक्टर गोडबले का फोन आया था। रीटा ने गोपीचंद को बताया कि फिल्म स्टार सुरेश कुमार का कत्ल हो गया है और गोडबले ने फौरन उन्हें मुंबई के फिल्म स्टूडियो बुलाया है।
3: सर, गाड़ी तैयार है, आप फौरन तैयार हो जाइए। वहाँ गोडबले हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैंने सारा सामान रख लिया है।
2: वे तुरंत फिल्म स्टूडियो के सेट पर पहुंच जाते हैं, जहां सुरेश का मृत शरीर लहूलुहान पड़ा था। फिर वे फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलते हैं।
4: हमें पूरा भरोसा था कि सुरेश और रमन ये फिल्म बनाने के बाद बहुत शानदार कमाई करते, लेकिन लंच के बाद जब सुरेश का शॉट रेडी हुआ तो मेकअप रूम में उसे मृत पाया गया।
2: गोपीचंद और रीटा लाश के आसपास का पूरा मुआयना करते हैं और उन्हें वहां कुछ जरूरी चीजें मिलती हैं। वे उन्हें तफ्तीश के लिए अपने पास रख लेते हैं।
5: प्रोड्यूसर साहब, मैं आपकी इस फिल्म के तैयार शॉट्स देखना चाहता हूं। आप प्रोजेक्टर पर मुझे बनी हुई फिल्म दिखाने का इंतजाम कर दीजिए।
2: वे अचानक फिल्म देखते हुए उछल पड़ते हैं और एक शॉट रुकवाते हैं। उस शॉट को वह ध्यान से रिवर्स कर करके देखते हैं। उन्हें कुछ दिखाई देता है। रीटा और गोपीचंद फिर स्क्रिप्ट राइटर से कहानी लेकर ध्यान से पूरी स्क्रिप्ट को देखते हैं। गोपीचंद को कुछ मिल जाता है।
3: गोपी जी और मैंने अपनी पूरी तहकीकात कर ली है। प्रोड्यूसर साहब, वे आपकी पूरी फिल्म यूनिट और सभी कलाकारों से मिलना चाहते हैं।
5: मुझे सुरेश के कातिल के बारे में पता चल गया है और उसका नाम रमन है। वह उस फिल्म में सुरेश का को स्टार था।
6: पर रमन तो बहुत अच्छा कलाकार था, वो ऐसा क्यों करने लगा? वो तो सुरेश के साथ बहुत अच्छा किरदार निभा रहा था।
5: मेकअप रूम में मुझे ये लाइटर भी मिला और यही लाइटर मैंने फिल्म के एक सीन में भी देखा है, जिससे रमन कुछ पेपर जला रहा था। मतलब मेकअप रूम में सुरेश के कत्ल के बाद रमन इस लाइटर को धोखे से वही छोड़ गया था। हमें जल्दी से रमन के घर पर पहुँचना होगा, कहीं वह सबूत ना मिटा दे।
2: फिर रमन के घर की तलाशी ली जाती है और उन्हें वहां धारदार हथियार भी उसके बगीचे में एक कोने से मिल जाता है, जिससे उसने सुरेश का कत्ल किया था। रमन गहरी पूछताछ के बाद सब कुछ कबूल कर लेता है।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: बच्चों सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग बात करेंगे विशेष बाल मन पर, यानी बाल संसार पर। जी हाँ, बच्चों का एक यूनिक संसार होता है और हम सभी भी बच्चों के संसार को देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, और कभी हम भी इसी तरह थे ये हमें याद करके बेहद सुकून महसूस होता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बाल संसार, इस कार्यक्रम के हमारे विशेष मेहमान जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की है, अजय शुक्ला जी, एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद हमारे साथ हैं और काफ़ी किताबें भी लिखे हैं और लोगों को जो है अपने मन की संवेदनाओं को समझने में मदद करते हैं। तो आज उनका मन हुआ कि हम बाल मन के बारे में समझते हैं, ताकि शिक्षाविद होने के नाते बच्चों के साथ जुड़कर, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूली एजुकेशन उनको मिल रहा है, चाहे पहली क्लास में हो, दूसरी क्लास में हो, या इवन आजकल तो किंडर केजी है ना, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो बच्चों को जो है शिक्षित करने के लिए, जैसे ही पैदा होता है बच्चा सीखना शुरू कर देता है, हम सिखाना शुरू कर देते हैं और उसके हर एक बदलाव को हम एंजॉय करते हैं और खुशी फील करते हैं। तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए अजय जी से मैं स्वागत करना चाहूँगा। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय भाई जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल कुशल मंगल, आनंद पूर्वक हूँ।
0: बाल संसार इस प्रोग्राम में आप बच्चों के मन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसा क्यों आपने सोचा, बाल मनोविज्ञान के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? बड़ों का मनोविज्ञान भी तो सोचना पड़ेगा आपको।
1: बहुत अच्छी विषय वस्तु है, और चूंकि आपसे कई बार विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती है और मानवीय संवेदनाओं को लेके आपकी मनस्थिति काफ़ी संजीदगी भरी होती है, संचेतना से युक्त होती है, चिंतनशील होती है, तो ये सब बातें भी कई बार एक अच्छे वातावरण को जन्म देती हैं। और जैसा भी आपने कहा भी कि क्यों हम बाल मन की ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम बड़ों के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए बड़ों के साथ में एक मैच्योरिटी वाला पॉइंट होता है भाई जी, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े तो अपने समाधान के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके समाधान की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा उनको संकोच होता है, और जो इनिशिएटिव पावर होती है वो उतनी नहीं होने के कारण वो कई बार अपने प्रश्नों के साथ में मन महसूस के रह जाते हैं। और मनोविज्ञान ये कहता है कि केवल देखने में या ऑब्जर्वेशन करने में या परीक्षण करने में हमको लगता है कि हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, जबकि एक सामान्य मनुष्य को हम अगर संपूर्ण उसकी परिकल्पना को देखने का प्रयास करें तो एक सामान्य इंसान के अंदर बाल मन हमेशा मौजूद रहता है। वो मैच्योरिटी के लेवल पर या ईगो स्टेट के लेवल पर हम देखें तो चाइल्ड ईगो हो सकता है, एडल्ट ईगो हो सकता है, तो ये चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो दोनों ही मिलके जीवन को गतिशील करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे में हम केवल बाल मन की बात नहीं कर रहे, बल्कि बाल मन के माध्यम से बड़ों के अंदर भी खुशियों को समेटने का एक माध्यम हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि बच्चे अगर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं या सुबह सुबह बड़े अगर घूमने जा रहे हैं और उस समय यूनिफॉर्म में बच्चों को जब देखते हैं वो और उनकी खुशी को देखते हैं, स्कूल चलने के उनके जो एक आनंद के परिवेश को देखते हैं, खुश होते हैं कि काश ये हमारा जीवन होता और हमारा था भी पहले जीवन जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस पर हम बात कर रहे हैं, बाल संसार के बारे में, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे उतना हम अपने मनोविज्ञान को या अपने मन को भी हम ठीक कर सकते हैं, या अपने मन को भी बेहद सुंदर और सुखद अनुभूति करा सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बच्चों का मन जो है, ऐसे कहा जाता है कि भाई बच्चे तो भगवान के रूप है, मासूमियत है उनमें, कोमलता है उनमें, शीतलता है, लेकिन आजकल देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे उधम भी हो जाते हैं, तो ये इसको कैसे हम लोग समझें?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा, और ये बिल्कुल सही है कि पहले ज़माने में जब आप लोगों के स्वरूप को हम देखते थे या समझते थे तो बड़े बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से आकर्षित कर लेते थे, और बच्चों को वो चेष्टा करते थे कि हम गोद में ले लें, उनको स्नेह प्यार दें, और बच्चे बड़े सरल तरीके से उनके पास में आ भी जाते थे। अभी जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उसमें देखने में आ रहा है कि वो बालमन तो कहीं गुम हो गया है, कुछ मैच्योरिटी जल्दी डेवलप हो गई है, और वो मैच्योरिटी डेवलपमेंट होने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूँ कि एक प्लेग्राउंड में मैं मूव कर रहा हूँ और एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ जाड़े

0: तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दो गोल इस बच्चे के द्वारा जब ये बच्चा करने आता है तो हो जाने दें आप। तो कहते हैं कि हो जाने दें, इसका मतलब हमने बोला उस मन को वो नम होना चाहता है। अच्छा, लेकिन अच्छा, हम उस मन को मन पर ही रोक देंगे और उसको बार बार ये बताने की चेष्टा करेंगे कि आपको बहुत मेहनत लगेगी, तो वो हार की फीलिंग करेगा। तो थोड़ा सा उसको जीत का स्वाद आप कराइए और आप देखेंगे कि ये बच्चा फिर अभी तो जाड़े में आ रहा है, आपके साथ 12 महीने ये जुड़ने का प्रयास करेगा। तो इस मन के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है। इसको एकदम डिनाई मत करिए, इसको एकदम दुख मत प्रदान करिए। दुख प्रदान करना आप चाहते नहीं है, अनजाने में हो रहा है आपसे, आपको लगता है कि बच्चा गोल कर रहा है और मैं तो इसको रोक लूंगा, लेकिन वो बच्चा तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि उस गोल को रोक पाए आप जब उसको गोल करने जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके और बच्चे के बीच में जो संवाद है, जो स्नेह है, प्यार है, उसमें कठोरता व्याप्त नहीं हो। जी,
1: तो बच्चों के साथ जब भी जुड़े तो कोमलता से, सरलता हाँ से जुड़े, ताकि बच्चा जो है अपने आप को अच्छा महसूस करे और वो आगे बढ़ने का जो खुशी है उसको मिले और उस खुशी से वो और आगे बढ़ सकेगा और उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपने ये भाव बताया और मुझे लगता है कि इस तरह के भावनाओं को अगर हम लोग समझे तो जीवन का जो गहरा असर है वो हम लोग एक संवेदनाओं के साथ जुड़ने के लिए हमें कोमलता की ज़रूरत है, मासूमियत की ज़रूरत है और उस अबोधपन में कुछ सीखने सिखाने का जो भाव है वो शायद आपको बहुत जल्दी जो है महसूस होगा और आप उसे डांट डपाट के अगर सिखाना शुरू करेंगे, हो सकता है कि बच्चा कर भी ले लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो सीखने की जो मासूमियत था जी, जो जिज्ञासा थी, वो शायद मर ना जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, बच्चे मन के सच्चे हैं। तो आइए इस गीत के साथ ही मुझे लगता है कि आप बाल संसार के आगे की कहानी को सुनने के लिए आप बिल्कुल जिज्ञासा आपके अंदर बनी होगी, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, है ना। तो बच्चों के संसार को देखकर या उनकी भावनाओं को सोचकर हमें भी खुशी होती है और उनके साथ खेलना, उनके साथ बातें करना भी अच्छा लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बाल संसार इस कार्यक्रम में और अजय जी से फिर से बात करते हैं। अजय जी को आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। अजय जी, फिर से एक बार स्वागत है और बताइए कि किस तरह से बच्चों के साथ हम लोग का जो एक कनेक्टिविटी है वो बड़ा ही यूनिक है। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे बच्चों में लोग भगवान को देखते हैं या बच्चे मन के सच्चे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों के साथ जुड़ी गई है, तो ये इसकी भावनाएं क्या हैं, ये कैसे संभव है और उन चीज़ों को क्यों भगवान के साथ जोड़ा गया?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा और निश्चित तौर पर जब ये गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन बचपन के सानिध्य में हो गया है और वही फीलिंग्स, वही भावनाओं के साथ में खेलना, अपने भावों को सहज करना, सरल करना आसान हो जाता है, क्योंकि मन और या अंतर मन से जब ये बात निकलती है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, तो ये ईश्वर के साथ में जुड़ने का जो भाव है गीत में वो इस बात का संकेत है कि बच्चों के पास में एक सहज मन और सच्चाई से युक्त हुआ क्रिएशन होता है। और वो जब निष्पक्षता के फ्रेमवर्क में होते हैं तो कई बार बड़े भी जब किसी उलझन में हो जाते हैं तो उस स्थिति में बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बेटा ये बताओ कि इस समस्या का हल क्या है, और बच्चे जब निष्पक्षता से उस बात के समाधान के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार हमारा मन खिल उठता है, हमें लगता है कि नहीं, जो आज बात निकल के है वो निष्पक्ष है। तो ये जो निष्पक्षता है, सच्चाई से युक्त जो बात है, यही बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और बड़ों को जब अपनी इथिकल वैल्यूज में स्वयं को कन्वर्ट करना होता है तो फिर उन्हें याद आता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, थी भी, है भी और भविष्य में भी रहेगी। तो वो जो ईमानदारी पूर्ण व्यवहार है या छल कपट रहित जो बिहेवियर है, निस्वार्थता की जो फीलिंग है, उनके प्रति जो अटैचमेंट क्रिएट करता है या हमें लगता है कि उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, या वो कि अगर प्ले मोड में हैं तो हम भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन मन से तो एक बार हम उनके साथ में जुड़ ही जाते हैं और ये फील करते हैं कि वाकई में जो बच्चों का संसार है, बच्चों का जीवन है, ये जो नव जीवन है और नव जो कलियां हमारे साथ में खिल रही हैं या बाल हृदय की गहराइयों में समाज की भावी और श्रेष्ठतम कल्पनाएँ छिपी हुई हैं, तो उन्हें भी हम पुनः जीने का प्रयास करते हैं या जीना चाहते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है तो उनको समझाने के लिए बच्चों को कई बार माता पिता जो है डांट डपाट करते हैं, नहीं सुनता है तो मार भी देते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें, आप क्या सोचते हैं?
1: बड़ी अच्छी पहल आप करते हैं किन्हीं प्रश्नों के माध्यम से, और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बात रखी कि कई बच्चे थोड़ा सा शरारती हैं, उधम करते हैं, मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो मैं बड़ों से ही कहता हूँ कि अगर इनको हम मैच्योरिटी की चिप इनके अंदर स्थापित कर देते हैं तो ये सदा अगर गंभीर रहते हैं तो जो आपके घर का वातावरण है, जो चहलकदमी है या थोड़ा सा हल्ला बोल होता है तो उसका जब अभाव होगा तो उसको ढूंढने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो जब ये बात मैं के सामने रखता हूं तो कहते हैं नहीं, हमारे बच्चों को आप चंचल ही रहने दो या थोड़ी इनकी शरारत हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा को लेके जब हम काम करेंगे तो उनके सारे विचारों को लेके, भावनाओं को लेके, और ये बताने का प्रयास होगा कि भाई इन इन एक्टिविटीज़ से आपके माता पिता को कष्ट होता है, और जब उनको रियलाइज हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे और स्कूल से आएंगे और जब वो हल्ला नहीं मचाएंगे, शोरगुल नहीं करेंगे तो आपको लगेगा हमारे बच्चे हमने जन्म दिया और वो सुख उठा नहीं पा रहे हैं। तो एक बार हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि जब बच्चे थे तो क्या बिल्कुल बचपन से लेकर और बड़े होने तक हम गंभीर ही रहे, या गंभीरता का आवरण अगर हम ओढ़ के चलते हैं तो उनका बचपन नहीं छिन जाएगा। तो बच्चों को बच्चों की शरारतों के साथ में रहने दें। हाँ, उसमें यह है कि उन्हें यह समझाने का प्रयास करें कि कैसे और किस समय वो किसी बिहेवियर को अंजाम देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर जरूर उनसे चर्चा हो सकती है और इट मे बी पॉसिबल कि वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन भी करें, लेकिन पूरा का पूरा बचपन हम छीन के और उन उनको एक गंभीर मनुष्य बनाने की अगर चेष्टा करते हैं तो ये हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उनको जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे खेल कूद से या हमारे उद्यम से माता पिता या पड़ोसी को बहुत पीड़ा हो रही है, तो वो अपने आप में गंभीर होने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस समय जो मनोभाव होंगे और उस मनोभाव का जो वेग होगा, उसको हम अगर रोकते हैं तो उनके अंदर जो एक आनंद की क्रिया उमड़ रही है, क्योंकि उस समय जब वो खेल कूद रहे हैं तो उस समय उनको नहीं लगता है कि समाज को कोई क्षति पहुंचा रहे हैं। हम ये है कि कुछ वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको एक ग्राउंड की उपलब्धता करा सकते हैं, उनके साथ खेलने जा सकते हैं, उनको कुछ गेम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको दिलवा सकते हैं, उनके मन को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन उनकी मन स्थिति में जो आनंद या भाव विभोर क्रिएट हो रहा है, उसको रोकने का या उसको दमन करने का प्रयास करते हैं, तो ये हो सकता है कि वो अपने बचपन से तो पलायन कर जाएं, वो माता पिता के प्रति भी अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अपने आप को उनसे अलग करने की चेष्टा भी कर सकते हैं। जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट रह जाता है। और कई बार ये चीज़ें जो है संभव नहीं हो पाता, तो क्या किया जाए, क्या टेक्निक है?
1: बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे पास में जो विकल्प हैं, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें एक बात निकल के आती है कि हमारे पास में संकल्प क्या क्या हैं और विकल्प क्या क्या हैं। लेकिन इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास में संकल्प भी श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए और विकल्प भी हमारे पास में श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए। तो अगर इन तीन मानदंडों को लेकर हम चलते हैं तो बाल मन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में न्याय किया जा रहा है, क्योंकि न्याय की अपेक्षा तो वो करता है, क्योंकि न्याय को अपने शब्दों में वो देखे तो निष्पक्षता की श्रेणी में रखता है और वो सोचता है कि हमारे माता पिता हमारे प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो फिर वो तय करता है कि कोई बात नहीं, हम इन एक्टिविटीज़ को करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे। अर्थात वो धीरे धीरे उसका मन जो है वो बालमन है और वो बालमन डूज और डोंट डूज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में एक समानांतर रूप से मूल्यांकन भी करता है और एक विभाजन भी करता है। और धीरे धीरे जब वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो माता पिता को ये कहना पड़ता है कि बहुत कम समय में बेटा आपने इन सब चीज़ों को मैनेज कर लिया और अब आपकी एक्टिविटीज़ से हमको दुख नहीं होता है बल्कि सुख पहुंचता है। तो बच्चे ने कहा कि आपने हमको एक खुला आसमान दिया, हमें उड़ने के लिए आकाश दिया और हमारे माता पिता आप हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ही हमारे माता पिता होना चाहिए, क्योंकि आपने एक स्पेस दिया हमको अपनी बात रखने का, अपनी भावनाओं को साझा करने का, और अब हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके साथ में घुल मिल के और बड़े आनंदपूर्वक जीवन जी सकते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा संवेदनशील होकर हमें भी समझना पड़ेगा और कई बार जो है वेट एंड सी वाला काम कर जाता है, थोड़ा सा रुक के अगर आप बच्चों को अलग सा समझाते हैं तब भी हो सकता है कि बातें ठीक हो जाए। और कभी कभी बच्चा जो है एक्स्ट्रा केयर भी चाहता है, तो उसको एक्स्ट्रा केयर करके अगर आप उसको अकेले में इस बात का एहसास कराएंगे, जब उसका मन सुनने के काबिल हो, वो शांत हो, रिसीवर के रूप में आपके सामने है, तो मुझे लगता है कि यह ज़्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आखिरी में।
1: बहुत अच्छी बात है, ये जो भी बातचीत हो रही है निश्चित तौर पर बच्चों के लिए हितकारी है और बड़ों को भी उन्हें मैनेज करना या उनके साथ में संबंध दीर्घकालीन तक बनाए रखना बड़ा आसान होगा। और उसके लिए जैसा आपने कहा कि एक्स्ट्रा केयरिंग, जैसे बच्चों को जब पढ़ाई में कमजोरी होती है तो हम लोग एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं, तो ऐसे ही स्नेह और प्यार का संबल बढ़ाना होगा। और जो आपने एक शब्द कहा केयरिंग, तो केयरिंग के साथ में हमें अच्छी नर्चरिंग भी करना पड़ेगा, अच्छी पेरेंटिंग भी करना पड़ेगा। और अच्छी नर्चरिंग और पेरेंटिंग जब होगी तो नेचुरली हमारे और उनके बीच में एक लविंग सिचुएशन क्रिएट होगी, स्नेह और प्यार का स्तर हमारा बढ़ता जाएगा और यही हमारे और बच्चों के बीच में संवाद स्थापित करने में, या जिसे हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं, और वो भी क्रिएटिव एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस संवाद के माध्यम से बच्चों और बड़ों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और वो हमारे जीवन में बाधक नहीं बल्कि साधक होंगे और हमारी पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं वो सहभागी बन जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
0: अजय जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। बच्चों का इस जो मन है उस पर हमने बातें की और बच्चों का मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से। आगे और भी एपिसोड इस तरह के सीरीज में हम लोग सुनेंगे जहाँ पर बच्चों का पूरा संसार पूरा जगत को हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें और बच्चों की बातों के साथ साथ बच्चों के मनोविज्ञान को ठीक से समझना और उसको सुलझे और सुलझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अपने बच्चों के साथ बड़े मासूमियत के साथ प्रेम से और पूरे हृदय से आप जुड़े रहें। तो कहा जाता है कि भाई जो चीज़ें आप दिल से करते हैं और बच्चों की एक सेवा समझ के उनको अगर आप करते हैं तो आपको भी उसका जो है तनाव नहीं रहेगा। अगर आप करना ही है मजबूरी से करते हैं तो तनाव रहता है, तो वो तनाव रहित अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बच्चों की सेवा के लिए मुझे भगवान ने इस बच्चे को मेरे पास भेजा है। तो सीधी सीधी आपकी जो मनस्थिति बहुत ही बदल जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे बच्चों के साथ और बच्चे भी आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है उसका नाम है बच्चों की दुनिया। बच्चों की दुनिया बड़ी ही अनोखी होती है। उनके मन में क्या है, अगर हमें कुछ सवालों से कभी पता चलता है तो उनके कुछ रैंडम जवाबों से बहुत कुछ पता चलता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, 4 बच्चे मौजूद हैं एक्चुअली, लेकिन उनके बारे में आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं सिर्फ एक विषय से। कैसे, आज हमारे साथ चलिए इस दुनिया को खोजने के लिए। दोस्तों, वैसे तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप हमेशा बच्चों को सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ हूँ, यानी कि आरुषि, इसलिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बच्चों को भी मालूम नहीं है और उनके लिए भी सीक्रेट है और आप लोगों के लिए भी। चलिए पहले बच्चों से मिलते हैं। हेलो बच्चों।
3: हेलो दीदी,
2: कैसे हो आप लोग?
3: बहुत अच्छे।
2: अच्छा, और मुझे लगता है वीकेंड पे तो और अच्छे होते होंगे, छुट्टी जो है। छुट्टी ज्यादा अच्छी लगती है कि स्कूल वाले दिन?
3: मुझे
4: स्कूल वाले दिन,
5: मुझे छुट्टी, मुझे स्कूल।
2: क्या बात है, आप लोगों को स्कूल ज्यादा अच्छा लगता है? तो छुट्टी अच्छी नहीं लगती, कैंसिल कर दे सैटरडे संडे?
3: संडे
2: अच्छा लगता है।
3: कोई और बीच में छुट्टी आती है जैसे गांधी जयंती वगैरह वगैरह, मजा नहीं आता।
2: अच्छा, क्यों?
3: वो बोर हो जाता हूँ दीदी घर पे।
2: ओ, दोस्त नहीं मिलते ना?
3: दोस्त भी, और मजा आता है पढ़ने में।
2: हाँ, क्या बात है, अमन को भी मजा आता है?
5: हाँ, स्कूल में ज्यादा मजा आती है।
2: और शिवानी को?
6: मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता, इसीलिए छुट्टी में मजा आती है।
2: और तरुण को कैसा लगता है?
7: उनको तो स्कूल में अच्छा लगता है।
2: क्या बात है, क्यों अच्छा लगता है इतना स्कूल में?
7: स्कूल में फ्रेंड्स के साथ पागलपंती होती है,
2: बहुत सारी मस्ती होती है ना। ओके, तो बच्चों एक बार अपने बारे में बता दो, आपका नाम और आपका क्लास।
7: मेरा नाम है रोशन, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
3: और मेरा नाम है आयुष, मैं भी 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
8: मेरा नाम है अमन और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
9: मेरा नाम है शिवानी और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ।
2: तो मतलब हमारे साथ 6th क्लास से 10th क्लास तक बच्चे मौजूद हैं आज। क्या बात है। अच्छा बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना, वैसे तो हम कोई ऐसी बातें लेते हैं, कभी सपना तो कभी आप लोगों के सब्जेक्ट्स, है ना। लेकिन आज का टॉपिक पता है क्या है?
3: क्या?
2: आज का टॉपिक है ब्लू।
3: ब्लू
4: ब्लू
3: ब्लू, हाँ? ये कैसा टॉपिक हुआ?
2: यही तो बात है। अब आज इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी बताने नहीं वाली हूँ, लेकिन ब्लू के बारे में आप लोगों को जो भी लगता है वो आप लोगों को बोलना है।
5: ब्लू के बारे में,
3: ब्लू कलर जो है ना।

0: वो ब्लू लाइट कहीं पे जल रही होती है ना, तो वो मेरे आंखों को चुभती है।
1: ब्लू कलर की लाइट आपके आंखों को चुभती है, ऐसा क्यों?
2: जैसे कि
0: दीदी देखो, आप वो
2: है?
0: देखो उस लाइट को, वो ऐसे रिफ्लेक्ट, वो दिख रहे ना,
1: एक छोटी सी लाइट स्पीकर में से निकल के आ रही है,
0: लेकिन वो एकदम क्लियर नहीं दिख रही है। उसी की जगह रेड कलर लाइट होती है, वो एकदम क्लियर दिखती है।
1: ओके,
0: दूसरी बात ये है कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है,
1: और ब्लू कलर का लाइट आपको चुभती है, और ब्लू ही आपका फेवरेट कलर है।
0: ब्लू कलर की लाइट फेवरेट नहीं है, लेकिन ब्लू कलर फेवरेट है, जैसे ब्लू पेन, ब्लू कॉपी, जो भी, मतलब
1: ब्लू कॉपी,
0: मतलब जो भी है, जो भी चीज होती है वो ब्लू कलर में बहुत पसंद है।
1: अच्छा, और अमन?
2: ब्लू कलर वैसे मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लू हमारे आसपास के वातावरण में भी होता है, जैसे क्लाउड्स में होता है, आसमान में ब्लू कलर होता है, बस देखने में ब्लू कलर अच्छा लगता है। मेरी आंखों में ऐसा चुभता नहीं है कोई कलर।
1: ओके,
2: जैसे लाइट होती तो, हाँ लाइट होती तो चुभती है, अगर बहुत तेज होगी तो चुभेगी।
1: बहुत तेज तो फिर कोई भी कलर होगा तो चुभेगा।
0: हाँ, लेकिन ब्लू अलग ही है, मतलब उसके साइड साइड से कुछ निकलता है और आग होता है। बाकी बाकी बाकी लाइट से नहीं निकलता, देखो वो लाइट, व्हाइट लाइट कितनी क्लियर दिख रही है। ये बात है।
3: अच्छा,
0: एक डिसएडवांटेज है ब्लू का, और एक एडवांटेज है कि मेरा फेवरेट है।
1: फेवरेट है आपका। ओके, और रोशन का क्या कहना है इस बारे में?
3: हाँ, ब्लू कलर मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा फेवरेट तो रेड है।
1: अच्छा,
3: तब भी ब्लू कलर अच्छा लगता है।
1: ब्लू कलर अच्छा लगता है।
3: हाँ,
1: अगर हर चीज दुनिया में ब्लू हो जाए तो
2: अजीब लगेगा, अच्छा लगेगा,
3: अवतार फिल्म बन जाएगी।
1: तो वो तो अच्छी लगी थी सबको।
0: हाँ दीदी,
2: अवतार,
0: ब्लू इंसान।
1: हाँ, सोचो ब्लू आयुष,
0: ब्लू शंकर,
3: सब कृष्णा बन जाएंगे।
1: ओहो,
2: सब कृष्णा बन जाएंगे। लेकिन फिर लड़के ऊपर तो ब्लू कलर सूट नहीं करेगा ना।
1: क्यों
0: क्यों
2: नहीं करेगा? क्योंकि लड़के
4: तो एलियन लगेंगी ना।
1: तो लड़कियों पे ब्लू कलर क्यों नहीं सूट करेगा?
2: क्योंकि वो अजीब सी दिखेंगी।
1: अजीब सी दिखेंगी। और कौन से कलर में लड़कियां अच्छी दिखेंगी? अच्छा,
2: व्हाइट।
1: व्हाइट, ओके। मतलब ब्लू कलर लड़कियों के लिए नहीं होता, आपको ऐसा लगता है?
2: नहीं होता है, पर ज्यादातर जैसे लड़कों के लिए ब्लू कलर रखते हैं, पिंक कलर ज्यादातर लड़कियों के लिए होता है।
1: ओके, आप लोगों को भी ऐसा लगता है ब्लू लड़कों के लिए होता है और पिंक लड़कियों के लिए?
0: नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता।
3: मेरे को तो नहीं लगता।
1: नहीं लगता
0: लड़कियों को? दीदी पिंक इतना पसंद है, मतलब लूडो में चार कलर होते हैं, रेड, येलो और ब्लू और
2: ग्रीन,
0: ग्रीन, लेकिन लड़कियों को पिंक चाहिए होता है।
2: मुझे भी, मुझे पर्पल और पिंक दोनों चाहिए।
0: देखो अब इनके लिए स्पेशल लूडो बनवाए दीदी।
1: अच्छा, अब ये भी होता है क्या? लेकिन लूडो में पिंक कहाँ से?
0: वही तो दीदी, लड़कियाँ
2: होता है दीदी, मोबाइल में जो लूडो होती है ना, उसमें छह लोग, पांच लोग खेलते हैं, उसमें पिंक आता है।
3: तो वो पांच छह खेलते हैं ना, चार में नहीं आता।
2: हाँ, नहीं आता, इसलिए तो बुरी बात है।
0: पांच की लूडो होती है।
3: हाँ,
2: येलो नहीं होना चाहिए था, उसके आगे पिंक होता, या फिर रेड की जगह पिंक होता।
1: ओके, तो आपको लगता है कि अमन, अच्छा सभी लड़कियों को पिंक पसंद होता है या ब्लू पसंद नहीं होता?
2: ज्यादातर लड़कियों को पिंक पसंद होता है।
1: हाँ, शिवानी?
4: मेरी फ्रेंड को तो ब्लैक पसंद है।
1: ओ, और शिवानी को?
4: पता है जिनको ब्लैक पसंद होता है ना, उनकी बुद्धि ज्यादा अच्छी होती है।
1: अच्छा, ऐसा क्यों
0: होता है?
1: फैक्ट कहाँ से आया? किसने दिया ये फैक्ट? मतलब मुझे लगता किसी साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है आज तक।
0: नहीं, मैंने पढ़ा था कि जिसकी ब्लैक कलर की कार फेवरेट होती है ना, वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड होता है, ऐसा सुना था मैंने।
2: हो सकता है
0: कुछ
4: एकदम डार्क ब्लैक।
1: लेकिन बच्चों, वैसे ये आर्टिकल्स जो लोग लिखते हैं, लिखने वाले कोई हम में से ही होते हैं, तो भले वो कुछ सोच के लिखते होंगे, लेकिन ये कोई साइंटिफिक, जब तक कोई चीज साइंटिफिकली प्रूव ना हो ना, तब तक हम उसे फैक्ट नहीं कह सकते।
0: दीदी ये कैसे पता चलेगा कि वो साइंटिफिकली प्रूफ है या नहीं है?
1: उसमें किसी आर्टिकल जो आप पढ़ते हो आप लोग, उसमें कुछ मेंशन होगा कि इस साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की, उसमें ये आया, या इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी रिसर्च की। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए तो आप उसे गूगल पे लिख के देख सकते हो कि क्या ऐसी रिसर्च हुई है।
0: ओके,
1: आपको पता चल जाएगा ये फैक्ट है या नहीं, है ना? तो अब ब्लू कलर की बात हो रही थी, अब भाई लड़कियों को मतलब ब्लू कलर बिल्कुल पसंद नहीं होता,
2: नहीं,
1: ऐसा
2: कुछ को होता होगा।
0: ये तो अपने पे ले रही है दीदी।
2: मतलब कुछ लड़कियों को होता होगा, मुझे तो नहीं पसंद है ब्लू कलर।
1: आपको बिल्कुल पसंद नहीं है?
2: थोड़ा बहुत,
1: बहुत।
4: मुझे तो लाइट ब्लू पसंद है। हाँ, लाइट ब्लू और पिंक और ऑरेंज।
1: रेडियो मधुबन का कलर भी ब्लू है। अब वो तो सबको पसंद है या वो भी नहीं है?
2: नहीं, वो तो अच्छा लगता है,
0: बहुत अच्छा है
2: दीदी। ब्लू ना व्हाइट के साथ अच्छा लगता है।
1: ओके,
2: कॉम्बिनेशन में।
1: तो अगर आपको कोई ड्रेस पहनने को कहा जाए तो आप कौन सा, ब्लू के साथ क्या पहनोगे?
2: ब्लू के साथ, हाँ दीदी व्हाइट ही ठीक लगेगा, अच्छा लगता है देखने में।
0: ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट अच्छी लगती
2: है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है देखने में।
1: रोशन को भी?
3: हाँ,
2: ब्लू जीन्स।
0: मेरे पास तो दीदी 80% जीन्स ब्लू ही है,
3: मेरे पास 100%। सारे ब्लू है,
2: सब ब्लू है। एक जीन्स है वो भी ब्लू है।
0: मेरे पास जो अलग कलर के ना वो सब मम्मी के है। मम्मी बोलती है सब ब्लू ही लेता है, एक आधी लेता है। मम्मी के खुशी के लिए ले लेता हूँ, बाकी ब्लू ही है।
3: सारे ब्लू।
1: अच्छा बच्चों एक चीज कहते हैं कि हर कोई चीज हर कलर कुछ कहता है, जैसे आप लोग बोल रहे थे ब्लैक डार्क होता है और ऐसा होता है, तो आपको क्या लगता है अगर ब्लू कलर क्या कहता है, मतलब क्या कहना चाहता है ब्लू कलर?
0: जैसे व्हाइट शांति।
2: हाँ, और ऑरेंज हमारे मूड पे डिपेंड कर बताता है, मूड के बारे में ऐसा कुछ।
1: ओके,
2: और रेड हमारे गुस्से में बताता
0: है। ब्लू ब्लू ब्लू ब्लू
2: ब्लू। हाँ, ब्लू ना शायद, हाँ, फीलिंग्स जैसे हम रोते हैं शायद उस पे, शायद से
0: ब्लू ना वो जब बहुत ही एंग्री हो जाते हैं ना, हाँ, तब उसका एक इमोजी होता है, वो मैंने देखा था।
2: अच्छा, वो तो रेड होता है
1: व्हाट्सएप पे, वो इमोजी एक आता
0: है, का भी होता
1: उसका हेड ब्लू ब्लू हो जाता है।
2: मैंने नहीं देखा,
1: मैंने देखा, मुझे याद है,
2: मेरे पास इमोजी ही नहीं है।
1: कोई बात नहीं, हम आपको दिखा देंगे।
2: हाँ,
0: दीदी एक बात बता देता हूँ ब्लू से याद आई। एक ना दीदी शहर, नहीं शहर नहीं, गांव है शायद, उसके सारे के सारे घर जितने भी घर है सब ब्लू कलर से पेंटेड है।
1: अच्छा,
3: जैसे उदयपुर में पिंक सिटी है,
0: ऐसे वो एक ब्लू विलेज है।
1: और ये नाम अभी अभी आयुष ने दिया है उस विलेज को।
2: वैसे दीदी ब्लू कलर नहीं अच्छा लगता, लेकिन ब्लू वेल मुझे बहुत अच्छी लगती है।
1: ब्लू वेल अच्छी लगती है, ओके चलो, मतलब वो तो ब्लू अच्छी लगती है, कम से कम वेल का तो कलर चेंज नहीं कर सकते ना, पिंक नहीं कर सकते।
2: सी भी ब्लू अच्छा लगता है।
1: अच्छा रोशन ने तो बताया नहीं ब्लू कलर क्या कहता है।
3: हाँ, ब्लू कलर में मतलब जो भी ब्लू कलर दिखाता है ना वो एनवायरमेंटली दिखाता है, जैसे कि पानी। जब भी हम बचपन में ड्राइंग करते थे, पानी बनाते थे, स्काईज बनाते थे।
1: क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है।
2: नदियाँ बनाते थे,
1: मतलब एक कामनेस सी रहती है ना ब्लू कलर में कहीं ना कहीं।
3: हाँ,
1: मुझे भी ऐसा लगता है,
2: ज्यादातर ब्लू कलर पानी के लिए यूज होता है।
0: ब्लू से क्वेश्चन याद आया, पूछूं? आप सब में से कोई उत्तर देना। अगर ब्लू कलर के समुद्र में हम एक ब्लैक कलर का पत्थर डाल दें तो क्या होगा?
1: ब्लू कलर के समंदर में ब्लैक कलर का पत्थर डाले तो क्या होगा?
0: बताइए।
2: पत्थर कलर तो नहीं छोड़ता ना?
0: नहीं, तो मैंने कब का कलर, मैंने पूछा क्या होगा?
2: वो साफ दिखेगा,
1: गीला हो जाएगा।
0: और दूसरी बात, पत्थर डूब जाएगा।
1: पत्थर डूब जाएगा। ये मैंने आंसर दिया आयुष के सवाल का।
0: दीदी बहुत ही इंटेलिजेंट है,
2: वो तो है।
1: ये भी आज आयुष ने कहा है, लेकिन बच्चों किस चीज को हम फैक्ट नहीं कह सकते, ये तो आपको मालूम चल गया ना।
0: मैंने कब कहा दीदी फैक्ट है?
1: नहीं नहीं, मैं तो जस्ट पूछ रही थी। अच्छा, तो ब्लू कलर क्या कहता है, शिवानी ने भी बताना बाकी है, क्या कहता है शिवानी?
4: मुझे लगता है शायद रोने में।
1: रोने में, ऐसा क्यों लगता है आपको?
4: क्योंकि वो इमोजी में बना रहता है।
0: हाँ, ब्लू टीयर्स।
2: हाँ, वो रोने वाला।
3: वो भी पानी है।
1: वो भी पानी है। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग कुछ डिजाइन करते हैं ना, कभी कुछ कलर्स डालते हैं पोस्टर्स में और इसमें फॉन्ट्स में, है ना?
2: हाँ।
1: तो आपको क्या लगता है किस तरह का पोस्टर, जैसे एनवायरनमेंट के लिए कभी डिजाइन करते हैं, कभी हम बनाते हैं कि सेव चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बनाते हैं, कभी एक कोई हैप्पी ओकेजन होता है पार्टी वाला, वैसा पोस्टर बनाते हैं, तो आप मान लो आपको ब्लू कलर से एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको ब्लू सबसे ज्यादा यूज करना है, तो वो किस टॉपिक पे आप बनाओगे पोस्टर?
3: सेव वाटर।
1: अच्छा, सेव वाटर के अलावा क्या करोगे? एनवायरनमेंट और सेव वाटर, चलो ठीक है, और कुछ अगर बनाना हो तो क्या करोगे?
2: मैं क्लाउड्स बना सकती हूँ और उसपे समुद्र के।
1: टॉपिक क्या होगा?
2: टॉपिक तो नहीं है, बस ऐसे ड्रॉइंग बना सकती हूँ समुद्र और क्लाउड्स की।
1: ओके, तो आप किसी टूरिस्ट प्लेस को प्रमोशन दे सकते हो जहाँ पे क्लाउड्स, स्काई, आप स्काई डाइविंग करो और ऐसा
2: कुछ,
1: राइट?
2: और पहाड़ भी बना सकती हूँ ऐसा कुछ।
1: बिल्कुल। और बाकी दो कभी सोच रहे हैं? सोचो।
4: मैं तो बारिश को करूंगी।
1: बारिश को? और उसकी थीम क्या होगी, किस लिए होगा वो पोस्टर?
0: पेड़ मत काटो।
1: नहीं तो बारिश नहीं होगी।
0: सही बात है, बिल्कुल
1: बिल्कुल सही बात है।
0: देखो, आधा मैंने दिया, आधा उसने, मैं नहीं बता रहा।
1: नहीं, ये तो आपने शिवानी की हेल्प की, फिर हम भी आपकी हेल्प करेंगे बाद में, लेकिन बताना तो आपको आइडिया पड़ेगा।
0: इतना रोशन, आप बताइए।
3: पहले आप बताइए ना।
0: नहीं, पहले आप
1: अच्छा, पहले आप में गाड़ी छूट जाती है
0: ऐसा। ठीक है, मैं पहले बैठ जाता हूँ। अर्थ कैसी रहेगी? सेव अर्थ।
2: हाँ, ज्यादातर तो अर्थ में ब्लू और ग्रीन ही होता है।
1: ओके, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज अर्थ को जब हम देखते हैं, प्लैनेट को जब भी कलर बनाते हैं, तो
0: 70%
1: वाटर है, बिल्कुल
0: ऊपर से ब्लू ही दिखता है। इसलिए तो वाटर का कलर ब्लू ड्रॉ करते हैं।
1: आज ब्लू है पानी पानी। और रोशन,
3: मेरा पोस्टर का नाम होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
1: रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अरे वाह।
3: रेन को बचाओ, बारिश को बचाओ, बारिश का पानी को बचाओ।
1: राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की, बहुत जरूरी बात की। बारिश के पानी को बचाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
2: स्टोर करके रखना
1: है ना।
3: हाँ।
1: अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आप लोगों के पास जैसे पोस्टर तो आप लोगों ने बना दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई डिबेट में खड़ा कर दिया जाए और आप लोगों को बोला जाए कि प्रूफ करो कि ब्लू सबसे अच्छा कलर होता
0: है, क्या मैं कर दूंगा?
1: कैसे करोगे?
0: तो मतलब वो
1: सारे कलर्स में ब्लू सबसे अच्छा कलर है, अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे करोगे?
0: ठीक है, मैं बोलूंगा, देखो जो हमारी लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है पोटर, और उसका कलर होता है ब्लू।
1: ओके,
0: ठीक है,
1: ओके।
0: और हमारा जो आसमान होता है जो बारिश देता है क्लाउड से, वो भी ब्लू होता है। और अर्थ भी ब्लू होती है। तो इतनी मेन मेन इम्पोर्टेंट चीजें ब्लू होती हैं।
1: अर्थ पे पानी ब्लू होता है।
0: हाँ मतलब वही। तो और अर्थ को भी जब ड्रॉ करते हैं तो ब्लू ही यूज करते हैं ना उसमें भी।
1: ओके।
0: ब्लू और ग्रीन, तो इतने मेन मेन चीजों का कलर ब्लू है, इसलिए ये सबसे बेस्ट कलर है।
1: ओके, क्या बात है भाई, तालियां बजाना आयुष के लिए। वाओ आयुष,
0: थैंक यू।
1: और कौन अगर ब्लू प्रूफ करना है तो कैसे करोगे?
3: मैं बोलूंगा कि रेडियो वन बेस्ट है, वो भी ब्लू है।
1: चलो भाई रोशन के लिए तालियां
0: बजाओ।
1: मैथ्स हो गया ये तो। ओके,
2: मैं तो अच्छे से साबित नहीं कर पाऊंगी ब्लू को, क्योंकि
0: इसका फेवरेट ही नहीं है।
2: फेवरेट ही नहीं है,
1: लेकिन ट्राई तो करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं।
2: हाँ,
1: जो आपके मन में आ रहा हो।
2: ठीक है, जहाँ हम ज्यादातर बैठते हैं ना दूर, जैसे अपने शहर से दूर जाते हैं, मतलब कहीं पे भी जाते हैं गाँव गाँव में, ज्यादातर हमें नदियाँ या फिर ऐसे ज्यादातर मतलब
1: हाँ हाँ बोलो बोलो,
2: मतलब नदियाँ और पहाड़ में ऐसे ही बैठते हैं तो फिर क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, शांति होती है। और जब हम अपने आंखें बंद करते हैं ना, मैं जब भी आंखें बंद करती थी धूप में, तो मैं जब भी आंखें खोलती थी उसको बंद करके सोचती थी कुछ भी, तो भी खोलती थी तो मुझे ज्यादा ब्लू कलर दिखाई देता है। हम आंखें जब धूप में बंद करते हैं और जब हम आंखें खोलते हैं तो सच में हमें ब्लू दिखाई देता है।
1: ओके,
2: और बिल्कुल ब्लू ब्लू पूरा हो जाता है आंखों के पास पूरा, और कुछ कलर नहीं दिखाई देता।
1: इसलिए भाई अब जब आंखों को पहला कलर दिखाई दे रहा है तो इसलिए बेस्ट हो गया।
3: आंख भी मतलब आईज भी ब्लू रहते किसी।
2: पहले तो जब मैं आंखें बंद करती धूप के सामने तो रेड होता है, पूरा पूरा रेड होता है, फिर मैं खोलती हूँ तो ब्लू हो जाता है।
1: ओके,
3: सन को देखने से ब्लू हो जाता है।
1: ओके,
3: देखने से भी हो जाता है।
1: चलो ये भी इंटरेस्टिंग बात है, ताली बजा दो अमन के लिए। दूर की सोच है।
0: रेनबो में भी ब्लू होता है, वो यूनिक दिखता है।
1: और शिवानी क्या बोलना चाहेगी, कुछ बोलना है शिवानी को? जो भी वो सोचो आप, सही गलत तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ सोचा होगा जरूर, है ना? कुछ तो
4: पानी। नील कमल भी तो होता है।
1: नील कमल भी होता है।
0: और कमल तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है।
4: हाँ, तो इसलिए ब्लू अच्छा है।
1: देखो आयुष ने आपकी मदद कर दी, क्योंकि आपने आयुष की मदद की थी ना।
2: नहीं। हाँ।
1: चलो तालियां बचा दो भाई शिवानी के लिए।
0: अगली बार भी मैं नहीं करी।
1: अच्छा, ओहो, चलो कोई बात नहीं, आयुष भाई अब बड़े हैं।
2: दीदी मैंने नील कमल को कभी नहीं देखा। मैं तो सिर्फ पिंक लोटस को ही देखा।
1: नील कमल तो एक मूवी भी आई थी, पता है बच्चों, बहुत पुरानी।
0: नहीं,
2: हाँ, मैंने देखी भी है।
4: पता है।
0: उसमें नील कमल नहीं होता।
2: नहीं, वो मूवी का नाम
0: मूवी का।
4: और एक कंपनी भी है ना, नील कमल वाली।
0: सही बोला, कंपनी भी है।
4: उसकी कुर्सी और टेबल बनी
0: है। हाँ।
2: प्लास्टिक।
0: और दीदी पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेन, उसकी इंक भी ब्लू होती है, ब्लैक भी हो सकता है। और पता है दीदी, देखो हमारे जैसे मतलब एक रूल नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे क्वेश्चंस ब्लैक पेन से लिखते हैं और आंसर ब्लू पेन से।
1: हाँ।
0: लेकिन मैं जो हूँ ना, क्वेश्चन भी ब्लू से लिखता हूँ, आंसर भी ब्लू से लिखता
3: हूँ। ये मैं भी पहले करता था, बॉल पेन से और ये जेल पेन से।
0: नहीं नहीं नहीं, मैं दोनों ही ब्लू और बॉल पेन से।
1: अच्छा।
0: हाँ, ब्लू मेरा फेवरेट था इसलिए मैंने मैम को बोल दिया, मैंने बोला कोई बात नहीं।
2: मैं तो ब्लैक से क्वेश्चन नोट करती हूँ आंसर, और सारी मेरी जो क्लास है सब ब्लू से करती है, एक ही पेन को यूज करती है।
0: दीदी बार बार चेंज करो,
2: वही वही बात
0: कौन करे।
1: और व्हाइट पे अलग से दिखाई भी देता है।
2: ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: आइस क्रीम का आइस जो होता है वो भी ब्लू होता है।
2: ब्लू होता
0: है। हाँ, तो
2: आइस ब्लू होती है। हाँ,
3: इसलिए।
1: ओके ओके, मतलब आप लोग को पता है बच्चों कितनी देर हो गई आप लोगों को ब्लू पे बात करते हुए?
0: नहीं पता चला।
1: पूरे 20 मिनट्स।
0: दीदी जब आपने बोला कि आज का हमारा टॉपिक है ब्लू, तो मैंने सोचा हम ब्लू पे क्या बात कर पाएंगे।
3: हाँ, मैंने भी यही सोचा।
0: कितनी सारी बात हो गई।
1: हाँ। आप लोगों ने भी यही सोचा था?
2: अच्छा,
1: तो बताओ इस कॉन्वर्सेशन से आज आप लोगों को क्या सीखने को मिला?
2: हम लोग को बहुत सारी चीजें जानने को मिली जो ब्लू कलर की है।
1: ओके, और
3: ब्लू इज द बेस्ट।
1: ये तो चलो आज का हमारा विषय था, बट मेन मकसद ये था कि आप लोग किसी भी टॉपिक के बारे में अगर सोचो तो हो सकता है आपको उस वक्त लगे कि आपको कुछ नहीं मालूम या आप क्या बोलोगे, लेकिन आपके पास अगर आप सोचने लगोगे बहुत कुछ है। तो यानी कोई भी लाइफ में आपके चीज आती है, मान लो कोई भी ट्रबल आती है, कोई बात आती है, कोई ऐसा जॉब आपके पास आता है जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, आपके लिए नया है, तो ये नहीं सोचो कि आप नहीं कर सकते हो, बल्कि आप उसे करना शुरू करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये तो आप लोगों ने खुद अभी प्रूफ कर दिया। किया ना सभी ने? है ना? तो फिर आगे जो भी ऐसा लगे कि ये तो नया है, नहीं हो पाएगा, तब क्या सोचोगे?
0: ये तो बहुत इजी है, जैसे हमने उस दिन याद करूंगा, जैसे हमने उस दिन ब्लू कलर पे इतनी सारी बात करी, तो ये तो एक छोटी सी बात है,
3: तो मैं मेरी बन गया।
1: हाँ, तो जब भी आपको ऐसी चीज लगे ना, अरे इस पे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ब्लू कलर याद कर लेना।
2: हाँ, वो भी है।
0: तो आज के हमारे ऑडियंस को भी यही सीख मिली सुन।
1: बिल्कुल, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। राइट, बिना टॉपिक के आप लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली।
0: यू कैन डू इट।
1: और वो भी सेंसिबल बातें, है ना? तो और आप लोग बहुत क्रिएटिव भी हो, से ये भी साबित हो जाता है ना? आप लोगों ने पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आंखों के सामने ब्लू कलर सब कुछ आ गया, है ना? नील कमल तक पहुंच गए। चलो फिर बच्चों ऐसा करते हैं, अभी तो हम लोग गुड बाय करते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे और दोबारा कुछ और अलग विषय पे बात ही करेंगे। ओके,
0: ठीक है,
2: बाय दीदी।
1: बाय बाय बच्चों।
2: बाय।

हल्के हल्के बोल ना, हल्के हल्के बोल ना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल ना, हल्के बोल ना, हल्के हल्के बोल ना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल ना, हल्के।

बोल ना हल्के, बोल ना हल्के हल्के, बोल ना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल ना हल्के।

0: जे रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 16वां पाठ, कौन करेगा यह काम, पृष्ठ 146। क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं जैसे बहुत बड़े कूड़े के टीले में घुसकर उसकी सफाई करना, या जैसे सड़क पर बने पुल की सफाई करना, जैसे सड़क पर बने सीवर में घुसकर वहां की सफाई करना, स्लम की पतली गलियों में घुसकर वहां की सफाई करना? लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? पृष्ठ 148। हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की। ये हैं उस बातचीत के कुछ हिस्से। प्रश्न, आप कब से यह काम कर रही हैं? करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई खत्म हुई है। आप आगे क्यों नहीं पढ़ी? कुछ और काम मिल जाता? पढ़ने के लिए पैसे चाहिए? वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं।
3: मतलब?
2: उत्तर था, बाप दादाओं से, उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज्यादातर लोग यह काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं।
3: प्रश्न, ऐसा क्यों?
2: उत्तर मिला, ऐसा ही है। हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। यह अंश स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से लिया गया है। लिखो, जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं उनसे बातचीत करो और लिखो वे कब से यह काम कर रहे हैं, वे कहां तक पढ़े हैं, क्या उन्होंने और कोई काम ढूंढने की कोशिश की, क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे, उनको इस काम में क्या परेशानियां आती हैं। पृष्ठ 149। यहां एक चित्र दिया गया है। चित्र में काम करते हुए लोग दिखाए गए हैं, जैसे गाय का दूध दुहना, एक दुकान पर सब्जी बेचना, ट्रैफिक पुलिसमैन, बाहर सब्जी बेचना, बच्चे की देखभाल करना, बाग के माली का काम, स्कूल में पढ़ना, स्कूल में पढ़ाना, स्कूल का चौकीदार, कूड़ा उठाने वाले ट्रक में बैठकर सड़क का कूड़ा उठाने का काम।

बस में स्कूल जाना, बस ड्राइवर का काम, सड़क की सफाई, ठेले पर सब्जी बेचना, बर्तन धोना, घर का काम करना, दफ्तर में बैठकर कंप्यूटर पर काम करना, पेंटिंग करना, ठेले पर सामान ढोना, कूड़े में से सामान बीनना, दुकान पर काम करना, घर का खाना पकाना, मकान बनाने के लिए मजदूरी करना, सब्जी बेचना। अब आपके लिए काम। इस चित्र में जिन कामों को दिखाया गया है उनमें से कोई पांच काम तुम्हें करने हों तो तुम कौन कौन से काम चुनोगे और क्यों? इनमें से कौन से काम तुम नहीं चुनोगे और क्यों? पृष्ठ 150। चर्चा करो, तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते और क्यों? फिर इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें करना कोई भी पसंद नहीं करता? कल्पना करो, अगर कोई भी यह काम ना करे तो क्या होगा? यदि एक हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके, जैसे मशीन या और कोई तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अपने सोचे गए तरीके के चित्र बनाकर दिखाओ। यहाँ बच्चों के बनाए कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें बच्चों ने दिखाया है कि मशीनें अपने आप कूड़ा साफ कर रही हैं। क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की है? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है। पृष्ठ 151। पुरानी यादें। नारायण, यानी जिसे प्यार से बावला कहते थे, जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं, जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव देसाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है, यह बात तो ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें
तो हालात कैसे बदलेंगे? उसने पूछा। अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा, उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा ही है, सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना, वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। यह अंश नारायण भाई देसाई ने लिखा था। इस अंश को संत चरण रज सेविता सहज नामक किताब से लिया गया है। बताओ, गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? पता करो। गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो तुम क्या करते? पृष्ठ 152। तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर? टॉयलेट कौन साफ करता है? गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों? जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं, उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है, लिखकर समझाओ। नारायण और बाबा साहब के बचपन की बात तो अब कई साल पुरानी है, क्या आज हालात बदल गए हैं? ऐसा भी एक बचपन। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है, नन्हे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। स्कूल में एक बातचीत, आज का सच। हेतल बोला, मैं हेतल हूँ, यह मीना है, हम 3री कक्षा में पढ़ते हैं। प्रश्न, स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? मीना बोली, हम ग्राउंड साफ करते हैं। प्रश्न था, सब बच्चे? हेतल बोला, नहीं, सब बच्चे नहीं करते। मीना बोली, हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं, सबको दिन बांट दिए गए हैं। मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल, यह बुध को, ऐसे हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। हेतल बोला, 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। प्रश्न था, तुम ही क्यों करते हो, सब बच्चे क्यों नहीं करते? हेतल बोला, हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। यह अंश स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से लिया गया है। पृष्ठ 153। बताओ, तुम्हारे स्कूल की सफाई

लड़के लड़कियों और मर्द औरतों के किए जाने वाले कामों में समानता है? क्या तुम इसमें कुछ बदलाव लाना चाहोगे? चर्चा करो। क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं तो क्यों? क्या बदलाव होना जरूरी है? गांधी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा सा हिस्सा हम दे रहे हैं। यह भजन गुजराती भाषा में है। अपने आसपास के लोगों की मदद लेकर इस भजन का मतलब पता करो और इसके बारे में सोचो। भजन है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे जे मन अभिमान ना आने रे। हम क्या समझे? गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदल सकता है? तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं? कौन करेगा यह?

0: कभी मुझे वो घड़ी याद आती है मेरी जिंदगी में कोई आया उसने मुझे अपना बनाया।
1: अभी बचे हैं दोपहर के 4। 1 मिनट प्रभु की याद से मन में लाए अच्छे विचार।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 अगस्त की बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और आज विष्णु नारायण बातखंडे, वीवी गिरी, प्रेम अदीब, हेमंत सोरेन, सौरव गौशाल, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही हरिशंकर परसाई, श्यामलाल गुप्त पार्षद, अरुण कुमार, श्रीधर वैद, सरस्वती देवी, इन सभी का पुण्य दिवस है। आइए आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी भावनाएं, विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ये अजीब है कि केवल असाधारण व्यक्ति ने ही ऐसी खोजें की जो बाद में इतनी आसान और सरल प्रतीत होती है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जिया सफर, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आइए बात करते हैं अब विष्णु नारायण बातखंडे के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेष आता है और भारत के बहुत ही पॉपुलर शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े ज्ञाता आधुनिक आचार्य के रूप में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पूरी तरह से निस्वार्थ और समर्पित संगीत साधक बातखंडे ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक पद्धति से सुव्यवस्थित वर्गीकरण और मानकीकृत करके पहला आधुनिक प्रयास किया था। देश भर में घूम घूम कर उस्तादों से बंदिशें एकत्रित करना, विभिन्न रागों पर उनसे चर्चा करके उनके मानक रूप निर्धारित करना और संगीत शास्त्र के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए अनेक विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें लिखी और इस महत्वपूर्ण कार्य को करने में इन्होंने काफ़ी मेहनत की। आइए ऐसे महान संगीतज्ञ के बारे में बात करते हैं। विष्णु नारायण बातखंडे का जन्म मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पर आज ही के दिन 1860 को एक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1883 में बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने 1890 में एलएलबी की परीक्षा पास की और बाद में उन्होंने विस्तार से कार्यकाल के लिए कराची के उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान की थी। संगीत से इनका लगाव हुआ। बातखंडे की लगन आरंभ से संगीत की ओर थी, लेकिन कहीं उनको ऐसा मौका नहीं मिला और संगीत यात्रा इनकी शुरू हो गई 1904 में, जिससे इन्होंने भारत के सैकड़ों स्थानों का भ्रमण करके संगीत संबंधित इतिहास की खोज की और इन्होंने बड़े बड़े गायकों का संगीत सुना और इनकी स्वरलिपि तैयार करके हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पुस्तक मालिका के नाम से ग्रंथमाला प्रकाशित कराई, जिसके 6 अलग अलग भाग हैं। शास्त्रीय ज्ञान के लिए विष्णु नारायण बातखंडे ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो हिंदी में बातखंडे संगीत शास्त्र के नाम से छपी थी, उसके 4 भाग मराठी भाषा में लिखे। संस्कृत भाषा में भी उन्होंने लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजरी नामक पुस्तकें लिखकर प्रवीण संगीत की विशेषताओं तथा उसमें फैली हुई भ्रांतियों पर प्रकाश डाला। विष्णु नारायण बातखंडे ने अपना शुद्ध ठाट बिलावल मानकर ठाट पद्धति स्वीकार करते हुए 10 ठाटों में बहुत से रागों का वर्गीकरण किया। तो आइए इनके बारे में अधिक जानकारी और लेते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर सफर। इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे थे विशेष विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में। 1916 की बात करें तो भातखंडे द्वारा बड़ौदा में एक विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन महाराजा बड़ौदा द्वारा हुआ था और इसमें संगीत के विभिन्न विद्वानों ने संगीत के अनेक तत्वों पर गंभीरतापूर्वक विचार हुआ। इसी आयोजन में एक ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ और इस संगीत सम्मेलन में विष्णु नारायण भातखंडे जी ने संगीत संबंधी जो महत्वपूर्ण भाषण हुए वे अंग्रेजी में अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिकल ऑफ आवर इंडिया नामक पुस्तक के रूप में इन्होंने सारी चीज़ें इसमें जो बातें की थी वो प्रकाशित कर दिया। और इस तरह से ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट बना संगीत के साथ जुड़ा हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका जो आगे का क्रम है वो चला संगीत विद्यालयों की स्थापना करना। विष्णु नारायण भातखंडे का प्रयास से बाद में कई स्थानों पर भारत में संगीत सम्मेलन हुए तथा संगीत विद्यालयों के साथ साथ में स्थापना भी। इसमें मुख्य रूप से आता है लखनऊ का मैरिस म्यूजिकल कॉलेज, जो अब भातखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ग्वालियर का माधव संगीत विद्यालय और उसके बाद बड़ौदा का म्यूजिक कॉलेज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो खास करके लखनऊ, ग्वालियर और बड़ौदा ये तीन मेन जो है कॉलेज उन्होंने खोले। उसके बाद तो फिर पुणे और भी कई जगह पे जो है कॉलेज खुलते गए। तो अपना अधिकांश समय जो है विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को समर्पित कर दिया। संगीत के विद्यालय खोलने में, संगीत के उस्तादों से ज्ञान प्राप्त करके उसको बुक फॉर्म में तैयार करना, ये बड़ा परिश्रमिक जो काम है। संगीत की महान सेवा उन्होंने की और भारतीय संगीत को एक नया प्रकाश से आलोकित करके 19 सितंबर 1936 को परलोकवासी हो गए। तो आइए, ऐसे महान व्यक्ति को याद करके खुशी होती है कि किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को समझा और एकत्रित करके लोगों के बीच में आज हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं जो संगीत विद्यालयों में पढ़ते हैं तो वो भी अचंभित ज़रूर होते होंगे कि इतनी सारी चीज़ें कैसे उन्होंने किताबों में दर्ज की होगी। आइए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत संगीत आपके लिए, आप सुनाए हैं सफ़र कार्यक्रम, सुनते रहो।

द्वारा। ओम शांति। डिवाइन मैशअप म्यूजिकल सीरीज के सुहाने सफर में मैं आपकी होस्ट आत्मिका अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने जीवन की उस कड़ी से जुड़ेंगे जिसमें परमात्मा शिव की संतान होने के नाते हम सभी का भाग्य और सभी के कर्तव्यों को उजागर किया जाएगा। हम सभी आत्माएं परमात्मा की अनादि संतान हैं। इसी सत्य को हमारे बीच प्रकाशित करने आ रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर रविंद्र उपाध्याय जी।

0: 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, विष्णु नारायण पाखंडे के बारे में सुनकर बड़ा अच्छा लगा हमें। आशय करूंगा आपको भी अच्छा लगा होगा। और हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए एक अजब जो है प्रेरणा स्थान है विष्णु नारायण पाखंडे के बारे में। चलिए एक और शख्सियत के बारे में बताता हूँ, वीवी गिरी के बारे में। और भारत रत्न से सम्मानित वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और इनका जो कार्यकाल था वो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 और 13 मई 1977 से लेकर 3 मई 1969 तक। तो इस तरह से अलग अलग, जैसे कि उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद केरल, फिर उसके बाद कर्नाटक, तो अलग अलग जगह पे ये राज्यपाल की भूमिका निभाते रहे। आइए ऐसे विख्यात भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 में बहरमपुर उड़ीसा में हुआ था। इनका संबंध एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार से था। वीवी गिरी के पिता वीवी जोगिया पंतुलु बहरमपुर के एक लोकप्रिय वकील और स्थानीय बार काउंसिल के नेता भी रहे। वीवी गिरी की शुरुआती शिक्षा इनके गृहनगर बहरामपुर में ही संपन्न हुई। इसके बाद वो डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए आयरलैंड चले गए। वो डी क्लेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आने और उनसे प्रभावित होने के बाद आयरलैंड की आज़ादी के लिए चल रहे सीन फिन आंदोलन से जुड़ गए। परिणाम स्वरूप आयरलैंड से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। और फिर पहला विश्व युद्ध में 1916 में वीवी गिरी वापस भारत लौटे। भारत लौटने के तुरंत बाद वो त्रैमासिक श्रमिक आंदोलन से जुड़ गए। इतना ही नहीं, रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए इस उद्देश्य से उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन की स्थापना भी की। और फिर धीरे धीरे जो है सामाजिक कार्य करते हुए राजनीति में इनका आना हुआ। भारत लौटने के बाद मजदूरों के चल रहे आंदोलन का हिस्सा बने 1916 में। और भारत स्वतंत्रता संग्राम का जो है भारतीय आंदोलन, इसमें हिस्सा लेकर वो सक्रिय रूप से आंदोलन में कूद गए। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ और फिर अखिल भारतीय व्यापार संघ, इस तरह के अलग अलग संघों के साथ तो जुड़े, उसके प्रेसिडेंट बने और जन सेवा करते हुए राजनीति का सफर इनका शुरू हो गया। और अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंग्रेजों द्वारा इन्हें काफ़ी समय जेल भी भेजा गया। और 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद सिलोन में भारत के उप आयुक्त नियुक्त हुए। और 52 में पाटापट्टनम सीट से लोकसभा का चुनाव जीत संसद पहुंचे। तो इस तरह से फिर बाद में राष्ट्रपति पद इनको मिला। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के विवाद के बाद कई मामले इनके सामने आई और कुछ मामलों में इनकी सुनवाई भी हुई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हुआ और सम्मान और पुरस्कार तो काफ़ी मिले हैं इनको। और 85 वर्ष की आयु में वीवी गिरी 23 जून 1980 को मद्रास में इनका निधन हुआ। वीवी गिरी एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिक भी थे। लेकिन क्षमता भी बहुत अधिक और उच्च कोटि का था। वीवी गिरी ने औद्योगिक संबंध और भारतीय उद्योग में श्रमिकों की समस्याओं जैसी चीज़ों को लेकर किताबें भी लिखी थी। तो ये थी कुछ खास बातें वीवी गिरी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। प्रेम अदीप के बारे में आप बात करेंगे। भारत के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता प्रेम अदीप को राम के रूप में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। सीता बनी शोभन समर्थ के साथ पर्दे पर राम की भूमिका में नजर आए थे। दिल छू लेने वाले अभिनय के साथ इन्हें न सिर्फ फिल्म जगत में सम्मान मिला बल्कि विशेष स्थान भी दिलाते हुए सभी श्रोताओं के दिल में इनका जो है जगह बन गया और ये सदा के लिए अमर हो गए। 10 अगस्त 1916 को इनका जन्म कश्मीरी मूल के प्रेम अदीप के दादा परदादा अवध के नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में कश्मीर छोड़कर अवध के शहर फैजाबाद आ बसे थे और यही इनका जन्म हुआ। और इनके दादा का नाम देवी प्रसाद था। प्रेम अदीप के पिता राम प्रसाद दर फैजाबाद से सुल्तानपुर चले गए थे। सुल्तानपुर में ही उनका जन्म हुआ और प्रेम अदीप का झुकाव बचपन से ही फिल्मों की तरफ रहा। प्रेम अदीप 1943 में प्रकाश पिक्चर्स के बैनर के बनी धार्मिक फिल्म के निर्माता निर्देशक विजय भट्ट, गीतकार रमेश गुप्ता और संगीतकार थे शंकर राव, जिनका नाम उस दौर के फिल्म प्रेमियों के जहन में आज भी ताजा है। 1930 के दशक के माध्यम से सामाजिक फिल्मों में अपना करियर शुरू करने वाले अभिनेता प्रेम अदीप 1940 के दशक में धार्मिक फिल्मों का एक मशहूर नाम बन चुके थे। तो आइए इनके बारे में और अधिक जानकारी अगर मैं कहूँ तो फिल्मी सफ़र इनका शुरू हुआ भारत के पारंपरिक मूल्यों में शामिल इन फिल्मों में प्रेम अदीप शोभन समर्थ, आदर्श राम और सीता का चित्रण करते थे। अदीप और समर्थ ने अपनी जोड़ी जो राम और सीता के रूप में जारी रखा। एक रामायण आधारित फिल्म रामबाना 1948 में एक साथ अभिनय किया और फिर इस तरह से फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ। और फिर 1941 में एक फिल्म आई दर्शन, जिसमें इन्होंने एंट्री प्रकाश पिक्चर्स में हुई। और घूंघट वाली 1938 में, सागर मूवीटोन की भूले भाले और साधना 1939 में, हिंदुस्तान सिनेटोन की सौभाग्य 1940 जैसे फिल्मों के साथ प्रेम अदीप के करियर का ग्राफ लगातार ऊपर उठता चला गया। प्रतिमा अदीप के अनुसार फिल्म राम विवाह 1949 के निर्माण के दौरान एक बार कार दुर्घटना में प्रेम अदीप के नुकसान हुआ, बहुत मुश्किल हुआ, बहुत सारा खून बह चला। और 25 सितंबर 1959 की शाम को प्रतिमा अदीप की बड़ी बहन के जन्मदिन की पार्टी में थे, उनका अचानक सर ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्रेन हैमरेज से उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 43 साल थी। अंगुलिमल उनकी आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। तो ये थी कुछ खास बातें प्रेम अदीप के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफ़र इस कार्यक्रम को। 25 दिसंबर 1959 को मुंबई में इनका निधन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं। सुनते रहो बस कर रहा।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेम अदीप की अजीब कहानी सुनी आपने, जहां राम का जो किरदार है वो अमर हुआ, लेकिन कम समय में एक्सीडेंट के कारण वो 43 साल में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। आइए, इसके साथ ही एक और कहानी आपको जोड़ना चाहूँगा। आज हेमंत सोरेन का भी जन्मदिन है और ये राजनीतिक है, और अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में उपमंत्री रहे थे। इनकी राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। सोरेन 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू को 2024 2,04,087 वोटों के अंतराल में हराकर निर्वाचित हुए थे, और 23 दिसंबर 2019 को झारखंड विधानसभा चुनाव में बरहेट विधानसभा सीट में ये विधायक चुने गए, और 29 दिसंबर 2019 को उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो आइए हेमंत सोरेन के बारे में बातें करते हैं। आज ही के दिन 1975 को नेमरा रामगढ़ जिला बिहार में इनका जन्म हुआ, और इनके पिता का नाम शिबू सोरेन और माता का नाम रूपी सोरेन है। इनके पिता भी एक राजनीतिक है। हेमंत सोरेन ने पटना हाई स्कूल में कक्षा 12 तक अपना अध्ययन पूरा किया, और इसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज रांची के बीआईटी मेसरा में प्रवेश लिया, लेकिन अपनी शिक्षा पूरी नहीं की और बीच में ही छोड़ दिया। उनके दो भाई हैं दुर्गा सोरेन, बसंत सोरेन, और एक बहन अंजलि सोरेन। राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहता राजनेता बने। 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन वो स्टीफन मंडरी से हार गए। उसके बाद 24 जून 2009 को उन्हें राज्यसभा के सदस्य रूप में चुन लिया गया, और इस तरह से 4 जनवरी 2010 को झारखंड के दुमका निर्वाचित क्षेत्र से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया था, और 11 सितंबर 2010 को उन्हें झारखंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और 13 जुलाई 2013 को उन्हें झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से 19वीं सदी के आदिवासी नायक बिरसा मुंडा और बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानने वाले हेमंत सोरेन जीत के बाद साइकिल चलाते दिखे थे। यही नहीं, उन्होंने फूलों के बुके की जगह बुक देने की अपील कर लोगों का दिल जीत लिया था। तो ये कुछ खास बातें थी इनकी, हेमंत सोरेन की, जो मैंने आपको सुनाई। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। देखिए, कई बार व्यक्ति जो है कुछ कुछ चीज़ें बड़ी यूनिक होती हैं, और आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर लोग आपको बुके देते हैं तो वो ख़राबी हो जाता है ना, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। अगर बुक ले कर आप फिर जो गरीब बच्चे हैं उनको दे देते हैं तो ये कितनी अच्छी बात है ना। तो इस तरह के कुछ यूनिक अगर बातें आप अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का आखिरी मोड़ पे फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आखिरी में हम लोग एक विचार सुनाते हैं और विचार के साथ हम कार्यक्रम को पूरा करते हैं। और आज जिन लोगों के बारे में सुना, विष्णु नारायण बातकंडे, एक संगीत विशेषज्ञ जिन्होंने संगीत के प्रति अपनी लगाव को इस कदर जुनून में बदला कि उस ज़माने में उन्होंने किताब बनाए और फिर कॉलेज शुरू किए और फिर संगीत के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए। वीवी गिरी ये भी अपने आप में एक बड़े व्यक्ति रहे और राजनीतिक रहे। प्रेम अदीब जो बहुत ही सुंदर अभिनेता के साथ साथ जो है अभिनेता तो थे ही, राम का किरदार निभाकर अमर हो गए। और हेमंत सोरेन जो राजनीतिक है, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में लोगों के साथ जुड़े और लोगों का दिल जीता, बुके की जगह बुक उन्होंने गिफ्ट में लेना शुरू कर दिया था। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए एक और सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को यही पूरा करते हैं। और विचारों की अजब जो है तादा आपके पास होनी चाहिए। न्यूटन एक जगह लिखते हैं, मुझे लगता है कि मैं केवल समुद्र के किनारे खेल रहे एक लड़के की तरह था और आपने आप को अब और फिर सामान्य रूप से अधिक चिकना कंकड़ या एक सुंदर खोल ढूंढ रहा था, जबकि सत्य का महान महासागर मेरे सामने अनदेखा था। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर इधर इधर, क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या और समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: चलू मैं तेरे

मैं तुझसे जोड़ दूँ सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूँ जोड़ दूँ, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ लूँ। जुड़ गई।

मुझसे खुद ये बातें तेरी, अक्सर ख्यालों में हूँ तेरे मैं, कहीं देखूँ मैं तुझे लम्हा लम्हा, हर पल अपने सीने में रखूँ।

सुनेगा ये जहां कहेंगे जो हम सुनेगा ये

0: আছে।
1: হ্যালো হ্যালো হ্যালো, একবার আপনার নাম বলো।
0: হ্যালো, রাধিকা।
1: ঠিক, রেডিও মধুবন 107.8 FM সুন রহে হ্যাঁ আপ, কার্যক্রম হ্যাঁ যুবা মঞ্চ, আর যুবাও কে ইস মঞ্চ পর আপ সবই কা বহুত বহুত স্বাগত হ্যায়। দোস্তো, এক খেয়াল হতা হ্যায় জো যুবাও কে মন মে ভি হতা হ্যায়, জব বড়ে হো রহে হতে হ্যায় তো বচ্চো কে মন মে ভি হতা হ্যায় আর পেরেন্টস কে মন মে ভি হতা হি হ্যায় কি ক্যা হোগা ভবিষ্য কা, জব ক্যা করনি হ্যায় আর আগর জব অচ্ছি চাহিয়ে তো উসকে লিয়ে পড়াই ইয়া এক্সাম কোন সা দেনা হ্যায়, ইয়ানি এক সবাল আর না জানে কতনে সারে সবাল উসকে সাথ জুড়ে চলে আতে হ্যায়। তো হম কোশিশ করতে হ্যায় কি আপকে মুলাকাত করায়ে অলগ অলগ ফিল্ড মে জো কার্যরত হ্যায় উন সভি সে, তাকি আপ উস ফিল্ড কো বেহতর জানে আর উসকি তৈয়ারি কেসে করনি হ্যায় উসকো ভি পহচানে আর সহি দিশা মে আগে বড়তে যায়ে। তো আজ হমারে সাথ রাধিকা হ্যায় স্টুডিও মে, আর রাধিকা ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার হ্যায় HSC নয়ডা সে আয়ে হ্যায়, তো উনকা ক্যা এক্সপিরিয়েন্স হ্যায় জানেঙ্গে সিখেঙ্গে আর কোশিশ করেঙ্গে কি চিজে আর আসান হো যায়ে হম সভিকে লিয়ে। রাধিকা, আপকা স্বাগত হ্যায়।
0: থ্যাংক ইউ।
1: তো রাধিকা, সবসে পহলে তো ইয়ে যো শব্দ হ্যায় ডেভঅপস, আই থিঙ্ক মেরে লিয়ে ভি নয়া হ্যায়, তো ইয়ে হোতা ক্যা হ্যায় থোড়া আপ বতাও।
0: তো ইঞ্জিনিয়ারিং মে হি এক স্ট্রিম হ্যায় ডেভঅপস, জিসমে ডেভেলপমেন্ট আর অপারেশনস ইন দোনো কে বিচ মে। সো ডেভঅপস ইজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড অপারেশনস কে বিচ মে হাম লোক কেসে চিজে স্ট্রিম লাইন কর সকতে হ্যায় উসকে লিয়ে ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার মে বনি হু। তো ইসমে ক্যা হোতা হ্যায় কি ডেভেলপার্স নে কুছ কোড লিখা হ্যায়, জেসে হামারি ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশন হ্যায় জেসে হাম সব লোক ইউজ করতে হ্যায়, তো উস অ্যাপ্লিকেশন কো কিসি নে লিখা হোগা কিসি কোডিং মে তো উসকো ডেভেলপমেন্ট বোলেঙ্গে। অপারেশনস হোগা জব ও ফেসবুক জব আপ উসকো লগ ইন কর পা রহে হ্যায় দেখ পা রহে হ্যায় খোল পা রহে হ্যায় তো ও লাইভ হ্যায় অ্যাপ্লিকেশন। ইসকে বিচ মে কোড জো হ্যায় ও বিল্ড হোতা হ্যায় উসকো কহীন সার্ভার পে ডালা জাতা হ্যায়,
1: ওকে
0: হ্যায় না, উসকে বাদ উসমে থোড়া টেস্টিং হোতা হ্যায়, আপ লোক জো চালাতে হ্যায় উসসে পহলে টেস্টিং হোতা হোগা। তো সার্ভার পে ডালনে কা কাম, টেস্টিং কা কাম, স্টেবল হ্যায় কি নহীঁ, ইতনি সারি জনতা উসকো ইউজ কর পা রহি হ্যায় কি নহীঁ, উসকে অলগ অলগ টেস্টস, ও সারা কাম ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার করতা হ্যায়। তো ফেসবুক ফর এন এক্সাম্পল মানে লিয়া, মেরা দূসরা অ্যাপ্লিকেশনস পে কাম হ্যায় তো মানে বস এক এক্সাম্পল লিয়া জিসে সব লোক সমঝ পায়ে।
1: ওকে, তো জেসা কি আপনি বতায়া এক ব্যালেন্স হ্যায় আর জব ডেভেলপ কিয়া জাতা হ্যায় উসকি টেস্টিং ভি হোতি হ্যায় উসকা কোঅর্ডিনেশন হোতা হ্যায় তাকি ও ফিজিবল হো লোগো কে লিয়ে আসানি সে ও ইউজ কর সকে আর বার বার ইউজ কর সকে।
0: হ্যাঁ, কোই প্রবলেম নেই আয়ে, কোই গ্লিচেস নেই আয়ে চালাতে হুয়ে।
1: ওকে, সো রাধিকা শুরু সে আগর শুরু করে তো ইঞ্জিনিয়ারিং এসি ফিল্ড হ্যায় জহাঁ পে হমে বহুত সারি চিজে সুনাই দেতি হ্যায়, মতলব স্ট্রিমস তো হ্যায় হি, ইলেকট্রিক্যাল হম জানতে হ্যায়, কম্পিউটার সায়েন্স হ্যায়, আবি হম অর নয়ে নয়ে কাইন্ড অফ ইঞ্জিনিয়ারিংস ভি দেখ রহে হ্যায় কি পতা চলতি হ্যায়, আপনি কোন সি ইঞ্জিনিয়ারিং কি আর ও কেসে চুজ কিয়া উস বারে মে আপ কুছ বতাও।
0: বিলকুল, আবি বহুত সারে টাইপ কি ইঞ্জিনিয়ারিং আ গই হ্যায় এন্ড আই থিঙ্ক মেরে টাইম পে ভি থি, 2011 মে মানে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টার্ট করি থি, উস টাইম পে ভি বহুত সারে টাইপস কি থি বট অ্যাওয়ারনেস নহি থি, জো কহি না কহি মুঝে ভি নহি মিলি, তো মুঝে লাকিলি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মিলি এন্ড মে উসি মে হি আগে বড়ি। মেন মোটিভ বস ইয়ে থা কি আচ্ছে নম্বর লানে হ্যায়, বাই চান্স ফির জব জো লগি ও কম্পিউটার সায়েন্স ওয়ালি ব্যাকগ্রাউন্ড সে লগি। তো ইউজুয়ালি জো মানে আপনে টাইম পে দেখা, আব তো চিজে বদল ভি রহি হোঙ্গি, আপনে টাইম পে জো মানে দেখা উসমে ইয়ে থা কি মোস্টলি মেরে কলেজ মে জো কম্পানিজ আই থি ও কম্পিউটার সায়েন্স ইয়া ইনফরমেশন টেকনোলজি কে সাইড পে আই থি, আর ওহীন মেরা ভি হো গয়া এডমিশন আর মানে উসি মে কন্টিনিউ কিয়া। থোড়া সা মেরে উপর পেরেন্টস কা প্রেশার থা কি ইলেকট্রিক্যাল লেনা হ্যায় তো মানে ইলেকট্রিক্যাল লিয়া, বট ইলেকট্রিক্যাল জব হাম ফার্স্ট ইয়ার মে জাতে হ্যায় তো সারে হি সাবজেক্টস পড়ায়ে জাতে হ্যায় জিতনে ভি ফিল্ডস কে হ্যায়, তো উসমে মানে আপনে অন্দর ইয়ে পায়া কি মুঝে কম্পিউটার্স কি তরফ থোড়া ঝুকাব হ্যায় জাদা, আচ্ছা লাগা মুঝে। তো জো লোক ইঞ্জিনিয়ারিং করেঙ্গে ইয়া কর রহে হ্যায় উনকো মে আপনি তরফ সে ইয়েহি সলাহ দুঙ্গি কি জো ভি আপকো পসন্দ হ্যায় উসকো অচ্ছে সে কিজিয়ে, উসমে মন লগা কে কিজিয়ে, ক্যোঁকি আগর আপ জো চিজ চাহতে হ্যায় দিল সে জো আপকো মজা আ রহা হ্যায় করনে মে উসমে আপ কহীন না কহীন এক স্টেপ উপর হি রহেঙ্গে দূসরো সে, ক্যোঁকি আপকে দিল সে আ রহা হ্যায় ও করনে কা না।
1: রাইট,
0: तो मैंने कंप्यूटर्स में करा और मुझे बाय चांस कंप्यूटर्स में ही नौकरी मिल गई, तो मैं थोड़ा आगे उसी में बढ़ गई.
1: दैट्स वंडरफुल. और जैसा हमने कहा, जो करें अच्छे से करें. एक चीज़ है राधिका, जैसे आजकल हम सुनते हैं कि शुरू से कि इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत कॉम्पिटिशन है, तो कई बार लोगों को लगता है कि जॉब्स हैं इस फील्ड में या हम कैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब इंजीनियरिंग तो कर ली मगर अब आगे क्या. तो पढ़ाई करके जो ट्रांजिशन होता है जॉब के जाने के लिए, वो कैसा होता है?
0: वो बहुत ड्रास्टिक होता है. हम बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के आंचल में तो होते ही हैं, है ना, जो हमें नहीं पता लगता है कॉलेज में. बट अब जब जॉब करने लगते हैं, सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है, खुद का खाना, रहना, ऑफिस जाना, तबीयत खराब होती है वो मैनेज करना, और फिर ऊपर से काम करना. क्योंकि अभी आपको सिर्फ अपने से पढ़ाई करनी थी कॉलेज में, जब आप ऑफिस जाएंगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगर आपको कुछ काम दिया है तो उसका रिजल्ट आप दें अपने मैनेजर्स को या अपने बड़ों को, जो भी आपको काम दे रहे हैं. तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट मुझे लगता है कि अपनी निजी ज़िंदगी में भी जब हम मन लगा के कोई भी चीज़ काम करते हैं, अपने लिए करते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा खाना है तो हम खाते हैं उसको, है ना, कुछ भी हमें चाहिए तो हम वो कर लेते हैं. तो वैसे ही अगर हम जॉब कर रहे हैं तो मतलब हमें कोई पैसे भी दे रहा है, कहीं हम अर्निंग भी कर रहे हैं अपने, ना, तो उसके लिए आई थिंक पूरी श्रद्धा से अगर हम काम करें तो हो जाता है वो बैलेंस, धीरे धीरे हो जाता है.
1: ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, कि पूरा डेडिकेशन से करना. कभी कभी क्या होता है, हम स्मार्ट वर्क को समझते हैं कि हम कर भी लें, थोड़ा कम में भी कर लें और किसी को पता भी ना चले, ना. स्मार्टनेस की डेफिनेशन कई बार हम गलत समझ लेते हैं, पर ऐसा मैंने कहा कि डेडिकेशन से करें.
0: बिल्कुल,
1: है ना. और जब पढ़ रहे थे, मतलब थोड़ा सा आपने बताया कि कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर अगर हमें बनना है तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए?
0: अच्छा इंजीनियर बनने के लिए जैसे मैंने बताया कि जो भी करो वो मन से करो, जितना भी करो वो बस उसमें अच्छे से करिए वो सब चीज़ें, है ना. एंड थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, सिर्फ अच्छे की डेफिनेशन से तो नहीं होता है. बट हाँ, जैसे जब मेरा जॉब लेने का टाइम था, तो अब जब हम जॉब ले, पढ़ाई में और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत डिफरेंस होता है. तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने सब पढ़ा समझा, ठीक है, अब चार साल में जितना पढ़ा वो सारी चीज़ें आप एक दिन में तो नहीं बता सकते हैं इंटरव्यूअर को, ना. तो बेसिकली जब मैंने पढ़ाई की थी तो एप्टीट्यूड टेस्ट्स की एक बुक आती थी, वो पढ़ लेते थे, लॉजिकल रीजनिंग होती थी, इंग्लिश या वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में जो होती थी. तो आई थिंक थोड़े से टेस्ट्स जब हम अपने प्रॉपर रखेंगे इंटरव्यू से पहले तो हम क्लियर कर जाएंगे. और बेसिकली इंटरव्यूअर हमारे में भी ना वो डेडिकेशन ही देखता है कि जो काम इनको दिया जाएगा क्या वो डेडिकेटेड हैं. तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं रेजोनेट कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी, कि जो चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं. मानो कि अगर मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है तो मैं क्या वो डेडिकेटेडली कर रही हूँ? ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं ना,
1: कभी किया कभी नहीं किया.
0: हाँ, तो रोज उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम और अच्छे ही होते जाएंगे. या जिस भी फील्ड में, जिसको भी पेंटिंग है तो पेंटिंग रोज अलग अलग, अब और कितने टाइप की पेंटिंग्स आ गई हैं, तो सब उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आई थिंक और अच्छा होता जाएगा. तो वैसे ही आपके अंदर भी आपकी बेसिक स्किल्स देखी जाती हैं कि आप कमिटेड हैं अपने काम के लिए, डेडिकेटेड हैं, और आप करना चाहते हैं या बस हम ऐसे ही कर रहे हैं, किसी का जोर है तो बस हम कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए बस.
1: और उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए,
0: इंटरेस्ट आना चाहिए.
1: जैसे क्योंकि पहले कहा था ना, पसंद भी होना बहुत जरूरी है व्हाट आप जो कर रहे हैं उस चीज़ को. अच्छा, लेकिन अगर तैयारी की बात करें, जैसे इंजीनियरिंग में पेपर्स होते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, पहले ईयर में आपने बोला कि सब कुछ पढ़ाते हैं, उसके बाद और थोड़ा आप जो जिस स्ट्रीम में आपने अप्लाई किया है वो होता जाता है, लेकिन उसके जो प्रिपरेशंस है या एंट्रेंस देते हो आप, तो भी होती है कि भाई स्कूल की पढ़ाई करें कि भाई अब इतने सारे एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी की जाए?
0: इसके लिए अभी कल ही मैं बाई चांस अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर रही थी, और उन्होंने फिर मैंने रिकॉल करा, सिंस मेरे को अभी 10 ईयर्स तो आई थिंक हो गए हैं
1: 10 साल हो चुके
0: स्कूल छोड़े हुए. तो मैंने यही वापस उसको रिकॉल करा कि जैसे मैंने ये गलती करी थी कि 12th भी करा, दूसरा भी प्रिपेयर करने, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम लगाया, और दोनों ही जगह कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाया. अगर अब मैं वापस देखती हूँ, तब तो अच्छा लग रहा था सब कुछ, बट अब वापस देखो तो लगता है कि हाँ और बेहतर कर सकते थे. तो आई थिंक आज के जनरेशन के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो 100% अपना दोनों जगह दीजिए. वरना मेरे टाइम में, एंड आई होप अभी भी ऐसा होता है कि 12th के मार्क्स पर भी काफ़ी कॉलेजेस के फॉर्म्स निकलते हैं, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स के 96, 97, 98% थे तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल गया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. तो आई थिंक अगर हम थोड़ा सा वेट रहेंगे कि एग्ज़ाम्स के अलावा भी हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो बच्चे 12th को ही डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं या नहीं दे पा रहे हैं कोई और एग्ज़ाम्स, तो ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं. तो थोड़ा सा रिसर्च रखें, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं.
1: पहले तो नहीं मिलती थी,
0: कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो थोड़ा सा अवेयर रहेंगे. और अगर सच में करना चाहते हैं तो आप 10 लोगों से बात भी करेंगे तो किसी न किसी एक जने से आपको कोई ऐसी बात पता ज़रूर लगेगी जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी. तो वो करते रहें,
1: पता करते रहें, नॉलेज अपनी बढ़ाते रहें.
0: बिल्कुल,
1: अवेयर होना बहुत ज़रूरी है ना. कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जिस दिन फॉर्म निकला है उसी दिन वो आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी. पहले से अपनी जानकारी आप रखिए और पता करते रहिए. सोर्सेज आज बहुत हैं. अच्छा, अगर राधिका बात करें जॉब के इंटरव्यू की, तो वो बहुत नर्वस होते हैं लोग, पहली बार दे रहे हैं खास तौर से. बाद में तो चलो फिर भी एक बार एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू देते हैं तो लगता है हमने पता नहीं कैसे कपड़े पहने हैं या क्या पूछेंगे. अच्छा, अगर वो हमें नहीं आता हो तो बोल दे नहीं आता है, या कुछ और ट्राई करके बता दें, या क्या होना चाहिए? और एक इंजीनियरिंग का इंटरव्यू कैसा दिखाई देता है, मतलब कैसा होता है?
0: आपने बिल्कुल सही बोला कि इंटरव्यू जब नया नया देते हैं तो डर बहुत होता है, है ना. लेकिन हमने सुना है ये डर के आगे जीत है.
1: बिल्कुल,
0: है ना. तो अगर आप में सच में श्रद्धा है, डेडिकेशन है ना कुछ कर गुजरने की, तो आप ना अपने ऊपर मेहनत करेंगे इंटरव्यू से पहले. अगर आपको कहीं भी लगता है कॉन्फिडेंस में, मेरे पहनाव में कमी है, मेरे दिखने में कमी है, तो थोड़ा पहले आप उसकी तैयारी कीजिए. शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप से बात कीजिए. और वैसे तो मेरे भी पेरेंट्स बोलते थे कि अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात कीजिए, कम्युनिकेशन करेंगे तो और अच्छा होगा. बट फ्रेंड्स के साथ तो थोड़ा मजाक ही होता है, है ना, वो सब नहीं हो पाता है. बट मैंने अपने करियर में ये देखा कि अगर आपको बोलने में हिचकिचाहट होती है तो आप रिकॉर्ड कीजिए अपनी आवाज़. बोलिए, सोचिए कि आपके सामने इंटरव्यू बैठा है, खाली रूम में बैठिए, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और सोचिए, सिर्फ इमेजिन कीजिए कि सामने आपके इंटरव्यूअर बैठा है और वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि अपने बारे में बताइए, व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट डू यू डू, है ना. तो आप अपने आप बोलेंगे, आपको खुद को नहीं अच्छा लगेगा कि ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूँ या कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही हूँ. तो उसी पर थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप को हम ऐसे ही पॉलिश कर सकते हैं. और इंटरव्यूअर को भी पता है कि आपने अभी तक जॉब नहीं करी है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं है आपसे.
1: अच्छा,
0: एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है. बस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंटरव्यूअर को आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता.
1: ये बहुत बड़ी बात है. अगर खुद को कॉन्फिडेंट हम अपने में नहीं रखते हैं तो दूसरा कैसे करेगा हमारे ऊपर विश्वास. विश्वास कैसे लाएं, ये बताया आपने कि किस तरीके से तैयारी करें. और अगर बात करें पढ़ाई की, तो अभी तक हमने एग्ज़ाम्स दिए थे, बुक्स पढ़े थे, उनको लिखा था. अब कोई सवाल पूछ रहा है, वो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस है, मतलब आपको करके दिखाना है, तो अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो वो नहीं वैसे करा के देखते हैं जो मेरे टाइम में था. बट हाँ, ऑनलाइन आप हमेशा सर्च कर सकते हैं. आप ChatGPT का यूज़ कीजिए. ChatGPT पे आप लिखेंगे, बिल्कुल उस पर आप लिखेंगे कि इनिशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सो एंड सो ब्रांच फ्रॉम BTech या वट एवर, आप लिखेंगे तो आपको क्वेश्चंस देगा. है ना, आप उससे इंटरेक्ट कीजिए. जो आपके मन में सवाल है वो उससे बात कीजिए, क्योंकि वो सारा इंटरनेट सर्च करके आपके लिए बेस्ट चीज़ें लाएगा. है ना. तो अगर आपकी इलेक्ट्रिकल की फील्ड है तो कुछ कुछ टॉपिक्स मोटर्स के, ट्रांसफार्मर्स के, कुछ कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सब चाहते हैं कि पता होना चाहिए. है ना. अगर कंप्यूटर साइंस के हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब अब तो मेरे को नहीं पता कि कोर्स में क्या होगा, बट उस टाइम पे सी लैंग्वेज बहुत पढ़ा, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी. तो अगर आपने सी पढ़ी है ना, तो अगर आप उसमें प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्राम लिख पा रहे हैं कि नहीं, कुछ लूप्स यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, ये कुछ कुछ होते हैं हाई लेवल क्वेश्चंस जो आई थिंक आप गूगल करेंगे या चैट जीपीटी से भी पूछेंगे, तो वो उनको बोलो कि बेस्ट फाइव, बेस्ट एडवांस क्वेश्चंस विच आई कैन यू नो प्रैक्टिस फॉर द इंटरव्यू. वो सब आप चीज़ें देखेंगे तो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा. और अगर आप इंटरव्यूअर के सामने 10 क्वेश्चंस में से 5 भी बता पाए हैं और कॉन्फिडेंस से बता पाए हैं, दिखा पाए हैं कि मेरे अंदर विल है और पढ़ने की,
1: अच्छा
0: अभी हम इतना ही पढ़ पाए हैं तो बताया है, बट आगे हमारे अंदर विल है तो बिल्कुल हो जाएगा.
1: ओके अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार हमें लगता है एक भी रॉन्ग किया तो मतलब मुश्किल है, तो हम कोशिश करते हैं ना कैसे भी उसको बोल दें, थोड़ा घुमा दें और थोड़ा इधर से बोल दें कुछ, है ना, तो वो नहीं करना है मतलब ऑनेस्टी.
0: हाँ थोड़े बहुत आई थिंक जो भी है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रे करके जाइए कि जो आपके लिए अच्छा है ना वो हो आपके लिए. कभी कभी हमें इंटरव्यूज ऐसे भी मिल जाते हैं जो शायद सुनना चाहते हैं कि कुछ भी बता दो, है ना, तो थोड़ा बहुत बता दीजिए. बट अगर आप नहीं बता पा रहे ना तो होपलेस नहीं होना है कि नेक्स्ट आंसर हमें आता भी हो तो हम डर के मारे ना बता पाए.
1: राइट
0: ना, थोड़ा सा प्ले अलोंग करना पड़ता है जो आई थिंक विद एक्सपीरियंस आ जाएगा. बट अभी जब एकदम शुरू शुरू में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके मन से जो आ रहा है वो कीजिए, बस कॉन्फिडेंस से कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको.
1: मेन चीज कॉन्फिडेंस है.
0: हाँ.
1: ना, नहीं तो आता हुआ भी भूल जाता
0: है. भूल जाता है.
1: और जैसा एक और पॉइंट आपने बोला था कि विल सीखने की, पढ़ने की, वो डिटर्मिनेशन दिखना चाहिए.
0: बिल्कुल,
1: है ना, कि हम कर लेंगे.
0: यस.
1: ओके, आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल टिप्स हैं, बिकॉज चाहे हमने कितनी भी पढ़ाई की हो, अगर एग्ज़ाम प्रेशर, इंटरव्यू प्रेशर दिमाग में आ जाता है तो वो उस मोमेंट में वो पढ़ाई हम उसको नहीं यूज़ कर पाते हैं, है ना.
0: एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरव्यू दे रहे होंगे पेरेंट्स के प्रेशर में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि एक जॉब हो बच्चे के पास, एक इनकम हो तो वो अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं. बट आपका मन हो सिंगिंग का, डांसिंग का, या कहीं म्यूज़िक का, जहाँ पे इनिशियल लेवल पे नहीं हम पैसे कमा पाते हैं, तो उन लोगों को मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर पेरेंट्स आपको चाह रहे हैं करना और आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 50% अपना इनिशिएटिव ले सकते हो उनका मन रखने का, तो आप वो कीजिए. और उस जिस डोमेन में आप घुसे हैं, जो भी जॉब में घुसे हैं, उसमें काबिल इतना बनिए कि आपका जो पर्सनल, आप जो चीज़ करना चाहते हैं ना, वो अपने मन से साथ साथ रह के कर लीजिए.
1: ओके.
0: जिससे आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा पाएं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आपने जो कहा है वो भी, और जो मैं चाहता हूँ वो भी.
1: वो भी
0: नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने मन का कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो हम खुद होपलेस हो जाते हैं. पेरेंट्स तो पहले से ही होपलेस थे हमारे लिए, और हम भी हो गए, तो वो बहुत खराब हो जाता है.
1: कहते देखो बोला था ना तुम्हें. फिर सुनना भी पड़ता है.
0: बिल्कुल, सबसे इजी होता है वो, सब कोई भी एकदम से बोल देता है कि हमने तो पहले ही कहा था.
1: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है. और सही मायने में देखा जाए राधिका, हम देख रहे हैं कि इंडिया में तो जो रिसर्च होती है कि यूथ में डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. बहुत कारण है, डेफिनेटली एक कारण नहीं है, लेकिन हाँ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है. टू मच प्रेशर, और जैसा आपने कहा, पेरेंट्स का भी सुने, अपना भी करें. अपना मन मार के जीने में भी थोड़ा मुश्किल है, और पेरेंट्स के अनुभव को भी हम एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकते.
0: बिल्कुल,
1: तो एक बैलेंस, एक पीच का रास्ता. ओके ठीक है, आई थिंक रास्ते सबके अपने अपने हैं, बढ़ते जाइए, आगे करते जाइए. राधिका, जब जॉब करने लगते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, और उसको यू नो आपने कैसे क्रॉस किया?
0: जॉब हम जब करने लगते हैं तो हमारी लाइफ 360 degrees टर्न हो जाती है.
1: ओके.
0: क्योंकि हम सच में आई थिंक उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि आप अभी तक अपने पेरेंट्स के शेल में ही थे, अब आपको सब कुछ देखना है. शुरू शुरू में आई थिंक जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए कंपनीज़ भी सपोर्टिव होती हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता होता है कि बच्चे नए आए हैं. बट डिफरेंस होता है बिहेवियर में. आप कॉलेज में होते हो तो आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, बट ऑफिस में रह के आपको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है. एंड आई थिंक अगर आप ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप नया नया जॉब कर रहे हैं तो आप से सीनियर्स जो हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस जो हैं, उनसे शुरू में ही सीख लीजिए. क्योंकि जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना तो लोग ज़्यादा चाहते नहीं हैं कि ये सीखे कुछ. आसपास ऐसा एनवायरनमेंट भी मिलता है कि लोग नहीं प्रोग्रेस करने देते हैं, तो शुरू में आपके पास
1: कंपटीशन अगली हो जाता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. सबको लगता है ना कि आप ज़्यादा अगर ग्रो कर जाएंगे तो उनकी भी जॉब कहीं ना कहीं खतरे में हो सकती है. तो शुरू में आप जितना सीख सकते हैं और जितना ग्राउंडेड रह के सीख सकते हैं, जितना हम्बल रह के सीख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस से सामने वाले को भी भला ही हो, आपसे अच्छा ही हो, है ना, उस तरीके ये एटीट्यूड लेके सीखें. थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है, बट आई थिंक आपकी सराउंडिंग आपको सिखा देती है. थोड़ा डिफिकल्ट भी किसी किसी के लिए हो जाता है, बट अल्टीमेटली आई थिंक सराउंडिंग्स हमें आगे बढ़ा देती हैं. बस ग्रास्प करते चलिए जिससे आप जो भी सीख सकते हैं, मतलब वेल बन जाओ एक ना, कि कोई भी कहाँ से कुछ भी लेके वेल में ड्रॉप करते चलें कि आगे हम उसको यूज़ कर सकें.
1: सीखते जाना है हर तरफ से.
0: बिल्कुल.
1: ओके. और जैसा आपने कहा हम्बल होके सीखते जाना है. ओके. तो अगर सस्टेन करने की बात करें एक जॉब को या ग्रो करने की बात करें, तो कई बार हमें लगता है हम बहुत फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए और हमारी प्लानिंग्स भी होती हैं 1 साल 2 साल 3 साल की, यू नो अब हमें यहाँ से यहाँ पहुँच जाना है. तो वो एम्बिशन जो है वो कितना ठीक है, मतलब वो ग्रोथ फास्ट होनी चाहिए या उसका पेस जो हमारे माइंड में होता है वो अलग होता है और रियलिटी में अलग होता है.
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला है कि हमारे माइंड हमारा बहुत ना फिकल है या बहुत बचकाना है, आज कुछ सोचेगा कल कुछ सोचेगा ना. तो मुझे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आपको जो भी मन करता है ना सीखने का, बनने का, उसको लिखिए रोज़.
1: ओके.
0: है ना, रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार लिखिए कि ये बनना है, ये सीखना है. क्योंकि करना बहुत कुछ है पर सोच हम बहुत रहे हैं, क्या हम एक्शंस ले रहे हैं उसके लिए?
1: ओके, राइट.
0: थोड़ा
1: प्लानिंग है.
0: बिल्कुल, वही मन का वही रहता है कि प्लान हम बहुत करते हैं, एक्ट हम कुछ नहीं करते हैं. इमोशनल होके हम प्लानिंग कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, कि उसको देखा हमने कि वो ये कर रहे हैं हम भी ये करेंगे. फिर हम किसी और को देख लेते हैं तो हमें लगता है नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, ये कर लेते हैं. तो लिखिए, अपने आप से बात कीजिए. जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया ना कि रिकॉर्डिंग करके सुन रहे हैं अपने आप को, तो वैसे शीशे में बात कीजिए अपने आप से. समझिए कि क्या जो मैं ये बोल रहा हूँ वो मेरे दिल से रेजोनेट कर रहा है, जो मैं दिल में सोचना चाह रहा हूँ उससे आ रहा है. और कहीं ना कहीं अगर सच में आ रहा है तो आप फिर एक्शन आइटम्स अपनी लिखिए कि इसको अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. धीरे धीरे बढ़िए, किसी और को देख के मत बढ़िए कि वो इतने आगे पहुंच गए. क्योंकि इस दुनिया में सबका अलग अलग मिशन है, अलग अलग मोटिव है, अलग अलग पेस है, अलग अलग टाइम पे ग्रो करेंगे. तो कंपेयर करके परेशान नहीं होना है, बस जितना हम ग्रो कर रहे हैं वो अच्छे से ग्रो करना है. तो कितना भी टाइम लीजिए, बट अगर हम एक महीने में एक स्टेप भी ले पा रहे हैं तो हमने एक स्टेप तो लिया ना, वो ग्रोथ ही है हमारी.
1: मतलब अपनी ग्रोथ को किसी और की ग्रोथ के साथ कंपेयर नहीं करना.
0: बिल्कुल.
1: वो भी कई बार डिमोटिवेट कर देता है तो लाइफ में. सबकी अपनी पेस है, सबकी अपनी जगह, सबका अपना मोटिव है. आगे बढ़ते रहिए, खुद को खुद से ही कंपेयर कीजिए.
0: यस.
1: ओके. और अगर मान लीजिए जैसे हम सीखते हैं, तो एक और सवाल ये आता है कि कितना टाइम हमें देना चाहिए. मतलब क्या हमारी पूरी लाइफ हमारा जॉब होता है या वो एक बैलेंस रखना चाहिए या क्या करना चाहिए? कितना समय दें?
0: देखिए, जॉब हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारा बॉडी हेल्दी है. है ना, तो अपनी बॉडी और अपने माइंड के लिए भी वक्त निकालिए रोज़. चाहे हम सब बोलते हैं कि नहीं एक्सरसाइज करने का तो टाइम नहीं है, मेडिटेट करने का तो टाइम नहीं है, बट अगर हम किसी से रैंडमली भी बात करने लगते हैं तो 10-15 मिनट आधा घंटा कहाँ निकल जाता है पता नहीं लगता है. तो रोज़ सुबह उठ के अगर आप 1 मिनट 2 मिनट नहीं तो 20 सेकेंड ही मेडिटेशन स्टार्ट भी कर सकते हैं तो थोड़ा वो कीजिए, आधा घंटा कोशिश कीजिए एक्सरसाइज करने का. और नहीं भी हो पाता है, एक दिन नहीं हो पाया, दो दिन नहीं हो पाया, तो तीसरे दिन फिर से खड़े होके कीजिए. वो अपने स्केड्यूल को अपने हिसाब से बनाइए कि आपका पर्सनल टाइम भी रहे और आपका जॉब का टाइम भी रहे. आजकल जैसे कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम होने लगा है तो कहीं ना लीनियंसी आ गई है कि ज़्यादा देर हम लोग ऑफिस का काम करें. और कहीं ना कहीं इजी भी होता है कि बेड पे लेट के काम कर लिया, कभी कहीं बैठ के काम कर लिया, कभी कहीं बैठ के काम कर लिया. तो काम को भी एक लिमिट दीजिए कि अगर मेरा टाइम 9 से 6 का है तो मैं 9 से 6 में कंप्लीट कर लूँगी अपना काम, और नहीं हो पाता है तो उस टाइम में मैं कुछ और करके रात को बैठ जाऊँगी थोड़ी देर. बट अगर हम पूरे ही दिन काम करते रहेंगे या पूरे ही दिन घूमते रहेंगे तो वो गलत है. अपने हिसाब से बैलेंस कीजिए. बट जो चीज़ आपकी कोई हॉबीज़ होती हैं या पर्सनल हेल्थ के कुछ चैलेंजेस हैं उन सबको टाइम दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम जॉब इसलिए कर रहे हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी कर पाएँ. और वो अच्छी नहीं है तो फिर जॉब करने का क्या फ़ायदा है.
1: मतलब कई बार तो ये सोचते ही नहीं, एक लूप की तरह हम चलते रहते हैं उसमें, लेकिन वो कर क्यों रहे हैं और वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं,
0: बिल्कुल
1: वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है. ओके अच्छा राधिका, एक और क्वेश्चन ये था कि जब आपने इंजीनियरिंग करी तो जॉब के लिए क्या अलग, मतलब उस समय जो चूज़ करना है, जैसे आपने एक चॉइस तो करी जब आपने इंजीनियरिंग चूज़ की, तो उसमें कौन सी आपको करनी है, उसके बाद जॉब के समय भी क्या चॉइसेस होती हैं कि उसमें अलग अलग फील्ड्स हैं?
0: दोनों टाइम पे चॉइसेस होती हैं. एंड आई थिंक अगर मैं पहले बताऊं, जब आपने बीटेक करा या कुछ भी इंजीनियरिंग में आपने चूज़ करा और आपको आपने आसपास पूछा, आपको जो समझ आया आपने वो स्ट्रीम चूज़ कर ली,
1: राइट
0: आप कॉलेज चले गए, फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके बाद भी एक ऑप्शन होता है, जैसे मेरे कॉलेज में था कि अगर आपके 80% प्लस परसेंटाइल आई है फर्स्ट ईयर में तो यू हैव एन ऑप्शन टू स्विच योर ब्रांच. जो आपने ब्रांच लेके आप गए थे उसके अलावा आप दूसरी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको रहते रहते समझ आ जाता है कि किस डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई होगी,
1: एक बेहतर आउटलुक मिलता है.
0: बिल्कुल. तो आप स्टार्टिंग में जॉब सॉरी कॉलेज जाने से पहले आपको जो समझ आ रहा है वो चूज़ कीजिए, जो आपके मन से आ रहा है या जो आपके आसपास के लोग समझा रहे हैं, आपको जो समझ आ रहा है वो लीजिए. अंदर जाके एक साल पढ़िए, आपको नहीं समझ आता तो अच्छे नंबर से ऐसे पढ़िए कि आप चूज़ कर पाएँ उसके आगे, है ना. और उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाती है फिर उसमें जो भी आपकी जॉब लगती है, अगर अब दो टाइप्स की कंपनीज होती हैं, एक होती हैं जो वेल सेटल्ड कंपनीज होती हैं जैसे MNCs हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या स्टार्टअप्स होती हैं, है ना. तो यूजुअली मैंने जो देखा है स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा कोडिंग की जाती है. तो अगर आपको अपने कंपनी में पता लग गया, जैसे आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपको पता लग गया है कि मुझे जावा करनी है, तो उसमें आपको जावा करनी है या सी में आपको करना है, और आपको उसी टाइप की कंपनी भी मिल जाती है, है ना, तो आप उसमें आगे बढ़ के और वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा लेवल पे कोडिंग अपना एनहांस करने का. ये स्टार्टअप्स की बात हो गई. और अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं तो आपके पास फिर से ऑप्शन होता है कोई भी डोमेन अपनी सिलेक्ट करने का. फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो मैंने देखा है उसमें हमेशा 4 महीने 5 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं फिर से. जो जो रिक्वायर्ड होंगे एक आईटी कंपनी में या किसी भी बैकग्राउंड में, तो आपको जब पढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि आपको क्या पसंद है. तो जैसे एक डेवलपमेंट, जैसे मैं डेवऑप्स में हूँ ना, तो डेवलपमेंट आपको करनी है तो डेवलपमेंट यूजुअली जावा में होती है या पाइथन में होती है, तो ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, है ना, तो आपको इसमें कंटिन्यू करना है तो आप इसमें जा सकते हैं. टेस्टिंग होते हैं, टेस्टिंग के भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसमें जा सकते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें जा सकते हैं. कंपनीज आपको ऑप्शंस देती हैं कि आपको इसमें वैकेंसी आई है तो आप इसमें आ जाइए. शुरू से सब नए होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा बार रिजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है. एक आध बार हर कंपनी की पॉलिसी होती है कि आप एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, ना, तो वो कर सकते हैं. और अगर नहीं मिलती है तो मेरा तो फंडा यही है कि आपको जो मिल रहा है आप उसमें इतना अच्छा कीजिए कि अगर आपको चेंज भी करना है तो सामने वाला आपको रोक नहीं पाए.
1: मतलब उनको आपकी ये पता चल जाए कि इनकी ये क्वालिटी है, ये कैपेसिटी, ये कर सकते हैं.
0: बिल्कुल,
1: दिल डू इट.
0: बिल्कुल,
1: वो विश्वास हो जाता है लोगों को. ओके. मतलब जो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी कहे वो निकल के आ रही है बात कि जो करो अच्छे से करना है, उसको पूरा बेस्ट देना है.
0: बिल्कुल, बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के करना है.
1: बेस्ट फुट फॉरवर्ड. ओके. तो ये हमें पढ़ाई में भी काम आ रहा है, जॉब में भी काम आ रहा है और लाइफ में भी काम आ रहा है.
0: यस.
1: ओके. तो जाते जाते अगर मैं आपसे बोलूं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो 11th में हैं, 12th में हैं या फिर अभी आगे की पढ़ाई, यू नो कभी हम ड्रॉप भी करते हैं कुछ साल, आप और प्रिपरेशन करना चाहते हो. अच्छा, एक और सवाल ये भी है कि क्या हमें और कोर्सेज करने चाहिए? मतलब एक तो बीटेक कर रहे हैं लेकिन आज हम देखते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जो लैंग्वेजेस की बात करी है, तो क्या और चीज़ें सीखनी चाहिए या पढ़ना चाहिए या उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए?
0: आई थिंक सबके इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन ही करो जस्ट टू शो कि हाँ मैंने सर्टिफिकेशन किया है.
1: Okay.
0: अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं तो आप कीजिए सर्टिफिकेशन. आप नहीं भी करेंगे शुरू के स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट हाँ, आगे जाके आपको करना पड़ता है. थोड़ा सा सर्टिफिकेशन में होता है कि एडवांस नॉलेज आपको गेन होती है. तो इफ़ यू आर रियली विलिंग टू लर्न, आई थिंक हमेशा पॉजिटिव पॉइंट तो रहता ही है सर्टिफिकेशन का. बट स्ट्रेस नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए. जो हम सर्टिफिकेशंस में सीखेंगे वो अगर हम प्रैक्टिकली खुद से भी सीख लें. अब जैसे हम जावा पे काम कर रहे हैं तो खुद से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स होते हैं जो हम डाउनलोड करके और उसको कंपाइल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. अगर हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो हम कुछ भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं. रैंडम सिनेरियो हम गूगल पे से उठा सकते हैं एंड वी कैन ट्राई टू क्रिएट आवर ओन स्क्रिप्ट.
1: अच्छा,
0: उसको रन कर सकते हैं. तो अगर आप में सच में वो विल पावर, अगेन आई एम यूजिंग द सेम वर्ड, अगर आप में सच में है, यू विलिंग टू लर्न, तो आप कैसे भी अट्रैक्ट कर लोगे उसको, है ना. खुद से भी आप मेहनत कर, मैं यही कहूँगी कि खुद से पहले मेहनत करना सीखिए, खुद से कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे करना है, उसके बाद सर्टिफिकेशंस भी हो ही जाएंगे. बट स्ट्रेस नहीं लेना है कि हाँ किसी ने किया है या ऐसा बोला जाता है तो करना है. नहीं, आपके दिल से जो आ रहा है वो कीजिए. अब तक
1: लर्निंग होनी चाहिए, मतलब
0: हाँ,
1: कोर्स से हो या अपने आप हो.
0: बिल्कुल,
1: है ना, वो एंड नहीं होना चाहिए. मैं ये नहीं लगना चाहिए मैंने सीख लिया, अब कर लिया. सीखते रहना है.
0: यस.
1: ओके. लड़का, कई बार ना लड़कियों को भी ये कहा जाता है कि ना इंजीनियरिंग शायद आपके लिए इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक तो पहले साइंस चूज करने में ही कई बार होता है कि हाँ रे तुम लड़की हो, मतलब ठीक है आर्ट्स ले लो या फिर कॉमर्स भी चलो ठीक है, बट साइंस टेक्निकल है और फिर आगे उस तरह के जॉब्स हैं, तो कई बार लड़कियों को इतना इंकरेज नहीं किया जाता है. और अगर किया भी जाता है तो वो मेडिकल लाइन पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनको आगे भेजना. तो इंजीनियरिंग और गर्ल्स, क्या आपको लगता है क्या ये कॉम्बिनेशन अभी कुछ चेंजेस हैं या क्या है इस समय सिनेरियो?
0: मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली कि कोई इंजीनियर हो गर्ल. मेरे घर में भी ऐसा था कि डॉक्टर बनने से मना किया था क्योंकि ज़्यादा एज हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, फिर शादी नहीं हो पाएगी. तो इस चक्कर में आपको आसपास आई थिंक सराउंडिंग से और आपके पेरेंट्स से या इंस्टेंट सराउंडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो आपको अचीव करने के लिए रोकेंगी. बट आप क्या करना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपको क्या करना है. इंजीनियरिंग भी अगर गर्ल्स कर रही हैं तो आजकल कंपनीज इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई हैं गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कि अगर नाइट शिफ्ट है तो आपको कैब्स में स्पेशली गार्ड होगा फॉर द लेडी कि उसको ड्रॉप करेंगे एंड लास्ट ड्रॉप नहीं होगा. कोई और अगर बॉयज़ भी होंगे तो लास्ट ड्रॉप किसी भी गर्ल का नहीं रखेंगे. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ है ऐसी कंपनीज जो गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशंस उनके लिए रखती हैं. तो आई थिंक अब काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है जहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी मेजर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं. तो आई डोंट थिंक कि अनसेफ है लड़कियों का इंजीनियर बनना, बहुत सेफ है. बस ये है कि आप खुद से स्ट्रांग रहिए, दूसरों की बातों सुनिए सबकी बट करिए अपने मन की,
1: अपना डिसीजन लीजिए,
0: अपना डिसीजन खुद लीजिए और स्ट्रांगली लीजिए. ये नहीं कि आज हमने किया, जो आपने चूज कर लिया है फिर उस पर रहिए, चाहे उसमें अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब सारी कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपके ऊपर हैं. तो वो आपको इतना इनिशिएटिव आपको लेना है ऐसे कि आप कॉन्सिक्वेंसेस उसके बियर कर पाए.
1: ये बहुत बड़ी बात है. कई बार हम छोड़ देते हैं या फिर कुछ ठीक नहीं हुआ हमारे अकॉर्डिंग, जो हमने सोचा था नहीं हुआ, तो उसको वहीं पे जाने देते हैं, सोचते हैं हमने ये डिसीजन क्यों लिया, ये किया गलत किया, और फिर पैनिक भी हो जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: लेकिन कॉन्सिक्वेंस को झेलना भी है और आगे बढ़ना भी है सीख के.
0: बिल्कुल.
1: तभी वो प्रोग्रेस हो पाती है किसी भी फील्ड में.
0: बिल्कुल.
1: तो जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगे स्टूडेंट्स से जो तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ टिप्स हैं आपके पास कि वो एग्जाम्स बेहतर कैसे दें या अच्छे इंजीनियर कैसे बने या आगे बेटर कैसे करें, कोई भी टिप्स?
0: आई थिंक इन्जॉय करो लाइफ को, अपनी हॉबीज फॉलो करो, एंड आई थिंक जो भी आपका दिल करता है, मैं यही विश्वास करती हूँ कि जो आपका दिल करता है वो कीजिए और मज़े से कीजिए. तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी तरक्की ना हो.
1: पढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं?
0: कभी कभी कर सकते हैं. अब मैं जॉब करती हूँ तो मेरे को बाय चांस ऐसी चीज़ मिल गई है जिसको करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. तो कहीं ना कहीं दूसरों से बेहतर हो जाता है मेरा काम, ऐसे मेरे सीनियर्स बोल देते हैं, तो वो बहुत मज़ा आता है उसको करते करते. तो पढ़ाई में भी मज़ा है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि किस पढ़ाई में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है.
1: ये इंटरेस्टिंग बात है, पढ़ाई में तो मज़ा है अपने लिए, लेकिन ढूंढना पड़ता है कि
0: बिल्कुल
1: कहाँ छुपा हुआ है. ओके. तो इन्जॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, ऊपर नीचे होगा भी तो भी सीखिए और आगे बढ़िए. और हमेशा एक वो कहते हैं ना कि जब तक जीवन है तब तक सीखना है, तो सीखने की उत्कंठा कहते हैं होनी चाहिए, मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छा करते जाएंगे. और कॉन्फिडेंस जैसा मैंने बताया था बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं.
0: यस.
1: थैंक यू सो मच राधिका हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ जानने सीखने को मिलेगा, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल है.
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
1: थैंक यू. और दोस्तों, अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, या कोई भी बात है जो आप रेडियो मधुबन से शेयर करना चाहते हैं, दोस्तों अगर आपके पास कोई मैसेजेस भी आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हम एक बार फिर से बता दें कि हर मैसेज, हर फोटो, हर वीडियो सच्चा नहीं होता. अगर आप वेरीफाई कराना चाहते हैं कुछ, तो भी आप रेडियो मधुबन को मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर इस नंबर पर जो कि है 94-14-15-14-15, यानी कि 9414151415. फिलहाल लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगली कड़ी में. जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए मुस्कुराते.
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है. मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in. हर घर

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है, और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस? इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करें।
0: अभी बजे हैं शाम के 6।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वाह वाह, बहुत अच्छी फसल हुई है आज तो। ये मैं बाजार में बेच के आता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छी फसल हुई है आज।

0: अरे सारे सब्जी बिक गए आज, तो फिर आप तो बहुत अच्छे रोजगार किए होंगे आज।
1: हाँ, अरे वही हुआ है थोड़ा बहुत। इस बाजार में सब्जी बेचने में कितना मुनाफा होगा तुम ही बताओ। हाँ कितना होगा है?
0: ज्यादा पैसे से क्या होगा बताओ, इससे तो हमारा अच्छा खासा चल रहा है दिन।
1: तुम नहीं समझोगी, जाओ जाओ जाओ खाना बनाने जाओ। हाँ बहुत भूख लगी है। जाओ।
2: एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम मनोज है?
1: हाँ, लेकिन आप कौन है?
2: मैं एक ऑनलाइन ग्रोसिंग कंपनी की तरफ से आया हूँ। मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ। आप इस एरिया में सबसे बड़े फार्मर हो और आपके पास बहुत बड़ी जमीन भी है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ।
1: ये तो आश्चर्यजनक है, आप इतना कुछ जानते कैसे हैं?
2: हमने सर्वे किया था
1: सर।
2: जाने दीजिए, हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं।
1: ऑफर? क्या ऑफर?
2: हमारी कंपनी डोर टू डोर जाकर सब्जी सप्लाई करती है, यानी कि उनके घर पहुंचा देती है, इसीलिए हमें बहुत सारी सब्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम बड़े बड़े फार्मर्स को ढूंढते हैं और उनसे सब्जी खरीद लेते हैं।
1: मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं आपको फसल बेचूं?
2: ठीक कहा आपने, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपको एडवांस भी देंगे। उस एडवांस से आप खेती बाड़ी कर सकते हैं और फिर वो सारी सब्जियां हम खरीद लेंगे।
1: अरे ये बात है क्या? वाह वाह वाह, मतलब मेरा कुछ खर्चा ही नहीं है। वाह वाह वाह वाह वाह।
2: तो आप तैयार है ना?
1: हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ।
2: ये लीजिए, इस कागज पे अपना अंगूठा दे दीजिए।
1: अंगूठा क्यों? मुझे तो साइन करने आता है।
2: अच्छा ठीक है, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ के इस पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए, ये रहा आपका एडवांस। ठीक समय आने पर हम आपसे फसल लेके जाएंगे।
0: जरा बताइए आदमी कौन आया था?
1: एक बहुत बड़े कंपनी का मैनेजर। भाग्यवान, आज से मैं अपनी फसल कंपनी को बेचूंगा। हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे भाग्यवान। हाँ बहुत अच्छा होगा।

0: आह, अब मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। हाँ, आह, आह, आह, वाह, ये तो बहुत अच्छी फसल हो गई। आह, आह, अब इसको जल्दी से तोड़ के अपने पास रख लेता हूँ। कंपनी वाले सर कल ही आएंगे ना। हाँ।
1: क्या हुआ, दिन तो ढलते ही जा रहे। कहाँ है आपका मैनेजर बाबू?
0: बस बस आते ही होंगे। वो देखो आ गए आ गए। अरे आइए आइए आइए आइए आइए मैनेजर बाबू, आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था।
2: तो फसल कैसी हुई है मनोज बाबू?
0: फसल फसल तो बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है।
2: वाह वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए कि वो फसल कहाँ पर रखी है, यानी मेरे आदमी वहाँ जाकर वो फसल लेकर आएंगे।
0: हाँ हाँ, घर पे ही है। भाग्यवान, और सब्जी का पूरा बुरा लेकर आ जाओ। हाँ जाओ।
1: हाँ, आइए आइए मेरे साथ आइए।
2: ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, ये सब सब्जियाँ गाड़ी में जाके रख दो। मनोज बाबू, ये रहा आपका पैसा, ये है आपका अगली बार का एडवांस पेमेंट। ठीक है ना, बराबर है ना?
0: अच्छा मैनेजर सर, आप लोग एक बार में कितनी सब्जी खरीद सकते हैं?
2: आप जितनी फसल उगा पाएंगे हम उतनी फसल खरीद सकते हैं। हम आपको ज्यादा पैसा देकर ज्यादा फसल खरीद सकते हैं, और सब्जियां एकदम ताजी होनी चाहिए।
0: उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ बिल्कुल मत चिंता कीजिए। कोई चिंता नहीं है।
2: ठीक है, मैं एक महीने के बाद फिर से आता हूँ। चलो

0: ये क्या लाए हो?
1: दवाई लाया हूँ, दवाई।
0: दवाई? किसका दवाई है ये?
1: ज्यादा फसल उगाने के लिए।
0: मतलब क्या करने वाले हो?
1: अरे मेंढर साहब बोले थे ना कि मैं जितना फसल उगा सकता हूँ वो उतना खरीद लेंगे, इसलिए मैं ये ऐसा दवाई लेकर आया हूँ जिससे बहुत बहुत बहुत फसल हो जाएगी और फसल का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा।
0: लेकिन दवा से फसल जो बनेगा वो अच्छी होगी ना?
1: अरे उसकी उसकी चिंता मैं क्यों करूं? बहुत ज्यादा पैसा होगा, बस बस और कुछ नहीं।
0: सुनिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ऐसा मत कीजिए ना, कुछ गड़बड़ हो गया तो।
1: अरे रहने दो रहने दो, तुम्हें तो बोल कर ही गलती कर दी मैंने। अरे सब लोग अमीर बनने के लिए यही सब कुछ करते हैं।
0: क्या पता, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये।
1: अरे रहने दो, तुम्हें और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं कर लूँगा। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेता हूँ। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई भी नहीं।

0: क्या बात है मनोज बाबू, इस बार इतनी सारी फसल उगी है। बड़ा काम काज हो गया आपका तो।
1: बस थोड़ी ज्यादा मेहनत किया था बस। आपको तो छाट छाट के दिया हूँ अच्छी अच्छी सब्जी, खराब सब अपने पास रख लिया हूँ बाजार में बेचने के लिए।
0: अच्छा अच्छा, ये लो आपके पैसे।
1: अरे वाह वाह वाह, इतना सारा पैसा। अब मैं अमीर हूँ। जाता हूँ अब मैं बाजार जाके खराब सब्जी बेच कर आता हूँ, दोनों तरफ से ही पैसा, अच्छे से भी और बुरे से भी।
2: अरे अरे अरे अरे, यहाँ पे क्यों आए हो?
1: अरे यहाँ क्यों मतलब, मैं तो सब्जी बेचने आया हूँ।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम अब यहाँ सब्जी नहीं बेच सकते हो, हमारे पास पक्की खबर है, तुम एक अच्छी कंपनी को अपनी पूरी सब्जी बेच रहे हो, तुम दोनों तरफ से लाभ कमाओगे तो हम क्या करेंगे।
4: जाओ जाओ जाओ, घर चले जाओ, इस बाजार में तुम सब्जी नहीं बेच सकते, बिल्कुल नहीं, जाओ।
1: अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
5: उन लोग तुम्हें बाजार में सब्जी बेचने नहीं देगा तो फिर क्या होगा?
1: अरे क्या होगा इससे, कंपनी के पास बेचूंगा और बाजार से दुगना कमाऊंगा, समझे, तीन गुना पैसा होगा, समझे, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या हुआ मैनेजर साहब?
0: क्या हुआ, ये सब्जियां हैं कि मरने का रास्ता?
1: मतलब मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ।
0: अरे आपने दी हुई सब्जियां हमारे क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इसे तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा, इसमें से हमें केमिकल पाउडर मिले हैं जिससे भयानक रोग होते हैं और लोग बीमार पड़ जाते हैं। आपने केमिकल की मदद से इतने कम समय में इतनी सारी सब्जियां उगा ली।
1: नहीं मतलब
0: नहीं नहीं, कोई बहाने मत बनाओ अब तुम। ये लो तुम्हारी घटिया सब्जियां और मेरा पैसा वापस दे दो, एडवांस पैसे भी।
1: पैसा?
0: हाँ पैसा पैसा, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि क्वालिटी टेस्ट में अगर सब्जियां फेल हो गई तो तुम्हें सारे पैसे वापस देने होंगे। वापस दे दो वरना मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा।
1: पुलिस? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, लीजिए लीजिए, आप अपना पैसा लीजिए, लीजिए लीजिए अपना पैसा।
0: आज के बाद मैं कभी भी आपसे कोई सब्जियां नहीं खरीदूंगा।
1: मेरा सब खत्म हो गया भाग्यवान, मेरा सब खत्म हो गया, हर तरफ से लाभ पाने के लालच में मेरा सब चला गया भाग्यवान।
5: इसलिए तो मैं आपको बार बार मना किया था कि ये सब मत करो, ऐसा कुछ मत करो, लोभ मत करो, मगर आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। अब देखो अभी क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा, मैं कभी लालच नहीं करूंगा, लाल

0: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आज जुड़ चुके हैं हम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम लेकर आई हूं और आपके लिए लेकर आई हूं सवाल। आज सवाल है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से श्री राम के सबसे अच्छे दोस्त कौन थे? वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से कौन श्री राम के सबसे अच्छे दोस्त थे? ए कुंभकर्ण, बी सुग्रीव, सी मेघनाथ। सही जवाब जरूर देना।
1: 9414151415 पर देना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से कौन से श्री राम के सबसे करीबी दोस्त थे? ऑप्शन है ए कुंभकर्ण, ऑप्शन बी है सुग्रीव, ऑप्शन सी है मेघनाथ।
0: तो चलिए सुन लेते हैं आज एक गीत। जीतना जरूरी है और जीतने के लिए कल जो पूरा हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की वजह से एक रन हुआ था, उस रन में बहुत सारे साथी पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमारे ब्रह्मा कुमारी से भी और दूर दराज से लोग भी। चलिए इसके साथ साथ एक साथी वापस आए हैं, हम बात कर लेते हैं। नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हैं। जी आप तो बढ़िया हैं?
0: हम बढ़िया हैं। बताइए सर।
2: जी सुग्रीव है ऑप्शन
0: में। सुग्रीव है ऑप्शन में। थैंक यू। रेडियो मधुबन में कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपका दिन शुभ बीते।

0: इंडिया वर्सेस स्पेन।
1: कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए।
0: और कोबल चौटाला लगा बेहतरीन गोल।
1: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।

0: जग दे इंडिया। और पुनः सवाल एक बार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से कौन श्री राम के परम मित्र थे? ऑप्शन है
1: ए कुंभकर्ण, ऑप्शन बी है सुग्रीव, ऑप्शन सी है मेघनाद।
0: सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, हेलो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कौन बोल रहे हैं।
1: ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी
0: जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए।
1: गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। और कल का जो प्रोग्राम हुआ मैराथन, इतना सुंदर, इतना अच्छा हुआ, उसका लाइव भी और हमने कमेंट्री भी सुनी, जिसमें आप भी दौड़ रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। तो सभी रेडियो मधुबन परिवार, सभी जो भी जिन्होंने पार्टिसिपेट रनर और हमारे सभी रेडियो मधुबन के सभी आज जो कमेंट्री कर रहे थे, लाइव बता रहे थे, तो सभी का धन्यवाद। और बहुत बहुत कार्यक्रम अच्छा लगा, और आज का सवाल का जवाब जो अभी भाई जी ने दिया, शुक्रिया वो है। और सभी को नमस्कार,
0: थैंक यू, ओम शांति।

0: आप रोज रोज जंगल में अकेले जाते हैं उस गोदाम पे पहरा देने, मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं मालिक आपके साथ एक और आदमी को क्यों नहीं भेजता, मुझे डर लगता है।
1: जमींदार साहब जानते हैं कि मेरे साथ कोई भी आदमी भेजने की जरूरत नहीं है, साथ में मेरे साथ कुल्हाड़ी भी तो रहती है, तुम बिल्कुल डरो मत, हाँ समझी।
0: तुम बकवास बंद करो, वो जो कुल्हाड़ी तुम लेकर जाते हो ना, उसे बिल्कुल धार नहीं है, तो फिर कैसे तुम अपनी रक्षा करोगे? हाँ
1: अरे सुनो, गोदाम में ना जमींदार साहब की बहुत कीमती चीजें रखी हैं, तो वहाँ पर पहरा देने के लिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया है, उन्हें मुझ पर यकीन है। चलो अब लालटेन दे दो, मुझे देर हो रही है जाने के लिए।

0: अरे रामदेव, आज लग रहा है कि तू जल्दी जल्दी ड्यूटी पर जा रहा है।
1: हाँ भाई, मौसम का हाल ठीक नहीं दिख रहा है, लंबा रास्ता काटना है इसीलिए जल्दी निकल पड़ा हूँ।
0: लेकिन हाँ, तू ड्यूटी तो चेंज करवा सकता है ना, तो रात को सो सकता था तू, समझा, सो सकता था आराम से।
1: रात के समय पहरा देने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, वो हिम्मत सब में नहीं होती, इसीलिए तो मालिक मुझे चुनते हैं।

0: बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो।
1: लगता है कोई मुसीबत में है, चल कर देखना पड़ेगा।
0: बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो, बचाओ।
1: अब चिंता मत कीजिए स्वामी जी, मैं हूँ ना, मैं आ रहा हूँ।
2: रामदेव, आज अगर तुम नहीं होते तो मेरे प्राण बचने की कोई उम्मीद नहीं थी।
1: ये सब ऊपर वाले की लीला है गुरुजी, उसने ही मुझे आपके पास भेजा। किसी की विपत्ति में सहायता करना, पहरा देना, ये सब मेरे काम है।
2: सुनो, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले मैं अवश्य तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो।
1: मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मालिक के गोदाम में पहरा देने का काम मैं ठीक से करूं। मेरे मालिक मुझ पर भरोसा करते हैं, बस मुझे उनका मन रखना है।
3: गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है, ये एक कुल्हाड़ी लेकर पूरी रात पहरा देते हैं, और वो भी अकेले अकेले। अगर कोई मुसीबत आ गई तो क्या ये कुल्हाड़ी इन्हें बचा पाएगी क्या?
2: चिंता मत करो, मेरे आशीर्वाद से मैं आज उस कुल्हाड़ी में एक विशेष शक्ति डाल देता हूँ, ठीक है, जो कोई भी मुसीबत से इसकी रक्षा करेगा। तुम चिंता मत करो,

कोई है? इधर मत आना, रामदेव पहरा दे रहा है। ए कोई है? इधर मत आना, रामदेव जाग रहा है।

0: पिताजी, आप गोदाम के पास इतनी रात को अकेले पहरा देते हो तो आपको डर नहीं लगता क्या?
1: अरे बेटा, पहले पहले मुझे थोड़ा डर लगता था, पर जब से साधु बाबा ने मेरी कुल्हाड़ी पर मंत्र फूंक कर जादुई कुल्हाड़ी बना दी है, तब से मुझे कोई भय नहीं रहा।
0: जादुई कुल्हाड़ी?
1: हाँ बेटा, ये कुल्हाड़ी जब तुम्हारे साथ रहेगी ना, तब तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा और तुम्हारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे।
2: है सुन, सुना है कि जमींदार के गोदाम में दाल चावल के सिवा सोना भी है। अगर हम सब ने जाकर एक बार भी वहाँ डाका डाल दिया तो पूरी जिंदगी बैठे बैठे खाएंगे।
3: क्या बोल रहे हो, इससे तो हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी, है ना?
4: पर वहाँ पर तो पहरा है, रामदेव वहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर पहरा देता है।
5: ए पागल, वहाँ रामदेव अकेला क्या करेगा? हमारे पास उससे ज्यादा अस्त्र शस्त्र है, हम इतने सारे लोगों के सामने वो अकेला क्या कर लेगा आखिर? ठीक है, तो फिर हम अगली अमावस की रात को वहाँ जाके ढाका डाल लेंगे, ठीक है?
4: ठीक है, ठीक है।
6: ओए है, इधर मत आना, रामदेव जाग रहा है।
7: क्या ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कहीं डाकू तो नहीं आए?
1: खबरदार, कोई भी आगे नहीं आएगा, यहाँ पर रामदेव पहरा दे रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होने देगा। ये देखो मेरी कुल्हाड़ी, एक प्रहार में ही सबका काम तमाम कर दूंगा।
5: तू अकेला क्या करेगा हमारा, बता
3: भाई। तो हमारा रास्ता छोड़ दे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस डाका डाल के यहाँ से निकल लेंगे।
1: रामदेव ऐसा कुछ नहीं होने देगा, उसने मालिक को वचन दिया है कि गोदाम पर कोई भी आंच नहीं आने देगा।
2: तुम हमारे रास्ते में आए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जा, निकल जा यहाँ से।
8: क्या हो रहा है?
9: अरे भाई, ये क्या देख रहे हैं? चलो भाई, यहाँ से निकलते हैं।
1: आओ आओ, आगे है हिम्मत है तो आओ, आओ ना।
9: नहीं, भागो भागो।
1: ये ऊपर वाले की कुल्हाड़ी है, इसके साथ कोई चालाकी नहीं कर सकता। ए मालिक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।

0: बीवी ठीक ही कहती है, बूढ़ा हो जाने पर तुम्हारी ताकत कम ही हो जाती है। ये आवाज शायद कोई जानवर होगा, लगता है वो जंगल से ही आ रहा है। इन आंखों को मैं पहचानता हूँ, ये तो शेर की आंख है, पर जंगल के इस हिस्से में शेर तो आता नहीं है। लगता है शायद वो रास्ता भटक गया हो। भाग, भाग, जंगल के रास्ते भाग जा, जा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे हाथ से ये कुल्हाड़ी निकल गई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता। जाओ जाओ जाओ। भाग गया। इस जादू की कुल्हाड़ी की वजह से आज मेरी जान बच गई। ये ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
1: उसके बाद क्या हुआ पिताजी?
0: उस समय बहुत छोटा था, गुरुजी ने ये कुल्हाड़ी देते समय मुझसे कहा था कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी विपत्ति में तुम्हारे काम आई। 50 के ऊपर और 25 के नीचे वाले उम्र के इंसान पर ये जादुई शक्ति काम नहीं करती।
1: ठीक है, फिर आप भी वही करो।
0: आज मेरे 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मुझसे ये काम नहीं होगा। आज के बाद गुरुजी की दी हुई ये जादुई कुल्हाड़ी मैं तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हारे 25 वर्ष पूरे हो गए।
1: पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से पहरा दूंगा, आपका नाम रोशन करूंगा।

0: क्यों हरिया, अब पिताजी का काम तू ही संभालेगा, क्यों ठीक कहा ना?
1: हाँ चाचा, आज से गोदाम को पहरा मैं दूंगा।
0: तुम्हारे पिताजी तो बहुत हिम्मत वाले थे, तुम वही काम कर पाओगे?
1: मेरे पास एक जादुई कुल्हाड़ी है, वो मुझे हर मुसीबत से बचाएगी।

0: आज का सवाल है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से कौन श्री राम के मित्र थे? ऑप्शन ए है कुंभकर्ण, ऑप्शन बी है सुग्रीव, ऑप्शन सी है मेघनाथ।
1: चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप सही जवाब दीजिएगा 9414151415 पर। अनादि अनंत, ये शिव का गीत आपके लिए उड़ान में
2: करने आते थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल,

0: जगत चेतना हो अनादि अनंता, सीधे आज के सवाल का जवाब भी आप दोस्तों के लिए तैयार है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से कौन श्री राम के परम मित्र थे? आपके सामने हमने ऑप्शन रखा था कुंभकर्ण, क्या वो था परम मित्र?
1: नहीं।
0: या फिर मेघनाथ?
1: वो भी नहीं।
0: तो कौन थे परम मित्र?
1: ऑप्शन बी, सुग्रीव।
0: जी हाँ, सुग्रीव, हनुमान, ये सब श्री राम के परम मित्र थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे।
0: तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे हम गुड बाय। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कार्यक्रम का नाम ही अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गाँव और जिस अंचल में रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल कभी नहीं भूल पाते। तो सरकार का जो मंशा है जो रेडियो स्टेशन दिया है आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया में बच्चों को मिलेगा, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का सहयोग से विद्यार्थी का विकास और सर्वांगीण उन्नति के लिए चाहे बौद्धिक विकास हो चाहे नैतिकता हो चाहे शारीरिक सभी विकास के लिए एक मंच मिल रहा है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हम पहुंचे और संस्था के संस्था प्रधान श्रीमान प्रिंसिपल साहब और उनका सहपाठी सभी साथी सभी स्टाफ को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को बारी बारी अपना आवाज को देंगे, उनका आवाज ही उनका पहचान होगा। तो इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं श्रीमान देवेंद्र सर जी को, तो उनको स्वागत करते सर एक वार्म अप बच्चों को करा दीजिए। आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बढ़िया से जानते हैं और रेडियो मधुबन को भी बढ़िया से जानते हैं किस तरह गतिविधि कितना साल से हम आप जब भी आते हैं आपसे परमिशन होता है संस्था का जो भी प्रिंसिपल रहते हैं उनसे परमिशन से कार्यक्रम होता है। 10-15 साल से हम इस स्कूल में हर साल आते हैं तो आप हमें भले भांति जानते हैं और बच्चों को भी रेडियो मधुबन के बारे में हो चाहे ब्रह्मा कुमारी जो गतिविधि कर रहे हैं उसका बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को, एक वार्म अप हो जाए आपका आवाज को सुनकर वो उनका आवाज भी बुलंद होगा। आपको स्वागत, अपना इंट्रोडक्शन प्लीज।
1: ओम शांति, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र सिंह राठौड़ है, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यारिया। आज रेडियो मधुबन की तरफ से पवित्र भाई और उनकी टीम क्यारिया स्कूल में कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए आई है। एक अच्छा मंच है, इस मंच के माध्यम से हमारे आदिवासी अंचल के बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जहां तक हो सके अपने विचारों को गीतों के माध्यम से भावों के माध्यम से कविता भाषण के माध्यम से रेडियो मधुबन के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका जो हर वर्ष एक नई थीम लेके आते हैं, कभी स्वच्छता कभी कम्युनिटी हेल्थ कभी नशा मुक्ति कभी इन बच्चों के अंदर जो एडिक्शन है उन एडिक्शंस को दूर करने के लिए मोबाइल से अवेयरनेस, ऐसे बहुत सारे थीम के साथ ये आते हैं। इस बार आपकी थीम है ये अपने स्वच्छता और सफाई, जिसके तहत रेडियो मधुबन की तरफ से विद्यालय को हर क्लास के अंदर एक डस्टबिन दिया जा रहा है। विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही साथ इन ग्रामीण अंचल के बच्चों को रेडियो मधुबन जैसा एक वैश्विक स्तर का मंच देने के लिए पुनः मैं आभार ज्ञापित करूंगा। अब कार्यक्रम को बच्चों की ओर लेके जा रहे हैं, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और हमें बहुत खुशी है इस तरह हमारा कार्य को सराहनीय माना और जब भी आते हैं जो भी जितना भी ना ज्यादा ना कम सहयोग देते हैं और एक जनहित में बच्चों का हित में जो भी जो समय जो मिलता है वो बच्चों के पास हम पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं और बच्चों को झिझक जो रहता है उसको दूर करने के लिए हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि ग्रामांचल बच्चे हैं पूरा आदिवासी TSP एरिया के बच्चे हैं, फिर भी उनको एक मंच जो रेडियो में कैसे बोलते हैं आकाशवाणी में जब उनका आवाज आएगा तब तो बच्चे जब सुनेंगे उनका माता पिता जब सुनेंगे उनका दोस्त लोग सुनेंगे उनका परिवार वाले जब सुनेंगे ये तो हमारा राधे का आवाज है ये तो मेरा बेटी का आवाज जब सुनेंगे आकाशवाणी में तो बहुत खुशी होगा, नामांकन में भी वृद्धि होगा, स्कूल का नाम भी रोशन होगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं तो हमें बहुत खुशी लगा। और बच्चों का आवाज सुनेंगे क्योंकि बच्चों को तो वार्म अप करा दिए, बच्चों को सुनेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और खासकर आज आप सब सुन पा रहे हैं अपना वॉल्यूम को तेज करके चाहे इंटरनेट का माध्यम से चाहे FM का माध्यम से चाहे लिंक का माध्यम से चाहे आपका माध्यम से आप सुन पा रहे आपका पास पहुंच रहा है और बच्चों का आवाज को बुलंद करने के लिए आप श्रोता का भी बहुत आवश्यक होता है। तो हमारा जो रेडियो जहां तक पहुंचता है वो सुन रहे हैं, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चों का प्रार्थना का रूप में एक गीत आपको मिलेगा सुनने को, क्योंकि हर कार्यक्रम में हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, हर स्कूल में विद्यालय में जो प्रार्थना सत्र में जो करते हैं वो चीज आपके पास रखेंगे, इनका आवाज भी सुनेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहले हम आपसे पुनः मिल रहे हैं और ब्रेक का पहले आप एक अच्छा गीत भी सुना, बच्चों का गीत को भी सुनेंगे। लेकिन हमारा जो देवेंद्र सर भी ब्रेक का पहले बहुत कुछ बताए संस्था के बारे में और विद्यालय के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे बीच बीच में सभी से। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं बच्चों से, कुछ छात्र हैं जो आदिवासी फील्ड में आते हैं और जो ग्रामांचल बच्चे कम नहीं शहरांचल बच्चों को उठा कर देखे, उनका जो शुद्धता भोलापन और मासूम जो शब्द में भाव और भावना आज सुनेंगे माँ सरस्वती वंदना का साथ। तो लीजिए पहला प्रस्तुति, खासकर बच्चों का आवाज और अपना नाम बताएंगे, कौन सा क्लास और कहाँ से बिलोंग करते, कैरियर ना कोई जोड़ फली की कहाँ पर आते वो फली का नाम भी बताएंगे, तो हमें पता चले कौन बच्चे कहाँ से आते हैं और कितना मेहनत करके आते हैं, अपना परिचय देंगे।
1: मेरा नाम लसी कुमारी।
0: कौन सा क्लास?
1: मैं कक्षा 11 से।
0: वेरी गुड। और लसी कौन सा गाँव से आती है तुम?
1: अच्छा, कला से।
0: और स्कूल का पूरा नाम बताइए,
1: विद्यालय? उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
0: ठीक है।
2: मेरा नाम सुनकी कुमारी है, मैं कक्षा 11 से, मेरा गांव का नाम क्यारिया है।
0: वेरी गुड।
2: मेरा स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा।
3: मेरा नाम रायली कुमारी है, मैं कक्षा 11 से, मेरे गांव का नाम डूनाकाकर है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
0: डूनाकाकर बहुत दूर से।
4: मेरा नाम पूजा है, मैं रेड़वा कला से आती हूँ, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
5: मेरा नाम दुर्गा कुमारी है, मैं क्यारिया जोड़ से आती हूँ, मेरी स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
6: मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं क्यारिया की हूँ, मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया। हम सब एक प्रार्थना सुनाएंगे।
0: शुरू करो।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा और क्या क्या नाम बोले दुर्गा, तुम्हारा नाम कौन रखा है दुर्गा बता, मम्मी ना पापा ना, कौन रखा है दुर्गा? अच्छा नाम है, मुझे बहुत खुशी लगा, क्योंकि दुर्गा एक देवी का नाम है ना, पापा हो चाहे मम्मी नाम रखते ना, जिसको जो उनका भी नाम आएगा, पिताजी का भी नाम आएगा, हमें खुशी लगे उस जब सुनेगा, अरे वाले दुर्गा को नहीं, उसे दुर्गा का आई को पापा को लोग जानते होंगे, उसी से पता चला ये उनका बेटी है, तो प्रचार प्रसार भी होगा और उनको एक सम्मान मिलेगा। दुर्गा बताओ, दादा दादी है घर में?
1: जी।
0: घर में कौन कौन है बताओ दुर्गा, दादा दादी से लेकर कौन कौन है?
1: मेरे घर में दादी दादा भाई बहन
0: और ओ वेरी गुड,
1: मम्मी पापा,
0: मम्मी पापा दादा दादी, सबसे आपको अच्छा कौन प्यार लगते हैं, कौन प्यार करते हैं ज्यादा?
1: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा ज्यादा करते हैं, मम्मी पापा तो भगवान तुल्य होता है, माँ बाप तो घर के सब बच्चों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं बच्चों के लिए, इसलिए माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। भूलेंगे बच्चे माँ बाप को? भूलना है भले सबको भूलो, लेकिन माँ बाप को कभी
2: नहीं भूलेंगे,
0: क्योंकि माँ बाप हमारे लिए सब कुछ, माँ बाप हमारे लिए
2: सब कुछ है।
0: आवाज आया नहीं मेरा पास,
2: सब कुछ है।
0: हमें सब कुछ देते हैं माँ बाप, हमें सब कुछ लेते हैं, इसलिए हमें उनको याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे और एक प्रस्तुति, हमारा और परियां भी बैठे हैं वो भी अपना प्रस्तुति देंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, पूजा दुर्गा और उनका साथी सभी को, सबको धन्यवाद है। इस कार्यक्रम को सजाए सुंदर रूप में अपना ताल का साथ माँ सरस्वती का वंदना सुनाए, हर स्कूल में ये गीत होता है और कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा दिए, तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर बच्चों का आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए वंस वंस करते हुए और दूसरे बच्चे भी भाग लेंगे क्योंकि सबको आज मंच मिलेगा। ओपन राउंड है अपना टूटी फूटी आवाज में पहला प्रस्तुति जब देते हैं रेडियो में तो कोई साज नहीं कोई बाजा नहीं कोई प्रिपरेशन नहीं अचानक जाते हैं अचानक और एवर रेडी बच्चे रहते हैं और बहुत काल का अभ्यास तब जाकर रेडियो में आते हैं। अचानक पहुंचते हैं कोई सूचना नहीं है ना सर कोई सूचना दिया था कोई स्कूल में कभी भी जाते कोई सूचना नहीं और हमारा कार्यक्रम इतना सुंदर हो जाता है क्योंकि हमारा जो भाव है भावना सब बच्चों को मिले इस भावना को लेकर जब पहुंचते कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपर जो दैवी शक्ति जो हम जिसको हम आह्वान किए ना शुरू में हमारा कुल देवी कुल देवता को आह्वान करो भगवान को आह्वान करो वो हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए हमारा गुड़िया सब बैठे हैं तो उनको भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए और हमारा देवेंद्र साहब को कौन भूल पाएंगे। देवेंद्र सर इस बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए आप बताइए कौन कौन उपस्थित है इस कार्यक्रम को सजाने के लिए नेक्स्ट ग्रुप।
1: अगला ग्रुप कक्षा 9th की नन्नी मुन्नी बालिकाएं हैं जो एक बहुत ही प्यारा सा लोक संगीत आपके बीच में पेश करेंगे।
0: क्या बात क्या बात।
1: ये लोक संगीत इनके आदिवासी ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है।
0: सही बात।
1: और इसी क्रम में मैं इन नन्नी मुन्नी बालिकाओं से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वो अपना परिचय दें।
0: अरे वाह।
1: अपना नाम विद्यालय का नाम गांव का नाम के साथ।
0: आज तो चुप्पी तोड़ेंगे ही बच्चे चुप नहीं रहेंगे।
2: मेरा नाम हीना है मैं कक्षा 9th से हूँ और मैं कैरिया से आती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैरिया है।
0: क्या बात कितना बुलंद आवाज।
3: मेरा नाम राधा है कक्षा 9th से मेरे गांव का नाम क्यारिया है स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
0: वेरी गुड।
4: मेरा नाम पांडरी है मैं कक्षा 9th से मैं क्यारिया जोड़ से आती हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
5: मेरा नाम सीमा है मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ मेरा गांव का नाम रेडवा कलर स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
0: गुड बच्चे तो बड़ा होशियार है सभी।
6: मेरा नाम कमला कुमारी है मैं कक्षा 9th से मेरे गाँव का नाम कोटब्यापल्ली स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
0: तो श्रोता मित्र कितना फल्ली का नाम सुन लिया कोटब्यापल्ली और हम सब मिलकर
6: एक देसी गीत गाएंगे।
0: हाँ आदिवासी गीत गाएंगे जिसमें मिठास। ओके शुरू करो।

0: कोई मत काटो।
1: सही में पर्यावरण एनवायरनमेंट जो गीत एनवायरनमेंट बचाने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह हम गीत का माध्यम से सीख लेना चाहिए। और बच्चे पेड़ का बारे में, पेड़ को मित्र बनाओ और सब कुछ तो पेड़ ऐसे देते, निस्वार्थ सेवा करते हैं पेड़। प्रकृति हमारा दोस्त है, प्रकृति को जितना हम सुरक्षा रखेंगे, पर्यावरण को जितना सुरक्षित रखेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। और सर इस कार्यक्रम को सुंदर में सुंदर थे सर, पर्यावरण का ऊपर में क्या कहना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चे एक पेड़ का माध्यम से प्रस्तुति, और आप पर्यावरण सुरक्षा जैसे हर रविवार को पर्यावरण विद श्रीमान भोपाल राम पुरोहित जी अपना कार्यक्रम देते हैं, पर्यावरण से मिट्टी से जो भी हमारा आसपास पर्यावरण, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण में पेड़ का जो उसका बारे में थोड़ा बताइए, हमारा श्रोता और बच्चे भी थोड़ा लाभान्वित होंगे।
2: वर्तमान में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और नन्हे मुन्ने बालकों का ये पर्यावरण के प्रति, पेड़ों के प्रति जो संदेश है बड़ा उत्साहपूर्ण है। उम्मीद करते हैं ये संदेश समस्त ग्रामीण अंचल तक पहुंचेगा और ग्रामीण अंचल के ये सारे लोग इस ओर जागरूक होंगे। हमारे सिरोही जिले के अंदर ये नया प्रयास चल रहा है कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं प्रति विद्यार्थी 2 पौधे लगाने का संकल्प सरकार की तरफ से मिला है। तो ऐसे में जितनी भी सरकारी नर्सरी है उनकी तरफ से सारे विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 2-2 पौधे आवंटित किए जाते हैं और वर्ष भर उन पौधों का पालन पोषण करके वृक्ष बनने तक की जिम्मेदारी वो नन्हे मुन्ने बालक उठाते हैं। उसी जिम्मेदारी की एक झलक इस गीत के माध्यम से हम तक पहुंची है और इस वर्ष भी हमारा प्रयास है कि हम नर्सरी से नन्हे मुन्ने बालकों को पौधे उपलब्ध कराएंगे जिनको पेड़ बनाने की जिम्मेदारी सहर्ष ये सारे बच्चे स्वीकार करते हैं। और इस तरह आबू राज के इस पवित्र अंचल में ये नन्हे मुन्ने बालक हरियाली बढ़ाने में विद्यालय पर्यावरण और साथ ही साथ क्यारिया ग्राम के वातावरण माहौल को स्वच्छ सरल और सुरम्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, हरियाली भी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आगे चलते हुए पढ़ाई के साथ साथ ये पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार का भी एक अच्छा प्रयास है,
1: जी जी,
2: प्रतिवर्ष 17 अंक के रूप में 10वीं 12वीं के बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं
1: जी,
2: हम पहले उनके वर्ष भर के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 17 अंक भेजते थे तो सरकार ने उसकी जगह पर वृक्षारोपण को मान्यता दी है।
1: बहुत अच्छा।
2: और प्रतिवर्ष प्रति विषय 1 अंक 2 अंक गणित विज्ञान जैसे भी विषय से वो अंक उनको वृक्षारोपण और उनको पेड़ों पर दी गई जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर विद्यालय परिवार के द्वारा दिए जाते हैं। इससे जागरूकता बढ़ती है, पर्यावरण भी सुधरता है और हमारे विद्यार्थियों का एक अभूतपूर्व महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए सरकार, विद्यालय परिवार, सिरोही डिस्ट्रिक्ट
1: जी,
2: सभी तन मन धन से अपना सर्वस्व योगदान दे रहे हैं।
1: सर जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए व पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार का जो मुहिम चलाते उसको तो हम सहयोग देते ही, और बच्चे भी कम से कम अपना जन्मदिन माता पिता का याद में तो लगाने उसका नामकरण भी करे और भावना से करे तो जरूर वो पेड़ जो पौधा हम लगाएंगे उसको प्यार से उसके दोस्ती जैसे दोस्त को क्या क्या चाहिए पूछते ना, तो पानी समय पर देना, उनको देखभाल करने के लिए ट्री गार्ड हो, जो भी उसको सेफ्टी पहले पहले देना होता है, तो आप सब करते होंगे और जो नहीं करते उसको थोड़ा ध्यान दे। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं, पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन उसको बचाने के लिए जैसे जब तक वो अपना अस्तित्व तक नाम नहीं पहुंचे तब तक उनको संभाल देखभाल करना चाहिए। ये एक किम्मे से सर ने बताया और बच्चे तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन ये बच्चे अभी अपना जो देसी गीत सुनाने के लिए कोशिश कर, पेड़ का माध्यम से अपना गीत जनरल गीत बताया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम की ओर हम जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है, सभी बच्चों को स्वागत करते पुनः, और जो पहले गीत गाए थे उनको सेम टीम को बुला रहे हैं, हमारा दुर्गा उरण टीम को, पूजा और उनका दोस्त लोग को। तो पुनः एक प्रस्तुति के लिए, जो कि यहाँ का जो शुद्धता भोलापन और स्कूल में जो गतिविधि हो रही है उसका तहत गाते हैं। तो चलिए सुनते हैं उन सभी से

0: बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बच्चे थोड़ा शर्माते हैं, पहला बार आते हैं नहीं, तो बाहर में गाते हैं, लेकिन स्कूल में थोड़ा सा सर रहते और हम रहते तो उनको थोड़ा झिझक होता है। कोई बात नहीं, इसे शुरुआत किए हैं, धन्यवाद देते हैं। और जाते जाते सभी को नाम बताएंगे और कहाँ से और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए क्या मेहनत करते हैं। सबके लिए एक ही प्रश्न, स्कूल में जो पढ़ाई के साथ साथ और कितना घंटा मेहनत करते हैं और बड़े होकर क्या बनना चाहते, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, सरपंच? ओके,
1: मेरा नाम पूजा है, मैं रेडवा कला से आती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
0: रेडवा कला बहुत दूर जगह से आते हैं। रेडवा कला का पास और कौन सा गांव है?
1: दूना काकर, कोटिबिया।
0: कोई मंदिर है आसपास?
1: हाँ,
0: मंदिर का नाम बताओ। कोटेश्वर महादेव है यहाँ? हाँ। शिव मंदिर है। चलिए, बढ़कर क्या बनेगी?
1: टीचर।
0: टीचर, मैम बनेगी। वाह, कितना मैम है यहाँ पर? मैडम है स्कूल में?
1: हाँ।
0: नाम बताओ, एक ही मैम का नाम बताओ। कोई
1: मीनाक्षी मैडम।
0: क्या पढ़ाते हैं?
1: इंग्लिश।
0: वेरी गुड, नेक्स्ट।
2: मेरा नाम रायली कुमारी है, मैं कक्षा 11 से, मेरे गांव का नाम दूना काकर है।
0: और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
2: टीचर।
0: टीचर है, वाह, आदर्श टीचर। किसको कहते हैं टीचर? कैसे होना चाहिए? जो अच्छा
2: पढ़ाते
0: हैं और अच्छा प्यार करते हैं, प्यार भी जरूरी है। नेक्स्ट।
3: मेरा नाम दुर्गा कुमारी है, कक्षा 11 से, मेरे गांव का नाम है क्यारिया जोड़।
0: और आज रेडियो में पहला बार मौका मिला, आपको खुशी लगा ना दुखी लगा? खुशी लगा
3: जी।
0: दुख लगा?
3: नहीं
0: नहीं, दुख क्यों लगेगा, ये तो अपना आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए का मंच मिल रही। नेक्स्ट।
4: मेरा नाम गुड़िया है, मैं क्यारिया से हूँ।
0: वेरी गुड, गुड़िया नाम तो पहले बोले, सब हमारा गुड़िया है ना, गुड्डा और गुड़िया छोकरा और छोकरा जैसे कहते हैं, हमारा परी, परी मतलब पूरा फरिश्ता। तो बड़े होकर क्या बनेगी गुड़िया?
4: मैडम।
0: गुड़िया तो अच्छे से बात बता पा रही। और गुड़िया आपका अच्छा दोस्त बताओ तो, जो हंसता है आपको देखकर?
4: पूजा।
0: पूजा।
2: नेक्स्ट। लसी कुमारी।
0: लसी, बड़े होकर क्या बनेगी?
2: टीचर।
0: अच्छा, खेल खेलते हैं? खेल खेलते हैं
2: जी।
0: कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है?
2: क्रिकेट।
0: क्रिकेट, वाह वाह, ऐसे क्रिकेटर हमारा। अच्छा, क्रिकेटर में कौन सा क्रिकेटर का नाम बताओ देखिए, सचिन तेंदुलकर से लेकर कोई भी? रोहित शर्मा। अरे वहाँ, पीछे से बोला रोहित शर्मा, सर का फेवरेट है विराट कोहली, और हमारा फेवरेट है महेंद्र सिंह धोनी। सब हमारा अच्छे खिलाड़ी है, तो हमारा देश के लिए नाम रोशन किए और ये हमारा क्रिकेटर बनेगी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट।
5: सीमा।
0: सीमा, सीमा बड़े होकर क्या बनेगी?
5: टीचर।
0: टीचर, अच्छा, आपका फेवरेट टीचर का नाम बताओ? मीना की मैम, बहुत अच्छा। कोई बोल भाई, सभी बताओ, सभी का नाम ले लो, सभी टीचर हमारे अच्छे होते। नेक्स्ट।
5: कमला।
0: कमला कौन सा क्लास? नाइन्थ क्लास। और अच्छा, फूल का नाम बता देखी, कोई फूल अच्छा आपका फेवरेट फूल?
5: गुलाब।
0: मैं पीछे कॉपी दे दिया तो बोला गुलाब, बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चे जानते हैं लेकिन अचानक माइक में जो आता है प्रश्न निकल जाता है और उनको बोलना में जो आता है वो भी भूल जाते ना। चले नेक्स्ट।
5: राधा।
0: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है ना, तो नारायण वासुदेव कहते हैं, और राधा हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे, हमें खुशी। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: एक बैरबानी आपका घर का धनी ने कहवा लागी, बोला जी आजकल डिगी पति महाराज को मेलो भर रहे, बोले मन मेला में ले चलो। तो बोला के चल, तो कहीं में बैठ चला, बोला जीप में चला, बस में चला, कहीं में चला। बेरबानी बोली के मैं तो जीप में कौन बैठू साहब, आजकल भीड़ बहुत चल रही है। तो कहीं में बैठे, तो मैं तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल पे बैठू। तो देखो कहीं करीजे, आ गया तैयार जावा भी डिग्गी के।

को तेल बीत को गेला में देखो कहीं बात बने बेरबानी केबल लगी केबल तेल तो गला ले होंडा में तो क्या गलावे देखो अरे नतड़ी बे

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केन हो। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केवल, और आप सुन रहे हैं आपका अपना सबसे चहिता शो खुशी के नगमे, दिल की बातें। मुस्कुराहट वो पहला कदम है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। दोस्तों, मुस्कुराहट वो पहला कदम है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है, और शाम वो वक्त है जब हम अपने दिलों को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अलविदा कहते हैं। लेकिन हमारे साथ आज हमारे खास दोस्त जुड़ रहे हैं, नाम है बुरीलाल जी। यस, हेलो,
1: नमस्कार भाई, नमस्कार।
0: नमस्कार बुरीलाल जी, कैसे हैं? मुझे पता था ये आप ही का कॉल है, बेल बजते ही हम समझ गए थे ये आप है।
1: फिल्म का नाम है आप आए बाहर आए।
0: क्या बात है, फिल्म का नाम है आप आए बाहर आए।
1: आप आए बाहर आए और रफी साहब की आवाज है।
0: ओके,
1: गाने पे मैं सुनाऊं?
0: बिल्कुल सुनाइए।
1: और गाने पे मैं कोयले से गाए, बादल से छाए।
0: क्या
1: कोयले क्यों गाए?
0: कोयल क्यों गाए? वाह,
1: कोयल क्यों गाए, बादल क्यों छाए? सावन का दूसरा कमरा है आज।
0: अच्छा,
1: इसलिए सावन का नहीं मुझे जाना है। कोयले क्यों गाए, बादल क्यों छाए?
0: चलिए बिल्कुल से।
1: आप आए बाहर आए फिल्म के नाम है, लोगों देखी की आवाज में।
0: चलिए बिल्कुल से, हम आपके लिए ये गाना जरूर से बजाएंगे। आप सुनते रहे रेडियो मधुबन। और हमें भी पता ही था कि सबसे, मुझे भी पता था कि सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया। सुनना है, क्या बात है बुरीलाल जी, वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया आपका।
1: और क्या नाम उनका, हीराराम जी है
0: जी।
1: और वो सुधांश भाई है
0: जी।
1: और वो मदन भाई है। सभी साथियों को मेरा प्यार, मेरे प्यार जो प्यारे प्यारे बिल्कुल नमस्कार है।
0: चलिए जो
1: आपका भी प्रणाम है।
0: बिल्कुल, जो लोग जो भी सुन रहा है उन सब की तरफ से आपको भी नमस्कार, और सावन के दूसरे सोमवार की खूब खूब शुभकामनाएं। या दोस्तों, ये थे हमारे बुरीलाल जी। और हमारे बुरीलाल जी की अगर हम बात करें तो बड़े ही हसमुख कह सकते हैं, या फिर हमेशा हंसते रहने वाले बुरीलाल जी है। अब हमें इनका नया नाम देना पड़ेगा, हंसते रहने वाले हमारे बुरीलाल जी। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं, आज है 10 अगस्त 2026 की हंसी और सुहानी शाम। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन बहुत ही शानदार बीता होगा। चलिए अब दिन भर की थकान को दूर करते हैं और अगले कुछ घंटे बांटते हैं थोड़ी सी खुशी, थोड़े से नगमे और बहुत सारी दिल की बातें। यहाँ दोस्तों, मेरे लिए हम जैसे अभी बात की मैंने कि हम अपनी करते हैं दिल की बातें और थोड़ी सी थकान को दूर करते, तो जी हाँ दोस्तों, मेरे लिए कुछ अगले चार दिन, जो पिछले चार दिन थे 6 तारीख से गुरुवार से हम कह सकते हैं, बहुत ही थकान भरे रहे। क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे चल रहा था मैराथन की सेवाएं, यानी कि मैराथन की पूर्व तैयारियां जो होती है वो चल रही थी, और उनमें थोड़े से बिजी थे। तो आप सभी को पता है बहुत ही अच्छी तरीके से मैराथन यहाँ पे संपन्न हुआ है, और सभी जो 12 देशों के धावक यानी कि रनर्स ने पार्टिसिपेट किया, रनिंग की, जिन्होंने दौड़ लगाई है 21 किलोमीटर की, और सभी ने अपना जो भी फतेह किया समय अनुसार, 4 घंटे का समय रखा था, 4 घंटों में अपने सभी ने समय पे पूरा किया। तो उनकी जो भी तैयारी थी आने से लेकर के उनके रहने तक, खाने पीने तक, उनके जो भी ज़रूरत की चीज़ें, उन सभी की पूर्ति होने के बाद हमारे कुछ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर अप रहे हैं, मैं उनको आपको बता देता हूँ। आपको सभी को पता ही होगा, वैसे तो रेडियो पे लाइव चल ही रहा था पूरे समय, और हमारे मैराथन की कुछ 3 कैटेगरीज बनी थी, जिसमें ओपन कैटेगरी, मास्टर्स और वेटरन थे। तो ओपन कैटेगरी जो 18 से 40 के बीच में थी, उसमें जोधपुर के हमारे देवाराम जी, जिन्होंने 1 घंटा 19 मिनट 56 सेकंड में क्लियर किया 21 किलोमीटर, वो नंबर एक पर यानी कि पहले विजेता रहे। दूसरे नंबर पे जुहार सिंह जी, जिन्होंने 1 घंटा 21 मिनट 12 सेकंड में पूरा किया, और दूसरे थे मुकेश कुमार, जिन्होंने 1 घंटा 21 मिनट 32 सेकंड में तीसरे नंबर पर रहे। जोधपुर से है ये तीनों की तीनों, एक है जैसलमेर से। 41 to 60 ईयर्स यानी कि जो हमारी मास्टर्स कैटेगरी थी उसमें हमारे नागेश पवार जी जिन्होंने 1 घंटा 22 मिनट में कंप्लीट किया, भरत भूषण जी जिन्होंने 1 घंटे 25 मिनट में, और अरुण प्रधान जी जिन्होंने 1 घंटे 28 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट की। तो ये हमारे मास्टर्स कैटेगरी में थे। और वेटरन कैटेगरी में आपको बता दूँ 61 साल से ऊपर के हमारे जो भी धावक थे उन सभी ने इसको कंप्लीट किया है। और आप सभी को जान के आश्चर्य होगा कि 61, 70, 72, 75 ईयर्स के एज, 76 ईयर्स के एज तक के धावकों ने रनिंग किया है। और जिस तरह से इन सभी ने रनिंग की है, जिस तरह से इन सभी ने धावकों ने दौड़ लगाई है, तो 61 ईयर्स एंड अबाव में हमारे महिपाल सिंह जी थे जिन्होंने 1 घंटा 51 मिनट में, आप सोचिए 61 एज एंड अबाव के लोगों ने 1 घंटा 51 मिनट में 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। जो फर्स्ट नंबर पर है केशव मोटे जो वेटरन कैटेगरी में आते थे उन्होंने सेकेंड, और मुकेश राणा जी 1 घंटा 59 मिनट और 44 सेकंड में जिन्होंने कंप्लीट की। तो दोस्तों ये थी हमारे कुछ रनर्स जो मेल में थे। इसी तरह हमारे फीमेल्स में भी सेम रहा है, अर्पिता सैनी जी जिन्होंने 1 घंटा 47 मिनट 14 सेकंड में पहला नंबर लिया, सुनीता कुमारी गुज्जर जिन्होंने 1 घंटा 57 मिनट में किया, उदयपुर से थे, अहमदाबाद से हमारी पटेल किरण भरत भाई जिन्होंने 2 घंटा 30 सेकंड में कंप्लीट किया। और इसी तरह से वीमेंस में भी यानी कि महिलाओं में भी जो वेटरन कैटेगरी के थे उन्होंने विद्या पुरुषोत्तम बेडाल ने पहला नंबर लिया जिन्होंने 3 घंटे 3 मिनट में पहला नंबर लिया, कृष्णा जी जिन्होंने 3 घंटे 8 मिनट में कंप्लीट की जो नई दिल्ली से थे, और एक और स्मिता वेंकटेश मूर्ति जिन्होंने 3 घंटे 38 मिनट में कंप्लीट किया। ये हमारे 60 की एज के ऊपर की महिलाओं ने किया है, सोचिए कितना उमंग उत्साह से उन्होंने दौड़ा है 21 किलोमीटर की ये चढ़ाई जिन्होंने फतेह की है और अपना ये मुकाम हासिल किया। और बता दिया है कि एज इज़ जस्ट एन नंबर, मतलब हम 18 से 40 या 40 से 45 60 साल के लोगों के लिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है कर सकते हैं, लेकिन 60 के ऊपर भी ये जज्बा रखते हैं कि हमें ये चीज़ें फतेह करनी, जो दिल में ठान रखा है उसे कम्प्लीट करना है, पूरा करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से मैराथन का ये हफ्ता ऐसा गुजरा जैसे कि कोई त्यौहार चल रहा हो, कोई त्यौहार है ऐसा कि जहाँ पे सभी मिल करके उस त्यौहार को मनाने की तैयारियाँ कर रही है, खुशियाँ मना रहे हैं। तो चलो दोस्तों इसी खुशी के साथ इसी हौसले के साथ बढ़ते हैं आज के पहले गाने के लिए, और पहला गाना लाते हैं आपके लिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। शाम का वक्त हो, हल्की सी धुंध या ठंडी हवा हो और रेडियो पर 1960s का सस्पेंस सिनेमा की बात हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि आज हम बात कर रहे हैं 1965 की उस आइकॉनिक फिल्म की जिसने हर किसी को अपने सस्पेंस से बांध कर रखा है। यहाँ फिल्म थी गुमनाम। जब भी इस फिल्म का जिक्र आता है दिमाग में एक ही और मिस्टीरियस आवाज़ गूंजती है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर जी की आवाज़, आनंद बख्शी जी के लिखे बोल और शंकर जयकिशन जी का संगीत। जब ये गाना बजता है ना तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो, या सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का सस्पेंस का एक बेंचमार्क रहा है। जी हाँ, कभी भी आज के समय में भी कई बार जब हम अंधेरे में चलते हैं या कभी कोई लाइट नहीं होती, दिया लेके कहीं चल रहे होते, तो सबसे पहले यही गाना याद आता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, है ना दोस्तों। मुस्कुराहट का वो पहला कदम है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है, और हर शाम का वो वक्त है जब हम अपने दिल को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अलविदा कहते हैं। हाय क्या शाम है, आज की हवाओं में एक अलग ही ताजगी रही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि अगला जो नगमा है वो भी बहुत ही सुरीला है और आज मैंने इसको कई सीनों के बाद सुना है, तो चलिए सुनते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: लल्ला

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक दोस्तों। और बहुत ही प्यारा हमने अभी गाना सुना। जी हाँ, जब भी हम गोल्डन एरा का संगीत की बात करते हैं तो ऐसी शख्सियत का नाम ज़रूर आता है जिनके आते ही स्क्रीन पर जोश, मस्ती और एनर्जी का तूफान आ जाता है ना। हाँ बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं रिबल स्टार शम्मी कपूर जी की। 1965 में एक फिल्म आई थी बदतमीज़, जी हाँ अभी जिसका हमने गाना सुना, जिसमें शम्मी कपूर जी और खूबसूरत साधना जी की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। और जब भी इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, शंकर जयकिशन जी का संगीत मिलता है तो धमाका जो होता है वो आज 60 साल बाद भी हम सबको झूमने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों दिल की एक बात बताऊं, प्यार का इजहार करने के हज़ारों तरीके होते हैं, लेकिन 60s के दौर में थोड़ी नटखट शरारत और थोड़ा सा चुलबुलापन इस अलग मज़ा देता था। जब कोई बिना परवाह के लिए कोई बिना परवाह के पूरे दिल से कह दे कि आप चाहे मुझे कुछ भी कह लो लेकिन मेरा दिल आप पर ही आएगा। यस, बदतमीज कहो या कहो जानवर, है ना दोस्तों। इसी तरह से कई बार ऐसा होता था छेड़खानी में, कई बार लोग बोलते थे तू तो, अब मैं ये शब्द नहीं लूँगा रेडियो पर, लेकिन आप सभी जानते हैं वो शब्द क्या है, और फिर ये गाना उसी पे सूट होता है। जी हाँ, बदतमीज कहो या कहो जानवर, है ना दोस्तों। इस गाने में शम्मी कपूर जी का जो ट्रेडमार्क याहू स्टाइल, एनर्जेटिक डांस और उनके प्यारे एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, जो उन्होंने साधना जी के कैरेक्टर को छेड़ने के लिए किए थे। शंकर जयकिशन जी का इसमें जो म्यूजिक था, इस फिल्म के संगीत ने 60s के युवाओं में एक नया जोश भर दिया था। फास्ट पेस रिदम और ब्रास इंस्ट्रूमेंट के उपयोग की इस गाने ने सबसे बड़ी USP यानी कि इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर बना दिया था इस गाने को। शम्मी कपूर जी और साधना जी की जो जोड़ी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। एक तरफ शम्मी जी का बेपरवाह अंदाज आप सभी जानते हैं और दूसरी तरफ साधना जी की वो ग्रेस, है ना दोस्तों। चलिए इसी तरह से इसी प्यारे प्यारे से नगमे को हम सुनते रहे और पुराने पुराने जो यादें हैं उनको ताज़ा करते रहे। एक और ऐसा ही गाना हमारे बुरीलाल जी ने हमें फरमाइश के रूप में दिया है, चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। और अभी जो हमने गाना सुना 1971 की सुपर हिट फिल्म आप आए बाहर आए कई सदाबहार रोमांटिक डुएट कोयल क्यों गाए, जी हाँ बादल क्यों छाए। यहाँ ये अभी हमने प्यारा सा गाना सुना, आनंद बख्शी जी की खूबसूरत लफ्ज़ों और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का संगीत से सजा है। लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की मैजिकल आवाज़ में ये गाना धर्मेंद्र जी और साधना जी पर फिल्माया गया था, जो मौसम और प्रेम के रंगों को बेहद खुशनुमा अंदाज से पेश करता है। मौसम चाहे कोई भी हो दोस्तों, लेकिन जब दिल में खुशी और फिजाओं में संगीत हो तो हर दिन बाहर जैसा लगने लगता है। और आज की हसीन शाम में हम बात कर रहे हैं उस फिल्म खूबसूरत फिल्म की आए आप आए बाहर आई। और आज ऐसे ही हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े और उनके आते ही हमारे बीच में बाहर आई। ओ नमस्कार,
2: ओम चांद जी, गुड इवनिंग भाई जी, कैसे हो?
1: बढ़िया है सुभाष जी, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग।
2: हाँ मैं भी भाई जी बहुत बढ़िया हूँ, कार्यक्रम चार्टर से सुन रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, खुशी से गीत आपका विश्लेषण सुन रहा हूँ। और एक बात, आप दो तीन दिनों से जो मैरिज होने के बारे में जानकारी दे रहे थे
1: जी,
2: तो प्रोग्राम कल हमने लाइव भी देखा
1: जी,
2: कमेंट्री भी सुबह 5 बजे से 11 बजे तक कंटिन्यू देखा।
1: क्या बात है,
2: और कंटिन्यू सुना,
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: इतना बेहतरीन अच्छा सुहावना वातावरण और रनन का उत्साह भाइयों का बहनों का और आपके रेडियो मधुबन के सभी आरजे भी उसमें सौभाग्य थे, कमेंट्री करते थे
1: जी भाई जी।
2: और विशेष करके हमारी दीदी आरजे शुभा जी भी सुबह 5 बजे से हमने रेडियो मधुबन चालू किया था।
1: अच्छा।
2: तो 5 बजे से कंटिन्यू लाख बजे तक आज शिवाजी ने और उनके साथ दो तीन बहने भी थे
1: जी,
2: पर कंटिन्यू हमको कमेंट्री सुना रहे थे।
1: वाह क्या बात है।
2: कृष्णा जी, मोना जी, विशाल जी, रमेश जी, सभी के पवित्र भाई जी, जो जो कॉमेंट्री वाले सभी आरजे भाई थे वहाँ सेवा में कॉमेंट्री करने में सब लाइव इतना अच्छा लगा, कॉमेंट्री भी इतना अच्छा लगा, जीवंत प्रसारण जैसा लग रहा था। और विनर लोगों का उत्साह, अपने सब ज्येष्ठ भाई बहनों का मार्गदर्शन, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, भारत में एक नंबर का। तो वो विश्व बंधुत्व जो संदेश पहुंचा पूरा भारत के विदेश में भी, तो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। तो आपका रेडियो मधुबन परिवार, सभी रनर्स भाई बहने और हमारे श्रोते सभी भाई बहनों को धन्यवाद भी, बधाई भी, अभिनंदन भी, और ओम शांति भाई जी।
1: सुभाष भाई ओम शांति, और थैंक यू सो मच, आपने इतना दिल से इसको सुना और हमारे मैराथन के लिए आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका, थैंक यू सो मच।
2: थैंक थैंक यू, शुक्रिया, और सभी को नमस्कार भाई जी।
1: नमस्कार,
2: सभी को नमस्कार
1: जी, सभी की तरफ से आपको भी ढेर सारा प्यार। तो ये थे हमारे सुभाष जी, और इन्होंने जिस तरह से बताया है सारी चीज़ों के बारे में, तो मेरे को तो मतलब अंदर से अभी भी इतनी खुशी हो रही है कि यस, कसम से, मतलब कोई तो ऐसे है जो पूरे समय पे रेडियो पे सुन करके पूरी अच्छे से बातों को ध्यान से देख रहे हैं और अपने आप को यहीं पे लाइव महसूस कर रहे कि हाँ, मैं वहीं खड़ा हूँ, वहीं इन सभी रनर्स को देख रहा हूँ दौड़ते हुए आ रहे हैं। और सच्ची बताऊँ, उस वक्त जब मैं वहाँ पर था, मौजूद था लाइव वहाँ पर, जब हमारा सबसे पहला रनर दौड़ कर आया, बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी माउंट में, एकदम फॉग, ठंडी हवाएं, पानी, बारिश, और जब हमारे धावक रनिंग करते हुए आ रहे थे, दौड़ते आ रहे थे, पूरे भीगे हुए थे, क्योंकि हनुमान मंदिर, आप सभी को पता है, माउंट चढ़ते समय एक बीच में हनुमान मंदिर आता है, वहाँ से अराउंड 6-7 किलोमीटर रह जाता है माउंट आबू का, जो हमारा ओम शांति भवन है वो, और वहाँ से बारिश शुरू थी और सभी वहीं से भीगते हुए रनर्स जब पहुँच रहे थे फिनिशिंग लाइन तक, तो सारी अच्छे तरह पूरी तरह से भीग चुके थे, और ठंड इतनी लग रही थी कि क्या बताया, कि उस ऐसे में रनिंग करते हुए पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जब वो पहुंचे तो उन्हें ब्लैंकेट्स उड़ाए गए, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दी गई, किसी को स्प्रे लगाया गया, किसी को ठंडे बर्फ़ का जो पॉच होता है जो हम उनके पैरों पे लगाते हैं ताकि उनको जो थकान थी वो कम हो, ऐसी चीज़ें की गई। और ये सब देख करके बड़ा मज़ा आता, और जिस तरह से इस वक्त सुभाष भाई ने कहा कि पूरी लाइफ कमेंट्री वो सुन रहे थे, सभी आरजेस का उन्होंने नाम लिया, एक एक के नाम के साथ उन्होंने सभी को धन्यवाद किया, बधाइयाँ दिए, तो ये बड़ा अच्छा लगता है सुन करके कि यस, कोई तो है जो पूरी तरह से दिल से इसको कंटिन्यू सुन रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले गाने के लिए। जी हाँ, लेकिन हम कुछ बातें तो रह ही गई हमारी, अभी जो हमने गाना सुना था उसके बारे में। दोस्तों ये भी जो हमने गाना सुना था, जैसे मैं बता रहा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़, तो बाग में सच में फूल खिल उठते हैं। आनंद बख्शी जी ने इस गाने में कितनी सरल और गहरी बातें कही है। कोयल के गाने की या फूलों के खिलने की कोई वजह नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब दो दिल मिलते हैं तो वजह की नहीं, बस खुशियों की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि जो हमारा अगला नगमा है, मैं आप सभी को बता दूं कि भुराराम जी ओर से इन्होंने हमें कॉल किया था, जब पीछे कोई गाना चल रहा था उस वक्त हमें कॉल किया था, उन्होंने अपनी फरमाइश दी थी, और ये भी बहुत ही प्यारा नगमा दिया है महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में। सुनते हैं, ये रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हाँ दोस्तों, और एक और बात, आपकी भी अगर कोई ऐसी फरमाइश है, कोई ऐसा गाना आप सुनना चाहते हैं, तो हमें कॉल करके ज़रूर से अपनी फरमाइश दे सकते हैं। नंबर आपको पता है, 9414151415, यानी कि 9414151415 पे आप हमें कॉल करके बिल्कुल से बता सकते हैं।

0: नमस्ते, मैं हूं हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: कोई हमें प्यार कर ले किसी। नमस्कार सर।
2: नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: जी जी, ओम शांति।
2: जी हाँ दोस्तों, ये हमारे मदनलाल जी थे मेहसाणा से। इन्होंने बहुत ही प्यारा एक गाना हमें अभी फरमाइश के रूप में दिया है। और दोस्तों, अभी जो हमने प्यारा सा गाना सुना, ना मुँह छुपा के जियो ना, ये जो प्यारा सा भी हमने गाना सुना, हमारे भुराराम जी की तरफ से हमें फरमाइश के रूप में दिया गया था। और ये जो गाना अभी हम सुन रहे थे, ना मुँह छुपा के जियो, हमराज मूवी का ये गाना 1967 में आया था। ज़िंदगी दोस्तों हर दिन हमारे सामने एक नया दौर, एक नई चुनौती लेकर आती है। कभी खुशी होती है तो कभी थोड़े से गम के साथ, या हम कह सकते हैं, लेकिन असली मज़ा तो तब है जब हम हर मौसम का स्वागत एक प्यारी सी मुस्कान के साथ करते हैं। हम बात कर रहे हैं 1967 की बी आर चोपड़ा जी की एक सुपरहिट फिल्म हमराज की। इस फिल्म का एक गाना भी हमने जो सुना, अपने आप में एक जैम है, यानी कि हम कह सकते हैं खीरा है। लेकिन जब साहिल लुधियानवी जी की कलम चलने लगती है तो वो सिर्फ गाना नहीं रहता, वो ज़िंदगी जीने का एक दर्शन बन जाता है। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में जो जोश और सच्चाई है, और रवि जी का जो संगीत है, वो सीधे दिल में उतर जाता है। सुनील दत्त जी पर फिल्माया यह गाना हमने सिखाता है कि हालात चाहे कैसे भी हो, अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना, साथ उठ के जियो और हर पल को खुशी दिल से गले लगाओ। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही नज़ारा कल भी हमें देखने को मिला था रास्ते में, जब कई धावक, कई रनर्स एक साथ जब दौड़ रहे थे, एक दूसरे को उत्साह प्रोत्साहन करते हुए कि बस कुछ और दूर है मंजिल अपनी, बढ़ाते चल कदम, बस कुछ और दूर है अपनी मंजिल, बढ़ाते चल कदम, ना रुकना है ना थकना है, बस बढ़ते जाना है। और कल किसी ने मुझे इसमें और भी ये कहा था कि रुक भी सकते हैं, थक भी सकते हैं, लेकिन अपनी मंजिल पर तो बढ़ते ही रहना है। जी हाँ, बहुत प्यारी सी, मुझे थोड़ी सी इसको चेंज करके बताया गया था। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्यारे से नगमे की तरफ, जो अभी अभी हमें एक और फरमाइश के रूप में दिया गया था भूरीलाल जी ने फिर से हमें कॉल किया और उन्हें अपने बेटे के लिए एक प्यारी सी फरमाइश की है। और उन्होंने ये गाना हमें बताया है कि किस्मत बिगड़ी, दुनिया बिगड़ी, बदली। चलिए सुनाते हैं ये इनको प्यारा सा नगमा और फिर करते हैं ढेर सारी बातें।

वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा नगमा अभी हम लोगों ने सुना। आए ये जो फिल्म था अफसाना मूवी से ये गाना था और 1951 में ये गाना चला था, किस्मत बिगड़ी तो दुनिया बदली। चलिए दोस्तों, वक्त है आप सभी से अलविदा लेने का। और अभी हम जो गाने सुनेंगे बैक टू बैक, एक है हमारे मदन लाल जी जिन्होंने मेहसाना से हमारे लिए फरमाइश दी है, और एक और गाना कंटिन्यू बैक टू बैक सुनेंगे और हम आपसे विदा लेंगे। फिर मिलेंगे हम आपसे कल ठीक इसी वक्त 8 बजे और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे नगमे दिल की बातों के साथ, खुशी के नगमों को लेकर के अपने बातचीत रहेगी। आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन, बिकॉज जो अगला कार्यक्रम इसके बाद है वो है सेहत स्वास्थ्य, और भी बहुत से कार्यक्रम कंटिन्यू चलते रहेंगे रेडियो पर। तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूँ आपका दोस्त आजिश। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर हम इस बात को समझते हैं कि स्वस्थ रहना मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ा वरदान है। अगर स्वास्थ्य चला जाता है तो व्यक्ति जीवन के सारे सुख सुविधाएं होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर सकता, या वो चीजें होते हुए भी वो अपने आप को सुखी नहीं महसूस करता। ऐसे में स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है हम सभी समझते हैं। अक्सर इसके महत्व को न जानने के कारण हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं, या थोड़े समय के लिए हम रोगी बन जाते हैं और इस रोग से छूटने के लिए फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आइए आज स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे विषयों पर जानकारी लेते हैं जिससे ये समझा जाए कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, स्वास्थ्य का यह तोहफा हमेशा हमारे पास रहे। आज हमारे साथ इन विषयों पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य जगत से ही एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और दे रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पर जब भी हम कोई बातचीत करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसे एक बहुमूल्य कुंजी के रूप में लोग हमेशा से देखते आए हैं, मगर गौर करने वाली बात ये आज देखने को मिलती है कि व्यक्ति का ध्यान पैसा कमाने के लिए ज्यादा रहता है, जीवनोपार्जन के लिए ज्यादा रहता है, मगर जीवन को सुख से व्यतीत करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए, निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर, व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य आवश्यक है, वो पहली रिक्वायरमेंट है, इसे लोग भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है
1: भैया? अरबी में कहावत है कि जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास उम्मीद है, और जब उसके पास उम्मीद है तो उसके पास सब कुछ है। बहुत बार ये बोला जाता है, होप हैंग्स ऑन अ वेरी थिन स्ट्रिंग, बट इफ यू हैव होप यू कैन गेट ऑल द थिंग्स। तो मोटा मोटी उम्मीद को भी स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास ज्यादा मेहनत करने की ताकत है, आपको पास ज्यादा उम्मीद है। और ये बहुत बार लोगों को समझाया जाता है कि आप कृपा करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से दीजिए। और अभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या हमारे देश नहीं, पूरी दुनिया में जो बदलाव आया है सन 1990 सन 2000 तक, हमारे यहां नाइट ड्यूटी या रात का काम सिर्फ चौकीदार लोग किया करते थे, पुलिस वाले किया करते थे और अस्पताल के कर्मचारी किया करते थे। रेलवे स्टेशन पे भी आपको ये मिल जाता था। उस समय हमारी हवाई सेवाएं इतनी नहीं थी कि रात भर आपको दौड़ना भागना पड़े, और एक अमूमन ये था कि 10-11 बजे के बाद आपको रिक्शा मिलना, आपको टैक्सी मिलना, ये सब कम हो जाएगा। अब आप देखिए कि रात का काम करने वाले कितने सारे लोग हो गए, और जो दिल्ली एनसीआर है या हैदराबाद है, मुंबई है, बैंगलोर है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, जयपुर है, आप जो भी बड़े शहरों को देखिए, इवन सुदूर आसाम कोलकाता चले जाइए, आपको एक बहुत बड़ी जनसंख्या यंगस्टर्स की मिल जाएगी जो कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं और जो रात में काम कर रहे हैं, और वो उस रात में काम करने की वजह से अपनी पूरी जो लाइफ साइकिल है और स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर दिए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत दिन तक लोग ये काम कर ही नहीं पा रहे, और उन्हें ये काम साल, दो साल, तीन साल के बाद छोड़ना पड़ रहा क्योंकि उनको बीमारियां पकड़ ले रही। इवन भैया, अब आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखिए, वहां 2400 घंटे काम हो रहा है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो अपना न समय देख रहे हैं न वातावरण देख रहे हैं, और हम जब काम कर रहे हैं तो अपने भोजन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं किसी दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूं, मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब मैं मुंबई में मरीज देखता हूं और मेरे पास बहुत सारे मरीज रहते हैं, तो मेरा नाश्ता, मेरा जो दोपहर का भोजन है और मेरे शाम का जो भोजन है, वो सिर्फ एक चीज होता है, वो है वड़ा पाव। और आपका दिमाग क्या कहता है, जल्दी से जल्दी कुछ खा लो। और ये मेरे यंग डेज में मैंने बहुत किया। मैं जब ब्रिटेन में रहा तो जस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है, आप भी श्री भैया रहे हैं, ग्रैब अ सैंडविच एंड गो, या पिक अप अ कॉफी एंड गो। तो हम लोग क्या करते, और आप जितने भी बड़े स्टोर्स को देखिए, वहां पर एक मील कॉम्बो मिलता था जिसमें एक छोटा पैकेट ऑफ चिप्स या कुकी बिस्किट मिलता था, एक सैंडविच मिलता था और एक ड्रिंक मिलती थी। और ये आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप इसको 5 ही मिनट में खा के खत्म कर लेंगे। तो हम लोग अपने भोजन, उस समय दिमाग यही था कि बस पेट भर लेना है, स्वास्थ्य की तो हम बात ही नहीं सोच रहे थे। और जब उम्र बढ़ने लगती है, खासकर जब आप 35 साल को क्रॉस करते हैं और बहुत सारे लोगों में 40 साल तक, तो आपको ये जो आपने किया है अपने शरीर के साथ, आपने जो दुर्व्यवहार किया है, वो आपको दिखने लगता है, आपको लगने लगता है कि आपने गलत किया, आपको ये करना नहीं चाहिए था, आपको ठीक से भोजन करना चाहिए था, आपको ठीक से एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, आपको ठीक से हिलना डुलना चाहिए था। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि कृपा करके अपने स्वास्थ्य के प्रति जितनी जल्दी हो सके उतना जागरूक हो जाइए। और मैं सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शरीर, मन और हम सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, तीनों तरह से आपको स्वस्थ रहना है और अच्छा काम करना है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
0: डॉक्टर साहब, ये बात आप बहुत ही सहजता से हम सबको समझा रहे हैं कि कैसे हम इस एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर देने की वजह से दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देने से हम इसे खो देते हैं, और फिर उसे वापस पाने के लिए हमें कमाया हुआ पैसा, समय इत्यादि खर्चना पड़ता है। पिछले दिनों हम बातचीत कर रहे थे, हम ये चर्चा में समझ रहे थे कि कब्ज की जो बात हम कर रहे थे, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो हमारे ऐसे ही इग्नोर करने के कारण शुरू होती है। हम पानी पीना पर ध्यान नहीं देते, हम समय पर शौच पर जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम, हालांकि हमारा शरीर इशारा करता है तो भी हम उसे दबा दे रहे हैं कि हम शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम भोजन में भी हेर फेर कर लेते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस चीज पर ध्यान नहीं देते। ऐसे करते करते ये इसका स्वरूप बदलता चला जाता है। और आपने ये भी कहा कि पाइल्स जैसी समस्याएं भी इससे ही जुड़ी हुई होती हैं, कि इन्हीं गलतियों के कारण ये चीज ऐसे होती जाती हैं। अब समस्या एक ही चीज से जुड़ी हुई है वो समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे वो अलग अलग स्टेजेस पे आ रहा है। अब इसके इलाज के बारे में जब बात की जाती है तो प्रश्न उठता है, क्या इसके इलाज भी एक समान है कि इन सारी समस्याओं के लिए हम अलग अलग तरीके से इलाज करते हैं, क्योंकि आज लोग अलग अलग पैथीज इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रश्न उठता है स्वाभाविक रीति।
1: भैया, मोटापा हो, कॉन्स्टिपेशन हो या पाइल्स हो, मोटा मोटी सबका इलाज एकदम एक जैसा है। इन तीनों के विषय में आपने भैया खाने की बात की और शौच जाने की बात की, तो एक बड़ी, यहाँ एक लोकल बंगला में कहावत है कि जाए कि ना जाए तो जो जाए उचित, और खाए कि ना खाए, ना खाए उचित। मतलब अगर आपको, मतलब थोड़ा भी आपको, आपका पेट इशारा कर रहा है कि फ्रेश होने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको तुरंत जाना चाहिए। वो हल्के से भी सिग्नल को, वो हल्के से भी जो आपके शरीर के अंदर से आवाज आ रही है, उसे तुरंत आपको पकड़ना चाहिए। मतलब शौच आप जाएं कि ना जाएं, इस दुविधा में अगर आपका मन है तो आपको चुपचाप शौच चले जाना चाहिए। और इसी के विपरीत कि हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो इसमें नहीं खाना चाहिए ज्यादा उचित है। अगर आपके शरीर ने, आपके मन ने, आपकी जिह्वा ने, आपके दिमाग ने एक बार भी ये सोच लिया यार ये खाएं कि नहीं खाएं, तो नहीं खाना उचित है। तो प्लीज अगर आप अपने पेट को ठीक रखना चाहते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं गर्दन को दाहिने बाएं घुमाइए, ना बोलना सीखिए खाने को, और अगर जरा सा भी आपके पेट में सिग्नल आए तो आपको तुरंत पेट साफ होने के लिए जाना चाहिए। हम लोग अभी पेट की बात कर रहे हैं और पेट साफ होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज आजकल बात की जाती है वो है इलाज में, अब उसको भी कंसिडर किया जा रहा है कि आपको सुबेरे जल्दी उठना चाहिए। हमारी ह्यूमन बॉडी को इस तरह से भगवान ने बनाया है कि उसमें जो भी नेचुरल जो बात फ्रेश होने के जो सिग्नल्स हैं वो सुबेरे के समय आते हैं। आप जान के अचंभित होंगे कि इस समय जितने भी इनफर्टिलिटी के मरीज हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी जो प्रोसेसेस हैं वो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि सुबेरे किए जाएं, और वो ये तक कोशिश कर रहे हैं स्पेशली बड़े शहरों में कि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, कि ये सबसे पॉजिटिव सबसे अच्छा समय है। मेरी माँ ये हमेशा कहती थी सुबेरे उठ के जो पढ़ाई होती है वो एक घंटे में हमें 2 से 3 घंटे का फायदा हो जाता है। सुबेरे उठ के मुंह हाथ धो के जब पूरा वातावरण शांत रहता है, कोई भी चीज सुनाई नहीं देती, उस समय अगर आप बैठ के पढ़िए तो आपको ज्यादा याद होगा, आपके शरीर के लिए अच्छा है और आपके मन के लिए भी अच्छा है। तो यही चीज अब मोटापा, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स तीनों में कहा जा रहा है कि आप प्लीज सुबेरे उठिए। और ये भी कहा जाता है कि सूर्य की जब किरण निकल रही है अगर आप उस समय उठ पाएंगे तो आपको सबसे अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी तांबे के या मिट्टी के या जो सामर्थ्यवान है चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी जो रात भर का रखा है उसे उठते ही पीते हैं तो आपके पेट साफ होने में वो बहुत मदद करेगा। सुबेरे उठते ही 2 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। अब इस पानी में हम चाहें तो जो मैंने पहले कहा था कि हमको इसमें जो नींबू का रस मिलाकर हम इसमें सुबेरे पी सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूंगा कि आप रात में पानी रखें और सुबेरे उसमें नींबू गार लें, कागजी नींबू, और पी जाएं। ये मत करिएगा कि रात में ही आप नींबू और पानी बनाकर आप उसको रख दें और सुबेरे पिए। हल्का फुल्का व्यायाम और गहरी सांस लेने वाली कसरत आपको करनी चाहिए, और अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन या आपको अच्छा खासा आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपको 4 से 6 किलोमीटर तक सुबेरे वॉक करना चाहिए। ये मोटा मोटी माना जाता है अगर स्टेप के हिसाब से माने कि हम हर मिनट 100 स्टेप चल लेते हैं, 10 मिनट में 1000 स्टेप चल लेते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम 10,000 स्टेप सुबेरे ही चल लें, क्योंकि यदि आप 10,000 स्टेप चल लेंगे तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जहां आप हल्के फुल्के व्यायाम, एक्सरसाइज या टहलना करेंगे तो आपका रक्त संचार जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपकी बड़ी आंत में भी अच्छा रक्त संचार होगा और इसकी वजह से आपका पेट ठीक से साफ हो जाएगा। इसके बाद हमें कोई भी फल का या रस का प्रयोग करना चाहिए। फलों में सबसे अच्छा जो फल है वो पपीता, अमरूद और बेल है, और पके हुए फल का प्रयोग करना चाहिए। अमरूद, पपीता या बेल, इन तीनों में से जो भी चीज आपको मिले आपको सुबेरे के नाश्ते में करनी चाहिए। अगर आप रस पीना चाहते हैं तो आपको गाजर का रस और पालक का रस, ये रस आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। दोपहर के भोजन में हमें चोकर समेत आटे की रोटी, हमको ताजा साग सब्जी, उबली हुई साग सब्जी का भोजन करना चाहिए, या हम कोई भी दलिया या कोई भी मिलेट जो है वो खा सकते हैं। मैं सबको ये राय और देना चाहूंगा, कृपया मिक्स्ड आटा या मिक्स्ड मिलेट इसका प्रयोग मत करिए, क्योंकि ये आपके जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर ज्यादा जोर डालता है। इसीलिए सिंगल ग्रेन या सिंगल मिलेट का प्रयोग करिए। मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्स मतलब बहुत सारे अन्न को मिला के खाने की कोशिश मत करिए। जिनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, मोटापा होता है, उनको ये तक कहा जाता है कि आप दालों को मत खाइए और जो भी भोजन जो गर्म होते हैं उन्हें मत खाइए, क्योंकि जैसे तेल, अचार, खटाई, मिठाई, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके पाचन तंत्र को और धीरा बना देते हैं। आप सुबेरे के नाश्ते के बाद अपनी पेट पे ठंडे पानी का कपड़ा रख सकते हैं। यदि आपको मिट्टी मिले तो आप पेट पे मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग को ये भी कहा जाता है कि आप अपने कमर पे एक ठंडे पानी में कोई पट्टी, जो कॉटन की कोई भी पट्टी है, उसको भिगो लें और ये करीब 12 इंच मोटी कोई पट्टी आपके पास अगर कॉटन की है तो इसको भिगो लें और इसको अपने कमर पे बांध लें। नाभि के चार उंगल ऊपर, चार उंगल नीचे होना चाहिए। पट्टी नाभि के एकदम बीचों बीच से, अगर आप नाभि को बीच में माने तो जितना ऊपर नाभि के उतना ही नाभि के नीचे भी होनी चाहिए। इससे आपकी सारी जो आंत है उसमें ठंडक पहुंचेगी, आंतों की गर्मी निकलेगी और आंतों में फिर से नया जीवन आएगा और वो अपने आप चलायमान हो जाएंगी। हम लोग ने ठंडे पानी में बैठ मतलब पानी में बैठने की भी बात की थी, तो आप अगर आंतों को ठंडक पहुंचाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। करीब हफ्ते में एक दिन उपवास करने की कोशिश करनी चाहिए। 2-3 दिन तक अगर हम रसाहार या लिक्विड डाइट करते हैं तो वो भी हमको बहुत आराम देगा। सवेरे भारी नाश्ता करने की हमें आदत छोड़नी चाहिए कि हम मतलब हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतनी जल्दी निकलेगा।
0: डॉक्टर साहब, जब आप कहते हैं कि ये जो हैवी ब्रेकफास्ट करना है इससे बचना होगा, और आपने ये भी बात कहा कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना जल्दी निकलेगा शरीर से बाहर, ये एक अवधारणा हमारी कैसे बनती है वो मैं नहीं जानता। प्रायः ये चीज कहा जाता है कि लोगों को बोला जाता है कि भाई अच्छे से नाश्ता करो बेटा, बचपन से ये चीज सिखाया जाता है। तो हम सोचते हैं कि भाई एक किंग के समान नाश्ता होना चाहिए और एक मजदूर के जितना हमें भोजन करना चाहिए, और फिर बाद में एक बहुत ही गरीब आदमी जितना रात का भोजन होना चाहिए, ये कहावत मशहूर है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ब्रेकफास्ट तो हैवी होना ही चाहिए, जो मिल रहा सब कुछ ही खा लेना है, ऐसी ये चीज लगती है।
1: भैया, ये जो आपने बात की ये हेल्दी पीपल के लिए है। जब आपका पाचन तंत्र चल ही नहीं रहा है तो उसमें आप ऊपर से जो भी डालेंगे वो फंस जाएगा। अच्छा, हैवी ब्रेकफास्ट अगर ये जहां से भैया निकला वहां पर जो भी लोग थे वो सैलड बहुत खाते हैं, वो फ्रूट्स बहुत खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट में जैसे जो यूरोप है वहां से ये धारणा निकली, तो दे हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स, सैलड्स, ब्रेड्स, मिल्क, ये वहां से निकला। हमारी इंडिया में आते आते ये सुबेरे के पराठे में कन्वर्ट हो गया। और ये हैवी ब्रेकफास्ट जो है ये तला भुना वो सारी चीजें हो गई। आप खुद नोटिस करेंगे भैया कि हम आप विदेश में रहे हैं, वहां खाने के साथ पानी बहुत कम पिया जाता है, और हमारे यहाँ हम इतना भारी भोजन करते हैं कि हम खाने के साथ पानी का गिलास भी रखते हैं। बहुत सारे लोग जब आरोग्य मंदिर में चिकित्सा कराने आते हैं तो वो इस बात से अचंभित हो जाते हैं कि यहाँ पानी का गिलास ही नहीं भोजन के साथ मिलता है। हम आपको सिर्फ एक स्टील की प्लेट, दो कटोरी, एक चम्मच देते हैं, हम पानी का गिलास ही नहीं देते हैं। और अगर आपको कोई भी पाचन तंत्र की समस्या है, भोजन आपका ठीक नहीं है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप खाना खाने से पहले नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी ठंडक में पी सकते हैं, और भोजन करने के 1.5 से 2 घंटे बाद इच्छा अनुसार आप जल पी सकते हैं। खाने के साथ आपको पानी जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पेट और छोटी आंत का जो काम है वो बढ़ा देता है। एक्सरसाइज में ये भी कहा जाता है कि आप बेसिक सूर्य नमस्कार अगर करिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार में आगे झुकने और पीछे झुकने के जो आसन है वो आपके पेट को साफ करने में बहुत मदद करेंगे। ये अवधारणा है कि खासकर प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद ये कि आपको बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए अगर आप कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स के मरीज हैं।
0: व्यायाम की जब आप अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग इन सब चीजों से अवगत नहीं होते। जैसे आपने ये बात कहा, जैसे मैंने अभी ये सवाल पूछा, आपने कहा कि ये स्वस्थ लोगों के लिए चीज है, मगर वो लोग जो पाइल्स कॉन्स्टिपेशन जैसे कब्ज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको अपने इलाज में इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। कभी कभार हम एक्सरसाइज के बारे में भी जब करते हैं तो हम बिना चिकित्सीय सलाह के, बिना डॉक्टर से राय मशवरा किए जो हम YouTube पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया रील्स पे देख रहे हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि मेरे शरीर में जो गड़बड़ियां चल रही हैं या कोई चीजें मुझे सूट नहीं करने वाली होंगी उसके हिसाब से मुझे ये चीज समझ कर करना है?
1: आपको अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपको वो भोजन जो आपकी जिह्वा पे आपको अच्छा लग रहा है पर आपको शरीर से कष्ट दे रहा है उसको पक्का छोड़ देना चाहिए। भैया राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात में एक चटनी बनाई जाती है जिसमें हम लाल मिर्च का पाउडर लहसुन के साथ उसको पीसते हैं और ये बहुत तेज होती है। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति इसको अगर एक बार खा लेता है तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है, मेरे पेट में अगले दिन जलन होने लगती है और मेरी पूरे जो मुंह है सूख जाता है। तो मुझको मालूम है ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, मगर वो जब जिह्वा पड़ती तो बहुत एकदम एक तीखा सा स्वाद आता। तो मुझे मालूम चल गया वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैंने इसको एक बार दो बार खाया, उसके बाद से मैं पहले मना कर देता हूं कि मैं नहीं खाता और अगर सर्व भी हो जाती है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि वो चीज मेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही कोई एक फल होता है जिससे वो रिएक्शन हो जाता है, कोई एक दाल होती है, कोई मतलब प्रोटीन होता है, कोई सब्जी होती है, इनको खाने से परेशानी होने लगती है। ठंडक के समय लोग बहुत मटर खाते हैं तो गैस होने लगती है, इसलिए मटर को वो फिर ये होता बड़ा परेशानी हो रही, तो भाई छोड़ दीजिए आप। तो जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, आपको भले ही उससे स्वाद आ रहा है, तो प्लीज उसको तो जरूर छोड़ दीजिए।
0: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर साहब। एक और हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और जागरूक होने की कोशिश में हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हमारे शरीर के लिए, हमारी प्रकृति के लिए अनुकूल है और क्या चीजें अनुकूल नहीं है, क्या चीजें हमें सूट करती हैं, क्या चीजें हमारे शरीर के लिए विरोधी हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें समस्या ले आ सकती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीजें समझ के साथ जब हम करते हैं तब पता चलता है। दोस्तों स्वास्थ्य में जब भी गड़बड़ियां होती हैं तो इलाज मौजूद है, मगर उन इलाजों को करते समय सही राय लेना बहुत ही आवश्यक है। आजकल जानकारी के इस युग में रहते हुए हम हर कोई जो मन में आए वो करने लग जाए तो शायद ये हमारे लिए अहितकारी साबित होगा। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स जैसे बीमारियों के लिए इलाज के क्या तरीके हैं, उस विषय पर आज हमने डॉक्टर राहुल मोदी जी से सुना। आशा करते हैं कि ये सभी जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और आप इसका सही सही इस्तेमाल करेंगे। आज की चर्चा में यही रुकना होगा। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों आज की बातचीत में बस इतना ही। सहज स्वास्थ्य में अपने स्वास्थ्य को सहज करने के लिए क्या करने की जरूरत है, रेडियो मधुबन इसके लिए आपको आपके हाथ पकड़कर अच्छे स्वास्थ्य की ओर एक एक कदम बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमारे साथ इस सफर पे यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम में आ गए हैं आपके लिए ढेर सारी बातें लेकर, कहानियाँ लेकर, पहेलियाँ लेकर। कौन? वही आपकी मनी दीदी और परी।
2: हाँ बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जो कि आपका बहुत ही फेवरेट है, हमें पता है।
1: तो मनी दीदी, आज क्या बात करनी है बच्चों से?
2: हाँ परी, चीनू ने प्रश्न पूछा है कि उसे ना मोबाइल में गेम खेलना बहुत पसंद है, और मोबाइल नहीं मिलता है तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उसने यही प्रश्न भेजा है कि मैं क्या करूँ।
1: चलो चीनू, आपको लगा तो सही कि मोबाइल में लत लगी है और उसको छोड़ना चाहते हो। खेलना गलत नहीं है बच्चों, पर हर चीज की सीमा होती है। मोबाइल को अपनी दुनिया मत बनाओ। दिन का एक निश्चित समय तय कर लो, आधा घंटा बहुत हो गया।
2: हाँ, और बाकी समय थोड़ा बाहर खेलो, पेंटिंग करो, गाने सुनो, डांस करो, किताब पढ़ो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन दूसरी चीजों में भी लगने लगेगा।
1: हाँ बच्चों, और याद रखना, असली जीवन मोबाइल से बड़ा और सुंदर है।
2: सही कहा परी। तो चीनू, समझ गए ना, अपनी वो आदत छोड़ने के लिए तुम्हें नई नई आदत बनानी पड़ेगी, और वो भी अच्छी अच्छी, जिसमें मजा भी आएगा। देखो जरा, गाने सुनने में कितना मजा आता है कि नहीं आता है? अच्छे गाने में तो डांस करने का भी मन करता है।
1: हाँ, तो थोड़ा हाथ पैर हिलाओ चीनू, और घर से बाहर निकलो। और सिर्फ चीनू के लिए नहीं, सभी बच्चों को बता रहे हैं, मोबाइल की ज्यादा लत मत लगाना।
2: हाँ, आजकल तो सभी बच्चे, पर ही मैंने देखा है कि हमारे पास के जो बच्चे हैं, वो बस खाते समय भी मोबाइल, बातें करते समय भी मोबाइल, होमवर्क करना होता है उस समय भी मोबाइल, बाहर खेलने जाना होता है उस समय भी मोबाइल, तो मम्मी पापा तो परेशान हो जाते हैं।
1: हाँ बच्चों, तो ऐसे अपने मम्मी डैडी को परेशान मत करना, अच्छे बच्चे बन के रहना। तो चलो मनी दीदी, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
2: हाँ बच्चों, चलो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन 107.8।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आ जाओ बच्चों, रेडियो के पास। कहानी परी शुरू कर रही है। जल्दी जल्दी बैठो वरना कहानी मिस हो जाएगी। आज आपको मुर्गे और लोमड़ी की कहानी सुनाएंगे। एक जंगल में एक धूर्त लोमड़ी रहती थी। एक बार उसने एक मुर्गे को पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे हुए देखा। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, कितना बढ़िया भोजन हो सकता है ये मेरे लिए। पर मुश्किल ये थी बच्चों कि वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी। वो चाहती थी कि किसी तरह ये मुर्गा नीचे उतर आए। इसलिए लोमड़ी पेड़ के नीचे गई। उसने मुर्गे से कहा, मुर्गा भाई, आपके लिए एक खुशखबरी है। स्वर्ग से अभी अभी आदेश आया है कि अब से सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहेंगे। अब वे कभी एक दूसरे को नहीं मारेंगे। लोमड़ियां भी अब मुर्गे मुर्गियों को खाएगी नहीं। इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, हम लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं। बच्चों, मुर्गे ने क्या जवाब दिया होगा सोचो। मुर्गे ने कहा, वाह वाह, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। वो देखो, तुम्हारे कुछ दोस्त भी तुमसे मिलने आ रहे हैं। मेरे दोस्त? लोमड़ी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे कौन से दोस्त आ रहे हैं? तो बच्चों, वहीं पर क्या था पता है? शिकारी कुत्ते, मुर्गे ने मुस्कुराते हुए कहा। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी तो भय से कांपने लगी। उसने भागने के लिए जोर से छलांग लगाई। मुर्गे ने कहा, तुम उनसे क्यों घबरा रही हो? अब तो हम लोग आपस में दोस्त बन गए हैं ना? बच्चों, लोमड़ी ने कहा, पर इन कुत्तों को अभी शायद इस बात का पता नहीं होगा। ये कहकर लोमड़ी तो शिकारी कुत्तों से डरकर सरपट भाग खड़ी हुई। तो देखा बच्चों, कहानी कितनी मजेदार थी। हमें बताती है कि धूर्त की बातों पर आंखें मूंद कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब मनी दीदी आने वाली है दूसरी कहानी लेकर। तब तक पहले सुनते हैं गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब लेकर। और आज हम एक नई कहानी शुरू करने वाले हैं, राजा का अजीब आदेश और तेनाली राम। तो एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने सभी मंत्रियों को उनके निजी खर्च के लिए 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। साथ ही एक शर्त रखी कि इन मुद्राओं को खर्च करने से पहले हर बार उन्हें राजा का चेहरा देखना होगा। यदि कोई बिना राजा का चेहरा देखे एक भी मुद्रा खर्च करेगा तो उसे कठोर दंड मिलेगा। सारे मंत्री खुशी खुशी स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर चले गए। एक हफ्ते बाद जब दरबार लगा तो राजा ने पूछा कि किसने कितनी मुद्राएं खर्च की। सभी मंत्रियों ने सिर झुका लिया और बोले कि वे राजमहल से बाहर रहकर राजा का चेहरा देखे बिना मुद्राएं कैसे खर्च कर सकते थे, इसलिए वे सारी मुद्राएं वापस ले आए। तो बच्चों, अब तेनाली राम ने क्या किया होगा? क्या तेनाली राम ने मुद्राएं खर्च की या नहीं? और अगर की भी तो आगे आखिर कैसे किया? तो चलो भाई, ये हम जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक बने रहिएगा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बच्चों, अब बारी है पहेलियों की। गाना सुन लिया, कहानियां भी सुन ली, जानकारियां भी प्राप्त कर ली, और आज एरो हेलीकॉप्टर के बारे में मनी दीदी ने आपको बताया, वही गुलेल जो पुराने जमाने में उड़ा करते थे। तो अब बारी है पहेली की। पिछली बार हमने आपको पूछा था, जन्म तो हुआ है जंगल में, नाचे पर गहरे जल में, मनी दीदी बताओ आपको जवाब मिला कि नहीं?
1: हाँ परी, जवाब तो मिला, ढेर सारे बच्चों ने दिया है, तो मैं सबका कंबाइंड एक ही जवाब आपको बता देती हूँ, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने आंसर भेजे हैं कि सबका नाम भी नहीं ले सकते।
0: अच्छा मनी दीदी, तो बताओ जल्दी।
1: इसका सही जवाब है बच्चों, जहाज। और ये एक और पहेली का भी जवाब है, पता है क्या? जिसके आगे जा और पीछे जा, बोलो वो क्या?
0: हाँ सही, जहाज।
1: जहाज तो बिल्कुल सही। ऐसे ही बच्चों आगे भी हमको जवाब देते रहना।
0: और बच्चों, अगर आपका ये जवाब सही है तो अपने आप को शाबाशी दे देना, और डायरी पेन तो अपने हाथ में ले ही ली है, तो अगली पहेली भी नोट कर लीजिए जल्दी से। तित्तर के आगे दो तित्तर, तित्तर के पीछे दो तित्तर, आगे तित्तर पीछे तित्तर, बोलो कितने तित्तर?
1: कितने तित्तर?

0: आप तो जल्दी से 9414151415 पर मैसेज कर दो।
1: हाँ, वॉइस नोट या मैसेज कर सकते हैं और हम अगली कड़ी में इसका सही जवाब बताएंगे।
0: हाँ, तब तक मैं ये तीतरों को ही गिनती रहूंगी लगता है मुझे। जब तक जवाब नहीं पता पड़ेगा तब तक तो मेरे दिमाग में यही घूमता रहेगा परी।
1: हाँ मनी दीदी, लेकिन बच्चे तो बड़े स्मार्ट है, अभी देखना मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे।
0: सही कहा। चलो अभी आगे क्या परी?
1: आगे जल्दी से बच्चों लिख दीजिए भगवान जी को, सारे दिन में कुछ गड़बड़ की है तो सॉरी, और किसी को मदद की है तो उसके लिए थैंक यू।
0: हाँ, तो क्या क्या अच्छा हुआ क्या क्या बुरा हुआ वो याद करके बच्चों सॉरी और थैंक यू लिखना नहीं भूलना।
1: तब तक के लिए गुड नाइट,
0: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की

समय बनता है सुबह का जब खास, उषा आती है अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे, जरा सोचिए। और जी हाँ, तुलसी स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदा करती है, आप भी सोचिए। उपाय तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा आप भी सोचिए। अगर आपको भी आंसर मिलता है तो आप भी उपाय बता सकते हो। और आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ आइसक्रीम। कल आपने खाई कुल्फी, आज बनाएंगे आइसक्रीम, परंतु कौन सी वाली, वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो प्रश्न भी पूछने वाली हूँ बहुत ही सरल और सुंदर। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

बहुत ही सुंदर गीत सुना आप सभी ने, उसके बाद पुनः आप सभी का आशियाना में स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करे। लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूँगी कि एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और भी अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, उनके अच्छी सेवा की, आदर सत्कार किया। सेवा से प्रसन्न होकर के नगर से प्रस्थान करने के पहले संत ने उस लोभी व्यक्ति को चार दीपक दिए। चारों दीपक दे करके संत ने उसे बताया, पुत्र जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर के पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वहां दिया बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में घड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी नहीं हो सकती है तो तीसरा दीपक भी जला करके दक्षिण दिशा में चले जाना। वहां पर दिया बुझेगा तो वहां पर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और है, एक दीपक है किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कह करके संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ और वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लूं, फिर यहाँ का धन भी ले जाऊंगा। वह कलश वही झाड़ियों में छिपा करके दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर दूसरा दीपक भी बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में रख दिया और सोचा कि बाद में ले जाऊंगा, इसलिए वही छोड़ करके तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जला करके उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने सख्त मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी ज्यादा धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता हो। मुझे तत्काल वहां जाकर उसे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, उसके बाद सारा जीवन में ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक भी जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वे एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला जिन्हें देख करके उसकी आंखें चौंधिया गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख करके उसका लालच और भी बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई दी, वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहां कैसे पहुंचे? बाबा, क्या थोड़ी देर में तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मैं यहां कैसे पहुंचा और मुझे यहां क्या मिला। वृद्ध व्यक्ति बोला,
लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो भाई? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दब करके मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यही चक्की चला रहा हूं, मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कह करके वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा, लोभी व्यक्ति जोर से चिल्लाया पीछे से। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर के यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। देखा ना आपने लालची व्यक्ति के क्या हानि हुई, क्या इसके साथ घटित हुआ। इसलिए लोभ लालच बिल्कुल नहीं करना है। यही आज का सुंदर सा विचार है, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

छा ओ झुक जा सांवरिया लूले जाए तुल छा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में जैसे कि ये गीत की चंद पंक्तियां मैंने गुनगुनाई है, इससे आप समझ गए होंगे कि आज मैं नुस्खे कौन से देने वाली हूँ। वैसे तो परिचय में आप सभी सुन चुके हो, फिर भी आइए आज आपको नुस्खे देते तुलसी के ऊपर, कि तुलसी के गीत तो बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं, भजन बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में जैसा नाम है वैसा तुलसी का काम भी है, बहुत ही फायदा करती है तुलसी। और तुलसी का पौधा तो लगभग हम अपने घरों में लगाते ही हैं, है ना, कोई घर में रखते कोई घर के बाहर रखते, लेकिन हर एक के घर में लगभग तुलसी का पौधा तो होता ही है। तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है तुलसी। तुलसी देखिए, इसको एक दिव्य पौधा माना जाता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को भी प्यारी है, तो बहुत सारे भजन बन गए हैं, है ना, और बीमारियों को भी ठीक करती है, इसलिए इसको दिव्य पौधा के रूप में माना जाता है। इसकी पूजा भी होती है और बहुत सारी बीमारियों को ये नाश करती है। तो जैसे कि कैंसर वाले लोगों के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि कैंसर में कैसे फायदा करती है तुलसी। कैंसर जैसे गंभीर रोगों में 25 से 100 पत्तियाँ बड़ों के लिए, ठीक है ना, तुलसी के पत्ते कितने लेने हैं, 25 से 100 पत्तियाँ, और 5 से 25 पत्तियाँ बच्चों के लिए ले सकते हैं आप। फिर भी शुरुआत में आप 21 से 35 पत्तियों से शुरू करिएगा, ठीक है, ये पर्याप्त है, फिर आपको संख्या बढ़ानी है। तो अधिकतर रोगों में सामान्यतः 7 से लेकर 11 पत्तियाँ लेनी है। कैंसर की बीमारी में मैंने आपको बताया है कि शुरुआत में 21 से 35 तक शुरुआत करनी है और बाकी 25 से 100 तक पत्तियां लेनी है, धीरे धीरे संख्या बढ़ानी है, लेकिन ज्यादा ही तकलीफ है तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरी अन्य कोई बीमारी हो तो आप 7 से लेकर के 11 पत्तियां, ठीक है, और बच्चों के लिए 6 से लेकर के 5 पत्तियां जरूर इनको खिलाइएगा, ठीक है। जैसे कोट जैसे 7 साल पुराना चर्म रोग, केवल 3 पत्तियां बारीक घोट करके आप दीजिएगा, तो कोट जैसी बीमारियों में भी फायदा पहुंचा सकते हैं तुलसी के पत्तियां। बस आपको जरूरी है थोड़ा सा लगातार इसका सेवन करना, ठीक है, और जलन या फिर कोई और छोटी मोटी तकलीफ है तो आप खाली पत्तियां भी दे सकते हैं, सुबह खाली पेट देना है, ठीक है। तुलसी की पत्ती खा करके आप सामान्य जो जल है उसको पी लीजिएगा, ठीक है, नहीं चबाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे उतार करके पानी पी लीजिए, चबा करके भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि 7 से 21 ताजे हरी तुलसी की पत्तियां लेकर के आप स्वच्छ खरल या सिल बट्टे पर, जिस पर मसाला नहीं पीसा जाता है, ठीक है, और मसाला पीस रहे हो तो उसको अच्छी तरह धुलाई करो, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछो, उसके बाद ही आपको तुलसी की पत्तियां घोटनी है, नहीं तो फिर आप लोगे तो छाती में जलन करेंगे, फिर कहेंगे कि अरे ये तुलसी जल रही है, लेकिन तुलसी की जलन नहीं है, आपके मसाले की जलन है। इसलिए अगर सिलबट्टे पर पीस रहे हैं आप और मसाले वाला है तो उसका अच्छी तरह धुलाई करिए, बाकी जिसमें आप मसाला नहीं पीसते हो वो सिलबट्टा भी आप ले सकते हो और चटनी की तरह इसको, मतलब चटनी बना देनी है इसकी 7 से 21 ताजा हरी पत्तियां लेकर के। फिर इसको 50 या फिर 125 ग्राम दही में मिला करके रोज खाली पेट 2-3 महीना तक लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। यदि दही खट्टा है, माफिक नहीं आ रहा है, तो आप 1-2 चम्मच शहद मिला सकते हैं इस चटनी में, ठीक है, तुलसी की चटनी में, और इसको लीजिए, तो इससे कफ और श्वसन संस्थान के रोगों तथा छोटे बच्चों को बारीक पीसी हुई तुलसी की पत्तियां शहद में मिलाकर दीजिए तो ये श्वसन और कफ में काफी फायदा करेंगे। बच्चों के आप खुराक की मात्रा घटा दीजिए, बड़ों के लिए मात्रा जो मैंने आपको बताया है वो लीजिएगा, इससे कफ है, सांस की समस्या है, इन सब में राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2-3 महीने तक लगातार लेना है, सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तियों के पेस्ट करके इसको या तो दही में घोलिए, दही अगर खट्टा है तो शहद में भी आप मिला सकते हैं, और इसको चाटिए, ठीक है, तो श्वास की समस्या ठीक होगी, कफ की समस्या ठीक होगी। और आप दूध में तुलसी को मत डालिएगा, चाय में डालिएगा,
चाय में जैसे आप अदरक डाल रहे हो, अन्य मसाला डाल रहे हो, उसके साथ आप तुलसी की पत्तियां डाल करके भी चाय बना सकते हो और इसको पीने से भी कफ में, सर्दी में, सब में राहत मिलेगी और बहुत सारे दर्द जो शरीर में होते होंगे ना उससे भी छुटकारा मिलेगा। अंदरूनी दर्द थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, तो इस तरह अगर आप तुलसी लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये दर्द आपका छोटा मोटा ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहो तो आजमा सकते हो। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है। प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आइए सुनेंगे बहुत ही सुंदर एक गीत और उसके बाद हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप हमरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहे
1: हैं। हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: आज बहन जी प्रश्न कौन सा है, मेरे पास रेडियो है नहीं अभी।
1: हाँ जी, आज का प्रश्न है प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए।
2: अच्छा, तो ये पृथ्वी
1: जी, जी
2: और जल, अग्नि और ये हवा वायु।
1: अच्छा ठीक है, तो आभार आपका फिरोज भाई।
2: आप अभी सभी रेडियो मधुबन परिवार को सलाम
1: जी, आपको भी। चलिए आप सुनते रहिए आशियाना, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है
2: जी, जी जी जी।
1: तो आप सभी आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज जैसा कि मैंने आपको परिचय में कहा था कि आइसक्रीम सिखाएंगे, परंतु कौन सी वाली? जी हाँ, ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम। ठीक है, सादी सिंपल आइसक्रीम बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी पसंद करते हैं। तो ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम के लिए आप पेन और डायरी जरूर ले लीजिएगा, और सामग्री में लिखवा रही हूँ वो लिखिएगा। आप लीजिएगा 1 लीटर दूध, ठीक है, फिर आपको लेना है 2 ब्रेड की स्लाइस, फिर आप लीजिए 250 ग्राम चीनी, छोटी इलायची ले लीजिएगा 4, 10 ग्राम आप खरबूजे के बीज लीजिएगा, 10 ग्राम ही आपको चिरौंजी लेनी है, और थोड़े काजू, बादाम, पिस्ता आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, थोड़े कटे हुए। ठीक है, तो फिर से मैं दोहरा रही हूँ सामग्री, आप एक नज़र डालिएगा अपनी डायरी में, कहीं छूट गया हो तो लिख लीजिएगा। 1 लीटर दूध, फिर आप लीजिएगा ब्रेड की स्लाइस 2, 250 ग्राम आपको लेनी है चीनी, और 4 ले लीजिएगा छोटी इलायची, खरबूजे के बीज ले सकते हैं आप 10 ग्राम और चिरौंजी भी 10 ग्राम, और काजू, बादाम और पिस्ता ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा। ठीक है, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि दूध को आप गर्म करिए, गर्म करके आप उसको तो गर्म करते रहिए, बीच बीच में हिलाते रहिए, चिपके नहीं, नीचे चिपकेगा लगेगा तो आप समझ सकते हो कि उससे स्मेल आएगी, इसलिए आप हिलाते रहिए और दूध गर्म करिए। फिर जो ब्रेड की स्लाइस ली है इसका आप चूरा कर दीजिए, और लगातार हिलाते हुए दूध को आप थोड़ा गाढ़ा होने दीजिए। ठीक है, और पकाते रहिए, और इसमें ही ये जो चूरा है ये भी डाल दीजिए दूध में। ठीक है, और हिलाते रहिए, दूध गाढ़ा हो जाए तो फिर आप चीनी मिलाइए, फिर 5-10 मिनट और इसको पकाना है, फिर आप गैस बंद कर दीजिए या फिर गैस से नीचे उतार दीजिए, फिर पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा और कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स करके आप किसी भी बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, और जब ये जम जाए कम से कम 8-10 घंटे लगेंगे, 8-10 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हो कि आइसक्रीम आपकी जम चुकी है, फिर जब चाहे आप खा सकते हो। तो इस तरह ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम बनाई जाती है। फिर से विधि दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह सुनकर के बनाइएगा कि दूध को आप गर्म करिए, हिलाते रहिए और गर्म करते रहिए, फिर जो हमने ब्रेड की स्लाइस ली है उसका चूरा कर दीजिए, और इस चूरे को भी आप दूध में डालिए और अच्छी तरह हिलाइए, दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो शक्कर डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर से हिलाइए, उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए, और गैस बंद करने के बाद आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाल दीजिएगा, और अच्छी तरह हिलाकर जब यह ठंडा हो जाए तो आप आइसक्रीम के बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, 8-10 घंटे आपको फ्रीजर में रखना है। उसके बाद आप देखिएगा आपकी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम तैयार है। तो बस आइसक्रीम आपने सीखी है, और भी मैं आपको अन्य प्रकार के आइसक्रीम सिखाने वाली हूँ, लेकिन कौन सी वो आप गीत सुनने के बाद ही जान पाएंगे। तो आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब सुनेंगे गीत, उसके बाद हम पुनः आपसे मिलेंगे, आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम। आइए अब आपको कोकोनट वाली आइसक्रीम सिखा देते हैं। ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जब भी चाहो बना सकते हो आइसक्रीम, कुल्फी, और घर पर ही बना करके इसका आनंद ले सकते हो। पेन और डायरी तो तैयार है ना, तो लिखिएगा कोकोनट आइसक्रीम के लिए आप लीजिएगा वनीला आइसक्रीम 4 कप, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कप, सादी क्रीम लेनी है 1/2 कप, और कैस्टर शुगर लेना है 1/2 कप। बस इसमें सामग्री ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, 4 कप ले लीजिएगा वनीला आइसक्रीम, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 4 कप लेना है वनीला आइसक्रीम, 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लेना है, सादी क्रीम भी आप 1 कप ले लीजिएगा या फिर थोड़ी कम होगी तो भी चलेगा, और कैस्टर शुगर लेना है आपको 1/2 कप। अब देखिए इसमें आपको मैं वनीला आइसक्रीम रेडी मतलब दिलवा रही हूँ आपको, लेकिन आप चाहो तो जैसे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम आपको सिखाई है ना, तो बस आप उसमें ड्राई फ्रूट्स मत डालिएगा तो सादी आइसक्रीम हो जाएगी। तो इस तरह अगर आप पूरी ही तरह से बनाना चाहते हैं आइसक्रीम तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कोकोनट आइसक्रीम के लिए फिर इसमें आपको खाली नारियल ऐड करना है, और वो वाली आइसक्रीम जिसमें ड्राई फ्रूट लिया है, वैसे ड्राई फ्रूट हर एक में आप डाल सकते हो, मात्रा को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, और नहीं भी डालोगे तो चलेगा, इस आइसक्रीम में लिया नहीं है वैसे ड्राई फ्रूट। तो आप अब क्या करेंगे, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, फिर क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके आप फेंट लीजिए। ठीक है, और नारियल के पेस्ट को इसमें मिला दीजिए। वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिला देना है, फिर इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकाल करके कांटे की मदद से फेंटिए, फिर से फेंटना है और वापस कंटेनर में भर करके ढक्कन लगा करके फ्रीजर में जमने के लिए रख दीजिए। तो बस 8-10 घंटे आपको फिर से रखना है फ्रीजर में, और उसके बाद आप निकालिए, जब चाहो तब आप खा सकते हो। ये बन गई हमारे नारियल वाली आइसक्रीम। थोड़ा सा स्वाद में चेंज आ गया है, लेकिन बहुत सारे फ्लेवर की बनती है आइसक्रीम, जिसमें थोड़े थोड़े से चीज़ें हम अलग तरीके से ऐड करते जाते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा चेंज होता जाता है, और हर कोई चाहता है कि टेस्ट चेंज होता रहे, चाहे कुल्फी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे भोजन हो, टेस्ट सभी चाहते हैं कि हमेशा थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का मिलता रहे, है ना। तो बहुत ही सरल तरीका है इस आइसक्रीम का भी, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को, कि आप नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके अच्छी तरह फेंटिएगा, और इसमें फिर फेंटने के बाद नारियल की पेस्ट को भी मिला दीजिएगा। अब आप वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिक्स करिए और इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में आप भर के रख दीजिए, किसी भी आप बर्तन में जो आइसक्रीम जमाने का है उसमें भर के रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकालिए और निकाल करके इसको फिर से फेंटिए, फेंट करके फिर से इस कंटेनर में, इस पात्र में भरना है और ढक्कन लगा करके अच्छी तरह आप फ्रीजर में रख दीजिए। 8-10 घंटा इसको जमने दीजिए, उसके बाद बस आप जब चाहे आइसक्रीम का आनंद ले सकते हो। तो चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी उषा बहन जी।
1: हाँ जी, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, और सभी मित्रों की कृपा है, बाबा की कृपा है, और आपकी दुआ है, और कार्यक्रम भी बहुत सुंदर चल रहा है, और अभी अभी जो ऑन किया तो कार्यक्रम चल रहा
1: जी,
2: तो सोचा फोन कर लूं और बात कर लूं, और जवाब क्या है वो प्रश्न भी।
1: अच्छा, प्रश्न नहीं सुना आपने?
2: जी, मैं तो अभी ऑन किया था।
1: जी जी, तो आज का प्रश्न है, प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइएगा।
2: जी जी जी बहन, प्रकृति अपने में जो समेत के 5 तत्व रखे है
1: जी,
2: तो उसका नाम मैं बताता हूँ बहना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब प्रकृति के नियम है। हम ये सब सृष्टि के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: ठीक है दयाराम जी, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। ठीक है
2: जी बहन
1: जी, आभार आपका जी, नमस्कार। तो देखिए दोनों ही प्रकार के आइसक्रीम तैयार है, चाहे हम आइसक्रीम बनाएं, कुल्फी बनाएं, चिवड़ा बनाएं या भोजन बनाएं, भोग तो लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप भोग लगाइएगा, परमात्मा की याद में भोग लगाइएगा, और कभी कभी क्या है प्रकृति को भी धन्यवाद दे दीजिएगा, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है और प्रकृति के द्वारा ही हम वस्तुओं को, चीज़ों को बनाते हैं। तो कभी क्या है, जो भी बना रहे हैं हम, चाहे भोजन हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कुल्फी हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, साथ ही साथ आप प्रकृति को धन्यवाद भी देते जाइएगा कि प्रकृति हमारा कितना साथ निभाती है। ये प्रकृति नहीं होती तो हमारा क्या होता, इसलिए है प्रकृति आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा साथ हमारा निभाती हो। तो इस तरह कभी प्रकृति के पांच तत्व में से एक तत्व को भी आप धन्यवाद दे सकते हो, कभी पांचों को ही धन्यवाद दीजिए, और प्रभु की याद में आप भोग लगा करके आइसक्रीम को स्वीकार कीजिए। ठीक है, आइए फिर से आज का प्रश्न दोहरा रही हूँ कि प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15, और अब एक गीत सुनने के बाद पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। आग लगती है तो ये नहीं पूछते कैसे लगी, सिर्फ आग बुझाने में लग जाते हैं, बात छोटी हो या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कारण नहीं ढूंढना, निवारण ढूंढना है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, अब आप इसको स्पष्ट करने में मदद करेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है कि प्रकृति के पांच तत्वों का नाम क्या है। तो दोनों में ही प्रश्न का भी आप जवाब दे सकते हो और खुशनुमा जीवन में भी आप जुड़ सकते हो। नंबर है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आप खुशनुमा जीवन की बातें भी कर सकते हो कि कैसे आग लगती है तो पूछना नहीं है कैसे लगी, उस समय पूछते कैसे लगी, कैसे लगी, कैसे हम फटफट उसको पानी ला करके बुझाने की कोशिश करते हैं। तो बस ठीक इसी तरह बातें छोटी हो या बड़ी हो, समस्या छोटी हो या बड़ी हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं करना है, समस्या का समाधान करना है। क्या कहेंगे आप, हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा रेडियो मधुबन से और अपने विचार को जरूर रखिएगा। तो बहुत ही सुंदर विषय है खुशनुमा जीवन का कि जैसे आग लगती है, ये आपको बता चुकी हूँ कि मैं, आग लगती है तो हम इंतजार नहीं करते, ठीक इसी तरह किसी के भी जीवन में समस्या आती है तो उसका क्या क्यों में मत घेरिए। हेलो
3: नमस्ते,
1: हाँ जी नमस्ते, नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
3: बस बिल्कुल अच्छे हैं, और बहुत अच्छा विषय भी दिया है दीदी। आजकल जो आपने बात बताई ऐसा ही हो रहा है
1: जी,
3: आज कोई भी बात है तो बात का बदंतर कर देते हैं और बात को छोटी करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज देखो कोई भी बात हो तो जैसे आपने बताया कि आग लगती है तो कहीं ना कहीं कितनी ही बातें हो सकती है, ऐसे करो लेकिन करता नहीं, करता नहीं, बात ही करता है
1: बिल्कुल।
3: और सब सुचन देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन खुद इसको खुद अच्छी करने की कोशिश नहीं करते
1: जी।
3: तो आज कई सारी बिजली बातें ऐसी है कि हमारे भी जो देखो आज परिवार में कोई बात हो जाती है तो बहुत बात बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है
1: जी,
3: लेकिन शॉर्टकट में बात पूरी नहीं होती है
1: जी।
3: कितने ही सवाल उठते हैं, शायद देखो आज मैं बताऊं तो एक सैंपल बताऊं तो ठीक है, हमारे घर में कोई भी झगड़ा हो गया शायद, ऐसा एक नमूना मैं देता हूँ
1: जी।
3: और झगड़े में बात झगड़े की और होती है और बात कहाँ कहाँ से चली जाती है,
1: पाया ही चेंज हो जाता है,
3: शायद अच्छा विषय चेंज हो जाता है
1: जी।
3: तो आज ऐसा है तो इसलिए आज ये बात बहुत बड़ी हो जाती है, शायद पहले पहले कुछ साल भर में कोई आदि कुछ हुआ तो ये बात भी आगे आ जाती है इस वक्त
1: जी।
3: तो बात का वतन कर करते हैं लेकिन बात छोटी करने की कोशिश नहीं करते, चलो ये बात थी तो ये बात बस ये कर दो पूरा हो जाए, ऐसी बात नहीं आती
1: जी,
3: इसलिए तो आज देखो कई सारे झगड़े हो रहे हैं, कई सारे रिश्ते में दरार हो रही है
1: जी।
3: तो आज शादियाँ होती है किसी की, तो देखो कई परिवार ऐसे है कि आगे की बात लेके बैठ जाता है, और हमको ऐसा हुआ था, आपने ऐसा किया था, ऐसा किया था, इसलिए आज रिश्ते टूट रहे हैं। इसका कारण ये है कि बात छोटी हो तो छोटी ही रहने, तो बड़ी नहीं करना, बस बड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं सब रिश्ता टूट जाएगा।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर।
3: तो यही कहूंगा आपकी दीदी, बस कोई भी बात हो तो शॉर्ट में इसको पूरी कर दो तो सही है।
1: जी जी जी,
3: वरना परिणाम तो अच्छा नहीं आता है।
1: जी जी, आभार आपका, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, बहुत ही अच्छी बात बताई है सुरेश भाई ने, कि देखिए सभी फैलाने की कोशिश करते लेकिन समेटते कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? हमारे और भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
4: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज।
1: हाँ जी नमस्कार, नमस्कार फिरोज भाई।
4: आज का विषय बहुत बढ़िया है
1: जी, थैंक यू।
4: हाँ, पहले तो एक फेर बोल देता हूँ कि दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, और जरा सा मिल का झोंका आया तो कयामत तक सुला दूंगी।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर।
4: अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक में, और हमारे जैसे ड्राइवरों की जिंदगी स्टेयरिंग और ब्रेक में।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
4: दूसरा क्या है, दूसरा क्या, लोग गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ
1: जी,
4: तो सबसे पहले एक्सीडेंट के अंदर कितने अंदर बैठे हैं, किसको क्या इजा हुई है, क्या हुआ है, उससे सबसे पहले तो इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है
1: जी,
4: और फिर बाद में ये जो गाड़ी बीच में रोड के बीच में है तो उसको साइड में करवाना है
1: जी।
4: और
1: बिल्कुल
4: इसके, और ये कई लोग तो क्या वो देखेंगे, वो भले मरता तो मरने दो या तो कुछ भी होने दो
1: जी, जी,
4: वो पहले
1: जी।
4: तो सेल्फी लेंगे और टेलीफोन लगाएंगे और फिर इसका वो पूरी जगह पे उसको अनाउंस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
4: हाँ ये बात है
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई फिरोज भाई, बहुत बहुत आभार आपका। स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में काफी कुछ आपने समझा दिया कि कैसे लोग जब एक्सीडेंट होते तो सेल्फी लेना शुरू कर देते, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो पेशेंट पड़ा हुआ है उसकी मदद नहीं करते। और भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से। हेलो,
5: हेलो नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से बोल रहा हूँ दीदी।
1: हाँ जी सुरेश भाई नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
5: बस अच्छे है, काम कर रहे, तो अभी भी

0: झगड़ा कर रही थी कि पति का जो किसी गैर औरत के साथ ये ऐसा चरित्र खराब है, तो ऐसा करके झगड़ा कर रहे थे। और लोग जो कुछ अच्छे लोग वो समझाते कि चलो भाई ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा आदमी है। और ऐसे भी लोग है जो चढ़ावा देते हैं, हमारे गुजराती में बोलते हैं, तो कहके अरे तुम तो ये है। फिर आदमी को, उस इंसान को भी पत्नी के बारे में तुम्हारी वाइफ इतनी ये है, खराब है,
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: आग फैलाते हैं मतलब। और कुछ ऐसे भी है तो आग बुझाते हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: फिर
1: जी।
0: जैसे भी जैसे ही हम लोगों को बुलाया तो पहले तो दोनों की बात सुनी, चलो के पति तो निर्दोष साबित होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और पत्नी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी।
1: जी।
0: तो अब करे क्या, तो बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ रहे। तो फिर आखिर में एक बात कही कि चलो अब जो भी हुआ, चलो तुम्हारे पति ने ये किया, चलो कर दिया, हम भी मानते हैं और आप सही है, लेकिन अब से नहीं करेगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं। और आप भी अगर पति का चरित्र जो भी खराब हो ना, तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे, ये वादा करो, कसम खाओ, मतलब ऐसा कुछ समझाया। अब तक लगभग 3 साल हुए है, ना उनके घर में झगड़ा है या ना कोई ऐसी बात हो रही है। तो ये बात है, तो आग बुझाने की
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ऐसे सॉल्यूशन मिले तो ही सही मायने में कुछ लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है और किसी के जीवन में खुशियां आई है।
0: जी जी, सही बात है दीदी
1: जी। बहुत सुंदर आपने बातें बताई है सुरेश भाई, और बहुत अच्छी आपने मदद की है, बहुत बहुत आभार आपका।
0: थैंक यू
1: जी। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह पड़ोसी में झगड़ा हुआ और इन्होंने जा करके झगड़े को सुलझाया, और आज 3 साल होने को आए लेकिन उनके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कारण सारा आपने बताया है। तो इस तरह मदद करना अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना, आग में घी का काम करना बहुत बुरा है, इसलिए आग को फैलाना नहीं है, आग को बुझाना है। ऐसे ही समस्याओं को भी बढ़ाना नहीं है, समस्या आ गई है तो उसको सुलझाना है। ठीक है, और भी आपसे बातचीत करेंगे, आप तैयार रहिएगा। एक गीत सुनने के बाद पुनः इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए गीत सुन लेते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's Community Radio Station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है और कारण नहीं ढूंढना, निवारण को ढूंढना है. क्या, क्यों, कैसे, इन सभी में जाएंगे तो परिस्थितियां बढ़ेगी और बड़ी होगी, घटेगी नहीं. ठीक है ना, जैसे आग लगती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम उसका निवारण ढूंढते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, पानी वाले को बुलाते हैं और पानी डलवाते हैं. हम स्वयं भी कोशिश करते हैं कि मिट्टी डाले, पानी डाले, कैसे भी करके आग को बुझाने की कोशिश करते हैं. ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें आती है. एक बात आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे सुरेश भाई ने भी बताया था कि छोटी छोटी बातों से भी कभी कभी इतनी बड़ी बातें फैल जाती है कि जो मेन बात होती है वो तो कहीं की कहीं रह जाती है और पूरा ही विषय चेंज हो जाता है. ऐसा ही होता है घर परिवार में, आजकल ऐसा ही हो रहा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और घर टूटते जा रहे हैं. जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, एक परिवार में बहुत दूध गर्म कर रही थी, दूध उबल गया, आधा दूध बाहर निकल गया. उसको पता चला अरे ये दूध उबल रहा है, तो तुरंत ही उसने गैस बंद किया, लेकिन तब तक आधा दूध बाहर बह चुका था. इधर सास बोली कि इसका वैसे काम में ध्यान कहाँ है, ये कहाँ सही काम करती है, जब भी करती है ऐसा ही करती है, घर में नुकसान ही करती है. फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे जरूर ये टीवी देख रही होगी, टीवी में इसका ध्यान होगा इसलिए दूध उबल गया. तीसरे व्यक्ति बोला कि अरे ये तो वैसे ही विचारों में खोई रहती है, कहाँ ये घर में रहती है, रहती यहाँ पर है हमारे सामने, लेकिन विचार कहीं के कहीं चले जाते, इसके विचारों में खोई होगी ना, इसलिए दूध उबल गया. और किसी ने कहा कि वैसे ही ये मन से काम क्या करती है, ये तो ऊपरी मन से करती है. मतलब कितनी सारी बातें सुनने को मिली, जबकि कारण कुछ था ही नहीं. एक ही कारण था कि भाई दूध उबल गया. अब उबल गया सो उबल गया ना, समेटने वाला होता तो कह सकता था कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, हो जाता है तो वो जरूर ध्यान रखती. लेकिन जब इतनी सारी बातें सुना दी तो आप ही सोचिएगा कि कौन सुनेगा इतनी सारी बातें. वो भी तो शुरू हो गई, फिर तूतू मैं शुरू हो गई. अब बात जो थी दूध उबलने की वो तो रह गई एक तरफ, और दूसरी बातें, अरे इसने पहले ऐसा किया था, अरे वो 4 दिन पहले इसने मेरे को ऐसा सुनाया था, अरे 8 दिन पहले तो इसने ऐसा ही किया. अब आप सोचिए बात कितनी सी थी, दूध उबल गया. लेकिन इतनी तूतू मैं हुई, इतनी तूतू मैं हुई कि लोग इकट्ठे हो गए मोहल्ले में, और मेन बात तो दब गई और दूसरी बातें सामने आई. वो उनकी उछाले, क्या फायदा मिला. घर परिवार ऐसे नहीं चलता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं. बहुत सारी बातों को समानी होती है, बहुत सारी बातों को सहन करना होता है, बहुत सारी बातों को लेट गो करना पड़ता है, तभी घर परिवार टिकता है. अगर हम फट फट कुछ भी बोल लेते हैं तो वो घर नहीं टिकेगा, क्योंकि सहन शक्ति सभी में खत्म होती जा रही है. अब बहू को आप 4 सुनाओगे तो एक तो वो जरूर सुनाएगी, 4 सुनाया उसका हमें दुख नहीं, लेकिन एक उसने जवाब दे दिया वो हमें दुख बैठ गया, फिर हमने 4 सुनाई, 8 सुनाई, फिर इधर उधर बात की, फिर उसने भी हमारी जो रही सही इज्जत थी वो भी उतार दी. फलाने दिन ऐसे किया, ढिकड़े दिन ऐसे किया. अब क्या फायदा मिला, भाई दूध उबल गया, कोई बात नहीं, दूसरी बार ध्यान रखना, हो जाता है, हमसे भी कभी उबला है, तुमसे भी गलती हो गई. अगर ये कह करके हम उस बात को शांत कर दें तो वो बात बढ़ेगी नहीं और खत्म हो जाएगी. अब एक तो दूध उबला उसका नुकसान हुआ, ऊपर से झगड़ा हुआ तो सभी का खून जला, क्या फायदा हुआ, और लोगों के सामने तमाशा हुआ, लोग इकट्ठे हुए और हंस हंस के गए अरे देखो देखो छोटी छोटी बातों में इनके झगड़ा होता है. फिर कभी बड़ी बात पर भी झगड़ा होता है ना, तो लोग हंसेंगे कि अरे इनके घर में चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं ये लोग, तो हमारी इमेज तो वहीं पर खत्म हो गई. वो कहते हैं ना प्यारे श्रोता बंधु कि इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन इज्जत का कचरा होने में 1 सेकंड लगता है. इसलिए घर परिवार में बहुत ही सोच समझ करके रहिए. बहुत ही आप अगर दूसरों को कुछ सुना रहे हो तो बहुत ही सोच समझ करके बोलिएगा कि मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी है कि उसका पलट कर मुझे जवाब मिले. कुछ हमारे सामने हो रही होती है बातें, उनको समाना सीखिए. परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है, लेकिन परिस्थितियों को समेटने की ताकत हमारे में होनी चाहिए, तभी वो परिस्थितियां बड़ी नहीं वो छोटी दिखाई देगी और धीरे धीरे उस परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए विस्तार में नहीं जाना है, सार में रहना है, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम आपने सुना है, बहुत ही सुंदर विचार आपके समक्ष रखा है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे थे, तो रेसिपी भी आपको आइसक्रीम बनाना सिखाई है, दोनों ही प्रकार की, ड्राई फ्रूट्स वाली और नारियल वाली, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। प्रकृति के पांच तत्व, उनके नाम बताना है और आप सभी ने सही जवाब दिया है। पहले तो मैं आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां बजवाना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी का पहली बार ऐसा हुआ है कि सही जवाब मिला है। तो अब मैं आपको नाम सुना रही हूँ, प्रकृति के पांच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल सही है, आप सभी ने सही जवाब दिया है। आज का मीठा मोती आपको सुनाना चाहूंगी, जो बहुत ही सुंदर है, कि जैसे हमारी रचना अगरबत्ती, जैसे हमारी रचना अगरबत्ती इतना सुगंध फैलाती है, तो हम रचिता जहां हो वहां का वातावरण कितना सुगंधित कर सकते हैं। अब मैं आपको हनुमान जी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रोम रोम में हनुमत के बसे हुए श्री राम, लांग गए सागर को पल में लेके राम का नाम। झूठा बंधन, झूठी माया, झूठा ये संसार है, सच्चा है एक राम नाम का

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

ज्ञान बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दा, दरबार बड़ा सोना है एक दर

एक रोज दिवाली है, मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है मेरे।

0: नमस्कार सभी को, आपके अपने सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 एफएम कार्यक्रम हिंसा को नो में खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले समय से हिंसा के नो कार्यक्रम के एपिसोड्स में हमने आपको अलग अलग विषयों पर महिलाओं के साथ किस प्रकार से हिंसा होती है ड्रामा के द्वारा बताने और समझाने की कोशिश की है, जिसमें हमने 10 विषयों पर प्रकाश डाला है। आज के इस एपिसोड्स में हम उन्हीं 10 ही विषयों को लेकर ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं।
1: आज आपको ले चलते हैं आबू के अंचल में, एक ऐसा परिवार जहां माता पिता, दो बच्चे और उनके दादाजी रहते हैं। पितृसत्ता के चलते परिवार में दादाजी का रुतबा है। यहाँ परिवार की बेटी कोमल को पढ़ने में बहुत रुचि है, फिर भी उसका कोई दोष नहीं होने के बावजूद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। आइए जानते हैं आखिर क्यों।
2: भाई चल खेलते हैं।
3: क्या खेलें?
2: क्रिकेट खेलें?
4: कोमल ये तो क्या बोल रही है, ये लड़कों का खेल है, तू लड़की है।
2: तो क्या हुआ पिताजी, खेल तो सभी खेल सकते हैं, लड़का हो या लड़की।
4: तुम चुप रहो, लड़का और लड़की का जीवन अलग अलग होता है।
5: क्या हुआ, क्यों बहस कर रहे हो सुबह सुबह बच्चों से? वैसे भी इनके स्कूल जाने का समय हो रहा है, ससुर जी सो रहे हैं, उठ गए तो गुस्सा करेंगे।
6: कुछ समय बाद ससुर जी उठ जाते हैं।
7: कोमल पानी लाओ।
3: ये लो दादाजी।
7: तुम ये काम करोगे? ये काम महिलाओं का है। कोमल कहाँ गई?
3: इसमें क्या हुआ दादाजी, पानी मैं ले आया तो।
7: ये काम तेरा नहीं है, हमने भी घर के कामकाज नहीं किए, ये काम महिलाओं के है और ये परंपरा से महिलाएं ही करती आ रही हैं। और तुम अभी स्कूल भी नहीं गए, कोमल कहाँ है?
3: कोमल तो स्कूल गई है।
7: स्कूल तो तुम्हें जाना चाहिए था, वो स्कूल नहीं जाती तो भी चलता।
6: कुछ ही देर बाद कोमल घर आती है।
7: क्या हुआ कोमल, तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई?
2: दादाजी वो दादाजी वो।
7: साफ साफ बोल क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों है? बहू जरा इधर आओ, कोमल को क्या हुआ है जरा इससे पूछो तो।
5: कोमल इधर आओ, क्या हुआ है? दादाजी कब से पूछ रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही?
2: माँ माँ माँ वो मैं स्कूल जा रही थी जब कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ा और बहुत कुछ बोल रहे थे।
7: मैंने तो पहले ही मना किया था, लड़कियों को बाहर मत भेजो, और वैसे भी लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अपने भाई को साथ लेकर नहीं जा सकती थी तू? अकेले जाने को किसने बोला था? जरूर तूने ही पहले कुछ बोला होगा, सीधे सीधे स्कूल नहीं जा सकती थी तू?
2: नहीं नहीं दादाजी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो सीधी जा रही थी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें।
7: चुप कर, जबान लड़ाती है, आने दे तेरे पिताजी को, आज ही तेरा स्कूल जाना बंद करवाता हूँ।
6: कोमल रोते हुए अंदर जाती है। शाम को पिताजी घर आते हैं।
7: बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है।
8: क्या हुआ पिताजी?
9: कोमल कोमल तुम खुद ही पूछ लो कोमल से।
8: क्या हुआ कोमल, दादाजी क्या बोल रहे हैं?
2: पिताजी वो आज स्कूल जाते समय कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ा, इसलिए दादाजी मेरा स्कूल बंद करवा रहे हैं।
8: हाँ तो ठीक ही तो बोल रहे हैं दादाजी, क्या गलत कहा उन्होंने? और तुम वैसे भी स्कूल जाके क्या करेगी, शादी के बाद तुम्हें भी घर संभालना है हमारी माँ की तरह, अब से तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है।
2: पर पापा मुझे आगे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई मत छुड़वाओ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है इसमें।
7: सुन लिया कोमल तुमने, अब से तुम अपनी माँ के साथ घर का काम संभालेगी।
6: कोमल चुपचाप अंदर चली जाती है।
1: तो देखा दोस्तों, बिना किसी गलती के कोमल की पढ़ाई छुड़वा दी गई और 18 साल होते ही उसकी शादी भी करवा दी जाती है। ससुराल में भी कोमल को आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है और बात बात पर ताने सुनने पड़ते हैं, लिंग आधारित हिंसा का सामना करना पड़ता है। कैसे, आइए सुनते हैं।
2: राहुल मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे आगे पढ़ाएंगे?
10: घर का काम करो, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम है कमाने वाले।
11: कोमल मैं आज अपनी बेटी निशा को गोद भराई करवा कर ला रही हूँ, तो शाम को अच्छा खाना बना देना।
2: ठीक है माँ जी।
6: शाम का समय।
11: अब बता बेटा निशा, तू कैसी है? वहाँ लोगों के बीच तुझसे बात ही नहीं कर पाई। ससुराल में तुझे सांस परेशान तो नहीं करती? कितनी थक गई है, तुझे कुछ खिलाते नहीं क्या?
12: नहीं माँ, मैं तो अपने सास की सुनती भी नहीं हूँ और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। और आपके दामाद भी इस समय में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस एक ही बात की टेंशन है कि घर में सबको लड़का चाहिए, और अगर लड़की हो गई तो क्या होगा माँ?
11: हाँ हाँ बेटा निशा, तुझे लड़का ही होगा। बस तू टेंशन मत ले, बस तेरी डिलीवरी आराम से हो जाए। तू आराम कर, कोई काम नहीं करना तुझे। तेरा मन पसंद खाना बना है, चल खा ले।
12: माँ कैसा खाना बनाया भाभी ने, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है।
11: कोमल, घर से कुछ सीख कर नहीं आई क्या? इतना गंदा खाना।
6: कोमल रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद पति राहुल घर आता है।
10: क्या हुआ कोमल, रो क्यों रही हो?
2: माँ और निशा दीदी ने आज खाना अच्छा नहीं बनने के बहाने मुझे खूब डांटा। मैंने तो निशा दीदी के पसंद का खाना बनाया था, इसमें मेरी क्या गलती थी, फिर भी मुझे डांटा।
10: तू मेरी माँ और बहन के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? खबरदार, तूने मेरे परिवार के बारे में और कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
6: ऐसा कहकर राहुल कोमल पर बहुत चिल्लाता है। कोमल रोते हुए अपने घर पर फोन लगाती है।
1: यहाँ पर गलती के बिना ससुराल वाले और पति ने भी डांट दिया। जिसके साथ शादी हुई वह भी नहीं सुनेगा तो एक नारी किसे अपनी बात सुनाएगी। फिर भी चलिए यह सब तो ठीक है, पर जन्म देने वाली माँ बेटी को इग्नोर कर देती है तो वह बेटी फिर क्या कर सकती है? आइए सुनते हैं।
13: हेलो कोमल बेटा, बोल कैसी है तू?
2: यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा माँ, आज मुझे सासू माँ ने खूब डांटा और राहुल तो घर आते ही मुझ पर चिल्लाने लग गए। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता माँ।
13: पागल हो गई है क्या तू? वो तेरा पति और परिवार है, घर में तो ये सब कुछ होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा।
6: इतना कहकर कोमल की माँ फोन रख देती है। अगले दिन कुछ महिलाएं कोमल के घर जाती हैं।
14: अरे ओ रमा, कहाँ गई, बाहर तो आ।
11: हाँ हाँ हाँ आती हूँ।
14: रमा आज हम सब मिलकर मंदिर जा रही हैं, तुम भी बहू कोमल को हमारे साथ पूजा करने भेजो ना।
11: अरे नहीं नहीं, मैं कोमल को नहीं भेजूंगी, और राहुल आया तो वो भी गुस्सा करेगा, कोमल कहीं नहीं जाएगी, वैसे भी घर में बहुत काम है।
6: कोमल निराश होकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है।
5: देखो तो जरा, ससुराल वालों ने अपनी बहू पर कितना नियंत्रण रखा है।
14: कोमल की तो आवाज ही नहीं निकलती इन सब के सामने। इतनी अच्छी बहू होने के बावजूद भी ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो अपनी बहू के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। कल को हमारी भी बेटी किसी की बहू बनेगी, अगर अपनी बेटी के साथ ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा?
5: हाँ तुम सही कह रही हो, हम अपने बहू के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे।
6: इतना कहकर वह सब अपने घरों में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह।
11: कोमल जरा देखो तो, काम वाली आई या नहीं, घर में पूजा रखवाई है, इतना काम पड़ा है और ये काम वाली है कि कभी समय पर नहीं आती।
2: हाँ माँ जी जाती हूँ। क्या हुआ बहन, तुझे पता है ना माँ जी ने आज निशा दीदी के लिए घर में पूजा रखवाई है, तुम समय पर क्यों नहीं आती?
6: कोमल काम वाली से बात करने लग जाती है।
10: कोमल ये तू क्या कर रही है, इस काम वाली से बातें कर रही है, तुझे पता भी है घर में कितना काम पड़ा है? ज्यादा मुंह मत लगाया करो इन काम वालियों को, इतनी हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी?
2: इसमें क्या हो गया, मैं तो बस इससे समय पर ना आने का कारण पूछ रही थी।
10: चुप कर, बड़ी आई लोगों की परेशानी सुनने वाली, पहले खुद को तो सुधार फिर सुनना दूसरों की परेशानी। और इस काम वाली को भेज यहाँ से अपना काम करने के लिए, पियर में दो चार क्लास पढ़ाई क्या कर ली, खुद को महारानी समझने लग गई।
1: कोमल के ऊपर इतना नियंत्रण देखकर पड़ोस की महिलाओं को भी आश्चर्य हुआ। साथ ही साथ काम वाली बाई निमन तबके की होने की वजह से उससे ज्यादा बात करने के लिए भी टोका गया। और तो और पूजा भी पुरुषों के बिना नहीं हो सकती, क्यों आइए सुनेंगे।
6: शाम को पूजा का समय।
11: कोमल अपनी ननद निशा को नीचे ले आओ, पूजा का समय हो गया है।
2: हाँ हाँ माँ जी, अभी जाती हूँ। निशा दीदी, अरे ओ निशा दीदी, चलो पूजा का समय हो गया है, माँ जी आपको नीचे बुला रही है।
11: दामाद जी कहाँ रह गए बेटा, पूजा शुरू करनी है।
12: हाँ हाँ माँ, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे।
2: जीजा जी आते हैं, तब तक आप ही पूजा शुरू कर दीजिए ना दीदी, जीजा जी आते ही बैठ जाएंगे पूजा में।
11: चुप कर कोमल, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई हो तुम। पुरुषों के बिना कोई काम शुरू किया जाता है क्या? अपने ये बुरे संस्कार मेरी बेटी को मत सिखाना। पूजा तो दामाद जी के आने के बाद ही शुरू होगी। बैठ जा अपनी जगह पर।
9: जजमान आप सही कह रहे हो, शुरू से हमारे समाज की परंपरा यही रही कि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत पुरुषों के द्वारा ही होती है।
11: लीजिए दामाद जी भी आ गए, आप पूजा शुरू कीजिए।
6: अगली सुबह।
12: माँ माँ, अरे जल्दी आओ माँ, भाभी जल्दी आओ, जल्दी आओ।
11: क्या हुआ बेटा निशा? कोमल जल्दी आओ, निशा को क्या हो गया?
2: माँ जी, निशा दीदी को जल्द ही अस्पताल ले जाना होगा, वरना डिलीवरी घर पर ही हो जाएगी।
11: ए भगवान, अब मैं क्या करूँ? घर में कोई पुरुष भी नहीं है, कैसे ले जाऊँ इसे अस्पताल?
2: चिंता मत करो माँ जी, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ।
6: कोमल कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाती है और निशा को सही समय पर अस्पताल पहुंचा देती है।
14: अच्छा हुआ बेटा कोमल, तू इतनी पढ़ी लिखी थी, वरना पता नहीं आज तो क्या हो जाता। अगर निशा को कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती इसके ससुराल वालों को? आज से तेरी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी राहुल और मेरी रहेगी।
1: कहते हैं शिक्षा अच्छे अच्छे को झुका देती है, कोमल के साथ भी ऐसा ही होता है। आखिर ननंद के बेसमय डिलीवरी पर समय चलते एम्बुलेंस को फोन करके बुला दिया जाता है, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल जाता है और ननंद निशा को सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। तब सास का बहू के प्रति व्यवहार बदल जाता है और बहू को आगे पढ़ने की इजाजत दे दी जाती है।
0: तो देखा दोस्तों, कोमल ने अपनी समझदारी व पढ़ाई के द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों को पार करते हुए ये सिद्ध किया कि एक नारी किसी से कम नहीं होती है। अगर बेटे की तरह बेटियों को भी आगे बढ़ने दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं, हर घर में खुशियाँ रहेगी और कोई भी बेटी किसी प्रकार की हिंसा का शिकार नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम लेकर के आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तो सुनो समझो चुप भी तोड़ो और कहो हिंसा को नो, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कार्यक्रम का नाम ही अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गाँव और जिस अंचल में रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुँचे वो

0: और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं। तो सरकार का जो मंशा है, जो रेडियो स्टेशन दिया है, आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया में बच्चों को मिलेगा, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का सहयोग से विद्यार्थी का विकास और सर्वांगीण उन्नति के लिए, चाहे बौद्धिक विकास हो, चाहे नैतिकता हो, चाहे शारीरिक, सभी विकास के लिए एक मंच मिल रहा है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हम पहुंचे और संस्था के संस्था प्रधान श्रीमान प्रिंसिपल साहब और उनका सहपाठी सभी साथी सभी स्टाफ को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को बारी बारी अपना आवाज को देंगे, उनका आवाज ही उनका पहचान होगा। तो इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं श्रीमान देवेंद्र सर जी को, तो उनको स्वागत करते सर, एक वार्म अप बच्चों करा दीजिए। आप ईश्वर विश्वविद्यालय को बढ़िया से जानते हैं और रेडियो मधुबन को भी बढ़िया से जानते हैं, किस तरह गतिविधि कितना साल से, हम आप जब भी आते हैं आपसे परमिशन होता है, संस्था का जो भी प्रिंसिपल रहते हैं उनसे परमिशन से कार्यक्रम होता है। 10-15 साल से हम इस स्कूल में हर साल आते हैं, तो आप हमें भले भांति जानते हैं और बच्चों को भी रेडियो मधुबन का बारे में हो चाहे ब्रह्मा कुमारी जो गतिविधि कर रहे हैं उसका बारे में थोड़ा बताइए, बच्चों को एक वार्म अप हो जाए, आपका आवाज को सुनकर वो उनका आवाज भी बुलंद होगा। आपको स्वागत, अपना इंट्रोडक्शन प्लीज।
1: ओम शांति, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र सिंह राठौड़ है, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यारिया। आज रेडियो मधुबन की तरफ से पवित्र भाई और उनकी टीम क्यारिया स्कूल में कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए आई है। एक अच्छा मंच है, इस मंच के माध्यम से हमारे आदिवासी अंचल के बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को, जहां तक हो सके, अपने विचारों को गीतों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, कविता भाषण के माध्यम से, रेडियो मधुबन के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका जो हर वर्ष एक नई थीम लेके आते हैं, कभी स्वच्छता, कभी कम्युनिटी हेल्थ, कभी नशा मुक्ति, कभी इन बच्चों के अंदर जो एडिक्शन है उन एडिक्शंस को दूर करने के लिए मोबाइल से अवेयरनेस, ऐसे बहुत सारे थीम के साथ ये आते हैं। इस बार आपकी थीम है ये अपने स्वच्छता और सफाई, जिसके तहत रेडियो मधुबन की तरफ से विद्यालय को हर क्लास के अंदर एक डस्टबिन दिया जा रहा है। विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही साथ इन ग्रामीण अंचल के बच्चों को रेडियो मधुबन जैसा एक वैश्विक स्तर का मंच देने के लिए पुनः मैं आभार ज्ञापित करूंगा। अब कार्यक्रम को बच्चों की ओर लेके जा रहे हैं, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और हमें बहुत खुशी है इस तरह हमारा कार्य को सराहनीय माना, और जब भी आते हैं जो भी जितना भी ना ज्यादा ना कम सहयोग देते हैं, और एक जनहित में बच्चों का हित में जो भी जो समय जो मिलता है वो बच्चों के पास हम पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, और बच्चों को झिझक जो रहता है उसको दूर करने के लिए हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि ग्रामांचल बच्चे हैं, पूरा आदिवासी टीएसपी एरिया के बच्चे हैं, फिर भी उनको एक मंच जो रेडियो में कैसे बोलते हैं, आकाशवाणी में जब उनका आवाज आएगा तब तो बच्चे जब सुनेंगे, उनका माता पिता जब सुनेंगे, उनका दोस्त लोग सुनेंगे, उनका परिवार वाले जब सुनेंगे, ये तो हमारा राधे का आवाज है, ये तो मेरा बेटी का आवाज जब सुनेंगे आकाशवाणी में, तो बहुत खुशी होगा, नामांकन में भी वृद्धि होगा, स्कूल का नाम भी रोशन होगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो हमें बहुत खुशी लगा। और बच्चों का आवाज सुनेंगे, क्योंकि बच्चों को तो वार्म अप करा दिया, बच्चों को सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और खासकर आज आप सब सुन पा रहे हैं अपना वॉल्यूम को तेज करके, चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे FM का माध्यम से, चाहे लिंक का माध्यम से, चाहे आपका माध्यम से आप सुन पा रहे, आपका पास पहुंच रहा है, और बच्चों का आवाज को बुलंद करने के लिए आप श्रोता का भी बहुत आवश्यक होता है, तो हमारा जो रेडियो जहां तक पहुंचता है वो सुन रहे हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चों का प्रार्थना का रूप में एक गीत आपको मिलेगा सुनने को, क्योंकि हर कार्यक्रम में हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, हर स्कूल में विद्यालय में जो प्रार्थना सत्र में जो करते हैं वो चीज आपके पास रखेंगे, इनका आवाज भी सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहले हम आपसे पुनः मिल रहे हैं और ब्रेक का पहले आप एक अच्छा गीत भी सुना, बच्चों का गीत को भी सुनेंगे। लेकिन हमारा जो देवेंद्र सर भी ब्रेक का पहले बहुत कुछ बताए संस्था के बारे में और विद्यालय के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे बीच बीच में सभी से। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं बच्चों से, कुछ छात्र हैं जो आदिवासी फील्ड में आते हैं और जो ग्रामांचल बच्चे कम नहीं शहरांचल बच्चों को उठा कर देंगे, उनका जो शुद्धता भोलापन और मासूम जो शब्द में भाव और भावना आज सुनेंगे माँ सरस्वती वंदना का साथ। तो लीजिए पहला प्रस्तुति, खासकर बच्चों का आवाज और अपना नाम बताएंगे, कौन सा क्लास और कहाँ से बिलोंग करते, कैरियर ना कोई जोड़ फली की कहाँ पर आते वो फली का नाम भी बताएंगे, तो हमें पता चले कौन बच्चे कहाँ से आते और कितना मेहनत करके आते, अपना परिचय देंगे।
2: मेरा नाम लसी कुमारी।
1: कौन सा क्लास?
2: मैं कक्षा 11 से।
1: वेरी गुड। और लसी कौन सा गाँव से आती है तुम?
2: अच्छा, कला से।
1: और स्कूल का पूरा नाम बताइए।
2: विद्यालय माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
1: ठीक है।
3: मेरा नाम सुनकी कुमारी है, मैं कक्षा 11 से। मेरा गांव का नाम क्यारिया है।
1: वेरी गुड।
3: मेरा स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा।
4: मेरा नाम रायली कुमारी है, मैं कक्षा 11 से। मेरे गांव का नाम डूना काकर है। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
1: डूना काकर बहुत दूर से।
5: मेरा नाम पूजा है, मैं रेड़वा कला से आती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
6: मेरा नाम दुर्गा कुमारी है, मैं क्यारिया जोड़ से आती हूँ। मेरी स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
7: मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं क्यारिया की हूँ। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया। हम सब एक प्रार्थना सुनाएंगे।
1: शुरू करो।

0: बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा पूजा। और क्या क्या नाम बोले दुर्गा, तुम्हारा नाम कौन रखा है दुर्गा बता, मम्मी ना पापा ना कौन रखा है दुर्गा? अच्छा नाम है, मुझे बहुत खुशी लगा क्योंकि दुर्गा एक देवी का नाम है ना, पापा हो चाहे मम्मी नाम रखते ना जिसको, जो उनका भी नाम आएगा पिताजी का भी नाम आएगा हमें खुशी लगेगा उस जब सुनेगा, अरे वाले दुर्गा को नहीं उस दुर्गा का आई को पापा को लोग जानते होंगे उसी से पता चला ये उनका बेटी है, तो प्रचार प्रसार भी होगा और उनको एक सम्मान मिलेगा। दुर्गा बताओ दादा दादी है घर में
1: जी?
0: घर में कौन कौन है बताओ दुर्गा, दादा दादी से लेकर कौन कौन है?
1: मेरे घर में दादी दादा भाई बहन और
0: वेरी गुड
1: मम्मी पापा,
0: मम्मी पापा दादा दादी, सबसे आपको अच्छा कौन प्यार लगते हैं, कौन प्यार करते हैं ज्यादा?
1: मम्मी पापा,
0: मम्मी पापा ज्यादा करते हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो भगवान तुल्य होता है, माँ बाप तो घर के सब बच्चों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं बच्चों के लिए, इसलिए माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। भूलेंगे बच्चे माँ बाप को भूलना है?
2: नहीं।
0: भले सबको भूलो लेकिन माँ बाप को कभी
2: नहीं भूलेंगे,
0: क्योंकि माँ बाप हमारे लिए सब कुछ, माँ बाप हमारे लिए
2: सब कुछ है।
0: आवाज तो आया नहीं मेरा पास,
2: सब कुछ है।
0: हमें सब कुछ देते हैं माँ बाप, हमें सब कुछ देते हैं, इसलिए हमें उनको याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे और एक प्रस्तुति, हमारा और परियां भी बैठे हैं वो भी अपना प्रस्तुति देंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, पूजा दुर्गा और उनका साथी सभी को सबको धन्यवाद है। इस कार्यक्रम को सजाए सुंदर रूप में अपना ताल का साथ माँ सरस्वती का वंदना सुनाए, हर स्कूल में एक गीत होता है और कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा दिए, तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर बच्चों का आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए वंस वंस करते हुए और दूसरे बच्चे भी भाग लेंगे क्योंकि सबको आज मंच मिलेगा। ओपन राउंड है अपना टूटी फूटी आवाज में। पहला प्रस्तुति जब देते हैं रेडियो में तो कोई साज नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, अचानक जाते हैं अचानक और एवर रेडी बच्चे रहते हैं और बहुत काल का अभ्यास तब जाकर रेडियो में आते हैं। अचानक पहुंचते हैं, कोई सूचना नहीं है ना सर, कोई सूचना दिया था, कोई स्कूल में कभी भी जाते कोई सूचना नहीं और हमारा कार्यक्रम इतना सुंदर हो जाता है क्योंकि हमारा जो भाव है भावना सब बच्चों को मिले इस भावना को लेकर जब पहुंचते कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपर जो दैवी शक्ति जो हम जिसको हम आह्वान किए ना शुरू में हमारा कुल देवी कुल देवता को आह्वान करो भगवान को आह्वान करो वो हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए हमारा गुड़िया सब बैठे हैं तो उनको भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए और हमारा देवेंद्र साहब को कौन भूल पाएंगे। देवेंद्र सर इस बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए आप बताइए कौन कौन उपस्थित है इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। नेक्स्ट ग्रुप
1: अगला ग्रुप कक्षा 9 की नन्नी मुन्नी बालिकाएं हैं जो एक बहुत ही प्यारा सा लोक संगीत आपके बीच में पेश करेंगे।
0: क्या बात क्या बात।
1: ये लोक संगीत इनके आदिवासी ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है।
0: सही बात।
1: और इसी क्रम में मैं इन नन्नी मुन्नी बालिकाओं से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वो अपना परिचय दें, अपना नाम, विद्यालय का नाम, गांव का नाम के साथ।
0: आज तो चुप्पी तोड़ेंगे ही बच्चे, चुप नहीं रहेंगे।
2: मेरा नाम हीना है, मैं कक्षा 9 से हूँ और मैं क्यारिया से आती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
0: क्या बात, कितना बुलंद आवाज।
3: मेरा नाम राधा है, कक्षा 9 से, मेरे गांव का नाम क्यारिया है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
0: वेरी गुड।
4: मेरा नाम पांडरी है, मैं कक्षा 9 से, मैं क्यारिया जोड़ से आती हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
5: मेरा नाम सीमा है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मेरा गांव का नाम रेडवा कलर, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
0: गुड, बच्चे तो बड़ा होशियार है सभी।
6: मेरा नाम कमला कुमारी है, मैं कक्षा 9 से, मेरे गाँव का नाम कोटब्यापल्ली, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
0: तो श्रोता मित्र कितना फल्ली का नाम सुन लिया, कोटब्यापल्ली, और हम सब मिलकर
6: एक देसी गीत गाएंगे।
0: हाँ, आदिवासी गीत गाएंगे जिसमें मिठास। ओके शुरू करो
6: जी।

0: कोई मत काटो।
1: सही में पर्यावरण एनवायरमेंट जो गीत एनवायरमेंट बचाने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह हम गीत का माध्यम से सीख लेना चाहिए। और बच्चे पेड़ का बारे में, पेड़ को मित्र बनाओ और सब कुछ तो पेड़ ऐसे देते, निस्वार्थ सेवा करते हैं पेड़। प्रकृति हमारा दोस्त है, प्रकृति को जितना हम सुरक्षा रखेंगे, पर्यावरण को जितना सुरक्षित रखेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। और सर इस कार्यक्रम को सुंदर में सुन रहे थे, सर पर्यावरण का ऊपर में क्या कहना चाहिए? पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चे एक पेड़ का माध्यम से प्रस्तुति, और आप पर्यावरण सुरक्षा जैसे हर रविवार को पर्यावरणविद श्रीमान भोपाल राम पुरोहित जी अपना कार्यक्रम देते हैं, पर्यावरण से मिट्टी से जो भी हमारा आसपास पर्यावरण, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण में पेड़ का जो उसका बारे में थोड़ा बताइए, हमारा श्रोता और बच्चे भी थोड़ा लाभान्वित होंगे।
2: वर्तमान में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और नन्हे मुन्ने बालकों का ये पर्यावरण के प्रति, पेड़ों के प्रति जो संदेश है बड़ा उत्साहपूर्ण है। उम्मीद करते हैं ये संदेश समस्त ग्रामीण अंचल तक पहुंचेगा और ग्रामीण अंचल के ये सारे लोग इस ओर जागरूक होंगे। हमारे सिरोही जिले के अंदर ये नया प्रयास चल रहा है कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं प्रति विद्यार्थी 2 पौधे लगाने का संकल्प सरकार की तरफ से मिला है। तो ऐसे में जितनी भी सरकारी नर्सरी है उनकी तरफ से सारे विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 2-2 पौधे आवंटित किए जाते हैं और वर्ष भर उन पौधों का पालन पोषण करके वृक्ष बनने तक की जिम्मेदारी वो नन्हे मुन्ने बालक उठाते हैं। उसी जिम्मेदारी की एक झलक इस गीत के माध्यम से हम तक पहुंची है और इस वर्ष भी हमारा प्रयास है कि हम नर्सरी से नन्हे मुन्ने बालकों को पौधे उपलब्ध कराएंगे जिनको पेड़ बनाने की जिम्मेदारी सहर्ष ये सारे बच्चे स्वीकार करते हैं। और इस तरह आबू राज के इस पवित्र अंचल में ये नन्हे मुन्ने बालक हरियाली बढ़ाने में, विद्यालय पर्यावरण और साथ ही साथ क्यारिया ग्राम के वातावरण माहौल को स्वच्छ, सरल और सुरम्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, हरियाली भी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आगे चलते हुए पढ़ाई के साथ साथ ये पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार का भी एक अच्छा प्रयास है, प्रतिवर्ष 17 अंक के रूप में 10वीं 12वीं के बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं हम पहले उनके वर्ष भर के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 17 अंक भेजते थे तो सरकार ने उसकी जगह पर वृक्षारोपण को मान्यता दी है और प्रतिवर्ष प्रति विषय 1 अंक 2 अंक गणित विज्ञान जैसे भी विषय से वो अंक उनको वृक्षारोपण और उनको पेड़ों पर दी गई जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर विद्यालय परिवार के द्वारा दिए जाते हैं। इससे जागरूकता बढ़ती है, पर्यावरण भी सुधरता है और हमारे विद्यार्थियों का एक अभूतपूर्व महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए सरकार, विद्यालय परिवार, सिरोही डिस्ट्रिक्ट सभी तन मन धन से अपना सर्वस्व योगदान दे रहे हैं।
1: सर जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार का जो मुहिम चला था उसको तो हम सहयोग देते ही, और बच्चे भी कम से कम अपना जन्मदिन माता पिता का याद में तो लगाने उसका नामकरण भी करे और भावना से करे तो जरूर वो पेड़ जो पौधा हम लगाएंगे उसको प्यार से उसके दोस्ती जैसे दोस्त को क्या क्या चाहिए पूछते ना, तो पानी समय पर देना, उनको देखभाल करने के लिए ट्री गार्ड हो, जो भी उसको सेफ्टी पहले पहले देना होता है, तो आप सब करते होंगे और जो नहीं करते उसको थोड़ा ध्यान दे। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं, पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन उसको बचाने के लिए जैसे जब तक वो अपना अस्तित्व तक नाम नहीं पहुंचे तब तक उनको संभाल देखभाल करना चाहिए, ये एक किम्मे से सर ने बताया और बच्चे तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन ये बच्चे अभी अपना जो देसी गीत सुनाने के लिए कोशिश कर, पेड़ का माध्यम से अपना गीत जनरल गीत बताया, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बच्चे थोड़ा शर्माते हैं, पहला बार आते हैं, नहीं तो बाहर में गाते हैं, लेकिन स्कूल में थोड़ा सा सर रहता है और हम रहते हैं तो उनको थोड़ा झिझक होता है। कोई बात नहीं, इसे शुरुआत किए हैं, धन्यवाद देते हैं। और जाते जाते सभी को नाम बताएंगे और कहाँ से और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए क्या मेहनत करते हैं। सबके लिए प्रश्न, स्कूल में जो पढ़ाई के साथ साथ और कितना घंटा मेहनत करते हैं और बड़े होकर क्या बनना चाहते, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, सरपंच? ओके,
1: मेरा नाम पूजा है, मैं रेडवा कला से आती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
0: रेडवा कला बहुत दूर जगह से आते हैं। रेडवा कला का पास और कौन सा गांव है?
1: दूना काकर, कोटिबिया।
0: कोई मंदिर है आसपास?
1: हाँ,
0: मंदिर का नाम बताओ। कोटेश्वर महादेव है, यहाँ शिव मंदिर है। चलिए, बढ़कर क्या बनेगी?
1: टीचर।
0: टीचर, मैम बनेगी। वाह, कितना मैम है यहाँ पर? मैडम है स्कूल में?
1: हाँ।
0: नाम बताओ, एक ही मैम का नाम बताओ। कोई
1: मीनाक्षी मैडम।
0: क्या पढ़ाते हैं?
1: इंग्लिश।
0: वेरी गुड, नेक्स्ट।
2: मेरा नाम रायली कुमारी है, मैं कक्षा 11 से, मेरे गांव का नाम दूना काकर है।
0: और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
2: टीचर।
0: टीचर है, वाह, आदर्श टीचर। किसको कहते हैं टीचर? कैसे होना चाहिए? जो अच्छा
2: पढ़ाते
0: हैं और अच्छा प्यार करते हैं, प्यार भी जरूरी है। नेक्स्ट।
3: मेरा नाम दुर्गा कुमारी है, कक्षा 11 से, मेरे गांव का नाम है क्यारिया जोड़।
0: और आज रेडियो में पहला बार मौका मिला, आपको खुशी लगा ना दुखी लगा? खुशी लगा
3: जी।
0: दुख लगा?
3: नहीं
0: नहीं, दुख क्यों लगेगा, ये तो अपना आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए का मंच मिल रही। नेक्स्ट।
4: मेरा नाम गुड़िया है, मैं क्यारिया से हूँ।
0: वेरी गुड, गुड़िया नाम तो पहले बोले, सब हमारा गुड़िया है ना, गुड्डा और गुड़िया छोकरा और छोकरा जैसे कहते हैं, हमारा परी, परी मतलब पूरा फरिश्ता। तो बड़े होकर क्या बनेगी? गुड़िया।
4: मैडम।
0: गुड़िया तो अच्छा से बात बता पा रही। और गुड़िया आपका अच्छा दोस्त बताओ तो जो हंसता है आपको देखकर।
4: पूजा।
0: पूजा। नेक्स्ट।
5: लसी कुमारी।
0: लसी, बड़े होकर क्या बनेगी?
5: टीचर।
0: अच्छा, खेल खेलते हैं? खेल खेलते हैं
5: जी।
0: कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है?
5: क्रिकेट।
0: क्रिकेट, वाह वाह, ऐसे क्रिकेटर हमारा। अच्छा, क्रिकेटर में कौन सा क्रिकेट का नाम बताओ देखिए, सचिन तेंदुलकर से लेकर कोई भी? रोहित शर्मा। अरे वहाँ, पीछे से बोला, रोहित शर्मा सर का फेवरेट है, विराट कोहली और हमारा फेवरेट है महेंद्र सिंह धोनी, सब हमारा अच्छे खिलाड़ी है, तो हमारा देश के लिए नाम रोशन किया और ये हमारा क्रिकेटर बनेगी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट।
6: सीमा।
0: सीमा, सीमा बड़े होकर क्या बनेगी?
6: टीचर।
0: टीचर, अच्छा, आपका फेवरेट टीचर का नाम बताओ?
6: मीनाक्षी
0: मैम। बहुत अच्छा, कोई बोल भाई, सभी बताओ, सभी का नाम ले लो, सभी टीचर हमारे अच्छे होते। नेक्स्ट।
6: कमला।
0: कमला कौन सा क्लास?
6: नाइन्थ।
0: नाइन्थ क्लास, और अच्छा फूल का नाम बता देखी, कोई फूल अच्छा।

0: फेवरेट फूल?
1: गुलाब।
2: ने पीछे कॉपी दे दिया तो बोला गुलाब। बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चे जानते हैं लेकिन अचानक माइक में जब आता है प्रश्न निकल जाता है और उनको बोलना में जो आता है वो भी भूल जाते ना। चले नेक्स्ट,
1: राधा।
2: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कहता और राधा हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे। हमें खुशी, सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सकें, अपने आजीविका कमाकर और परिवार का पालन पोषण कर सकें। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, राग मांड साजन आहे हे सखी मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं, साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझू करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें केसरिया बालम पधारो म्हारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो म्हारे देश।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड. वैसे संगीत का सफर सच में इतना सुहाना होता है कि बाकी सब सफर उसके आगे फीके लगते हैं. एक्चुअली चाहे हम घूमने जाएं या परिवार के साथ समय बिताएं या कहीं अकेले किनारे बैठे हो किसी सोच में डूबे हो, संगीत हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता. इसलिए हम भी उसका साथ नहीं छोड़ते और लेकर आते हैं आपके लिए ये कार्यक्रम जिसमें मिलवाते हैं आपको हर हफ्ते एक नए मेहमान से. लेकिन वो मेहमान होते हैं खास क्योंकि उन्हें होता है संगीत से प्यार. और आज भी हमारे समक्ष एक ऐसी ही आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है निधि अग्रवाल जी, जो कि कवयित्री भी हैं, वो ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट राइटर भी हैं, और साथ साथ उनकी कविताओं का बहुत सुंदर उन्होंने संग्रह भी तैयार किया है. तो आइए निधि जी का स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में आज. निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया. और मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं संगीत, जहाँ भी मौका मिले संगीत या गीत, कहीं पर भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो तो जो भी मैं कविताएं लिखती हूँ उनको ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि वो समाज से जुड़ी होती हैं और प्रकृति से भी संबंधित होती हैं, जिससे कि हम लोग अपने समाज में क्या चल रहा है, हमारी प्रकृति में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनसे हम लोग जुड़े रहें. मैं खुद जुड़े रहती हूँ और इन कविताओं के माध्यम से बस अपना संदेश सबको सुनाना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ. इसलिए और मैं बेसिकली यूपी कानपुर की रहने वाली हूँ. और हमारे यहाँ जैसे गंगा नदी है तो वहाँ पे मतलब अभी तो काफ़ी प्रदूषण पे कंट्रोल है, लेकिन एक समय था जब हमारे यहाँ पे गंगा का बहुत ज़्यादा प्रदूषण था, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. पानी हमें साफ नहीं मिल पाता था और हर जगह गंदगी, कचरा, कूड़ा ये सब रहता था. लेकिन अभी सरकार भी बहुत मतलब जागरूक हुई है सबको लेकर, तो अभी साफ सफाई गंगा की करना बहुत हो गया है. और शहर में भी अभी सुंदरीकरण हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा गंदगी और वो प्रदूषण और वो सब रहता था. तो मेरी कविताओं का मतलब, क्योंकि बचपन से ही मुझे संगीत, कविताओं से, गीत से बहुत एक स्पेशल अटैचमेंट रहा है. और बहुत मतलब एक अंदर से ही एक जैसे एक मुझे रहा है बचपन से कि मैं कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ें करने का मुझे शौक रहा है. तो उसमें कविताओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, जो भी मुझे लगता है समाज में चल रहा है और जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए और तब बच्चों के लिए, जो हम उनको कैसे एक अच्छी सोच दे सकते हैं, कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आज है हमारा और बच्चे हमारा कल. तो जब हम अपनी युवा पीढ़ी को सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे बच्चों जी, जी, को जी. तो हमारा भविष्य और आज बहुत सुंदर हो
0: तो
1: सकता.
0: इसलिए आप युवाओं के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी कविताएं लिखते
1: हैं. मैं उनके लिए भी लिखती हूँ. और हमारी जो महिलाएं हैं, जो शक्ति सेना है हमारे देश की, मतलब 50% जो जनसंख्या है हमारी महिलाओं की है, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो, वैसे तो आजकल हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत
0: कहां नहीं है महिलाएं, चाहे
1: हर जगह है महिलाएं,
0: चाहे क्रिएटिव फील्ड्स में हो,
1: हाँ हर फील्ड में आगे हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं. तो उनसे भी संबंधित मैं कविताएं लिखती हूँ, बाकी समाज के लिए लिखती हूँ और प्रकृति से संबंधित. और एक चीज और मेरे विषय में शामिल है, जो है आध्यात्मिकता, जिसकी आज हम सबको बहुत बहुत जरूरत है.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि आजकल के जो हमारा माहौल है, जो हमारी जिंदगी है, उसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं
0: जी, जी,
1: जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम मतलब कभी कभी लो फील करने लगते हैं, हम निराश, हताश होने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती.
0: बहुत सारी परेशानियां,
1: बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं. बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि बहुत सारी परेशानियां भी हैं जीवन में. तो हमें लगता है कि हमें परमात्मा से जुड़ने की और उनकी, उनसे शक्ति लेने की जरूरत है. तो जब हम अध्यात्म को साथ लेके चलेंगे तो हमारा जो जीवन है वो बहुत बेहतर बनेगा, बहुत मतलब हम अच्छे से अपनी सारी समस्याओं का सामना कर पाएंगे
0: जी, जी,
1: और हम अपने हर मतलब हर जो भी हमारे जीवन में हम करना चाहते हैं उसमें हमेशा हमें सफलता मिलेगी.
0: तो बहुत सुंदर विषय हैं आपके, आपने बताए, और मुझे लगता है कि आपके पास शब्दों का बहुत बड़ा खजाना भी होगा, क्योंकि जब कोई लिखते हैं तो वो शब्दकोश भी बहुत बड़ा जरूर होता है उनके पास, क्योंकि हर चीज को व्यक्त कर पाना कई बार लोगों को मुश्किल भी लगता है कि हमने जो सोचा शायद वो वो कहा या नहीं, तो वो भी होता है। निधि जी, मैं आपसे थोड़ा सा और पहले ये जानना चाहूंगी कि कविता लिखना आपने कब शुरू किया, वो कैसा?
1: जी, मैं क्लास 5th या 6th में थी, तो तब से मतलब मैं प्रकृति के शुरू से बहुत करीब रही हूँ। हमारा जो घर भी रहा है वो बहुत मतलब ऐसे, हमने घर में मतलब मेरे माता पिता को भी हरियाली का बहुत शौक रहा, तो हमारे आसपास बहुत पेड़ पौधे रहे, पशु पंछी बहुत मतलब पहले हमारे घर के मतलब घर में भी उनकी बहुत हम आवाज़ सुनते रहे शुरू से ही, और गीत संगीत भी हमने बहुत मतलब करीब से मैंने बचपन से देखा, तो मेरा एक रुझान सा हो गया कि मतलब कि कुछ मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, जो प्रकृति है जो वातावरण है वो हमसे कुछ कहना चाहता है, तो हमें उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करना चाहिए, क्या वो हमको संदेश देना चाहते हैं, और वो संदेश अगर मैं समझ पाती हूँ तो वो मैं अगर कविता के माध्यम से दूसरों को भी बताऊं या सुनाऊं, तो मुझे एक बहुत मतलब लगता था कि मैं कुछ सेवा कर रही हूँ प्रकृति की और मतलब अपने समाज की भी। तो जब मैं 5th या 6th क्लास में थी तभी से ये सफर लिखने का शुरू हुआ, तो मैंने पहली बार जो कविता लिखी थी वो एक कुछ चिड़िया पर और प्रकृति पर लिखी थी, और वो हमारे यहाँ पे दैनिक एक वो पत्रिका छपती थी उस समय, अभी भी छप रही है अमर उजाला, तो उसमें प्रकाशित भी हुई थी।
0: क्या बात है।
1: से मुझे लगा कि मैं ठीक ठीक लिख सकती हूँ, तो बस वहीं से मैंने शुरुआत की, और फिर जो वो वहां से शुरुआत हुई तो परमात्मा की हाँ वो सफर आगे बढ़ता रहा, और मतलब अभी बहुत सारे।
0: तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी आपसे निधि जी कि जैसे आप कविताएं तो लिखते हैं, एक्चुअली मैं जानना तो आपके सफर के बारे में बहुत कुछ हम चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम संगीत का है, ये कार्यक्रम ऐसा है कि जहाँ पे हम जुड़ते हैं कविताओं से गीतों से, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आपकी लिखी हुई कोई कविता आप हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं।
1: जी जी जरूर। मेरी एक कविता है जो मैंने लिखी है कि कैसे मतलब अपने मन के जो भाव होते हैं उस पे आधारित है, कि हर इंसान के अंदर मन में कुछ ना कुछ भाव रहते हैं, और उनको मतलब हम कैसे मतलब कभी कभी बहुत गहराई से फील करते हैं, तो वो ही भाव के ऊपर ये कविता है कि मेनली जैसे शांत एक शांति का एक होती है भाव होता है या एक फीलिंग होती है, तो वो मुझे जब फील हुई होती है तो उसकी मतलब कितनी पावर होती है उसमें, उसी पर आधारित है। खामोशी की जुबान, खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, बिन बोले बहुत कुछ कहती है, मन के अनसुने राज खोलती है, दिल में बस उतर जाती है, बार बार विवश कर देती है इतना असर छोड़ती है, बार बार विवश कर देती है इतना असर छोड़ती है, जुबान कभी ना जो कर पाती, खामोशी की जुबान वो कर देती है जो सोचा नहीं, खामोशी की जुबान मन का आईना है, खामोशी की जुबान मन का आईना है, हमारे विचारों को देती है आकार, हमारे विचारों को देती है आकार, खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, खामोश रहकर भी अपनेपन का एहसास कराती है, अंदर तक दिल में उतर जाती है, अंदर तक दिल में उतर जाती है, बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह देती है, सुकून और आनंद से भरपूर जीवन को बनाती है, सुकून और आनंद से भरपूर जीवन को बनाती है, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ जाती है, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ जाती है, जीवन में नए रंग भरकर जीवन खूबसूरत बनाती है, जीवन खूबसूरत बनाती है, खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, गहरा असर करती है।
0: क्या बात है, खामोशी को जुबान दे दी आपने, और क्या महसूसता होती है जब कोई इंसान चुप भी होता है तो क्या कह रहा होता है या क्या महसूस कर रहा होता है। आपने एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ देती है खामोशी की जुबान, इसका क्या अभिप्राय था, मतलब ये क्या आपकी भावना थी इसके पीछे?
1: मेरे मन में इसके पीछे यही भावना थी कि जब हम खामोश होते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं हम उनको समझ पाते हैं, अपने मन को समझ पाते हैं, और परमात्मा से जुड़ने के लिए भी हम जितना खामोश रहते हैं उतना ही डीप कनेक्शन परमात्मा से हमारा बन पाता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क में रहते हैं तो हम खुद से नहीं जुड़ पाते हैं और परमात्मा से भी हम नहीं जुड़ पाते उतना अच्छे से। लेकिन जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, या हमें क्या करना चाहिए, और परमात्मा से हमारा जो संबंध है उसकी गहरी महसूसता जब हम खामोश होते हैं तभी होती है। और हमारी शक्तियाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब हम जब बोल रहे होते हैं तो हम अपनी शक्तियों को भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं।
0: ओके।
1: लेकिन जब खामोश रहते हैं तो हमारी शक्तियाँ कंसंट्रेट हो जाती हैं और बेटर होती हैं। मेरा बस यही अभिप्राय था खामोशी की जुबान के पीछे,
0: बहुत सुंदर।
1: हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए, जो भी हमारा दिनचर्या है या जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, तो अपने लिए समय निकालें और उस समय मतलब खामोशी में रह कर बैठें तो हमें बहुत सारा मतलब अपने बारे में जानने को मिलेगा और हमारे जीवन में हमें ज्यादा सफलता मिलेगी और परमात्मा का भी हमारा जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग
0: होता जाएगा। क्या बात है। और जैसा आपने कहा कि आपने फिफ्थ क्लास से आप लिखना शुरू कर दिया था, आप अपना अनुभव सुना रहे थे, तो आपने क्योंकि आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड में हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में हैं, तो क्या ये फील्ड आपकी लिखनी से ही शुरू हुई, इसीलिए आपका इंटरेस्ट आया, या कोई और रीज़न था इस करियर के पीछे?
1: एक्चुअली मेरी लेखनी से, वैसे तो मैंने आगे की जो पढ़ाई की वो मतलब अलग फील्ड में की थी, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हमेशा से, क्योंकि मुझे साइंस बहुत पसंद रहा क्योंकि इसमें लॉजिक होता है चीज़ों में, हम मतलब प्रूव कर सकते हैं हर चीज़ को, हमें ऐसे मतलब बिना देखे कोई चीज़ को मानने की, बिना समझ के मानने की ज़रूरत नहीं होती, साइंस हर चीज़ का प्रूफ देती है, लॉजिकल होती है, इसलिए मुझे साइंस फील्ड पसंद थी। तो मैंने साइंस में ही अपनी पढ़ाई आगे की और उसके बाद उस समय क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड वाली फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो मेरे घर वालों ने भी चाहा कि मैं उस फील्ड में कुछ करूँ, तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई उस फील्ड में की, MBA किया और MBA के बाद मैंने कुछ कॉरपोरेट कंपनीज में, MNCs में भी काम किया, लेकिन अंदर से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहा था।
0: ओके।
1: लेकिन जो मेरा राइटिंग वर्क था वो मेरा चल रहा था साइड बाय साइड, तो मुझे लगा कि जब मुझे ये प्लेटफॉर्म है जिसमें ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती हूँ और इससे मैं ज़्यादा करीबी फील करती हूँ, क्रिएटिव राइटिंग है चाहे वो कविताओं के माध्यम से है, लेखों के माध्यम से है, ब्लॉग्स के माध्यम से है, और मैं गीत भी लिखती हूँ तो गीतों के माध्यम से है, तो फिर मुझे लगा कि मैं इसी को अपना फुल टाइम करियर बनाऊँ क्योंकि मुझे और भी लोगों ने,
0: जो कब लगा आपको मतलब
1: जब मैंने जैसे आपको शेयर किया कि जब मैं MBA करके और कॉरपोरेट कंपनी में काम कर रही थी उस समय 2-3 साल बीत चुके थे,
0: 3 साल बाद आपको ये लगने लगा,
1: मुझे ये लगने लगा कि मुझे अपना करियर थोड़ा सा मुझे वो करना
0: क्रिएटिव फील्ड,
1: हाँ मुझे कुछ शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे उतना पैसा मैं कमा रही थी और जॉब भी चल रही थी लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना जो हम कर रहे होते हैं वो मुझे कहीं मिसिंग लग रहा था। बाहरी तौर पे तो मैं कर रही थी, ठीक था सब कुछ, लेकिन अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए बहुत कंटेंटमेंट की, सेटिस्फेक्शन की, वो नहीं आ रही थी। और बाकी जो मैं जैसे फ्रीलांस बेसिस पे काम करती थी तो जो फील्ड से जुड़े, लेखन की फील्ड से जुड़े लोग हैं उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप इस फील्ड में अगर करोगे तो ज्यादा शायद अच्छा रिजल्ट आप दे पाओगे और आप आगे ज्यादा सफल हो पाओगे और मतलब आपका लगता है कि इसमें ज्यादा अच्छा एप्टीट्यूड है। तो फिर तभी से मतलब मैंने सोचा कि मैं फिर इसी फील्ड में अपने आप को वो करूं, परस्यू करूं इस फील्ड को और इसी में अपने सफर को आगे
0: बढ़ाऊं।
1: तो बस वहीं से मैंने सोच लिया और वहीं से फिर मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी कर लिया, इसलिए मुझे बोला गया तो BHU से 1 ईयर का और उसके बाद से पूरी तरह इस फील्ड में।
0: आपने कहा आप गीत भी लिखते हैं
1: जी,
0: तो क्या कोई गीत है आपका लिखा हुआ आपको याद या कुछ आप अगर शेयर करें हमारे श्रोताओं के लिए?
1: गीत है तो उसकी कुछ लाइंस मैं गा देती हूँ क्योंकि मैं कवित्री हूँ बट मैं लिखती हूँ गीत भी
0: जी।
1: इसका शीर्षक है तुम बिन कोई नहीं, ये परमात्मा को मैंने डेडिकेट या समर्पित किया हुआ है। तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे नाता,

बस तुम ही हो मेरे यहाँ, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम्हें पाकर जैसे आसमां पा लिया। तुमसे मिली है मुझको शफा, तुमसे ही है मेरी सारी वफा, तुमसे मिली है मुझको शफा, तुमसे ही है सारी वफा, तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे नाता मेरा, दिन रात तुमको ही चाहूँ मैं, तुम्हारी ही मत पे चलती जाऊँ मैं।

0: साथ देते हो मेरा हर दफा, मेरी दुनिया रोशन है तुम्ही से, मेरी खुशी जिंदा है तुम्ही से, तुम हो मेरे खुदा, तुम हो मेरे खुदा, रखते हो पलकों पे सदा, रखते हो पलकों पे सदा, कैसे करूं प्रभु तेरा शुक्रिया, कैसे करूं प्रभु तेरा शुक्रिया। जन्नत को जैसे जमी पे लाए हो, सुख अपार मुझ पर लुटाए हो, जन्नत को जैसे जमी पे लाए हो, सुख अपार मुझ पर लुटाए हो, तुमसे मिलकर कुछ ऐसा लगा, तुमसे मिलकर कुछ ऐसा लगा, तुम ही हो मेरे यहाँ, बस तुम ही हो। मैं हूँ जैसे कोई अफसरा, ऐसा मुझको लगने लगा, मैं हूँ जैसे कोई अफसरा, ऐसा मुझको लगने लगा, तुमने मुझ पर ऐसा करम किया, ऐसा करम किया, इतना ऊंचा मुझको बना दिया, इतना ऊंचा मुझको बना दिया, हीरे मोतियों से भर दी झोली मेरी, हीरे मोतियों से भर दी झोली मेरी, हर कमी को मेरी पूरा किया, हर कमी को मेरी पूरा किया, खालीपन कुछ भी न रहने दिया, खालीपन कुछ भी न रहने दिया, भर भर के प्यार इतना दिया, नैनों को मेरे भिगा दिया, भर भर के प्यार इतना दिया, नैनों को मेरे भिगा दिया, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे नाता मेरा, सदियों से है तुमसे नाता मेरा।
1: ये गीत आपने पूरा परमात्मा को समर्पित किया
0: जी,
1: आपने ऐसा लिखा, वो जो आप फील करते हैं ईश्वर के लिए वो जैसे आपने शब्दों में लिखा। तो जब आप ये गीत लिख रहे थे तो क्या भावना थी, जैसा आपने कहा कि आप वैसे गाते तो नहीं हैं, आप लिखते हैं, तो आपको ये मन में भावना थी कि ये आप किसी को देंगे या गवाएंगे, या आपको लगता था कि ये मैंने अपने लिए लिखा है, क्या सोच के आपने लिखा या क्या महसूस था थी इस गीत के लिए?
0: मेरा मतलब मेन पर्पस था कि ये गीत तो मैं अपने लिए लिखना चाहती, जो मेरा परमात्मा के साथ संबंध जो मैं महसूस करती हूँ, लेकिन जैसे कि मैं चाहती थी कि कोई और की आवाज़ में ये गीत गाया जाए और सुने सब लोग, ताकि मतलब जैसा मैं महसूस करती हूँ परमात्मा के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो भी ऐसा महसूस करते हैं परमात्मा के लिए, तो एक मतलब उनको भी ये गीत सुनने को मिले तो उनको भी वो खुशी हासिल हो जो मुझे खुशी हासिल हो रही है, तो यही सोच के साथ मैंने ये लिखा था।
1: वंडरफुल। तो डेफिनेटली जब हम कुछ लिखते हैं तो अगर महसूस नहीं करते तो वो लिख नहीं सकते, वो कागज और कलम पे नहीं आ सकता, तो
0: भावनाएं हमारे मन में नहीं होंगी उस विषय के प्रति या उस चीज के प्रति, तब तक वो शब्दों में उस तरह से ढल ही नहीं पाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सच। तो निधि जी, एक और बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, कविताएं लिखना और कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी लेखन के भी दो अलग अलग फील्ड्स हैं बहुत जी। तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं, क्या समानता लगती है, या कैसा महसूस करते हैं हम दोनों को ही लिखते वक्त?
0: देखिए, लेखन का है वो फील्ड एक अलग है, वहां पे हमें बहुत सारा प्रैक्टिकल होके भी सोचना पड़ता है, बहुत सारी मतलब भावनाओं के साथ ही हम नहीं हमेशा लेखन कर सकते, हमें जो सच्चाई है समाज की या जो हमारे विषय है उसके ऊपर हमें रिसर्च भी करना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों से बातचीत करके हम कोई लेख तैयार करते हैं और फिर वो लिखते हैं, और वो समाज से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे मतलब महिलाओं से रिलेटेड, कोई भी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है लेख हमारा, लेकिन उस पे हमें रिसर्च जरूर करना पड़ेगा, और वो इतना मतलब एक जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी कई बार उसमें शामिल किए जाते हैं, लेकिन जो कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, ये जो हैं ये सारे बहुत भावनात्मक पहलू से संबंधित होते हैं, जो हम समाज से भी हम चीज़ें देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, मतलब बहुत सारे विषय हैं जो जिन पे आधारित होते हैं, लेकिन मेनली इनमें भावनाएं मेन होती हैं और उन्हीं के आधार पे हम लिखते हैं। इसमें कोई रिसर्च वर्क या कुछ किसी से बातचीत के आधार पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट ये है कि दोनों में समानता अगर देखें तो यही होती है कि लेखक जो होता है वो उसके विचार दोनों में ही आ जाते हैं, चाहे वो गीत होंगे, कविताएं होंगी या लेखन होगा, तो हमारे विचार तो इनमें आते हैं, हम अपने मन की जो भावना है, लेकिन वो लिखने का जो पैटर्न होता है वो फॉर्मेट चेंज हो जाता है दोनों में। वो भावनात्मक विषय हमारी फीलिंग्स पे आधारित होते हैं जो गीत और कविताएं हैं, हालांकि वो विषय हम वहीं से उठाएंगे, अपने समाज से ही उठाएंगे, पर लेखन में होता है कि हमें खाली अपनी फीलिंग्स नहीं डाल देनी है, वो सच के करीब होने चाहिए, उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको शामिल करना पड़ेगा, लोगों के जो व्यूज हैं वो सारे शामिल करने पड़ेंगे, ये मेन डिफरेंस आ जाता है।
1: तो उसके लिए अगर मान लीजिए कोई कंटेंट राइटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो क्या स्किल्स होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
0: मेनली अगर कोई कंटेंट राइटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो उनको थोड़ा सा लिखने की, मतलब उनकी एक शैली उनको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर होती है कुछ लोगों में तो फिर वो लेखन के फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। शब्दकोश अपना अच्छा बनाना पड़ेगा, जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में हमें थोड़ा कमांड होना चाहिए अच्छा, तो फिर इस फील्ड में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, हालांकि अगर आप प्रोफेशनल एक राइटर बनना चाहते हैं तो वो भी आजकल ज़रूरी हो गया है कि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो, लेकिन अगर आप ऐसे शौकिया तौर पे लेखन करना चाहते हैं तो इस फील्ड में आप आ सकते हैं। अगर आपका रुचि है, लेखन में रुचि है, आपका शब्दकोश आप अच्छा रख सकते हैं और आप भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अगर आपका मतलब एक आपके अंदर वो है एप्टीट्यूड है तो इस क्षेत्र में आप आके बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ये क्षेत्र आपको बहुत
1: बहुत कुछ दे सकता है
0: क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी पहचान आप बना सकते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि लेखन के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों के दिलों में आ जाते हैं, दिलों में लोग बिठाते हैं और बहुत सम्मान भी हमें मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, वो चीज नहीं है, खाली इस क्षेत्र में सम्मान और एक लोगों का प्यार बहुत होता है, ये मैंने देखा है।
1: क्या बात है, मस्त है। तो कोई और ऐसी कविता निधि जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो या आपको बहुत पसंद हो, या जैसा आपने कहा लोगों का प्यार मिलता हो, जिससे आपको लगा कि हाँ लोगों ने बहुत प्यार दिया ऐसे।
0: जी बिल्कुल, ये कविता है जो हमारे रिश्ते जो हैं उन पर आधारित है कि आजकल हमारे रिश्तों में मतलब वो जो अपनापन जो खींच है वो थोड़ा कम हो रही है, तो उसको कैसे हम बरकरार रखें, चाहे कोई भी रिश्ते हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्तों के साथ रिश्ता हो या परमात्मा के साथ हमारे जो संबंध हैं, तो कैसे रिश्तों में एक ताजगी हम रखें, कैसे रिश्तों में प्यार स्नेह रखें, उस पर आधारित है मेरी ये कविता, आपके सामने रख रही हूँ। रिश्तों का सौंधापन, रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्ते तो हमें जोड़ते हैं, हम खुद ही उन्हें तोड़ते हैं। विकारों के वशीभूत होकर रिश्तों को छोड़ते हैं, झूठे अहम के चलते अपनों से भी मुंह मोड़ते हैं। झूठे अहम के चलते अपनों से भी मुंह मोड़ते हैं। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। प्रेम वात्सल्य की गुनगुनी धूप, अपनेपन की खाद। प्रेम वात्सल्य की गुनगुनी धूप, अपनेपन की खाद। मीठे बोल का शीतल जल रिश्तों में प्राण भर देता है। मीठे बोल का शीतल जल रिश्तों में प्राण भर देता है। रिश्ते सहज सरल समरस बन जाते हैं। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्ते मुरझा ना पाएं, ध्यान हमें रखना है। रिश्ते मुरझा ना पाएं, ध्यान हमें रखना है। प्रेम का छिड़काव उन पर कर

0: रिलेट किया आपने. हम जानते हैं वो सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है वो तो बहुत आकर्षित करती है, पर रिश्तों का सौंधापन क्या है, थोड़ा अगर आप समझाएंगे कि मतलब किस चीज ने प्रेरित किया आपको ये लिखने के लिए, और रिश्ते आपके लिए क्या मायने रखते हैं वो भी अगर आप बताएं.
1: ये मैंने जैसे सौंधापन हम देखते हैं ना, बहुत मतलब खुशबू होती है एक बहुत प्यारी सी, तो वही हम खुशबू अपने रिश्तों में भरें तो फिर वो रिश्ते हमारे हमेशा सुंदर बने रहेंगे और हमारे रिश्तों में प्यार हमेशा बना रहेगा. तो वही मैंने कहा कि वो जैसे सौंधापन हमको, चाहे वो बारिश की बूंदें जब पड़ती है मिट्टी पे, तो मिट्टी से एक सौंधेपन की खुशबू आती है. पहले ज़माने में वो जो दाल माताएं बनाती थी वो चूल्हे पे, उसमें एक सौंधापन आता था जो मिट्टी का बर्तन होता था. तो इस तरह हम वो सौंधापन अपने रिश्तों में भी अगर हम लाएं, वो मीठापन, तो हमारे रिश्ते बहुत सुंदर बने रहेंगे, बहुत रिश्तों में हमेशा एक ताजगी बनी रहेगी, एक अपनत बना रहेगा, स्नेह भावना बनी रहेगी. और मेरे लिए रिश्ते मेरे जीवन में बहुत बहुत मायने रखते हैं. तो बचपन से ही मैंने अपने रिश्तों को मतलब बहुत महत्व दिया है जीवन में, और चीज़ों से ज़्यादा हमेशा मैंने रिश्तों को महत्व दिया है. तो मैंने देखा है कि बाकी सब चीज़ें मेरे जीवन में हमेशा अच्छी हुई हैं क्योंकि लोग मेरे साथ हैं, रिश्ते मेरे मजबूत हैं, तो मेरे मन की स्थिति भी हमेशा अच्छी है और लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं. जब अपने रिश्तों से जुड़ी रहती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे मुझे सीखने को मिलता है, एक मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहा है, एक बुरे वक्त में साथ मिला है रिश्तों का, अच्छे बुरे वक्त में. तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते हमेशा अच्छे बना के रखने चाहिए, चाहे वो घर के लोगों से रिश्ते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पे हैं, क्योंकि इन सब की ब्लेसिंग्स और इन सब का साथ जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और परमात्मा से हमारा रिश्ता वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो उनसे अगर हम अपना रिश्ता अच्छा बनाए रहेंगे तो बाकी सारे रिश्ते भी कहीं ना कहीं हमारे अच्छे बने रहेंगे. और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में रिश्ते. मेरे हिसाब से तो मेरी लाइफ में एक मतलब जो बोलते हैं ना कि लाइफ लाइन है रिश्ते मेरी लाइफ के.
0: क्या बात नीति जी. लेकिन रिश्तों को बरकरार रखने के लिए जो आपने कहा, ये सब पाने के लिए आज की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो चुकी है. सब अपने अपने तरह से जीवन जीना चाहते हैं, जो गलत भी नहीं है. और फिर भी और समय भी बहुत कम होता जा रहा है सभी के पास. तो कैसे, मतलब आपका क्या कोई फॉर्मूला है या कोई चीज़ है जिसने आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम किया, जो आपको लगता है कि दूसरों को भी मदद कर सकती है?
1: हाँ, मुझे लगता है कि आज की लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा, मैं भी मानती हूँ कि सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और एक दूसरे के लिए इतना टाइम भी नहीं दे पाते आजकल हम लोग. और मतलब दूरियाँ भी बढ़ गई हैं, मतलब फिजिकल डिस्टेंस भी हो रहे हैं आजकल, क्योंकि कोई किसी शहर में रह के काम कर रहा है, कोई यहाँ रह के. लेकिन हम मन से तो जुड़े रह सकते हैं ना, तो मन की भावना हम सभी जो हमारे अपने हैं या जो भी लोगों के हम संपर्क में हैं, संबंध में, उनके लिए मन की भावनाएं अच्छे रख सकते हैं. और साथ में हम बीच बीच में उनसे अगर पॉसिबल हो तो उनके साथ कुछ समय बिताएं, कोई ओकेशन है उस समय हम आपस में मिलें, या फिर कभी हम लोग फ़ोन से भी बात कर सकते हैं जिन लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं है. और मान लीजिए कि हम किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो उस समय हम उस रिश्ते के साथ ज़रूर खड़े हों, समय निकाल कर उनके सुख दुख में. तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे रोज़ ही मिलें, रोज़ ही बात करें, या उनको बहुत सारे अच्छे गिफ्ट दें, या फिर मतलब बाहरी जो दिखावे की चीज़ें वो करें, मगर हम उनका दिल से साथ दें रिश्तों का. और मतलब रिश्तों में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा सहनशील बने, और मतलब जो भी हमारे रिश्ते हैं उनको बरकरार रखने के लिए अगर हमें सैक्रिफाइसेस भी कुछ कुछ करने पड़ते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत स्मूथ रहती है रिश्तों में. बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी आपस में मतभेद भी हो जाते हैं, पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग को भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू ख़त्म करें. रिश्तों में कभी भी मनमुटाव की भावना पैदा नहीं होने दें और अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने दें, तो हमारे रिश्ते अच्छे रह सकते हैं और हम लोगों से जुड़े रह सकते हैं जिन लोगों से हम जुड़े रहना चाहते हैं.
0: मतलब माफ कर दें अगर कुछ हो भी जाए तो.
1: जी जी बिल्कुल, उसको माफ लेकर कर बैठे उसको लेकर बैठे नहीं, और वो जो वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा कोशिश करके पॉजिटिव रखें दूसरों के प्रति भी. क्योंकि हो सकता है, देखिए हम सभी अलग अलग जगहों से

0: आए हैं और हमारे संस्कार स्वभाव कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, ये सोचे कि उनका स्वभाव हमसे थोड़ा अलग है, ये नहीं कि मैं ठीक हूँ और वो गलत है, वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, बस हमको तालमेल बिठाने की जरूरत है, एडजस्टमेंट की जरूरत। अगर ये सोच रखेंगे तो हमारे रिश्ते कभी किसी के साथ खराब नहीं हो सकते। और जहाँ अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम थोड़ा सा साइलेंट हो जाए उस समय, और बाद में जो भी बात है वो आपस में बातचीत करके खत्म कर लें। बस ये सब चीजें अगर हम अपनी लाइफ में सोच में रखेंगे तो हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे और हमेशा मतलब हमारे बीच जो है प्रेम और स्नेह बना रहेगा रिश्तों में। और मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, रिश्ते तभी खूबसूरत रह सकते हैं, हमारी सोच अच्छी रहेगी तो दूर रहकर भी हमारे रिश्ते आपस में बहुत अच्छे रह सकते हैं।
1: निधि जी, जैसे आपने रिश्तों के बारे में बात की और उससे पहले हमने परमात्मा के साथ जो संबंध की बात की, अब अगर थोड़ा सा प्रकृति पे आए, आपने क्योंकि लिखना जब शुरू किया था तो आपने कहा वो चिड़िया पे है ना, वो पेड़ों को देखा, वो वहाँ आपने फिफ्थ क्लास में लिखना शुरू किया, तो प्रकृति के लिए भी अगर आपने कोई कविता लिखी हो तो वो हमें ज़रूर सुनाए हमारे श्रोताओं के लिए। कि हम आबू में रहते हैं और आबू सराबोर है प्रकृति के जैसे वरदानों से, ना बहुत सुंदर प्रकृति का स्थान है ये,
0: बहुत सुंदर ये जगह है। यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे भी बहुत प्रकृति के नज़दीक फील होता है और लगता है प्रकृति जो कुछ कहना चाहती है उसे सुनना चाहिए, और उसको महसूस करने का बहुत अच्छा एक जरिया है ये आबू। तो मैंने जो मतलब मैं भी प्रकृति के शुरू से बहुत नज़दीक रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रकृति के साथ समय बिताना। तो मेरी ये कविता प्रकृति से संबंधित है और समर्पित है। जीवन और प्रकृति, जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, क्या आपने ये बदलाव महसूस किया? जीवन का यह नया अंदाज असाधारण सा, फिर से हम पुराने समय में पहुंच गए हैं, जड़ों से जैसे जुड़ने लगे हैं, प्रकृति के बेहद करीब हो रहे हैं, सब कुछ लग रहा है नया नया। शांति से बिताएं कुछ पल प्रकृति और अपने संग, शांति से बिताएं कुछ पल प्रकृति और अपने संग, दिल में भरें खुशी और मस्ती के रंग। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, कलयुगी समर के इस दौर में मुश्किलों के बीच भी कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। ताजी और ठंडी हवा आनंदित कर रही है, धूप गुनगुनी और प्यारी लग रही है, अपनों से समरसता बढ़ रही है, पर क्या अपने अंदर झांक कर देखा है? जरा खुद को टटोलो और पूछो, क्या मानव सृष्टि बदलने वाली है? क्या नई दुनिया आने वाली है? प्रकृति भी इशारा दे रही है, संभल जाओ मानव वरना देर हो जाएगी। पछतावे के अलावा हाथ में सिर्फ मिट्टी आएगी, पछतावे के अलावा हाथ में सिर्फ मिट्टी आएगी, प्रकृति भी फिर तांडव मचाएगी, प्रकृति भी फिर तांडव मचाएगी, और जीवन रूपी गाड़ी थम जाएगी, और जीवन रूपी गाड़ी थम जाएगी, फिर से ये महफिल ना सच जाएगी, फिर से ये महफिल ना सच पाएगी। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, कलयुगी समर के इस दौर में मुश्किलों के बीच में कुछ तो अच्छा हो रहा है। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी,
1: जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी। और सच में हमने प्रकृति के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत गलत किया है, प्रकृति का विकराल रूप भी इंसान ने देखा है।
0: हाँ, लेकिन बहुत हमने देखा है, मतलब क्योंकि अब आजकल जो दौर चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि प्रकृति भी अपनी सीमाएं लांघ रही है, बहुत जगह प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं क्योंकि हमने प्रकृति का बहुत ज्यादा शोषण किया है, प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है मानव दिन पर दिन। तो इसीलिए ये सारी हम देख रहे हैं, प्रकृति भी फिर वो रिएक्शन दे रही है ना हमको जब हम उसका इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी भी हमारे पास समय है कि हम संभल जाएं वरना फिर हो सकता है बहुत देर हो जाए और फिर विनाश की मतलब एक प्रकृति भी ऐसे रूप में आ जाए,
1: प्रकृति भी अपना विकराल रूप और दिखाए,
0: और ज्यादा विकराल रूप सामने आएगा तो फिर मानव को बहुत ज्यादा उस समय मतलब पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
1: वो कहते हैं ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो अब हमें प्रकृति प्रेम को और बढ़ाना है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम प्रकृति की बात पे आई है, कैसे मतलब प्रकृति के साथ और करीब कैसे खुद को महसूस करें, या कैसे वो उस नाते को और स्ट्रॉन्ग किया जाए?
0: हाँ, प्रकृति के साथ हम अपना नाता स्ट्रॉन्ग तभी कर सकते हैं जब हम प्रकृति का संरक्षण करने की दिशा में आगे बढ़े। मतलब पेड़ पौधे, हरियाली है उसको, मतलब और हरियाली अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाएं, और मतलब जो हमारे शहरों में जो जहाँ पे भी मतलब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो हम लोग उस चीज़ को भी देखें कि हम नष्ट नहीं करें पेड़ पौधों को। और जो हमारा जैसे पानी है वो भी एक हमारा प्राकृतिक एक स्रोत है, प्रकृति से जुड़ा हो, तो उसको भी हम मिसयूज नहीं करें, उसको बर्बाद नहीं करें, उसका भी हम संरक्षण करें। तो हम प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं जितना हो सके। हम मतलब पेड़ पौधों का, जल का, इन सब का मतलब हम दुरुपयोग नहीं करें, इसका सदुपयोग जितना जितना हम करते जाएंगे तो हम प्रकृति के और नजदीक आते जाएंगे। और मतलब उनको अपना एक दोस्त समझें, ये नहीं सोचे कि ये तो मतलब पेड़ पौधे हैं, इनका क्या है, इनको कैसे भी इस्तेमाल करो, इनके अंदर तो कोई जान नहीं है, ये तो एक जगह खड़े रहते, निर्जीव नहीं माने, वो सजीव है हमारे जैसे ही। तो अगर हम उनको अपने जैसा ही समझेंगे तो हमारे उनके प्रति भी शुभ भावना रहेगी, और हम उनको भी अपना एक सच्चा मित्र मान के चलेंगे, तो कभी हम उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे और हमारा उनसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कनेक्शन बनेगा और हम नज़दीक रहेंगे। और वो प्रकृति की भी एक भाषा होती है, जो अगर हम एक शांति में रहकर अगर उस भाषा को सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें वो भाषा समझ में आएगी कि प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है। तो वो हम सुनने की कोशिश करें कि हमारी प्रकृति हमसे क्या चाहती है। जैसे हम प्रकृति से बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत कुछ प्रकृति हमको दे भी रही है, देती रही है सदियों से, लेकिन उसको भी जो हमसे चाहिए वो हम कभी हमने उस चीज के बारे में नहीं सोचा। केवल हमको क्या चाहिए प्रकृति से, उसी के बारे में हम सोचते आए सदियों से। तो अब हमें जरूरत है कि हम इसको अपने फोकस को चेंज करें और प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है उसके बारे में भी हम सोचें।
1: ये बात मुझे सच में बहुत अच्छी लगी नीति जी की। हम देखते हैं, हम जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, हम वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं,
0: अगर बहुत अच्छा लगता है। अगर पेड़ पौधे, पहाड़, प्रकृति नहीं हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा?
1: बिल्कुल।
0: बहुत नीरस हो जाएगा, प्रदूषण कितना हो जाएगा हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, हर जगह। और बारिश जो प्रकृति की देन है हमको, वो नहीं हमें मिलेगी तो सोच लीजिए कैसा जीवन होगा मानव जीवन।
1: सच में जब हम जाते हैं तो हम इतना इंजॉय करते हैं और हम रिलैक्स हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रकृति जो हमें हर टेंशन से फ्री करती है, जो हमें खाना देती है, पानी, सब कुछ मिलता है, तो हम क्यों ना उसकी आवाज सुने। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोस्तों, जब आप भी जाते हैं किसी भी सफर पर या फिर ऐसे यूं ही कुछ वक्त अपने लिए जब आप निकालते हैं, तो प्रकृति की आवाज़ सुने। सच में वो हमसे क्या कहना चाहती है, वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है। या बहुत सुंदर ये बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, करके देखिएगा ज़रूर, मैं अपने दोस्तों से कहूँगी यहाँ पे। और दीदी जी, मैं आपसे जाते जाते एक और प्रश्न ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने महिलाओं की भी बात करी थी, है ना, जिन टॉपिक्स पर आप लिखते हैं उसमें आपने कहा था महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी आप लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ बताएं कि आपके क्या विचार हैं उस बारे में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो अभी किस प्रकार के सशक्तिकरण की जरूरत है? क्या अभी वो तरीका, मतलब क्या अभी वो नीड बदल गई है या चेंज हो गई है, कौन सा सशक्तिकरण चाहिए? और फिर जाते जाते अगर आप हमें कोई एक कविता भी आपकी जरूर सुनाएं।
0: महिलाओं को तो देख रहे हैं हम कि आजकल महिलाओं समाज में आगे बढ़ रही हैं, उनको मतलब हर क्षेत्र में महिलाएं अच्छा कर रही हैं, क्योंकि जागरूकता हमारे समाज में बढ़ी है। तो इसी वजह से आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आर्थिक तौर पर इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होना सिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू भी है कि महिलाएं जहां एक और भारी तौर पे तो उनके अंदर सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल्य हैं और हमारे संस्कार हैं, वो भी बच्चियों में आजकल के पेरेंट्स को देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कहीं ना कहीं वो संस्कार और वैल्यूज़ की मिसिंग भी हो रही है। हमारी जो नारी शक्ति है उसके अंदर कुछ, जिसकी वजह से हमारे समाज में, हमारे परिवार में उसका बहुत गहरा प्रभाव हो रहा है कि महिलाएं जहाँ एक और वो आर्थिक तौर पे पावरफुल बन रही हैं, एम्पावर हो रही हैं, और वो इंडिपेंडेंट सोच वाली हो रही हैं, वो होशियार हैं, वो हर क्षेत्र में आगे प्रगति कर रही हैं, लेकिन जो अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहिए और मतलब सबकी आदर सम्मान जो महिलाओं को मतलब करती हैं महिलाएं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं उस चीज को नहीं समझती हैं, लेकिन एक समाज में कुछ मतलब बहुत सारी वो भी हो रही है महिलाओं के आर्थिक तौर पे सक्सेसफुल होने के साथ साथ जो वैल्यूज और जो संस्कार हैं उनकी महसूसता में वो शक्तियां कम कहीं ना कहीं हो रही है महिलाओं में, जिसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं कितने सारे तलाक हो रहे हैं हमारे समाज में, मतलब डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है क्योंकि महिलाएं सहन शक्ति जो है जो पहले की माताओं में हुआ करती थी, स्नेह की भावना, स्नेह की शक्ति, प्रेम की शक्ति जिसके माध्यम से वो पूरे परिवार को बांधे रखती थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है आजकल। महिलाएं भी जैसे अपने ही बारे में ज्यादा सोचने लगी हैं आजकल, या अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी हैं बस, या मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम डेवलप होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहे हैं, मतलब पति के साथ या हस्बैंड के साथ में वो महिलाएं उस तरीके से तब अपने परिवार को नहीं साथ लेके चल पा रही हैं जैसे पहले महिलाओं के अंदर ये भी वैल्यूज और संस्कार रहते थे कि वो पूरे परिवार को बांध के चलती थी, परिवार की धुरी बन के चलती थी, भले ही वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, आर्थिक तौर पे वो इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, लेकिन अपने परिवार में वो बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी, वो रोल कहीं ना कहीं तो महिलाओं थोड़ा मिसिंग,
1: महिलाओं का मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि अब शायद हम जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो गई हैं, उनको ये भी समझ में आया है या ये भी लगता है कि परिवार को बांधने का कार्य सब मिलकर करें और उसमें पुरुष भी सम्मिलित हों, उसमें ये डिफरेंस ना हो कि ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है, सभी की वो जिम्मेदारी होनी चाहिए।
0: हाँ, होनी चाहिए सबकी, पुरुषों की भी होनी चाहिए महिलाओं के साथ साथ, पर कहीं ना कहीं जो है ना परमात्मा ने भी जो महिलाएं हैं उनको जो शक्तियां दी हुई हैं जैसे स्नेह की, प्रेम की शक्ति, सहन शक्ति, वो पुरुषों से ज्यादा दी हुई है, तो अगर महिलाएं उस शक्ति को यूज करेंगी तो फिर वो ज्यादा मेजर रोल प्ले कर सकती हैं, जैसे पालना की शक्ति है ना, ये महिलाओं के पास है, पुरुषों के पास ये शक्तियां उतनी नहीं है, तो इसलिए महिलाएं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल परिवार को बांधने में कर सकती, पुरुषों का भी रोल होता है और वो उनको निभाना भी चाहिए, पर अगर महिलाएं उनका साथ देंगी पूरी तरीके से, जैसे पुराने जमाने में हमारी माताएं बहनें दिया करती थी, तो परिवार कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से चलते थे और एक साथ रहते थे, कोई तलाक और डाइवोर्स पुराने जमाने में नहीं हुआ करते थे, जबकि पुराने जमाने में बहुत सारी
1: दिक्कतें होती थी, बिल्कुल
0: होती थी, लेकिन
1: वो तो हर समय होती है, जरूर
0: हो रहा है कि और महिलाएं मतलब वो भी सहन शक्ति खो रही हैं कहीं ना कि आर्थिक तौर पे वो क्योंकि सशक्त हो रही हैं, तो उनको लगता है कि हमें इतना सहन नहीं करने की जरूरत है, हमें कोई बात किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ मतलब मेरे को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए परिवार में जितना मेरे पति को मिलता है, मैं क्यों झुकूं, मतलब ये सब
1: झुकना तो दोनों को चाहिए, जहां जहां
0: जरूरत है दोनों झुके, मतलब ये और दोनों मतलब एडजस्ट करके चलें
1: जैसा आपने पहले कहा था, क्योंकि परिवार की जहां बात होती है
0: मतलब
1: वहां एक दूसरे को माफ करना, सहन करना, हर चीज करनी।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

0: ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ओम शांति। As I sit here in the consciousness of the soul, my attention is turned within.

0: I acquire the wisdom. Life is significant. Everything is good.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

शांति। आज 11 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। सावन का महीना है, बरसात के दिन है, तो आज ज्ञान सागर बाबा भी अपने बादल बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, जैसे बादल सागर से पानी खींच करके फिर जाए बरसते हैं, लेकिन उसमें कुछ खाली बादल भी होते हैं, तो वो बरसते नहीं है। ठीक इसी तरह बच्चे मधुबन बाबा के पास आते हैं, स्वयं को रिफ्रेश करते हैं, ज्ञान सागर की बूंदे अपने में भर लेते हैं और फिर सर्विसेबल बन जाकर बरसते हैं। बाबा कहते, ऐसे सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी मिलता है। याद प्यार बाबा ऐसे सर्विसेबल बच्चों को ही देते हैं। बाबा कहते हैं, जहां देखो कलराठी जमीन है, वहां जाकर बरसना चाहिए। और जब अच्छी रीति बरसते हैं तो बाबा भी खुश होते हैं। बाबा देखते हैं कई महारथी बच्चे, सर्विसेबल बच्चे हैं, सर्विस पर जाते हैं, प्रदर्शनी में जाकर समझाते हैं, बाबा का पैगाम देते हैं, परिचय देते हैं कि गीता का भगवान कौन है, निराकार परमपिता परमात्मा है। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों को जब बाबा देखते हैं, बाबा को बहुत बहुत प्यार ऐसे बच्चों के प्रति रहता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो, बुद्धि में ज्ञान भरपूर हो तो वर्षा करो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता है, बरसने नहीं देता? उत्तर है, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आ गया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे।

बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। देह अभिमान वाले सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं मधुबन में, उस समय बाबा ने देखा होगा तो बाबा कहते अभी बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहां भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं, मधुबन में आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं, बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते हैं, जिनमें ज्ञान है बाबा कहे वह छिप कर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। है ही बादल, आते ही है भर कर बरसने के लिए। जहां देखे कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए, डायरेक्शन का इंतजार नहीं करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे, प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही यह है, कौन सी, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए, सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाए। बाबा कहे ये ख्यालात रहना चाहिए कि सबको जाकर जगाए। सब घोर अंधेरे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है, दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं परंतु है पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। परित्राणायम साधु नाम गीता में भी कहा है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्र में यह ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सदगति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिनों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वो कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्य का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं, शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े।
शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सबसे तोड़ना है, यानी खाली निभाना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य, यहां तो एक भी हो न सके। श्री कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानी लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता, संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। यह है मुख्य पहला गुण। जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ये पवित्र तो वहां मंदिर होते नहीं, फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं, जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्म के अंत का जन्म। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है, इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कायत सब गई की गई। ये पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कायत सब गई की गई। थोड़े रोज बाकी है दुनिया में, थोड़ी किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवान वाच जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स है। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी है। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें है मेहनत, इसमें ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो, कब बाबा कहे आत्माभिमानी, यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, हमको कहने वाला कौन है। ये महसूसता हो कि कोई साधारण मनुष्य में नहीं कह रहा है, परमात्मा हमें कह रहे हैं। शिव बाबा आते ही है इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं, संस्कार अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं कि लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं, उसी सेक्शन में आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद का बाप में क्या संस्कार है, कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मां में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं, बाबा हमको सहज रास्ता बताते हैं। क्या सहज रास्ता बताया बाबा ने, कहते हैं मन मनाभव। ये अक्षर भी गीता में है परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। दो बार
गीता में मन मना भव कहा गया है 9वें अध्याय में 18वें अध्याय में, परंतु बाबा के इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते मामी कम याद करो, देह सहित देह के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्म समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते ये तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है, उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब ये समझे कि ये बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। बाबा कहते नए आदमी को एकदम निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहां आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बिके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा, ये फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, ना बाबा कहे कोई पूछे आपसे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हो गई। दादे का वर्षा मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे, तो ये फैमिली हुई ना, बाप बच्चे बच्चियां और दादा, बाप बच्चे बच्चियां और दादा है। ब्रह्मा भी है शिव भी है, वह रचयिता, निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे। ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है, इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना मन मना भव, अर्थात मामे कम याद करो, तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, भक्ति मार्ग में भी गाते हैं बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएगी, आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना, ये शिव साजन भी कहते हैं, हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुखधाम में ले चलेंगे, फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है, उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है, शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, बाबा कहते सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, बाबा का अंडरलाइन है, जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो,
अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल है, वह क्या करेंगे। यह तो जानते हो, पड़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहां तक पढ़े हुए हैं। बाबा कहे, हर एक खुद को समझ सकते हैं कि हम कहां तक पढ़ा हुआ। सर्विस करके दिखाता हूं, अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वो बादल ही क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो, जहां हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे। बाप आए ही है राजयुग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषणी नहीं जानते वह थोड़ी समझा सकेंगे, उच्च पद पा न सके। पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं, हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। ये तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। बाबा जो नॉलेज देते हैं वह इस दुनिया के लिए, पुरानी दुनिया के लिए नहीं। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्म के लिए, प्रालब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए। वो पढ़ाई है एक जन्म के लिए, यह पढ़ाई है प्रालब्ध बनाने के लिए। तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए। चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अजून खड़े नहीं होते। नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त है तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। अंदर में मूंझना नहीं चाहिए। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है तो गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबर वार चढ़ता है। बाबा कितना मेहनत करते बच्चों पर, लेकिन बाबा कहे नंबर वार ही चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद।
प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरा है, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, करना और कहना। इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हैं स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिस सर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना ये सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना ये सबसे बड़ी विशेषता है। आज का व्यक्ति इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न व संस्कार में भी वार न करे तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे। कभी अपनी संपूर्ण सतो प्रदान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना है। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है।